وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. चॉकलेट लिसनर्स आप सबको पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है मगर ये कि हमें कब खानी चाहिए कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए और ये कि हम ये भी जानते हैं

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक छोटी सी बस्ती में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था लिली। साथियों, लिली को सब किताबी लिली कहा करते थे और उसकी वजह भी थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा शौक था किताबें पढ़ना। सुबह हो या शाम, लिली मैडम तो बस अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। वो एडवेंचर, फेरी टेल्स और साइंस और फिक्शन की किताबें पढ़कर दुनिया भर की चीजें सीखने में मसरूफ रहती थी। लेकिन लिली का एक मसला था दोस्तों, वो इतनी मसरूफ रहती थी कि उसका हकीकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। साथियों, ना उसके कोई दोस्त थे, ना वो बाहर खेलती थी। उसकी अम्मी अक्सर कहती थी, लिली बेटा थोड़ा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो। लेकिन ना, लिली कहती, अम्मी किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मुझे नहीं जाकर बाहर खेलना मिलना किसी के साथ। एक दिन लिली लाइब्रेरी में एक नई किताब ढूंढ रही थी जब एक शरारती सा लड़का लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसका नाम था दीनो। दीनो को किताबों का कोई शौक नहीं था साथियों, बल्कि उसका शौक था शरारत करना और मजाक उड़ाना। लाइब्रेरी के अंदर भी वो आवाजें निकाल रहा था और लोगों को तंग कर रहा था। लाइब्रेरी में घूमते घुमाते दीनो की नजर लिली पर पड़ी। जब दीनो ने देखा कि लिली एक कुर्सी पर बैठी अपनी किताब में मसरूफ है, तो उसने सोचा, इस लड़की को मैं जरा तंग करता हूँ। दीनो ने लिली की किताब खींच ली और बोला, अरे तुम सिर्फ किताबें पढ़ती हो क्या, कभी कोई खेल कूद नहीं करती? लिली ने गुस्से से कहा, किताबें मेरी जिंदगी हैं। अच्छा, तुम्हें क्या पता किताबों की अहमियत, चलो निकलो यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो। दीनो हंसकर बोला, चलो एक डील करते हैं, तुम एक दिन के लिए मेरी तरह मस्ती करना शुरू कर दो और मैं एक दिन के लिए किताबें पढ़ूंगा, क्या कहती हो? लिली ने थोड़ा सोचा और हाँ कर दिया। अगले दिन दीनो लिली को अपने साथ बस्ती के पार्क में ले गया। वहां उन्होंने खेल कूद की, लोगों से ढेर सारी बातें की और तो और पेड़ों पर भी चढ़ने की कोशिश की। लिली पहले तो थोड़ा डरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे मजा आने लगा। दीनो हंसकर बोला, देखा, किताबों के अलावा भी जिंदगी है, खेल कूद करने में बहुत मजा आता है। लेकिन फिर अगला दिन आया और अब दीनो की बारी थी। लिली उसे लाइब्रेरी ले गई और एक मजाहिया किताब उसके हाथ में दे दी। दीनो शुरू में तो बड़ा ही बोर हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे मजा आने लगा। भाई, उसने कहा, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था? आहिस्ता आहिस्ता लिली और दीनो दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। लिली को तब जाके समझ में आया कि जिंदगी सिर्फ किताब

किताबों तक महदूद नहीं होती साथियों। उसने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना सीखा। और दीनो साहब, दीनो ने ये समझ लिया कि किताबें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट करती हैं, बल्कि हमें नए आइडियाज और सोचने का अलग अंदाज भी सिखाती हैं। तो दोस्तों, अब दीनो लाइब्रेरी का रेगुलर मेंबर बन गया है और लिली मैडम पार्क और प्लेग्राउंड दोनों की रेगुलर विजिटर हैं। अब ये अपने बाकी दोस्तों को भी यही सलाह मशवरा देते हैं कि जिंदगी में हर चीज का बैलेंस जरूरी है, किताबें भी और दोस्ती भी। तो दोस्तों, बात याद रखने वाली ये है कि जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सफर है जिसमें हर चीज का मजा लेना जरूरी होता है। हमारी किताबें हमें सीख देती हैं, लेकिन असलियत की दुनिया से जुड़े रहना और दोस्ती का मजा लेना भी उतना ही जरूरी होता है। जिंदगी में किताबें और मस्ती दोनों का बैलेंस रखो साथियों, हर चीज का अपना मजा होता है।

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आपने बजट के बारे में तो सुना और समझा भी, आज हम बात करने वाले हैं बजट डेफिसिट के बारे में। देखो, बजटिंग तो हर लेवल पर होती है, इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है, गवर्नमेंटल लेवल पर भी होती है, मगर जब गवर्नमेंट बजटिंग करती है और ये बजटिंग बिगड़ जाती है तो इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब है जब एक मुल्क की गवर्नमेंट के खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कहलाता है बजट डेफिसिट। सोचिए, आपके पास कतरे रियाल 100 हैं, लेकिन आपके खर्चे हैं 120 कतरे रियाल, तो ये 20 कतरे रियाल या तो आपको उधार लेने पड़ेंगे या फिर कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। यही चीज जब गवर्नमेंटल लेवल पर होती है तो इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। यानी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बजट डेफिसिट का मतलब है पॉकेट से ज्यादा खर्चे। आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी, वो कहते हैं ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। चलिए, ये पते की बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपसे इजाजत लेंगे और अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इस्लाम ने इंसान की फितरत को पाकीजगी और सफाई के साथ जोड़ा है और जिन पांच चीज़ों को फितरी तकाजे के तौर पर जिक्र किया गया है उनमें एक फितरत का मुतकाजी खतना भी है, यानी ये वो सुन्नतें हैं जो इंसान को पाकीजगी, सफाई और वक़ार अता करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-फितरतु खम्सुन, अल-खितानु वल-इस्तिहदादु वनतफुल इब्ति वतक्लीमुल अज़ाफिर वक़स्सुश शारिब। समझने इस तरह खतना के अमल से अल्लाह और रसूल की इताअत का सबूत है, ये साथ साथ खतना जिस्मानी पाकीजगी और नज़ाफत को यकीनी बनाता है। सेहत के पहलू पर भी अगर गुफ्तगू करें तो यहाँ जदीद मेडिकल साइंस भी उसके बेशुमार तिब्बी फवायद तस्लीम करती हैं, जैसे बीमारियों से बचाव और जिस्मानी सेहत में बेहतरी। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल

22 फरवरी तक खलीफा टेनिस और स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगा. एंड वही आई मिस्ड वन एनेक्डोट एंड एनेक्डोट ऑन दिस एटीपी टूर्नामेंट. इस टूर्नामेंट का आगाज 31 साल कबल हुआ था और इस सीजन यानी 2025 के इस टूर्नामेंट में दुनिया के दो मारूफ मेंस खिलाड़ी रशिया के दानील मेडवेडेव और आंद्रे रूबलेव हिस्सा लेंगे. सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर भी मौजूद होंगे. लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 1993 में जब इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ उस वक्त बोरिस बेकर, स्टीवन एडबर्ग, जिम कुरियर, गोरान इवानोविच और हालिया सालों में रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल जैसे मारूफ खिलाड़ियों ने भी शिरकत की. फ्रॉम 2025 दिस टूर्नामेंट हैज बीन अपग्रेडेड टू एन ATP 500 लेवल इवेंट.

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। वेलकम वंस अगेन FM 107 पर, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज आप

0: की लाइफ को थोड़ा और आसान और बहुत मजेदार बनाने के लिए आ चुकी हूँ मैं और लेकर आई हूँ कमाल के लाइफ हैक्स। तो पहला हैक है टी बैग्स फॉर शू ऑर्डर। यार जब हम दोहा की सड़कों पर इतना घूमते फिरते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा दिन हमारा निकल जाता है और कभी कभी जूतों में ना थोड़ी अजीब सी महक आ जाती है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, जो ड्राई अनयूज्ड टी बैग्स होते हैं ना उनको रात भर के लिए अपने जूतों में रख दीजिए। ये टी बैग्स सारी नमी सारा मॉइस्चर सोख लेंगे और वो जो अनवांटेड ओडर है ना वो भी गायब हो जाएगा। सच में दिस इज अ लाइफ सेवर, स्पेशली इतनी वॉक के बाद सुबह तक आपके शूज एकदम फ्रेश फ्रेश मिलेंगे, रेडी फॉर अनदर एडवेंचर। अब इसी के साथ दूसरे लाइफ हैक की तरफ बढ़ते हैं और ये पर्सनली मेरे घर का सीक्रेट है, ठीक है। सो DIY एयर फ्रेशनर। सो घर को फ्रेश और इनवाइटिंग रखने के लिए हम थोड़ा सा नेचुरल तरीका आजमाएंगे जहां पर मार्केट वाले केमिकल एयर फ्रेशनर्स बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ जी, तो बस एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल मिला के अच्छे से शेक कर लीजिए और ये आपका होममेड बिल्कुल नेचुरल एयर फ्रेशनर रेडी हो गया। नो हार्श केमिकल्स, जस्ट प्योर लवली फ्रेग्रेंस। तो जब भी लगे कि घर को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, हल्का सा स्प्रे कर दो और आपका घर ऐसा महकेगा कि जैसे कोई ब्यूटीफुल सा गार्डन हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। हाँ, लेकिन हाँ, आंखों से थोड़ा दूर रख के। तो जनाब, ये थे आज के दो और भी ज्यादा सुपर इजी सुपर इफेक्टिव लाइफ हैक्स आपकी अपनी एफ और अमिता की तरफ से। इनको ट्राई जरूर करना और अपनी लाइफ को थोड़ा और खुशबूदार और प्रॉब्लम फ्री बनाना। ओके, कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम सीखेंगे कैसे अपने घर को नेचुरल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लीनर से सफाई कर सकते हैं। ये क्लीनर ना सिर्फ घर को साफ रखते हैं बल्कि ये केमिकल फ्री होते हैं जो हमारे लिए और प्लैनेट के लिए सेफ हैं। विनेगर और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन हर सरफेस को क्लीन करने के लिए आइडियल है। ये जर्म्स को मारकर हर सरफेस को डिसइंफेक्ट करता है। लेमन और सॉल्ट का मिक्सचर नेचुरल स्क्रबिंग पाउडर के लिए काफी इफेक्टिव है। ऑलिव ऑयल एंड लेमन, ये कॉम्बिनेशन वुडन सरफेसेस को पॉलिश करता है और उन्हें सेफ रखता है। अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए तो आप अपने DIY क्लीनर में कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स के, जैसे लेवेंडर या फिर टी ट्री ऑयल। याद रखें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करें जो आपकी सेहत और एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस हलके में हम खानदानी मसाइल, तलाक की बढ़ती हुई शरह, वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तनाव के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि बिलाखिर खानदान की असल बुनियाद क्या है, मुआशरा या वही, वही यानी कुरान और सुन्नत। आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता यही है कि खानदान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद दुरुस्त न हो। यानी सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितने कवानीन हैं, असल सवाल ये है कि हम जिंदगी के फैसले करते वक्त किसकी बात को आखिरी मेयार मानते हैं, कुरान की या मुआशरे की। सामने किराम, हम सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत को अपना मर्ज मानते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में क्या वाकई ऐसा ही है? बसाओकात हम जानते हैं कि कोई अमल शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है, फिर भी हम वही करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। ये जुमला वज़ाहत छोटा है लेकिन इसके पीछे एक पूरी सोच मौजूद है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अक्वाम भी यही कहती थी, قَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قَالُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا। वो इस तरह के डायलॉग दिया करते थे कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। वही कहती थी एक बात, मुआशरा कहता था दूसरी बात, और लोग मुआशरे के पीछे चलते थे। समीन किराम, इस सिलसिले में एक बहुत वाज़े मिसाल शादियों की है। एक पाकीज़ा ख़ानदान कायम करने के ज़रिया इस्लाम में शादी है, लेकिन आज बहुत से माशरों में शादी खुद एक मकसद बन गई है। ऐसा भी होता है कि नौजवान शादी से पहले ही लाखों के बोझ तले दब जाता है, फिर वो नई ज़िंदगी खुशी से नहीं बल्कि इस खुशी के साथ साथ काफ़ी सारी परेशानियां भी उसकी रहती हैं। सोचिए, जिस रिश्ते की बुनियाद सुकून पर होनी चाहिए थी वो कर्ज, दबाव और दिखावे पर कायम हो जाए तो क्या नतायज निकलेंगे। यही वजह है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी रस्मों की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। सामिन किराम, कोई भी सामाजिक खराबी एक दिन में पैदा नहीं होती, पहले एक शख्स करता है, फिर चंद लोग उसकी नकल करते हैं, फिर वो रिवाज बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड सकाफत भी बन जाती है, और आखिरकार सकाफत लोगों

पर दबाव डालने लगती है और दबाव भी इतना कि उस मयार तक न पहुंच सके तो दूसरे खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कुरान हमें सिखाता है कि गलती को इब्तिदा ही में पहचानो, उसे मामूल न बनने दो। आज बहुत से लोग ताल्लुकात को सिर्फ कानूनी जाविये से देखते हैं, मेरा हक क्या है, मुझे क्या मिल सकता है, मैं अदालत से क्या हासिल कर सकता हूँ। लेकिन कुरान सिर्फ हुकूक की जबान से नहीं बोलता, कुरान ताल्लुकात के हवाले से फजल की भी बात करता है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तंसुल फजल बैनकुम, यानी आपस के एहसानात को मत भूलो। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कानूनी तौर पर किसी मुद्दा को साबित कर लेता है लेकिन अखलाकी तौर पर बेहतर रास्ता माफ़ी, दरगुजर और एहसान का होता है। ख़ानदान तो सिर्फ कवानीन पर नहीं चलते, ख़ानदान मोहब्बत, रहम, मुरूवत और कुर्बानी से चलते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो दुनिया की कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं और दुनिया कामयाबी को किस तरह नापती है, माल, ओहदा, शोहरत, फॉलोअर्स, ताकत, असर और रसूख। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तलिफ मेयार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहलो याल के लिए बेहतरीन हो। सोचिए, मुमकिन है कोई शख्स दुनिया की निगाह में बहुत कामयाब हो लेकिन उसका घर टूट रहा हो, उसके बच्चे उससे दूर हों, उसके वालिदैन उससे नाराज हों, तो क्या वो वाकई कामयाब है? इस्लाम कहता है असल कामयाबी वो है जिसमें इंसान अल्लाह के नज़दीक भी कामयाब हो और अपने घर वालों के लिए भी रहमत बने। दूसरी तरफ देखें तो आज नौजवानों को मर्दांगी के बहुत गलत मेयार दिखाए जा रहे हैं। वो ये समझ रहा है कि जितना गुस्सा दिखाएंगे उतना ही वो ताकतवर साबित होगा, जिस तरह कभी ताकत का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर वो नहीं जो लोगों को पिछाड़ दे बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। यही असल मर्दांगी है, अपनी जबान पर काबू, अपने जज्बात पर काबू, और यही ख़ानदानी इस्तेहकाम की बुनियाद भी है। इस सामने किराम प्रोग्राम की इब्तदाई में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आज की गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ यही एक जुमला है कि जब आपके ज़िंदगी की मर्जियत दुरुस्त हो जाए तो ज़िंदगी के फैसले भी दुरुस्त हो जाते हैं। जब कुरान में यार बन जाता है तब लोग क्या कहेंगे की जगह अल्लाह क्या फरमाएगा आ जाता है तो शादी आसान हो जाती है, घर आबाद रहते हैं, रिश्ते महफूज हो जाते हैं, औलाद सवर जाती है और मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून, रहमत और हिदायत का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इस मौजू से रिलेटेड सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम सब एक मजबूत, खुशहाल और पुरसकून खानदान चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत से घरों में बेसुकूनी, इख्तलाफात और रिश्तों की कमजोरी बढ़ती जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने अपने फैसलों की बुनियाद बदल दी है। हम बज़ाहिर कहते हैं कि हमारी रहनुमाई कुरान और सुन्नत से होती है लेकिन अमली ज़िंदगी में अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या चाहता है, रिवायत क्या है, हम वही कर रहे होते हैं। हालांकि एक सालेह ख़ानदान सिर्फ उसी वक्त कायम होता है जब उसकी बुनियाद सही मर्जाइयत पर हो और वो मर्जाइयत अल्लाह की हिदायत है। सामीन कराम, हकीकत तो ये है कि हर मजबूत इमारत की तरह हर मजबूत ख़ानदान भी एक मजबूत बुनियाद का मोहताज होता है और वो बुनियाद है सही मर्जाइयत। अच्छा, मजीद गौर से देखिए, सही ख़ानदान कहाँ से पैदा होता है? सही रवैयों से। फिर सही रवैये कहाँ से पैदा होते हैं? सही सोच से। सही सोच कहाँ से पैदा होती है? सही मर्जाइयत से, यानी आपका रेफरेंस सही हो। यानी अगर मर्जाइयत दुरुस्त हो तो सोच दुरुस्त होगी, सोच दुरुस्त होगी तो अमल दुरुस्त होगा और अमल दुरुस्त होगा तो खानदान भी दुरुस्त होगा।

0: तो समझदार आदमी सिर्फ पत्तों को रंग नहीं करता बल्कि जड़ को देखता है, और बहुत से खानदानी मसाइल की जड़ दरअसल रेफरेंस का बहरान है, मर्जाइयत का बहरान है कि आपका आखिरी फैसल कौन है। हम सब जबान से कहते हैं मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, सुन्नत को मानते हैं, लेकिन जब अमली जिंदगी का मरहला आता है तो अक्सर एक और मर्जाइयत सामने आ जाती है, और वो है लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जुमला है जिसने आज तक, आज के इस दौर में भी बहुत से घरों को मुतासर किया है। फर्ज कीजिए एक नौजवान शादी करना चाहता है, वो सादगी से निकाह करना चाहता है, वो कर्ज से बचना चाहता है, वो अपनी जिंदगी सुकून से शुरू करना चाहता है, लेकिन फिर आवाज आती है लोग क्या कहेंगे। फुला खानदान ने इतना बड़ा हॉल लिया था, फुला शादी में इतने मेहमान थे, फुला तकरीब में इतना खर्च हुआ था, और यूं एक ऐसा नौजवान जो सादगी चाहता था वो भी माशरती दबाव के नीचे आ जाता है। तो सामने कराम शरीयत तो एक तरफ कह रही है कि दिखावे के लिए लाखों खर्च करना गलत है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? जवाब अक्सर यही होता है, माशरा यही चाहता है। अब यहाँ असल सवाल पैदा होता है, अगर माशरा एक तरफ खड़ा हो और शरीयत दूसरी तरफ, तो हम किसको तरजीह देंगे? यही वो मकाम है जहाँ मर्जाइयत का इम्तिहान होता है। कुरान मजीद हमें बताता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कौमों का बुनियादी मसला भी यही था, वो कहते थे कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरीके पर पाया है, यानी दलील उनके पास रिवायत थी, मंतिक लॉजिक उनके पास मुआशरा था, सकाफत उनके पास आबाई रस्म व रवाज थी, लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम उन्हें वही की तरफ बुलाते थे। कुरान पूछता है अगर उनके बाप दादा हिदायत पर न हो तो क्या फिर भी उनकी पैरवी की जाए? ये सवाल अक्सर वेश्तर जब हम कुरान में तदब्बुर या गौर फिक्र करते हैं तो गोया पढ़ने वाला ये समझ रहा होता है कि सवाल सिर्फ पिछली कौमों के लिए है। बात ऐसी नहीं, ये सवाल आज हमारे लिए भी है। आज बहुत से लोग शरीयत के खिलाफ किसी रस्म को गलत भी मानते हैं और करते भी हैं, ये एक अजीब तजाद है। वो कहते हैं जी हाँ ये गलत है, जी हाँ ये फजूल खर्ची है, जी हाँ ये गैर जरूरी है, लेकिन फिर कहते हैं मगर क्या करें, मुआशरा यही चाहता है। गोया इंसान खुद एतराफ कर रहा है कि रास्ता गलत है लेकिन फिर भी उस पर चल रहा है। यही वजह है कि खानदानी इस्लाह सिर्फ कवानीन से नहीं आती, सिर्फ नारे लगाने से नहीं आती, इस्लाह वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसान यह तय करता है कि मेरी जिंदगी का मेयार कौन होगा, पुरानी माशरा या ये मादी माशरा, वही की जिंदगी या रिवायती जिंदगी। सामी कराम एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी, खानदान की असल बुनियाद और माशरती मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू होगी। ब्रेक के उस पार जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीम और कुरान में। जैसा कि आपने ब्रेक से पहले सुना है कि आज हम एक नहायत मौजू पर गौर करना चाहते हैं, आइए आज हम सब खुद से एक सवाल पूछें, मैं अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करते वक्त किसकी बात को आखिरी मेयार समझता हूँ? यही सवाल हमारे ख़ानदान के मुस्तकबिल का तायुन करता है। अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि एक साले और मजबूत खानदान की बुनियाद सही मर्जाइयत पर कायम होती है, अब आइए इस मौजू के एक और नहायत अहम पहलू पर गौर करते हैं। सामने कराम आज की दुनिया में जुमला बहुत आम हो चुका है, ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, उसे जो करना है करने दो, लोगों के मामलात में मुदाखलत न करो, हर इंसान आज़ाद है, वगैरह वगैरह।

Assalamualaikum and good morning. Right, एक दफा फिर सलाम कर देती हूँ. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि पहली दफा मेरी आवाज बहुत ही कुछ लो पिच थी. खैर जी, अब मैं आ गई हूँ दोबारा से आपके साथ, और आज थर्सडे का दिन है. समर मॉर्निंग में मेरा और आपका साथ रहना है 9 बजे तक, और अभी कुछ 6:02 हो गए हैं, तो अब से हम आपके साथ रहेंगे 9 बजे तक. आज वीकेंड है, तो आप सब लोगों को हैप्पी हैप्पी हैप्पी वीकेंड, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा प्लान किया होगा. वैसे ये बहुत ही मतलब अर्ली है पूछने के लिए कि आज आपका क्या इरादा है वीकेंड का, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों की सुबह भी नहीं हो रही होगी. अभी तो मतलब वो उठने का सोच रहे होंगे कि उठना है, तो अभी काफ़ी अर्ली हो गया. लेकिन खैर, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना, जो पहले से प्लान करने वाले होते हैं, उन्होंने डेफिनेटली पहले से सोचा होगा कि कल यहाँ जाना है, ये करना है, ये काम निपटाने हैं, ये हो जाए तो अच्छा है. तो खैर, जो जो कुछ भी आपके प्लान्स हैं, जो कुछ आपने सोचा है, उम्मीद यही है, दुआ यही है कि वो सब अच्छे से हो जाएगा और आप खूब अच्छे से अपना वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे. और अभी के लिए उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशपाश मज़े में होंगे. गाड़ी चला रहे हैं तो यकीनन एहतियात करते हुए चला रहे होंगे. कल काफ़ी मतलब ट्रैफिक फाइन्स और इन चीज़ों के ऊपर बात हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि वाकई मतलब बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जब भी रोड पर होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि एक बंदा अगर ज़रा सी गलती कर देना, एक बंदा, और हाईवे पर हैं आप कहीं पर, तो फिर होता ये है कि उस एक बंदे की वजह से 3-4 गाड़ियाँ अक्सर सुबह सुबह आपको खड़ी हुई मिलती हैं, कि सब ठुकी हुई होती हैं आगे पीछे. तो इसलिए ये फाइन्स लगाना और ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं, क्योंकि हम मतलब ना, मतलब अगर हमें कहीं पे ये अकाउंटेबिलिटी का ख्याल जाता है ना, मतलब चाहे वो दुनिया के लिहाज से हो, चाहे वो मतलब दीनी लिहाज से हो, वहाँ पे हम खो देते हैं जब्त का दामन, और वहाँ पे हम फिर वो करते हैं जो हम चाहते हैं, और फिर हम दूसरे का नहीं सोचते. तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर लेवल पर होनी चाहिए. हर जी, आज के शो में क्या होने वाला है? तो आज भी न्यूज़ अपडेट्स हैं काफ़ी सारी, बल्कि मुझे मिल गई इस दफ़ा, तो मतलब आज के दिन काफ़ी चीज़ें हैं. और फिर मैंने सोचा कि कोशिश करूँगी कि कवर भी कर लूँ, क्योंकि फिर आज के दिन के बाद 2 दिन का गैप आने वाला है, उसके बाद फिर ये खबरें बासी हो जाएंगी. तो इसलिए अच्छी खासी खबरें भी हैं, और बाकी ये कि क्या क्या है अपडेट्स के अलावा. हाँ, गेम भी खिलाएंगे. गेम का भी मैंने देखा नहीं. हाँ, आज क्या गेम क्या है भाई, ये तो बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया. बाकी चीज़ें मैं कर आ गई हूँ, लेकिन चले खैर, गेम भी देखते हैं, बाकी और चीज़ें भी देखते हैं कि आज क्या क्या कुछ करना है. आप लोगों ने कॉल करनी है, ये आपको याद रखना है, 4434377 वो नंबर है जहाँ पे आप हमें करते हैं कॉल. और जब अगर अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है तो आप हमें करते हैं 6662107 पे. तो जिस पे आपको आसानी हो, अगर आपको लग रहा हो कि अभी ड्राइव करें, गाड़ी मतलब जो ना चलाते हुए बात ना करूँ, वैसे ईजी ज़्यादा बात होता है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो तो आप कहीं सिग्नल वगैरह पे रुकें तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें. और अगर आपको आसानी हो और अगर आप कॉल कर सकते हो अभी शुरू से ही, तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम. फिर जी, टॉपिक भी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा रोज़ाना यही होता है, भूल जाती हूँ, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, अभी मुझे खुद भी याद नहीं है, देखूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले कि हम असकार पे जाएं, मैं जैसे रोज़ाना आपके लिए एक चीज़ लेकर आती हूँ, तो मैंने एक चीज़ कल ही पढ़ी जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करते. तो ये जो है ना, ये कयामत के दिन के हवाले से है कि कयामत के दिन तराजू में सबसे भारी चीज़, आपको पता है कि आपकी नमाज नहीं होगी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, और दीन फोकस करता है आपका, जाहिर सी बात है नमाज का पहला सवाल भी होना है, ये भी हमें पता है, लेकिन नमाज नहीं होगी, ना ही वो आपका रोज़ा होगा, ना ही वो दौलत है जो आपने सदका की. एक ख़ास चीज़ जो सब चीज़ों पर भारी हो जाती है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मोमिन के मैज़ान में हुस्न अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी. आपका अखलाक भारी है, क्योंकि आपके साथ आपका अखलाक हर जगह मौजूद रहता है, झगड़ों में, दोस्तियों में, शादी में, ताकत में, तन्हाई में. कोई भी अजान के वक्त नमाज पढ़ सकता है, लेकिन किरदार उस वक्त सामने आता है जब कोई उसके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता,

0: आप अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं सालों तक नमाज पढ़ते हुए, तहज्जुद हर रोज़ पढ़ते हुए, लेकिन आपका मिजान कांप जाता है क्योंकि आपने दिल तोड़े, सख्ती से बात की, लोगों की तजलील की और अमानत तोड़ी। आप रोज़ा रख सकते हैं यहाँ तक कि आपका जिस्म कमज़ोर हो जाए, लेकिन आपका मिजान हल्का है क्योंकि आप अपने वालदैन के साथ सख्त हैं, कारोबार में बेईमानी करते हैं या लोगों के साथ तकब्बुर करते हैं। आपका नफ्स रोज़ाना पाला गया, आपकी ज़बान बेकाबू थी। कुछ लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी रहम करना नहीं सीखते। कुछ लोग बहुत रोज़े रखते हैं लेकिन कभी आजज़ी नहीं सीखते। और जिस दिन ये सारे खला जो हैं पुर होने, उस दिन आपकी ज़बान गवाही देगी, आपका इखलाक गवाही देगा। आपने अपने वालदेन से कैसे बात की, आपने उन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जो आपसे कमतर थे, आपके नीचे थे, आपके मातहत थे, आपने इख्तलाफ को कैसे हैंडल किया, आपने उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जिनके पास देने को कुछ नहीं था। ये बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। आपका किरदार जाहिर करता है कि आपने हकीकत में किसकी इबादत की, अल्लाह की या फिर अपने नफ्स की। और ये है चीट कोड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों के बराबर दर्जा हासिल कर सकता है जो सारा दिन रोज़ा रखते हैं और सारी रात नमाज पढ़ते हैं। किरदार उस खला को पुर करता है जहाँ आपकी नफली इबादत कम पड़ जाती है। असल इम्तिहान अच्छा होना अजनबियों के साथ आसान है, लेकिन असल जो वज़न है उस तराजू में ये है कि आप अपनी शरीक हयात, अपने बच्चों और उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जो बंद दरवाज़ों के पीछे होते हैं। वही जगह है जहाँ हकीकी अखलाक पैदा होता है। हम अक्सर इस्लाम को एक चेकलिस्ट के तौर पे लेते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ ली, ओके, रमज़ान के रोज़े रख लिए, ज़कात अदा कर दी। लेकिन सहाबा सिर्फ इसलिए नहीं बदले कि वो कैसे इबादत करते थे, बल्कि इससे बदले कि वो कैसे इंसान बने। दीन अल्लाह के साथ अमूमी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहमत के ऊपर मबनी है। अगली बार जब भी कभी आप अपने गुस्से में आने वाले हों या किसी के साथ, मतलब किसी के बारे में बुरा बोलने वाले हों, किसी की तजलील करने वाले हों, तो याद रखिएगा, एक लम्हे की अना के लिए अपने मिज़ान को हल्का ना करें। Listeners, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने मॉर्निंग अस्कार की तरफ और आते हैं फिर वापस और शेयर करते हैं आपसे बहुत कुछ। बहुत कुछ है, साथ रहें, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: या तो वो मतलब ट्रैफिक जैम येलो वाला या फिर बिल्कुल ही रेड वाला, मतलब बिल्कुल ही जैम है. तो वो वाली कंडीशंस नज़र आ रही हैं अलवाब स्ट्रीट के ऊपर भी. इसके साथ ही जो है सीरिंग रोड का तो मैंने आपको बता दिया, अहमद जर्नल हॉस्पिटल के पास काफ़ी ठीक ठाक किस्म का ट्रैफिक जैम है. और इसके अलावा भाई कतर पोस्ट ऑफिस जो है ये वाला जो बड़ा वाला जो मेन वाला कॉर्निश के जो पास लगता है इधर भी है, कॉर्निश पे भी ट्रैफिक जैम है. तो ये सारी जो जगह हैं थोड़ा सा आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा. अगर इनमें से कहीं पर भी आपका मतलब आज निकलना होता है ऑफिस अगर आपका इधर आस पास है तो हमेशा थोड़ा सा टाइम रख के निकला करें, जो हम हमेशा कहते हैं. अच्छा, हर जगह पर ना टर्निंग के ऊपर ट्रैफिक जैम है ये मैं देख रही हूँ, और यही होता है हम टर्निंग के ऊपर ही खड़े रहते हैं काफ़ी काफ़ी देर तक जहाँ पे मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं. तो खैर जी, आपने एहतियात करनी है दूसरी गाड़ी से जो आपके सामने वाली गाड़ी है उससे, एक मुनासिब फासला हमेशा बरकरार रखें ताकि एमरजेंसी की सूरत में अगर आपने ब्रेक लगाना हो तो आप जाके उनसे टकरा ना जाएँ, थोड़ा सा दूर रहें. तो ये ख्याल रखिए, और बाकी बस ये है कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रख के ही निकलें, क्योंकि हर जगह पर तकरीबन मैं देख रही हूँ कि टर्निंग्स के ऊपर जो है आपको इस वक्त काफ़ी ठीक ठाक रश मिल रहा है, अच्छी खासी ट्रैफिक है. तो ख्याल रखते हुए अपना देखभाल करते हुए गाड़ी चलाइए और अपनी मंजिल मकसूद पे बाहिफाजत पहुँच जाइए. सलमान का मैसेज आया और ये कहते हैं कि नहीं मिली मैम छुट्टी, ओए होए, मतलब इस दफ़ा नहीं, मतलब मिलती नहीं है छुट्टी, ये वाला सीन है, मिलती ही नहीं है छुट्टी. किसी और दिन मिलता है आपको सलमान वीकेंड, मतलब कोई होता है कोई ऐसा दिन जो डे ऑफ हो आपका, या फिर पूरा हफ्ता इसी तरह से चलता ही रहता है 24/7 चलता ही जा रहा है वो वाला मामला है, या फिर ये कि कहीं हफ्ते में कहीं बीच में कोई एक आध छुट्टी मिल जाती है. ये कुछ अपडेट्स थी और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमें 4434377 और व्हाट्सएप पे मैसेज 6622107.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa. समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी. तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
2: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें. हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है. बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. दरवाजों को फोर्स ना करें. ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है. ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें. हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है. पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें. अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं. रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें. घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें. FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है.
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो FOMO एवर अगेन. सुनिए कतर 2026.

मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ.

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावश और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ. और अब सवाल याद आ गया मुझे कि सवाल करना है आप लोगों से. तो सवाल आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड पे थोड़ा सा कुछ अलग बनता है, इंटरेस्टिंग सा बनता है. आज मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर मतलब अज्यूम करें, इमेजिन करें कि अगर किसी तरीके से आपको ये मौका मिल जाता है कि आप टाइम ट्रैवल कर सकें, मतलब आपके पास एक टाइम मशीन हो जिसमें बैठकर आप कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब माजी में, फ्यूचर में, अगर इस तरह का. वैसे खैर फ्यूचर की मैं एक बात क्यों करूँ, क्योंकि फिर वो सवाल की तुक नहीं बनेगी. फ्यूचर क्यों रहने थे, ठीक है, सिर्फ पास्ट को जहन में रखें, सिर्फ यही आपने इमेजिन करना है. तो अगर आप जा सकते हो पास्ट में, तो ठीक, अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी होगी जिसके दौर में आप जाना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसी हिस्टोरिकल या फिर कोई भी ऐसी शख्सियत, खानदान में से भी हो सकती है आपके, कोई भी, कोई ऐसा दौर है जहाँ पे आप वापस जाना चाहते हैं क्योंकि आप उस बंदे से मिलना चाहते हैं. कोई फेवरेट शख्सियत बेसिकली आपकी, ठीक है, जिससे मिलने के लिए आप टाइम ट्रैवलिंग तक करना चाहते हो. ये आज का सवाल है मेरा. इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा जहन पे जोर डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है जिससे मिलने के लिए अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग करने का ऑप्शन मिलता है तो आप सोचेंगे कि मैं सीधा उस दौर में जाके लैंड कर जाता हूँ. ठीक है, तो ये सोचिए अच्छी तरीके से, दिमाग पे जोर डालिए. मैं थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट कर दूंगी और आप हमें कॉल कीजिए 444-344-377 पे या फिर व्हाट्सएप कीजिए 666-222-107 पे.

रही जब तक आप सोचते हैं और हमें कॉल करते हैं, हम आ जाते हैं आज के दिन की तरफ. और आज 11 जून थर्सडे का दिन, और आज 11 जून को दुनिया भर में क्या होता है ये मैं आपको से शेयर कर लूं कि 11 जून को क्या क्या चीज़ें हैं जो कि दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाती हैं.

राइट और आज का दिन अगर देखा जाए ना तो बहुत ही एक डाइवर्स मिक्स दिन है, मतलब क्योंकि इसमें आज बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया भर में होते हैं और वो जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। अजीब मजे की बात है कि हर दिन को खास बनाने के लिए कुछ ना कुछ दुनिया वाले जो हैं वो करते ही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है और हमें भी महसूस होने लगता है कि हाँ भाई हर दिन आज बहुत खास दिन है। अभी खासतौर पर ये जो वो वाला दिन हुआ था ना मैरीन लाइफ वाला कुछ इस तरह का कुछ था ओशियन डे, तो उस दिन मैंने देखा बहुत सारी जो खबरें थी ना वो इस हवाले से थी जो मैंने शेयर भी की थी आपसे बाद में कि उस दिन जो है क्या क्या किया जा रहा है कंजर्व करने के लिए नेचर को और सब कुछ। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब इस तरह के डेज जो थोड़े से लॉजिकल हों जिनकी कोई तुक बनती हो वो मनाने चाहिए। फिर आज 11 जून को जो सबसे पहला जो दिन आ जाता है वो यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबल डे के तौर पर अगर देखा जाए तो वो है कि यूएन का मंजूर शुदा दिन जो बच्चों के खेलने के हक और उनकी ज़हनी नशोनुमा को प्रमोट करता है, मतलब आज का जो दिन है वो प्ले डे भी कहलाता है और दुनिया भर में आज के दिन को खेलने के हवाले से जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों का राइट टू प्ले इसके तौर पे पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है और ख़ास तौर पे यूएन ने यूनाइटेड नेशंस ने ये ख़ास तौर पे इस दिन को ग्लोबल प्ले डे डिक्लेयर किया। सेहत और वीनस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एक बड़ा ही मज़े का दिन है, ये इंटरनेशनल एक डे मनाया जाता है और वो भी पता है किसके लिए है, ये है जंगली बिल्ली की हिफाजत और कंजर्वेशन के लिए है, मतलब ये उनकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है जंगली बिल्ली का दिन। ये सोचे अच्छा आज ही बड़े मज़े का एक उन्हें देखा किसी पेज पे, यही लोकल दोहा का ही कोई पेज था, उसके ऊपर सुबह सुबह मेरी बहन ने भेजी या मैंने सुबह खुद ही देखी सुबह उठते। खैर तो वो क्या थी कि एक वेट के पास बिल्ली आई हुई है और उसने शायद उसको इंजेक्शन लगाना है और वो उसने जो कोहराम मचाया मतलब पूरे और वेट उससे भागता फिर रहा है, तो लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कि कैसा बंदा है, लेकिन मुझे उससे ये आइडिया हो गया कि जो मेरे दिल में बिल्लियों का डर है ना

0: देखिए मतलब जानवरों के डॉक्टरों को भी डर है, वो भी बेचारा पूरे में भागता फिर रहा है, बिल्ली ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, कभी वो किसी रैक पे चढ़ जाती है, कभी वो ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे चढ़ जाती है, मतलब वो एक पूरे कोहराम मचा हुआ है, 5-6 लोग उसको कंट्रोल करने में लगे हैं लेकिन बिल्ली किसी के हाथ नहीं आ रही। तो खैर फिर आज जो है ना वो याद रखना है आपने कि जंगली बिल्ली की हिफाजत और कंजर्वेशन की अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है, और बिल्लियाँ चाहे वो जंगल में रहती हों चाहे वो आम तौर पर रहती हैं, वो किसी भी वक्त जंगली बन सकती हैं, ये मेरा अपना मानना है। खैर जी इसके साथ ही साथ एक और जो है डे वो है एक जेनेटिक बीमारी होती है KBG, इसके भी मतलब अवेयरनेस के हवाले से आज पूरी दुनिया में एक डे मनाया जाता है KBG सिंड्रोम का दिन। और इसके अलावा है USA में जो दिन वो है स्टाफ के लिए मनाया जाता है नेशनल करियर नर्स असिस्टेंट्स डे, तो ये बेसिकली नर्सेस जो होते हैं तो उनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा और एक और मज़े का दिन है वो ये है कि नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, और इस दिन किया ये जाता है कि छोटे छोटे से अच्छी जो है ना कुछ डीड्स कुछ नेकियां और खुशियां बांटने की कोशिश की जाती है ताकि दुनिया को हसीन बनाया जा सके। ये बड़ा अच्छा दिन है ना, मतलब नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, और उसमें आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करते हो, नेकियां करते हो, कुछ उनके साथ इखलाक के साथ बात करते हो और खुशियां बांटते हो, और इस तरह से इस दिन को हसीन तरीन बनाते हो। तो ये हो गया भाई, और से हाई डे भी है अजनबियों को सलाम बोलने का कि ताकि आपकी तन्हाई और आइसोलेशन जो है वो दूर हो सके। और फूड डेज भी मनाए जाते हैं, कॉर्न ऑन द कॉब डे ये मकाई में, और इसके साथ ही जर्मन चॉकलेट केक डे भी होता है, जर्मनी में चॉकलेट केक डे मनाया जाता है जबकि मकाई में कॉर्न ऑन द कॉब डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जून को। राइट, और आज मुझे लगता है वीकेंड की खुशी में लोग अभी तक सोकर नहीं उठे हैं, क्या सीन है, मतलब अभी तक एक भी कॉल नहीं है। और मैं बता रही हूँ आपको, पूरा लिख के दे रही हूँ कि जैसे ही पहली कॉल आएगी ना उसके बाद से एकदम से सब लोगों को ख्याल आ जाएगा कि हाँ कॉल करनी है, कॉल करनी है, उससे पहले तक बोलते रहो लेकिन कॉल नहीं आ रही होती, मतलब सब बेहोश पड़े हुए होते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं पहले आप, और जब पहली कॉल आ जाती है उसके बाद वो तांता बनता है कि उसके बाद में लोग शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारी कॉल मिल ही नहीं रही, हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आप आ गए हैं लेकिन क्या हो गया,
1: आवाज नहीं जा रहा है,
0: अब आया है।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम
1: जी, मैं रईस बात कर रहा हूँ।
0: जी रईस भाई, क्या हाल है?
2: क्या हाल है?
0: अच्छा रेडियो तो ऑफ कर दीजिए।
1: हाँ जी, क्यों, मैंने ऑफ कर दिया, मैंने सुना कि कोई कॉल नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब अभी मैंने
0: अभी आपने कॉल करना शुरू की है ना, इसी वक्त ठीक जिस वक्त आपने कॉल की है उसके फौरन साथ हाँ आ गई है, आ रही है, अब आ रही है। अब वो कहेंगे देखो मतलब हमारी तो कोई कॉल ही नहीं उठाता, हम कॉल करते हैं तो, लेकिन पहले आपकी हेलो के बाद कॉल आई है।
1: जी मैं सोच रहा था कि भाई कोई शुरू करे थोड़ा सा, मतलब
0: है ना, ये मैं सही समझ रही हूँ,
1: तो मैं सोचा कि यार हम भी अब अपनी राय देने से पहले फिर मतलब कुछ लोगों का भी अपने मतलब उनका भी सुन ले, उससे कुछ आदमी को ये हो जाता है ना, मौका मिल जाता,
0: सब ये करते रहते हैं, पहले आप वो ट्रेन निकल जाती है।
1: नहीं बस तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिमाग में जब आदमी ये रखता है तो थोड़ा सा जरूर सोच बदलता है, ऐसा बात नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों के उससे सोचने को भी मिलता है कि हमारे सोच से भी बहुत से आले आले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कभी कभी बस वो पहले आप जिस तरीके से आपने कहा उस तरीके से थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, और बेहतर भी होता है, खासकर कि फौरन ये नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सुन लो, हो सकता है कि हमारे सोच से कुछ अलग हो जाए।
0: वो तो है, खैर
1: अभी तो मैं तकरीबन इंशाल्लाह फारिग हो गया हूँ गाड़ी के, उसमें असल में हम पासिंग में थोड़ा लगे हुए थे तो एक हफ्ता तक तकरीबन उसी में बिजी थे हम।
0: अच्छा,
1: तो रेडियो को उतना बराबर से हम नहीं ये कर पा रहे थे आपका, लेकिन इंशाल्लाह वो जगह फ्री हो गए हैं, अब इंशाल्लाह रहेंगे अब एक साल तक, तो
0: एक साल तक मतलब गाड़ी का ऐसा कौन सा काम है जो एक साल तक के लिए छुट्टी हो गई?
1: का जो सिंह होता है इस तमारा का,
0: जिस
1: गाड़ी में कुछ छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं तो वो मशीन में चेक करके, और
0: हाँ वो तो मुझे पता है भाई, मैं भी करवाती हूँ।
1: वो सबको करवाना है, आपने नहीं, जितने
0: आपने वो करवाया और अब आप फ्री हो गए एक साल के लिए, राइट?
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी का असल में अब हम लोग के भाई भी ट्रेलर है तो उसमें बड़ी गाड़ियाँ होती है तो उसमें सारी चीज मेंटेनेंस थोड़ा लंबा हो जाता है।

0: उसमें मेंटेनेंस में थोड़ा सा, जो छोटी गाड़ियां होती है उसमें छोटी है तो उसमें मेंटेनेंस भी छोटा होता है, तो हम लोग का थोड़ा
1: सही सही समझ गई रही थी। अच्छा पहले मैं यही सोच रही थी कि इतना बड़ा काम तो नहीं होता, लेकिन हाँ सही है, अब समझ में आ रही है जी। तो अगर भाई आपको टाइम ट्रैवलिंग का मौका मिले, आप किसी दौर में जाना चाहें, कोई ऐसी पसंदीदा शख्सियत आपकी जिससे मिलना चाहते हैं और आप चाहें कि मतलब ना वहाँ पहुँचना, और आप कर भी सकते हैं, आपके पास टाइम मशीन है, तो कौन से दौर में जाना चाहेंगे?
0: जैसे फिर से मतलब ये रिपीट करें, मैं थोड़ा सा
1: हाँ मैं बताती हूँ, जैसे समझे हाँ हाँ, जैसे आपको मौका मिले कि आप ना पास्ट में, माजी में किसी भी दौर में जा सकें, किसी कोई ऐसा वक्त जहाँ पे आपकी पसंदीदा कोई शख्सियत रहती है, आपको इतनी पसंद, आपका दिल चाहता है मिलने का, और आप सोचते हैं कि ऐसा होता, काश ऐसा होता, अब आपके पास ऑप्शन है, आप टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो कहाँ जाना चाहेंगे, कौन से दौर में?
0: जी मैं सबसे पहले, मैं मतलब किसी का मतलब हर कोई हमारे बातों से मतलब इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दीनी रहनुमा थे वो, जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था और वो शहीद हो चुके हैं, और उनकी बातों मैं बहुत पसंद करता हूँ, और वो मतलब वो जो आले हदीस के बहुत बड़े मतलब आलिम थे, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, तो मैं उनसे मतलब बहुत मुतासिर हूँ उनके बातों का, और उनको मतलब वो बड़े बेहतरीन अंदाज में, और आज उनके जो मतलब लड़के हैं जी बिल्कुल, मैं मुझे बहुत पसंद है उन लोगों का, मतलब जो बात होता है तो वो लोगों पाकिस्तान को बहुत मतलब लोगों को ये करने के लिए, चाहे हुकूमत हो चाहे वो, और वो पहले भी थे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी थे, तो उनका भी अंदाज वो इस तरीके से नहीं होता था, बस कुछ कुरान और सुन्नत जिस तरीके से दीन के उस पर मतलब उनका ये था, मतलब उस पे कायम हो जाओ, ये जिस उस पे हमने अपने मुल्क को बनाया, ये किया, आज हम उससे बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और ये बदल दो, मतलब जो उनका असल था कायम।
1: आपकी आवाज कट रही है भाई।
0: जी
1: अब सही है। हाँ आप कहिए।
0: मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, अगर हमने सही अपना रास्ता नहीं चुना तो आगे हम धोखा खाने वाले में से हो जाएंगे, तो हमें और आपको चाहिए कि हमारा जो असल वे है हम उस पे कायम रहे। नहीं ये दुनिया का मतलब उससे असरी तालीम से इस्लाम नहीं रोका है, लेकिन दीनी तालीम हमारा और दीनी जो हमारा जो एक तौहीद और ये वो हमारे सबसे ऊपर होना चाहिए।
1: सही,
0: हम उसमें कोई मतलब कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं कि उसपे हम ये करके रहें, ताकि अब और बाकी लोगों का भी सुने।
1: मतलब एहसान जी एहसान इलाही ज़हीर जो है, इनके लेक्चर्स क्या मौजूद है अभी इस वक्त, आपने सुने? अच्छा अच्छा, मैंने कभी सुने नहीं, मैं जरूर सुनूंगी, क्योंकि आपने जो बात की है
0: एहसान इलाही ज़हीर के, आपने मतलब बहुत से, आप यूट्यूब पे जाएं,
1: मैंने उनके बेटे को सुना हुआ है लेकिन उनको नहीं सुना।
0: नहीं उनके लेक्चर माशाल्लाह, अगर उस तरफ आप कोशिश करेंगी तो शायद आपको ज्यादा मतलब ये मिलेगा, उनके पुराने तक उनके आवाज में वो दम था, और वो ये
1: वो तो बेटों की भी है लेकिन ये खैर, मैं मेरा अपना क्या पॉइंट है ना रईस भाई, कि मैं सबको सुनती हूँ और जिसकी भी कोई अच्छी बात होती है वो मैं लेती हूँ।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं एग्री हूँ, मैं बिल्कुल सुनता हूँ सबको, मैं खाली उनका नाम लिया कि
1: हाँ नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ मैं भी सुनूंगी, मैं ये कह रही हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही भाई, मैं कह रही हूँ मैं भी सुन के देखूंगी, क्योंकि आपने जो बात बोली ना कि हमने जिस चीज के लिए मुल्क बनाया था, हाँ मुल्क बनाया था, तो वो वाकई मतलब अच्छी चीज है, तो मैं जरूर सुनूंगी
0: इंशाल्लाह। उनकी आवाज में वो वलवला और वो जज्बा होता था माशाल्लाह, कि मतलब लोगों के जो सोए हुए होते थे उनको मतलब समझ लो कि वो कोई बंदा, मैंने ऐसे ऐसे भी उनके बारिश की पूरी मतलब तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, और उस जज्बे से वो तकरीर करते कि एक बंदा मतलब कदम थोड़ा सा
1: वो लिगेसी है जिसकी वजह से आज तक उनके बेटों को भी लोग सुन रहे हैं, तो कोई वजह तो होगी ना, तो वो मैं सुनना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, फिर मैं अपना
0: कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको जरूर मतलब मिलेगा उस पे यूट्यूब पे, आपको अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के
1: जी मतलब जानती हूँ अच्छी तरह, बस मैंने सुना नहीं है उनको, जानती अच्छी तरह से, जरूर सुनती हूँ,
0: हम स्टार्टिंग में उन्हीं को से सुन के और बाद में फिर इनके बेटों तक पहुँचे, मतलब हम कोई मतलब इतने बहुत पुराने नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में असल में हमारा ताल्लुक नेपाल से इंडिया के बॉर्डर इलाके से है, तो हम स्टार्टिंग में उनको सुने और बाद की मतलब बहुत से लोगों को सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते आते आते फिर हम इनके ऊपर ज्यादा हम मुतमइन हुए कि इनकी जो बातें होती है इनके ज्यादा दम है।
1: चलें, गुड,
0: ऐसा नहीं कि हम नहीं एक को सुनते, हम बहुत से लोगों को सुनते हैं।
1: अच्छी बात है, अच्छी बात
0: जी। और साथ हम अली मिर्जा को भी सुनते हैं और जिनके मतलब आप बात कर रहे थे वो यूथ हैं, वो उनको भी सुनते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे मतलब थोड़ा सा उससे हटते तो फिर
1: वो हर किसी से होता है भाई। देखिए पता है क्या, कोई भी इंसान इंसान होता ही वो है जिसमें कोई ना कोई कमी होती है ना, हम में से कोई भी कामिल नहीं है, सिर्फ पैगंबर होते हैं जो कामिल होते हैं।
0: फरमाया था कि इस कब्र वाले के अलावा बाकी दुनिया में जितनी शख्सियत है सब में खता हो सकती है। बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उन्होंने फरमाया था
1: कि
0: इनके अलावा।
1: बिल्कुल ऐसे ही भाई। अच्छा, आवाज कुछ डिस्कनेक्ट भी हो रही है और दूसरा ये कि हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए हैं तो हम उनकी तरफ चलते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई आपकी कॉल का, और बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक डिफरेंट मेरे सामने जो है ना एक व्यू आया है कि किससे मिलना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही हो रहा है कि मैं कॉल लगती है कोई और किसी और ही बात चलते रहती है उसमें।
1: लेकिन आपकी गलती यह है कि आप इंतजार कर रहे होते हैं, पहले कोई दूसरा कॉल करे फिर मैं कॉल करूंगा।
2: नहीं, मसला ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मैं शुरू में ही कॉल करूंगा क्योंकि हाउस ड्राइवर है, मैडम बैठे हुए रहती हैं, जब मैं फारिग होता हूँ तो आप लोग फारिग नहीं होते। और मैं तो कल भी इतने कल तो क्या पता नहीं, वो इससे पहले भी इतनी कॉल किया अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा,
2: 10 साल के बाद आज कॉल लग ही गई।
1: 10 साल के बाद लगी है भाई, मतलब ये तो मतलब सेलिब्रेशन बनती है, आज तो आपका वीकेंड बन गया। जी नाम बताइए भाई।
2: जी मेरा नाम मजहर खान है।
1: मजहर खान हो के, हाँ आपके तो मैसेजेस आते हैं ना।
2: जी मैसेजेस आते रहते हैं, मैं 2015 से सुनता हूँ आपको।
1: अच्छा अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त।
2: हाँ, लेकिन ऐसा है कि कॉल कभी लगी नहीं पाती, इससे पहले भी कॉल हुई थी तो माशाल्लाह से हमारे मुनीबा बहन बात कर रहे थे तो मैं बोला चलो अभी तो रेडियो छोड़ के फोन तो सुनना पड़ रहा है।
1: सही सही,
2: ड्यूटी लगे थे तो ये नहीं हो गया।
1: अच्छा अच्छा, सही सही। चले मजर, आप अच्छा लगा ये जान के कि इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे आप और बिलाखिर आज आपकी कॉल लग गई है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, ये भी अचीवमेंट है भाई, इतने अरसे की कॉल के बाद लगा है, मतलब मेहनत के बाद लगी है आपकी कॉल। अच्छा ये बताएं मजर कि अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग का ऑप्शन मिलता है तो आप कौन से दौर में लैंड करना चाहेंगे?
2: हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह आपका। ये तो पॉसिबल तो है नहीं टाइम ट्रैवलिंग करना, लेकिन अगर बाई चांस अगर से ये सोचा जाए अगर से कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है और इस तरह अगर हो सकती है तो बस मैं एक ही दौर में जाना चाहूंगा, आज से 1400 साल पहले बस।
1: सही, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना।
2: जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाना चाहूंगा कि जिनको बगैर देखे हमने उनके ऊपर ईमान लाए और जो एक हमें लाए अमल मिला इस्लाम, जो जिंदगी गुजारने का तरीका मिला और दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली शख्सियत, ये तो सारी चीजें तो इस्लाम आने के बाद फिर बनी फिरके वगैरह सारी चीजें, लेकिन जहां से इस्लाम निकला है वो जो है नूर नबूवत है। तो दिल की तमन्ना बस यही है कि अगर पॉसिबल हो सके तो बस उस दौर में जाएं।
1: उस दौर में जाएं, सही हो गया। अच्छा इससे मुझे ना बड़ी जबरदस्त पोएट्री याद आई, अगर मुझे मौका मिल सका तो मैं आज जरूर सुनाऊंगी, तो मौका मिला इंशाल्लाह तो मैं सुनाऊंगी। आप सुनिए,
2: आपने जब सवाल किए थे तो मेरे जहन में भी वही पोएट्री आई थी। जब मैं मदीना मुनव्वरा जब मैं पहुंचा था तो मेरे जहन में आ गई थी, तो मैं सोचा शेयर करूं, लेकिन
1: कौन सी वाली
2: मेरी डायरी में लिखी हुई है।
1: कौन सी वाली
2: है डायरी में लिखी हुई है? उसके कुछ अशार तो उसने ज्यादा याद तो नहीं है मुझे। जैसे जैसे शायर अपना शायर अपनी यानी कि एक मोहब्बत बयान कर रहा है।
1: अच्छा हो सकता है कि आप वही वाली कह रहे हैं, आप हो सकता है वही वाली कह रहे हो, हो सकता है आप कोई और कह रहे हो, अब ये देखना पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिलता है ना तो मैं जरूर सुनाऊंगी
2: जी। क्यों कि दुनिया के अंदर जितने सॉन्ग वगैरह तो बने हुए हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसकी मोहब्बत ने हर एक शायर ने अपने कमाल को निचोड़ दिया। हर कोई जो तमन्ना करता है मोहब्बत करता है कि काश अगर मैं उस दौर में होता तो मैं नबी जी मैं यूं करता आपके साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: और वो तो और ये तो मैं भी नहीं हूँ, चाहे औरतें हो जाए चाहे बच्चे हो जाए चाहे बूढ़े हो जाएं जो नबी से मोहब्बत करते हैं वो यही तमन्ना करते हैं काश हम एक मरतबा तो देख लें।
1: हाँ ऐसा ही है। अच्छा इस पे ना भाई मैंने मतलब जो है ये हर बंदे के दिमाग में बात होती है और कहीं ना कहीं मतलब हम सब चाहते हैं कि काश हम उस दौर में पैदा हुए होते और वो ऐसे भी लगता है ना मतलब जब ये कहा जाता है जमाना बड़ा खराब है और ये और वो सब कुछ ना तो होता था कि हाँ मतलब उस दौर में पैदा होते तो कितना मतलब हमारा मकाम होता सब कुछ। लेकिन मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की एक बात सुनी थी। हाँ वो कह रहे थे कि मैं ये सोचता हूँ मतलब डॉक्टर इसरार अहमद इतना बड़ा नाम है वो कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस दौर में होता तो ये जो होता है ना मतलब हम एक अना हमारी होती है और हम जब देखते हैं अपने सामने अभी हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें उनकी अजमत और अकीदत सब चीज़ों का पता है लेकिन अगर हम उस दौर में होते हम एक इंसान के तौर पे देखते जिनके पास बज़ाहिर दुनियावी मालूमता नहीं है कुछ नहीं तो अल्लाह ना करे हम उस जगह पे ना होते जहाँ पे उनके मुखालफीन थे। तो मैंने ये बात जब सोची मैंने सोचा वाकई मतलब ये भी हो सकता था। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं मतलब सही हम इसी दौर में पैदा हुए।
2: बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारे पास इतने ऐशो आराम है इसके बावजूद हमारे लिए दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाता
1: है।
2: और उस दौर में मैं कहता हूँ ना कि नहीं कुर्बानी तो वो लोग देकर चले गए।
1: एग्जैक्टली और उनके बाकी उनका मकाम जो बुलंद है ना वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने उस हक को उस वक्त में पहचाना।
2: बेशक बेशक और हम उनकी उतनी कुर्बानी दे भी नहीं सकते और मेरी तमन्ना नहीं है उस दौर में पैदा होने की।
1: टाइम ट्रैवलिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए वैसे ही कह रही थी भाई। मैं खुद डर गई थी इस बात से तो मैंने सोचा कि वाकई बड़ी खतरनाक बात है लेकिन ये कि हाँ वाकई। अच्छा मुझे ना वो मिल गई है पोएट्री मैं थोड़ी देर के बाद शामिल करती हूँ आप सुनिएगा जरूर।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह जी सेंड कर दीजिए इंशाल्लाह अगर मैं रूम पर गया और मुझे मेरी मिल गई तो मैं भी सेंड करूंगा इंशाल्लाह।
1: चलो ठीक है मैं आपको बिल्कुल सुनाती हूँ थोड़ी देर में और सेंड करने की भी कोशिश करती हूँ। मैसेज कर दीजिए आप मजर खान लिख के।
2: बहुत शुक्रिया
1: चले जी थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी अल्लाह हाफिज। राइट तो इसके साथ ही भाई हम जो है ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप सब लोग। अच्छा मैं ये चाहूंगी जैसे अभी पहले हमारे कॉलर आए रईस भाई उन्होंने एक वो पर्सनालिटी बोली होता है क्या है कि हम लोग जब एक कॉल सुनते हैं तो फिर हम सब लोग एक ही बात करते हैं तो थोड़ा सा जरा दिमाग पे जोर डालें जो भी मतलब कुछ अलग अलग दिमाग में आता है। आप दो चीज़ें भी दो ऑप्शन भी दे सकते हैं क्योंकि ये तो सभी की ख्वाहिश होगी मुझे पता है लेकिन मैं चाहती कोई और नाम भी आए ठीक है तो वो भी दे दीजिएगा आप मुझे। अच्छा अब कॉल आ गई है तो मैं ले लेती हूँ वरना ब्रेक पर जाना था। हेलो अस्सलाम वालेकुम चले गए तो इसका मतलब है ब्रेक का ही टाइम है। किस्मत में लिखा है कि इस वक्त हम ब्रेक लें तो ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं।
3: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now. सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: दोस्तों गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
5: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और सामाजिक पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए उन पर हमेशा नजर रखें खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
4: मैत्राश ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉज के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है मैत्राश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की

0: FM 107. Time check. Time check. Assalamualaikum and good morning to all of you. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजम आवेश खान और 7:00 हो रहे हैं 3 मिनट और मेरा आपका साथ आप जानते ही हैं कि 9 बजे तक रहने वाला है. सवाल आज मैंने किया है आपसे कि अगर आपको टाइम ट्रेवल का मौका मिलता है तो वो कौन सा दौर होगा, वो कौन सी शख्सियत होगी जिसके एरा में आप चाहते होंगे कि आप लैंड कर जाएं. देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. हेलो अस्सलामुअलैकुम.
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है
0: आवेश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र.
1: पहचानेंगे आप मुझे?
0: मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ. फौजिया?
1: वाह भाई, मैं तो बड़ी वीआईपी फील कर रही हूँ कि आप पहचान गए मुझे एक ही कॉल के बाद.
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं?
1: बहुत अच्छा टॉपिक है आज का आपका, माशाल्लाह.
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और फौजिया कैसा चल रहा, दिन का आगाज कैसा हुआ, अच्छा हो गया?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है.
0: जबरदस्त.
1: अभी आई जस्ट ड्रॉप्ड अप माय सन, बस अपने घर जा रही हूँ.
0: ग्रेट.
1: मैंने कहा मैं महेश से बात कर लेती हूँ, इतने मजे का टॉपिक रखा है आज आपने.
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और टॉपिक को भी पसंद करने का. तो फौजिया कौन से दौर में जाना चाहेंगी?
1: देखिए ये वाली बात ऑब्वियसली अभी ऑलरेडी 2-3 कॉलर कर चुके हैं, ठीक है. लेकिन ये तो हर हर हर मुसलमान का एक, जैसे कहते हैं ना, कॉलेज है, गूज बम्स हो जाते हैं हम लोगों को कि ये हम बात भी करें तो हमारा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगता है कि अगर हमें प्रॉफिट सल्लम से मिलने का मौका मिले तो हम अपना जान माल सब कुछ बांट दें और उनसे मिल लें, उस टाइम पे चले जाएं हम. लेकिन बस वो ही बात है कि हम साथ में ये भी दुआ करते हैं कि हम इस काबिल हों कि हम से मिलने के लिए, उनको फेस करने के लिए
0: बिल्कुल
1: रेडी हों.
0: बिल्कुल ऐसे.
1: बहुत मुश्किल एक चीज है ऑब्वियसली, उनको फेस करना इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग. बस अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस काबिल बनाए, जिंदगी में हम इस काबिल बन जाए कि हम उनको फेस कर सकें.
0: इंशाल्लाह ताला बिल्कुल. तो ये तो खैर हर मुसलमान की ख्वाहिश
1: है. बहुत पसंद है.
0: डॉक्टर
1: इसरार अहमद से मिलना चाहूंगी मैं, उनसे उनकी बातें मतलब बहुत बहुत गहरी बातें और बहुत रियलिटी को टच करती हुई बातें करते थे वो.
0: एग्जैक्टली. और अपने टाइम से बहुत आगे की बातें हैं, मतलब आज आप देखिए अभी तक हर मौके पे उनकी कोई ना कोई प्रेडिक्शन आती है.
1: एग्जैक्टली ऐसा ही है. मतलब वो इतनी पहुंची हुई बातें करते थे कि अब जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये बंदा वाकई बहुत पहुंचा हुआ था, बस हमने उनकी कदर नहीं की.
0: सही बात है. मतलब अगर देखा जाए तो हमने तो उनको, क्योंकि वो जब 90s में होगा वो सब कुछ, तो हम लोग तो बहुत छोटे थे ना, तो उस वक्त में तो हमने सुना ही नहीं. मैंने जो उनको सुना है वो उनके इंतकाल के भी मेरे ख्याल से कोई 10 साल बाद, तो हम लोगों ने तो सुना है उनको. उसके बाद फिर हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा, मतलब जबकि हमारे उसमें जिंदा थे वो, हयात थे, लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ नाम पता था और कुछ भी नहीं पता था.
1: हम छोटे भी थे ना, हमें इन चीजों का आइडिया भी नहीं था.
0: जी जी ऐसा ही है.
1: और आपको पता है डॉक्टर जाकिर नायक भी उनसे ही इन्फ्लुएंस होके दावा की तरफ आए थे. वो तो एक MBBS डॉक्टर थे. वो कहते हैं जब वो गए, उन्होंने पाकिस्तान में उनसे मिले, उनकी रिकॉर्डिंग्स लेकर आए और उनके लिए वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थे कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिस डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं दावा की तरफ जाऊंगा. और देखिए उन्होंने कितनी इस्लाम की कितनी खिदमत की है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: डॉक्टर जाकिर नायक भी एक बेहतरीन डिबेटर हैं और इस्लाम की बहुत बहुत ज्यादा उनकी खिदमत है इस्लाम के लिए. तो वो भी डॉक्टर इसरार ही के स्टूडेंट थे.
0: बिल्कुल
1: हैं अल्हम्दुलिल्लाह.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और उनकी मतलब लकीली मुलाकात भी हुई उनसे, तो ये जबरदस्त.
1: एक वो, एक ये और एक डॉक्टर अहमद दीदार.
0: अहमद दीदार राइट.
1: ये दो लोग हैं जिनके जिनके ह्यूज फैन हैं डॉक्टर जाकिर.
0: जी जी जी जी बिल्कुल ऐसे ही है.
1: तो भाई डॉक्टर इसरार अहमद की तो हम जब भी बातें सुनते हैं, मतलब उनकी कुछ कोट्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लगता है बस हम पे ही अप्लाई होती हैं और इन्होंने हमें ही सामने रख के ये बातें की होंगी.
0: सही बात.
1: कभी कभी इंसान होता है ना कि इंसान मायूसी की तरफ जाता है और एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली मायूसी हराम है, लेकिन हम इस सेम टाइम हम इंसान भी हैं, हम बहुत कमजोर हैं. तो वो यही कहते हैं कि अगर आप की जेब भरी हुई है, आपके पास बहुत पैसा है और अल्लाह पे आप तवक्कल कर रहे हो, तो वो आपका अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, आपका अपने पैसे पे तवक्कल है.
0: बिल्कुल.
1: तवक्कल में तब है आपका जब आपकी जेब खाली है और तब भी आप अल्लाह पे यकीन रखो और अल्लाह पे ईमान रखो कि अल्लाह मेरी मदद करेगा. आजकल तो यही है ना, बस आपकी जेब में पैसा है तो आप सब कुछ हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो, आप वीक फील करते हो. तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा.
0: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है फौजिया. और मैं डॉक्टर फौजिया कह रही थी क्योंकि आदत है ना फौजिया के साथ डॉक्टर लगाने का.
1: जी डॉक्टर फौजिया है ना आप लोग की प्रेजेंटर. सही बात है,
0: जब भी फौजिया निकले तो डॉक्टर जरूर निकलता है मुंह से. डॉक्टर फौजिया कह रही थी.
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बेहतरीन प्रोग्राम कर रही हैं आप. अल्लाह ताला आपको खुश रखे.
0: बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लग रहा है, वरना अगर देखा जाए तो मतलब मैं अपने तौर पे क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद मॉर्निंग शो और फिर 3 घंटे का शो कर रही हूँ, तो मैं रोज ही थोड़ी सी दुआएं मांग कर आती हूँ. अल्लाह ताला इज्जत रख लेना. तो आप लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
1: मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आपको याद हूँ, अब मैं टच कर सकती हूँ इस बात पे.
0: नहीं नहीं आप मुझे याद रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ना देखिए फीमेल लिस्टर्स तो वैसे ही मतलब बड़ी कम है जो कॉल करती हैं हमें. तो इसलिए
1: ये वाले गट कोई कोई मैं भी अभी बताए डाउटफुल ही थी मैं करूँ कॉल ना करूँ करूँ ना करूँ. 2 दिन से मैं अपने बेटे को जब हम लोग स्कूल से स्कूल जाते हुए मैं कहती थी खजर कॉल करे आप बात करोगे, नहीं मम्मा आप तो बात करें मैं सुनूंगा.
0: नहीं कर लिया करें जब भी हो आप जरूर कॉल किया करें. ठीक है और चलो थैंक यू, और खिजर से भी बात करेगा कभी. थैंक यू जी, थैंक यू.
1: थैंक
0: यू जी, अल्लाह हाफिज. राइट जी, तो हमारे साथ थी फौजिया और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं. टाइम ट्रैवलिंग का अगर आपको मौका मिलता है तो कहाँ जाएंगे, किस दौर में? जी अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
0: जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. हैप्पी वीकेंड आपको, क्या हाल चाल है?
2: बहुत शुक्रिया, मैं डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ.
0: डॉक्टर जावेद बात कर रहे हैं. जी हाँ डॉक्टर फौजिया है तो फिर डॉक्टर जावेद भी होंगे.
2: किसी न किसी चीज को तो पकड़ लेते ना फिर. डेफिनेटली ये भी हंसने मुस्कुराने की वजूहत है सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह.
0: हां एकदम से फौजिया में मतलब निकलता है हम हमेशा, क्योंकि बोलते हैं फौजिया डॉक्टर फौजिया. जी
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. टॉपिक तो हमेशा की तरह बहुत ही हसीन और जमील और बड़ा प्यारा है, और आज का टॉपिक तो माशाल्लाह ये तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है. और माशाल्लाह जिस तरह हमारी बहन जिनको आपने एजाज दिया एज ए डॉक्टर, और जितने भी हमारे 3-4 कॉलर्स जिन्होंने बात एक ही कही है, और बिल्कुल इनकी बात को मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, हर शख्स की ये ख्वाहिश है जो सब फरमा चुके हैं माशाल्लाह. और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे और हमें नसीब करे
0: इंशाल्लाह
2: हमारी तमाम ख्वाहिशात को. आमीन सुम्मा आमीन. उसके बाद जहां तक मेरी पहुंच है ना, अब यकीन करें आपके टॉपिक के बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरी पहुंच फिलहाल बहुत इजी, लेकिन है तो काम बहुत मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी इजी भी हो सकता है कि FM 107 की जितनी भी टीम है, जितने मेरे भाई बहन है, मैं मतलब कई लोगों से तो मिल चुका हूँ, सबको एक जगह हो, मैं उनके दरमियान में हूँ. अच्छा. तो मेरे लिए तो बड़े

0: दोस्तों से ये मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, पहले हमें उन तक मैं मेरी रसाई हो, मैं उनको देखूं कि यार किस तरीके से ये हम एंटरटेन भी कर रहे हैं, हमें तालीम भी दे रहे हैं, हमें सिखा भी रहे हैं, लोगों से भी मिलवा रहे हैं। कल भी मैंने एक बात कही थी, इस तरह हमारी बहन ने भी फोन किया, ये भाइयों ने फोन किया, एक से एक खूबसूरत अंदाज, एक से एक बात सीखने को मिल रही है। दे आर आवर टीचर्स, ये हमारे उस्ताद हैं सारे जिसे हम सीख रहे हैं। आप तो हैं, आप लोग तो प्रोफेशनल्स और प्रोफेसर भी हैं आप लोग, वो भी हमारे उस्ताद हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। सब जितने भी लिसनर्स कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं, तो उनकी वाकई या फिर मैसेजेस भी जो हमारे पास आते हैं, तो वो यही होता है कि इतनी अलग बातें होती हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं, वहाँ पे हम सोचना शुरू कर देते हैं।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। बस मेरे लिए तो सबसे बड़े एहसास की बात है कि मेरी कॉल मिल जाए, बड़ी एक खलबली सी मची रहती है। आज भी मेरे साथ मेरे कॉलीग्स थे, वो जो ही गाड़ी से उतरे तो मैंने कहा यार मैं राउंड अप करके आ रहा हूँ, तो बिल्डिंग जाने से पहले मैंने कहा पहले मैं देखता हूँ, अगर मेरी कॉल मिल जाती है तो मेरी खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है।
1: चलो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपकी कॉल करने का हर दफ़ा, और साथ रहने का, इतनी एफर्ट करने का। मतलब कभी ऐसा होता है मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले, थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा। तब वीकेंड का कुछ प्लान है?
0: डॉक्टर का तो काम ये होता है कि डॉक्टर
1: जी ये बताएं वीकेंड का क्या प्लान है डॉक्टर साहब?
0: अच्छा, डॉक्टर साहब का प्लान जो है, आज तो थर्सडे है, थर्सडे को नॉर्मली हमारा बहुत कम होता है, मतलब कोई गेस्ट घर में आ गए, वरना मैं नहीं जाता, लेकिन फिर भी रात को अगर क्लाइमेट के हिसाब से। लेकिन फ्राइडे को, अब ये तीसरा हफ्ता होगा कि हम बीच पे जा रहे हैं।
1: सही, तो बीच पे जाने का इरादा है।
0: साढ़े चार बजे आप निकल जाएं आराम से, वहाँ पर जाके टेंट वगैरह रखा हुआ है सारा, आइस बॉक्स और जो भी है बारबेक्यू वहाँ पर है, चाय वगैरह वहाँ पर ही पतीली में बनानी है कोयलों पे। वाह
1: भाई जबरदस्त, बहुत आला जबरदस्त ये होने वाला है। चलें, गुड, जबरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। चलें तो आप घूमिएगा, ये एक तरह की पिकनिक भी हो जाएगी, फिर वक्त भी आपने बड़ा मुनासिब चूज किया है कि इस वक्त पे जाएं, ये अच्छी चीज़ है। चलें तो एंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर बात होती है। हैप्पी वीकेंड,
0: सेम टू यू, खुश रहिए।
1: थैंक यू जी, आप भी। राइट, तो हमारे साथ थे जावेद साहब, और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि अब हमें ले लेना चाहिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह हम वापस आते हैं। तो मैं आपके लिए सॉन्ग सोच रही हूँ कि कौन सा लगाऊँ, थोड़ा सा कुछ मतलब अभी ऐसा वाला हो ना, ज़रा थोड़ा सा हटके हो, वो हम चला देते हैं। हाँ, ये वाला चलाते हैं। चलें जी, तो इन्जॉय कीजिए, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मामिश खान।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी। हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, फिल्मी गाइड, जहां मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू।
1: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं जिसका नंबर है 6662107। अच्छा, कॉल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि डिजिटल शॉपिंग की दुनिया, मतलब कतर की खासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सालाना स्टेजक्योर स्टडी के मुताबिक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉपिंग का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि कतर के 90% कंज्यूमर्स शॉपिंग में AI टूल्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और लोग प्राइसेस कंपेयर करने, गिफ्ट आइडियाज ढूंढने और प्रोडक्ट रिव्यूज चेक करने के लिए AI का सहारा ले रहे हैं। 95% लोगों का मानना है कि AI पावर्ड टेक्नोलॉजी ऑनलाइन शॉपिंग को पहले से ज़्यादा फास्ट और इजी बना रही है। आपने कभी की है वैसे कभी ये AI के थ्रू शॉपिंग वॉपिंग, तो बताइएगा मुझे। और इस वक्त देखते हैं कि कौन है कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
0: मोहम्मद आरिफ
1: अंसारी। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा रेडियो तो ऑफ करें ना, आवाज मुझे मेरी वापस आ रही है। अच्छा ऑफ कर दिया। हाँ हाँ चले तो फिर ये बताएं, क्योंकि डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी, तो हम जल्दी से बात करते हैं। टॉपिक पे आ जाए, क्या कहना चाहेंगे?
0: टॉपिक के हिसाब से एक तो जो सबने बोला कि हम लोग एक दौर में जाना चाहेंगे, तो सबका ख्वाहिश ही होगा।
1: जी जी।
0: और मैं एक अलग नाम लेना चाहूंगा, जॉन एलिया साहब।
1: ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, मजेदार, बहुत आला।
0: तो उनका जो शायरी करने का तरीका था और जो शायरी उन्होंने लिखी है,
1: कमाल है, बहुत कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मैं, मुझे खुद भी जॉन एलिया की शायरी ना, मतलब अलग ही लेवल है उसका।
0: उनका जो शायरी करने का तरीका था ना, वो बहुत ही यूनिक था।
1: हाँ, पर्सनालिटी पूरी यूनिक थी, तो मजेदार चॉइस।
0: उनका जीवन भी वैसा ही रहा और पर्सनालिटी भी थी, जो जिस हिसाब से वो शायरी करते थे।
1: जबरदस्त। अच्छा कुछ याद है उनका जॉन एलिया का?
0: वैसे तो अभी रील्स में आते रहते हैं, वैसे तो याद नहीं रखता मैं। आते तो मैं एक नोट बना के रख लेता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, चले गुड है भाई, जबरदस्त चॉइस, बहुत आला, बिल्कुल यूनिक, ये मुझे अच्छा लगा। चले गुड, जबरदस्त। तो और कुछ कहना चाहेंगे आरिफ? आज कुछ वीकेंड का प्लान कुछ है?
0: वीकेंड तो हम लोग का वीकेंड नहीं होता है, आप लोग किस तरह दो दो दिन वीकेंड मनाने का हम लोग
1: बस नजर ना लगाए, बड़ी मुश्किल से मिलता है। थैंक यू आरिफ, आरिफ बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, हैप्पी वीकेंड, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारे साथ आरिफ थे और बड़े मज़े की इन्होंने चॉइस बताई, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ ही एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
2: अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत, आप बताएं आपकी यहाँ खैरियत?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जबरदस्त, ग्रेट, सब सही चल रहा है।
2: मेरे अबू कहा करते थे, खाने के वक्त हो तो पहले खा लिया करो, पीछे रहोगे तो पीछे ही रहेगा, इसीलिए आज कॉल बाद में करेंगे।
1: अच्छा
2: बाद में करते हैं,
1: देखिए ये टाइम हो गया है ना। तो अब आप बताएं भाई नूर भाई के, अगर टाइम ट्रैवलिंग का मौका मिलता है तो किस दौर में जाना चाहेंगे, किस दौर में लैंड करना चाहेंगे?
2: दौर तो हमारे लिए सिंपल है, जैसे सुरेश कॉलर ने बताया तो वो तो सही है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयारी क्या की, ऐसे नहीं कि हम लोग जाके उठ के बस उसे मुखातिब हो जाए और हमसे वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोग को इसके रास्ते पे चलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल वो तो सही है, लेकिन आप बताएं टाइम ट्रेवल कहाँ पे करेंगे, वो तो बात है।
2: हमारे एक हमारे बस में होता तो मेरे जितने होते मेरे अब्बू और अम्मी उसकी खिदमत करके अपना पूरा जिंदगी गुजारता और उसको जितना हो सकता अपने बातों से उसको मुतासर करके, मतलब राजी करके मैं अपने आप को समझता कि मैं शायद आखिरत के दिन के लिए मेरे इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता, अगर मेरे हर बात से वो राजी हो जाता।
1: हाँ तो वालिद वालदैन अभी आपकी हयात नहीं है?
2: जी मेरा वालिद तो इंतकाल हो चुका है, मम्मी है ना वो अभी तक है, चाहता हूँ जितना समझे मैं उसके साथ
1: अच्छा
2: रह के अपना जिंदगी गुजारू, पर अल्लाह ताला जब चाहे जितना टाइम देता है उतना टाइम में उसको दे सकूँ, बस मेरे बात से वो राजी होते हैं। और तीसरी बात ये कि मैं अपने वाइफ को अपने से भी, मतलब उसके सेम इसका मर्तबा जो है उसका मैं अपना पूरा यकीन कि हाँ मेरे तो पर विश्वास रखो। तो ऐसा है कि एक होता है ना कि बीवी का भी साथ अगर बस लुकी करो है ना, तो उसका साथ बहुत बड़ा वो है।
1: हाँ हाँ वो तो है बिल्कुल। तो टाइम ट्रेवल अगर आपको करने का मौका मिला तो अब्बा के वक्त में जाना चाहेंगे, राइट? हाँ हाँ चलें ठीक है, क्योंकि वही फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो सुन रहा होगा वो बोलेगा कि पता नहीं क्या टॉपिक है, तो इसलिए मैं बार बार उस पर रख रही हूँ कि टाइम ट्रेवलिंग हमारा टॉपिक है। जी जी जी चलें जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट लिसनर्स, तो टाइम ट्रैवलिंग अगर आपको करने का मौका मिलता है तो कौन सी ऐसी शख्सियत है आपकी पसंदीदा, जहां जिनके दौर में आप चाहेंगे कि आप वहां पे पहुंच जाएं? एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
3: जी उमर शहजाद।
1: उमर शहजाद बात कर रहे हैं, जी उमर शहजाद क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का।

0: सही। अच्छा एक बात बताएं,
1: आपने कोई ब्लूटूथ वगैरह कुछ इस्तेमाल करी, क्योंकि आपकी आवाज दूर से आ रही है, मैं बढ़ा रही हूँ तो फिर वो फायदा नहीं है, करीब कर सकते हैं फोन को तो जरा प्लीज कर लीजिए। अभी हाँ बेहतर है, अब बेहतर है जी। उमर शहजाद तो क्या कहना चाहेंगे, जवाब क्या है आज आपका?
2: जवाब तो मेरा ये है कि आज मेरे बेटे की सालगिरह भी है 11 जून।
1: आहा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी जी,
2: थैंक यू सो मच। और जो आपने सवाल पूछा कि आप ट्रैवलिंग किधर करना चाहेंगे,
1: टाइम ट्रैवल,
2: तो मुझे प्लानिंग, सॉरी
1: टाइम ट्रैवल, ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवलिंग तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, अभी टाइम ट्रैवल कहाँ करना चाहेंगे, मतलब किसी दौर में, पास्ट में, अगर कोई ऐसी जगह पे हिस्ट्री का कोई दौर हो, कोई हिस्टोरिक पर्सनालिटी हो, तो किससे मिलना चाहते हैं?
2: जी, मैं तो नाना जान से मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे।
1: अच्छा,
2: उनके दौर में जाना चाहूंगा,
1: मतलब बस अभी कोई 30 साल पहले। हाँ, अच्छा अच्छा, नाना कब तक थे?
2: 30 साल पीछे जाना जाना, नाना बहुत अच्छे थे हमारे, माशाल्लाह।
1: अच्छा, मिले हैं आपको?
2: जी जी मिले हैं, काफी टाइम स्पेंड हुआ है हमारा उनके साथ, आज भी वो याद आते हैं।
1: सही, नाना से मिलना चाहेंगे आप अपने, जाके दोबारा उस दौर में जाना चाहते हैं, पास्ट में
2: जाना चाहते हैं।
1: सही। अच्छा एक और बात बताएं कि आप उस दौर में जाना चाहते हैं, तो कैसे जाना चाहते हैं, बचपन का दौर ही चाहते हैं, मतलब बच्चे ही हो आप उसमें, या फिर आप बड़े होके जाएं अभी की तरह?
2: बड़े होके जाना चाहेंगे ना।
1: बड़े होके बड़े होके जाना चाहेंगे। सही, ये इंटरेस्टिंग है, गुड, जबरदस्त।
2: और उनकी खिदमत करने का मौका भी ना मिला।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, सही सही।
2: जब हम जवान माशाल्लाह हुए थे तो वो उनका इंतकाल हो गया।
1: सही सही, ठीक है, तो इसलिए वहाँ उस दौर में जाना है आपने। सही सही, चलें, गुड है भाई। और कुछ कहना चाहेंगे भाई?
2: बस दुआएं आपकी पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से, अल्लाह आपको खुश रखे सारों को।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा, आप जो सा मोटिवेट करते हैं
1: बहुत
2: चीज के हवाले से, दुआएं मेरी आपकी पूरी टीम को,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत बहुत खुश रखे, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी,
2: थैंक
1: यू, अल्लाह हाफिज। राइट, एक कॉल और ले लेते हैं फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी मेरा नाम अहमद है।
1: अहमद नाम है आपका?
3: मैं वैसे सुनता तो रेगुलरली
1: हूँ,
3: में सफर अपना रहता ही है, तो हमेशा रोज का कोई भी शो प्रेजेंट करते रहते सुनता हूँ, पहले कबीर भाई को सुनते रहते थे, अब आपके, लेकिन आज आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो मैंने कॉल ही लगा देते।
1: भाई मुझे ये टॉपिक पहले लेकर आ जाना चाहिए था, ताकि अहमद पहले कॉल कर लेते। जी अहमद, तो क्या कहना चाहेंगे?
3: वो टाइम ट्रेवल में आप ये भी सोच सकते हैं कि हम पहले लेके जाके टॉपिक लेके आए।
1: हाँ वही तो,
3: बहुत छोटा टाइम ट्रेवल होगा वो। सबसे पहले तो टाइम ट्रेवल की जो कहानी है, पहले से मुस्लिम तो मेरा ख्याल है अक्सर लोगों का, अगर उनका जहन जाए तो वो यही चाहेंगे कि भाई हमें रसूलुल्लाह के दौर में किस तरह पहुंच जाया जाए।
1: वो तो सबका ना एक है, वो तो है,
3: जनरल चीज है।
1: हाँ वो है, उसके अलावा कौन सी शख्सियत होगी? जैसे भी इन्होंने बोला जॉन एलिया,
3: हाँ जैसे जॉन एलिया की बात की, बात बहुत अच्छी थी। दूसरा मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, तो मैं करीब अराउंड ये 14th और 15th सेंचुरी का जो सिविलाइजेशन है, जब न्यूटन का दौर शुरू हुआ, तो ये सारी बूम शुरू हुई,
1: सही,
3: साइंटिफिक रिसर्च की और नए नए चीजें बन रही थी, उसमें मुस्लिम दुनिया में भी अपने आइटम थे और अलग अलग किस्म के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उस दौर में जाना चाहता हूँ, और मैं टाइम ट्रेवल करके उसको फील करना चाहता हूँ, वो जो हम कहीं भी हम म्यूजियम्स में देखते हैं कि भाई ऐसा दौर रहा होगा, या जो अबू बकर ज़करिया राजी का जो बोलते हैं कि उन्होंने पहला हॉस्पिटल जो बनाया था बगदाद में, वो ऐसा रहा होगा, कि हम स्पेन में बोलते हैं कि इब्ने रुश्द ने ऐसा किया होगा, जिस जमाने में इब्ने बतूता ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छा और टाइम हो जाएगा कि मैं वो जाके दुनिया का वो पूरा हिस्सा घूमना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इब्ने बतूता की तरह।
1: वाओ, ग्रेट ग्रेट,
3: ऐसा कर सकते हैं कि इब्ने बतूता का कोई कंपेनियन बन के चला जाऊँ, या अलबेरूनी का, उन्होंने भी काफी सफर किया था पूरी दुनिया भर में, वो हिंदुस्तान भी आए, इधर भी आए, उधर भी आए, तो वो वाली दुनिया, वो वाला आर्किटेक्चर, वो वाले वाइब्स, वो वाली फील, जो उस सब के लोग कैसे रहे होंगे, और

0: अभी तो हमारी जिंदगी बहुत तेज हो गई है, स्लोली स्लोली चलती थी। अभी की तरह इतना नहीं कि पल में इधर पल में उधर, वही जगह दूसरी जगह जाने में भी दिन लग रहे हैं, तो बहुत सुकून से जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन मुझे आज ही बहुत अच्छा लगता है। टाइम ट्रेवल की अगर मशीन बन जाए तो
1: जबरदस्त, ग्रेट। मतलब वो जो एक तरह का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, तो वो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं,
0: इस्लाम भी उसमें शामिल हो जाएगी जी, उस पीरियड में जाएंगे तो वो भी देखने, वो दरअसल वो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम तो कह भी सकते हैं, गोल्डन इस्लाम के लिए तो गोल्डन एज की कभी भी है, जब लोग जाग जाए तब हो जाए, जब लोग समझिए तब हो जाए,
1: अल्लाह करे फिर दोबारा हो जाए,
0: इंशाल्लाह अल्लाह करे
1: इंशाल्लाह।
0: लेकिन उस दुनिया के लिए भी ये वक्त ऐसा था कि कौमें कोई भी थी, सलमान तो चले अपने उरूज पर थे, लेकिन चाहे उस वक्त यूरोप था वो भी बेजार हो रहा है, यूरोप भी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में था, हिंदुस्तान में आप देखिए तो वहाँ भी एक अलग किस्म की रिसर्च शुरू हो रही है, लोगों ने अलग अलग तरीकों से पढ़ना लिखना शुरू किया है, उस वक्त सोसाइटी के अपने मसले भी थे जाहिर सी बात है, तो दुनिया भर में वो एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त दुनिया करवट ले रही थी तरीके से,
1: ग्रेट जबरदस्त सहमत।
0: इंसानी का वो वक्त देखना चाह रहे हैं कि जब चीजें बदल रही थी, मतलब पास्ट से फॉरवर्ड में जो कदम उठाया जा रहा था तो वो किस तरीके से उठ रहा था।
1: क्या बात है भाई, जबरदस्त। अहमद ये बताएं कहां से हैं आप?
0: मैं हिंदुस्तान से हूँ।
1: अच्छा, कौन सी जगह? लखनऊ। हाँ, जबरदस्त। जब भी कोई मतलब थोड़ी सी जो है ना वो इस तरह की बात करता है अलग, तो फिर मैं उसका इलाका जरूर पूछती हूँ कि कहाँ से हैं आप। जबरदस्त भाई, बहुत आला, बहुत आला। मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी इम्प्रेसिव बात कि आप उस दौर में जाना चाहते हैं कि जब हर जगह पे कुछ ना कुछ इन्वेंशन, कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ अलग दुनिया कर रही थी, और वो भी खासतौर पर हाँ बिल्कुल ऐसे ही
0: नजरियात बन रहे थे, कम्युनिटी साइंसेज मतलब डेवलप हो रही थी, तहजीबें बन रही थी,
1: तहजीबें बन रही
0: थी, बनने का वक्त था।
1: और वही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आज की पूरी जो है ना यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटी जो है वो खड़ी हुई है, वो फाउंडेशन उसी वक्त बनी है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कमाल भाई, जबरदस्त, बहुत इम्प्रेसिव, जबरदस्त आपने जवाब दिया अहमद। और कॉल करते रहिएगा, मतलब अच्छा टॉपिक हो जब भी कर लीजिएगा, वैसे भी कर लीजिएगा, आपसे बात करके मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई।
0: बिल्कुल जजाक, नहीं मैं आपका पल कुरान भी रेगुलर सुनता आया हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बल्कि उसमें मुझे कई बार बहुत सारे इनपुट दे, लेकिन वो तो लाइव शो नहीं होता
1: जी, जी,
0: तो
1: जी, जी।
0: मेरी भी फील्ड यही रही है।
1: अच्छा, गुड, वेरी नाइस।
0: आपका पल जब कुरान है तो हमारी एक चीज हुआ करती थी जेम्स ऑफ कुरान, तो बिल्कुल सिमिलर चीजों पर हमने भी काम किया है काफी।
1: अच्छा माशाल्लाह, सही सही, गुड,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, रिलेटेबल भी लगता है।
1: अच्छा अच्छा जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरी फील्ड नहीं है, बस मैं तो सिर्फ सीखने की और इन शोज के जरिए सीखने की कोशिश कर रही होती हूँ, तो गुड, जबरदस्त, आपकी तो फील्ड है,
0: रास्ते से लगा दे सीखने के लिए, तो रास्ता कबूल है,
1: अल्लाह करे बस इसी तरह से चलता रहे सिलसिला। और बाकी हर दफा जब इस तरह का कोई शो मिलता है ना, तो मैं पर्सनली इस बात पे खुश होती हूँ कि चलो मतलब अल्लाह ताला मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं कि मैं थोड़ा सीख सकती हूँ, तो चलें, गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा अहमद। और आपसे इंशाल्लाह ताला आइंदा भी बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा मेरी तो फील्ड है, तो आइंदा इंशाल्लाह आपसे और भी जानना चाहेंगे। ठीक है, जरूर कॉल करते रहा करें, अच्छा लगा बहुत बात करके, थैंक यू जी, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर अहमद, तो जबरदस्त भाई, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यही चाह रही थी कि मतलब थोड़ा मतलब देखिए, वो हम बीइंग अ मुस्लिम, हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि हम 1400 साल पहले जाएं और वहां पे मिलें, लेकिन कुछ तरह हटकर भी हो, कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे आपका ज़रा कुछ अलग सा दिमाग नज़र आए। तो अहमद ने बड़ा ही एक ज़बरदस्त इम्प्रेसिव अपना जो है ना ओपिनियन दिया कि वो जाना चाहते हैं 14th-15th सेंचुरी में। अब देखते हैं और आगे किन किन लोगों के बिल्कुल यूनिक यूनिक से आंसर्स आते हैं। जॉन एलिया वाला भी मुझे बड़ा पसंद आया, और एक भाई ने हमारे एहसान इलाही कहा था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। चलें जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला आप वापस आएंगे। जाहिर सी बात है, मैं कहाँ जा रही हूँ जो इस तरह की बातें कर रही हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ मतलब अभी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहे 107 दिल से देसी।

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
4: आज ही राबता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको.
6: टॉप 10 काउंटडाउन.
5: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: ऑलराइट राइडर वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ हूं और कुछ चीजें आपसे शेयर करते चलते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉल भी लेते हैं, मैसेजेस की तरफ भी मैं आती हूं. अच्छा, एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन कहारमा ने समर 2026 अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर दी है, जिसका स्लोगन है इस दफा का कीप इट सस्टेन्ड. और ये कैंपेन गर्मियों के मौसम के तनाजर में लॉन्च की गई है, जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के इंटेंसिव इस्तेमाल और रिसोर्सेज की बढ़ती डिमांड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजप्शन में नुमाया इजाफा देखने में आता है. तो कहारमा के मुताबिक कैंपेन का जो मकसद है वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के इस्तेमाल में सस्टेनेबल बिहेवियर जो आपका चेंज है वो लाना है, और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना है, कार्बन इमिशंस को कम करना है. कैंपेन जो है वो चंद, अगर देखा जाए चार, बल्कि ये कहना चाहिए बुनियादी पिलर्स पर मबनी है. पहला ये कि इलेक्ट्रिक लोड मैनेजमेंट, जहां कंज्यूमर्स को हाई लोड अप्लाइंसेस के इस्तेमाल को डिस्ट्रीब्यूट करने और पीक आवर्स में उनका इस्तेमाल कम करने की तरगीब दी जाएगी. दूसरा, बिल्डिंग और अप्लाइंस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस और स्मार्ट सिस्टम्स के इस्तेमाल को प्रमोट किया गया जाएगा. और तीसरा यह है कि वाटर कंजप्शन और एयर कंडीशनिंग यूजेज को कंजर्व करना, जहाँ ऑप्टिमल एसी टेम्परेचर्स और मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ को इनकरेज किया जाएगा. और चौथा है स्मार्ट बिहेवियर की तरफ ट्रांजिशन, स्मार्ट सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए कंजप्शन को मॉनिटर और मैनेज करना. तो ये है भाई, और आप ये जो कैंपेन है इसमें डेफिनेटली हम सब लोगों को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, कोई हमें कहे या ना कहे, और चाहे वो बिल का मसला हो या ना हो, बल्कि उसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ये हमारी एक तरह की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको प्रिजर्व करें आगे आने वाली नस्लों के लिए. ऐसा ना हो कि वो हमें आके कोसें, बदनुआएं दें कि ये तो कुछ छोड़ कर ही नहीं गए हमारे लिए. चले जी, आगे हमारे साथ कॉलर. हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: जी खादिम भाई, क्या हाल चाल है? सुबह बखैर.
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर, बिल्कुल सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए, आप कैसी हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र.
1: अल्हम्दुलिल्लाह. मौजू तो मैं सुन रहा था, एक आई थिंक फौजिया बहन बात कर रही थी, उस पर बहुत अच्छी माशाल्लाह उसने एक वो तशरीह बयान की, और फिर डॉक्टर साहब की के बारे में बातें हुई.
0: जी जी.
1: तो वो एक हस्ती उसको

0: तो कहते हैं कि सारे जो हमारे मुसलमान हैं वो सब एक ख्वाहिश रखते हैं और एक तमन्ना है कि वो उनसे मुलाकात हो जाए, नसीब हो जाए, वो दीदार नसीब हो जाए, वो तो अलग बात है। और डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब को मैं बहुत छोटा था, मुझे मालूम है, और ये पीटीवी पे एक प्रोग्राम चलता था उस रात को, उसमें डॉक्टर साहब बयान फरमाते थे, वो मजलिस शूरा का मेंबर भी रहे, वो भी मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। बहरहाल वो बातें ऐसी हैं। और अगर किसी से मुलाकात की ख्वाहिश और एक दिल में बहुत ज्यादा, तो अभी भी मैं अपनी बहन से बात कर रहा था घर, तो हमारे एक भाई थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनको कैंसर हो गया था और तकरीबन 12 साल उनको कैंसर था, 14 बार सर्जरी की थी उसने, लेकिन उसने एक बार भी आखिरी सांस तक ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो बस यही कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो टाइम ऐसा था, वो जो कोरोना टाइम था, लॉकडाउन था, तो मैं नहीं जा सकता था, तो वो मैंने नहीं देखा। और वो आज तक मैं बस ऐसे हूँ कि एक जब भी याद आती है तो बिना रोए मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अभी भी मैं तकरीबन अपनी बहन से आधा घंटे में बात की और सिर्फ वही बात चल रही थी कि कैसे कैसे वो हुआ। बहरहाल मौजू कुछ ऐसे अच्छे मौजू है, लेकिन ये बात ऐसे है, बस दुआ करते हैं सब, सारे मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। और ये एक दुआ मैं हमेशा हमेशा अल्लाह पाक से मांगता हूँ, ये दुआ कि किसी बहन को अल्लाह पाक अपने भाई का गम ना दिखाए। बहन के लिए बहुत मुश्किल है, भाइयों के लिए तो है मुश्किल, लेकिन बहन के लिए बहुत मुश्किल है। माँ बाप की जो जुदाई है वो बर्दाश्त कर सकते हैं बहन, लेकिन भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया
1: चले जी खादिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक
1: यू जी, थैंक यू, वालेकुम सलाम। रे जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे और ये अपने भाई से मिलना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू
1: जी, क्या हाल चाल है भाई आपके? असमत आफरीदी बात कर रहे हैं
2: जी। जी जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? सब ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा है माशाल्लाह। और आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा था, तो सबने बहुत बहुत खूबसूरत आरा दी सबने माशाल्लाह, जो हमारी बहन थी और बाकी जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जे भी
1: आज वो खुद डॉक्टर बन गए
2: जी। और अभी जो ये खादिम हुसैन साहब थे उनके साथ तो हमदर्दी भी है, और इससे जो पहले कॉलर थे वो भी बहुत बेहतरीन थे माशाल्लाह, बाकी सब अच्छे थे। तो बहरहाल अभी तक आपने अपना नहीं बताया,
1: मैं अभी बताऊंगी।
2: अच्छा, अभी आप बताएंगे, चले हमें थोड़ा आइडिया हो जाता उससे। तो खैर, मेरा तो पहली बात तो ये है कि ये एक सिर्फ एक इमेजिन करना है ना, जा तो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक ख्याल है कि काश हमारी एक ख्वाहिश कह लें, विश कह लें। तो मेरी अपनी जो विश है, जाहिर सी बात है हर मुसलमान के लिए नबी सल्लम का दौर होना चाहिए, और बिल्कुल हमारा बिल्कुल हर मुसलमान का कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम उस दौर में नहीं जाना चाहते। लेकिन जो बात आपने की डॉक्टर इसरार अहमद वाली, तो उससे मुझे भी बड़ा खौफ आता है, बहुत डरता हूँ मैं उस बात से कि खुदा ना खास्ता कि ये ना होता हमारे साथ। फिर भी हम लकी हैं कि हमें माँ की गोद में जो है ये कलमा नसीब हुआ है, तो इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। लेकिन अगर मैं तारीख में जाके देखूं, तो मैं अगर किसी एक शख्सियत से मिलना चाहता हूं, तो वो है, वो भी एक प्रॉफिट ही है, लेकिन मैं उनसे इसलिए मिलना चाहता हूं कि उसने जो, मैं ये देखना चाहता हूं बेसिकली कि उसने ये लिखना पढ़ना कैसे सीखा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम।
1: अच्छा
2: जी, उनकी शख्सियत से मैं इसलिए मिलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ये इब्तिदा की लिखना, ठीक है, क्योंकि उससे पहले लिखने पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, उन्होंने कैसे लिखना शुरू किया, कैसे उसको ये इल्म मिला, तो ये एक मेरे लिए बहुत ही आजकल के दौर में देखे, हम मैसेज टाइप करते हैं और सारा कुछ उसके खतूत लिखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा जिस शख्सियत ने की थी वो थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो मैं वो दौर देखना चाहता हूँ कि वो कैसे थे और कैसे उन्होंने शुरू किया, और फिर उसकी जो जिस तरह की पुरिसरार शख्सियत थी, जिस तरह उनको उठाया गया, तो ये सारी चीजें मेरे लिए थोड़ी सी बहुत ही हैरानकुन है। और उसके अलावा भी बाकी आप अनबिया को देख लें, उसके उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम हैं, और नूह अलैहिस्सलाम, वो नूह अलैहिस्सलाम

0: सलाम के दौर में जो तूफान आया था वो कैसा होता होगा, दुनिया कैसी होती होगी उस वक्त, लोग होते होंगे नहीं होते होंगे, ये बहुत ही मतलब ये जो माजी बईद है ना हमारा, वो बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ।
1: सही।
0: लेकिन जी अगर मैं अपनी जिंदगी में मैं अपना अगर बताऊं, क्योंकि ये डॉक्टर सुफियान है हमारे, उन्होंने ये टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से ये कॉन्सेप्ट सारा बताया, पिछले दिनों मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि हम टाइम ट्रैवलिंग जो हम कर सकते हैं ना वो हम मुस्तकबिल में गुंजाइश है कि हम करें, माजी में कोई गुंजाइश ही नहीं है, माजी में कोई भी माजी में जो नहीं जा सकता, मतलब आज से 10 साल पहले मैं नहीं जा सकता अपनी जिंदगी में फिजिकली, ठीक है, बिल्कुल कोई भी नहीं जा सकता कि मतलब 2015 में अगर मैं जाऊं अपनी जिंदगी में फिजिकली, ख्याल तो हमारा जा सकता है, हो सकता है वीडियोस भी हों हमारे, फोटोज भी हों, लेकिन बजाते खुद फिजिकली माजी में जाना मुमकिन नहीं।
1: ये थ्योरी है बेसिकली, क्योंकि होता ये है कि कहते हैं कि अगर आप इनके पास्ट में चले गए तो पास्ट में जाके आप पास्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छेड़छाड़ करेंगे, आप किसी जगह पे जाते हैं समझे तो वहां पे आपने अगर कोई एक काम भी इधर से उधर कर दिया जो कि उस वक्त नहीं हुआ था तो फिर पूरी की पूरी जो इस वक्त की तारीख है ना वो चेंज हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पास्ट में जाओ, हाँ फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर बंदे की ख्वाहिश जो है ना पास्ट में जाना ही है, मतलब हम ख्वाहिश की हद तक पास्ट में ही जाना चाहेंगे और कहीं नहीं।
0: बिल्कुल, और यही बात आप हाल पे भी वो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं कि हाल में अगर हाल हमें बता दिया जाए कि आप हाल में जाओ और ये चीजें करो, तो हम जो माजी के लिए कह सकते हैं वो हम हाल के लिए भी कह सकते हैं ना।
1: क्या कह सकते हैं?
0: ठीक है, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर जो कुछ हुआ है माजी में, जो गलत हुआ है, अगर हम उनको ठीक करना चाहें या ठीक कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है दुनिया की शक्ल ही आज कुछ और होती, ठीक है।
1: हाँ,
0: अगर हम हाल में भी जाएं और
1: हाल
0: हमें
1: तो
0: दिखा
1: हम
0: दिया जाए,
1: कर सकते हैं ना भाई, हाल तो भी हमारे हाल में है।
0: नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, एक हाँ। वो चीज जैसे आपको पता है कि हाल में एक ऐसा वाकया होने वाला है कि मैं उसको अपने हाथ से जाके ठीक करूं, और वो वाकया अल्लाह ने लिख दिया है कि वो होगा ही होगा, तो वो हो नहीं सकता ना, आप कैसे?
1: क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक मिनट आप रहें जरा हमारे साथ, हम जिंगल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लिस्टनर्स आप सुन रहे हैं FM 107, सवाल हमारा है टाइम ट्रैवलिंग, और हम आते हैं वापस।

उसके अलावा अभी तक मैंने गेम नहीं देखा है कि गेम मैंने क्या करना है आज, तो अब वो मैं देखती हूँ कि क्या होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ हाँ आ जाते हैं हम ये स्पोर्ट्स की तरफ। तो सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स स्टोरी है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप,

0: रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन शान मसूद टेस्ट कैप्टनसी को खो सकते हैं और पीसीबी ऑफिशियल्स मेजर चेंजेस पर गौर कर रहे हैं। तो ये है, अच्छा बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि खो देना चाहिए ताकि जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएं। और पाकिस्तान ने 2026 एशियन गेम्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, जिसकी क़यादत साहबजादा फरहान करेंगे। सीरियसली मुझे पता ही नहीं है इस वक्त में, ना इन लोगों की शक्लें पता हैं, ये लोग हैं कौन, कुछ भी आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छी खबर क्या है, वो ये कि ये एक ऐसी खबर है जो हर दफ़ा मिलती है और हम खुश हो जाते हैं, वो स्पोर्ट्स की दुनिया से होती है हमेशा, और वो ये है कि सियालकोट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल फुटबॉल्स यहीं पे तैयार हो रहे हैं। ये वाहिद खबर है जो स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा अच्छी चलती है। चले जी, इसके साथ ही हम करेंगे क्या, हम एक सॉन्ग सुनते हैं, वापस आते हैं और फिर और चीजें करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

और इस दफा मतलब जाहिर सी बात है यहां नहीं हो रहा कतर में जब हो रहा था तो हर कोई बड़ा एक्साइटेड था लेकिन मुझे वो वाली जो एक्साइटमेंट थी ना जो कतर में जो एक हो रही थी इस वक्त एक तो वैसे ही दुनिया के हालात बड़े अजीब से चल रहे हैं हम सब जानते लेकिन उससे हटकर मुझे लग रहा है कतर ने ना वो एक तरह का सेट कर दिया मामला कि अब लोग डर रहे हैं लोगों को लग रहा है वैसा वाला तो नहीं हो सकता सीरियसली मतलब हिस्टोरिक गया था जिस तरह का कतर में यहां पे तैयारियां थी जिस तरह का सारे के सारे इंतजाम थे तो वो एक ऐसा चैलेंज दे चुका है कतर पूरी दुनिया को कि जहां कहीं पे भी अब फीफा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा उनके लिए एक बड़ा सख्त किस्म का जो है ना कंपटीशन है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले सालों में अभी जो है ना फिलहाल कंपीट कर सकता है कतर के साथ इतना जबरदस्त एक माइलस्टोन रहा है कतर के लिए अच्छा जी तो पर ये मतलब शुरू होने वाला है फीफा और जो लोग डेफिनेटली स्पोर्ट्स लवर्स हैं फुटबॉल लवर्स हैं तो वो लोग तो बहुत एक्साइटेड भी होंगे मैचेस देखने के लिए कि देखते हैं मैं आपको खैर अपडेट करती रहूंगी देख देख के वैसे पर्सनली मुझे कुछ इतना फुटबॉल में कभी भी कोई रगबत वगैरह नहीं रही है तो इतना कुछ पता नहीं है ये पता है कि गोल होते हैं और ये भी थोड़ा बहुत पता चल गया था उसी दौरान कि किस तरह से वो डिफेंड वगैरह किया जाता है कुछ अलग टर्म्स होती हैं आप इसमें फिर भूल गई हूँ इंशाल्लाह लेकिन आपको शोज में बताते रहेंगे कि क्या चल रही है इस वक्त की सूरत हाल अच्छा जी अब मैं आ जाती हूँ उस शायरी की तरफ जो मज़हर खान से मैंने प्रॉमिस किया था और मज़हर आप भी मुझे भेजें अगर आपको मिल गई है आप किसकी बात कर रहे थे मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं बार बार बार बार सुनी थी मैंने कई दिन तक बेसिकली हमारे एक बहुत ही अच्छे से सिंगर हैं बल्कि मैं उनका गाना भी लगा ही देती हूँ कोई सा अबरारुल हक बहुत अच्छे सिंगर हैं अपने जो है ना बहुत भड़कते हुए गानों के लिए मशहूर हैं बहुत ही इस तरह के गाने लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल हटकर होते हैं तो उनके जो है ना उनकी थी ये पोइट्री उन्होंने खुद ही लिखी है और वो उन्होंने सुनाई थी एक जगह पर मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने बार बार बार बार इसको सुना था तो अबरार का मैं खैर कोई गाना भी ढूंढ रही हूँ साथ में और साथ में आपको ये सुनाती भी हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी जिन लोगों को चाहिए हो मुझे मैसेज भेज दें तो मैं उन लोगों को भेज दूंगी लेकिन पहले सुन लीजिए हो सकता है कि मुझे ही बहुत अच्छी लगी हो आपकी वाली फीलिंग्स ना हो तो चले मैं सुनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से अबरार ने सुनाई थी वैसे ही कुछ कोशिश कर सकूँ वो इंतहाई इश्क थी वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था मैं कदो बंद सॉरी वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था मैं कैदो बंदो वक्त से आज़ाद उस सदी में था वो दौर मुस्तफ़ा था वो दौर मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था फिर सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहते हैं बताते हैं कि आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार हिंद से है ये हुजूर मगर है सयाकार मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाजिरी रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाजिरी तस्वर अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा मैं तो सोच के ही मर गया सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ महफिल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह ये भी कह रहे थे कि खामखां से मुंह न खोलना बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना वो खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे फिजा भी खुश नसीब थी ज़मीन भी खुश नसीब थी नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था पुरानी तर्ज पे बने नए नए मकान थे कई घरों में ऊँट थे कई घरों में बकरियाँ
पक रहा था कुछ जहां पे जल रही थी लकड़ियां। इतने में अजां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हो ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावते बिलाल थी, मेरे लिए दावते विसाले जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वजू भी बना लिया, नस्बते हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सब ही सिमते मस्जिद रसूल के। वो धड़कने अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी, कि आंख अश्कबार थी सरापाए मलाल थी। रू थी के दीद की तड़प तड़प तड़प तड़प, दिल मेरा धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क। हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से, हर कदम पर घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबाए कराम, जैसे कि वो जानते हो कौन है ये नौजवान। देख के सहाबा की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे रसूल पे, कि सुन्नत रसूल के बग़ैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहराए कमान। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल को आ लिया, नस्बत हुजूर से चेहरा मैंने सजा लिया। ज़बरदस्त, इतनी मुझे अच्छी लगी थी ना ये। और अबरार का तो मतलब अंदाज इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था जब उन्होंने सुनाया था, मतलब मैं बार बार सुनी थी। आज इत्तफाक़ की बात है कि टाइम ट्रैवलिंग की बात हो रही है और इन्होंने भी टाइम ट्रैवल की ही बात की है। ज़्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं और वही जो हम कह रहे थे कि हर बंदे की ख्वाहिश होगी जब टाइम ट्रैवल का हम जिक्र करते हैं ना, तो हर बंदा ये सोचता है कि काश 1400 साल पहले उस जगह पर देख सकें। एज अ ऑब्जर्वर मैं मतलब अगर जाना चाहूँगी तो उन लोगों में से नहीं होना चाहूँगी, एज अ ऑब्जर्वर जाके ये देखना है कैसे होते होंगे, कैसे दिखते होंगे, जब वहाँ पे चलते होंगे तो कैसा लगता होगा, मतलब कोई एक अलग ही समा होगा। तो खैर वो तो हर बंदे की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो वक्त देख सकूं, लेकिन एज अ ऑब्जर्वर, मतलब वैसे नहीं कि वहाँ पे होती, मौजूद होती, बजाते खुद होती, कोई शख्सियत होती मेरी, सिर्फ और सिर्फ दूर दूर से देखना है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी जितने भी दौर हैं ना, मतलब जितनी हिस्ट्री में जितने हमारे पैगंबर आए, जो जो हमने सिविलाइजेशंस के बारे में सुना है, तो मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मुझे शौक़ है कि मैं सब कुछ देखूँ। मतलब एक वक्त ऐसा आए कि जिसमें सारा का सारा जो दौर है, जो पास्ट है, इवन फ्यूचर भी, कि क्या कुछ होगा, क़यामत कैसे आएगी, किस तरह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। तो कभी मतलब इंशाल्लाह, मतलब अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा मतलब एक्सेस दे दिया जन्नत को, तो अल्लाह ताला से फरमाइश करेंगे कि अल्लाह ताला सारे दौर देखने हैं। उस वक्त टाइम ट्रैवलिंग ईजिली हो जाएगी, जिसके ऊपर भी बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती, ये होगा, वो हो जाएगा, लेकिन उस वक्त हम कर सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कुछ होगा। अच्छा, पर्सनली वो जो मुझसे सवाल किया था अभी असमत आफरीदी ने कि आप किससे मिलना चाहेंगी, तो मैं भी यही बेसिकली सोच रही थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों से मिलना वो एक हर किसी की ख्वाहिश है। मुझे लगता है कि सबसे ही मिलना चाहेंगे हम, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब के सब, मतलब जितने भी हैं सब लोगों से चाहेंगे कि हमारी मुलाकात हो, हम उस वक्त के दौर को देख सकें। अच्छा, लेकिन मुझे इस्लामी मतलब ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें मुझे एक नाम और बहुत ही कुछ दिल के करीब है, वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। मुझे बहुत बहुत बहुत मैं इम्प्रेस हूँ उनकी शख्सियत से, उनका जो जिस तरह से उन्होंने पूरा एक निज़ाम बनाया था, चाहे वो आज अदालत का निज़ाम हो, चाहे डाक का निज़ाम हो, चाहे कुछ भी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की पर्सनालिटी मुझे पर्सनली मतलब ना, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ बचपन से। तो वो एक हिस्टोरिक अगर इस्लामिक पर्सनालिटी देखनी है तो वो, बाकी सारे अम्बिया कराम वो जो सबकी ख्वाहिश है, लेकिन उनमें बतौर ख़ास मतलब अगर सहाबा कराम की बात करें तो हज़रत उमर से मैं मिलना चाहूँगी, उनको देखना चाहूँगी, वो मुझे एक है मतलब हमेशा आता है जहन में। दूसरा कुछ और जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मतलब मैं चाहती हूँ कि उनके दौर में मुलाकात हो या मैं देख सकती होती हूँ उनको अपनी आँखों से, तो उनमें एक नाम है इब्ने इंशा का। इब्ने इंशा जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उनको

ना, वो बड़ी मशहूर उनकी एक नज़म है वैसे, उससे तो सभी लोग जानते होंगे, कल चौदहवीं का चांद था शब्बर रहा चर्चा तेरा। तो मैं इब्ने इंशा से मिलना चाहूँगी, मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इब्ने इंशा से मिलना चाहूँगी। दूसरा, मैंने अपने बिल्कुल बचपन में उनको पढ़ा है और वो हयात भी थे उस वक्त, हकीम मोहम्मद सईद, जिनका भी मैं बहुत जिक्र करती हूँ, मैं उनसे बहुत इंप्रेस हूँ, कभी मिली नहीं हूँ। तो मैं अगर मौका मिले तो मैं हकीम मोहम्मद सईद साहब से मिलना चाहूँगी, डॉक्टर इसरार अहमद से, जैसे हमारी बहन फौजिया ने कहा था, उनसे भी। फिर मैं मिलना चाहूँगी गालिब से, मिर्ज़ा गालिब, वो भी मुझे बहुत पसंद है मिर्ज़ा गालिब। बचपन से एक फैंटेसी, मतलब एक होती है ना कि आपको कोई शख्सियत आपको नहीं पता होता लेकिन आपके दिल में वो घर कर जाती है, तो मुझे मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से, और मैं मिर्ज़ा गालिब से मिलना चाहूँगी। अच्छा, हमारे यहाँ तो सीरीज़ भी बहुत बनी है ना, मिर्ज़ा गालिब जो है ना बंस रोड पर, मिर्ज़ा गालिब इधर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों का तो एक काफ़ी ना मतलब इश्क है मिर्ज़ा गालिब के साथ, तो मिर्ज़ा गालिब से मिलना चाहूँगी मैं। और फिर मेरी अम्मी के मामू थे, सबसे बड़े मामू, जो कि मेरी अम्मी के, मतलब जैसे मेरी अम्मी के कह रही हूँ, मेरे नाना का भी पहले इंतकाल हो गया था, मतलब अम्मी की शादी से पहले, और जो अम्मी के जो मामू थे गालिबन उनकी अम्मी की शादी के फ़ौरन बाद इंतकाल हो गया था, उनको जो है कि मामू साहब कहते हैं। तो उनके बारे में मैंने इतना सुना है अपनी अम्मी के मुँह से, इतना सुना हुआ है कि मैं उनसे मिलना चाहूँगी, और मुझे वो, मैंने नहीं देखा उनको, तस्वीरें देखी हैं बस, और उनके बारे में इतना मतलब बंदा सुनता रहता है। तो मैं वो बेसिकली ये जो अपना हमारा हबीब बैंक है ना पाकिस्तान का, तो उसके माशाल्लाह से वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो एक तो काबिल पर्सनालिटी, और फिर दूसरा ये कि वो एक अलग सी शख्सियत थे। मैं उनको जिस तरह से अम्मी ने बताया है, मैं उनसे बचपन से बड़ी इंप्रेस रही हूँ, तो वो हैं मतलब अगर देखा जाए ख़ानदानी तौर पे कोई ऐसी शख्सियत जिनसे मैं मिलना चाहूँगी, तो वो अम्मी के मामू हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मेरे जहन में जो जो नाम आए तो मैंने सारे ही सोच के आप लोगों को बता दिए। हेर जी, हम आ जाते हैं कहाँ, हम बढ़ते हैं एक म्यूज़िकल ट्रैक के बाद और फिर वापस आते हैं। कॉल अप हमें कर सकते हैं 4434377 पे, व्हाट्सएप पे मैसेज 6662107। और आज मैंने बहुत सोचा, लिख के मैं वैसे कुछ और आई थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि मोहम्मद यूसुफ ने जो हमें आइडिया दिया था कल, तो उसी के ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, आज आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको एक्टर का नाम बताऊंगी और आपने मूवी गेस करनी है। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं हम म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

0: Variety, पानी दा बुलबुला अब राहुल हक की आवाज में आपने ये जबरदस्त ट्रैक एंजॉय किया और एक दफा फिर मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा जी, ये गाना जो है वो अब राहुल का था और शायरी भी इन्हीं की थी, वो वाली जो मैंने सुनाई है। अरे ये क्यों बोल रही हूँ और खासतौर पर मैंने यही वाले गाने मतलब क्यों लगाए, क्योंकि देखिए मतलब हर जो चीज़ होती है ना, हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत से अपने गुमान रखते हैं और वो यूजली नेगेटिव होते हैं। मतलब लोगों के, भाई ये तो सिंगर है, इसका क्या लेना देना दीन से, तो फलां है, इसका क्या लेना देना। मैं बहुत सीरियस नहीं होना चाहती इस शो में क्योंकि इस शो की नोई अलग है, लेकिन अभी मेरे पास एक मैसेज आया, नाम नहीं लूंगी उनका। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा हालिब मतलब वो तो इतनी जहालत पे मबनी उनके अशआर थे। पता है क्या, मतलब हम लोग भाई हर बंदे के बारे में ना एक अपना नुक्ता नजर रख लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपने आप को मतलब समझ लेते हैं, नफरत कर बैठते हैं उनसे कि ये तो ऐसे ही होगा, ये तो वैसे ही होगा, इस बंदे ने तो ऐसी बातें की। जबकि मिर्ज़ा हालिब की जो शायरी है ना, जो बंदा उसको समझने वाला है, मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ कि आपको लगता कुछ है शायरी में होते इस्तियारे और वो आपको शायर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो उस तरह से बात नहीं करता जैसे एक आम बंदा जो बात करता है ना, उसका एक अंदाज होता है कहने का, बात को समझाने का। तो वो अगर आपको नहीं समझ में आता, वो वाला ज़ौक नहीं है, तो आप कह दोगे कि उठ खा के कि यार ये तो फजूल है, या सारे शायर जो होते हैं वो फजूल ही होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, मतलब इस तरह का मामला नहीं है। हर किसी से हमें अपने तौर पर बदगुमानी है, नफरत नहीं पालनी चाहिए। अच्छा, अभी आए थे असमत आफरीदी, उन्होंने एक जिक्र किया था डॉक्टर सुफियान का, तो अभी तक मैं जिक्र नहीं कर पाई थी। इनको सुन रही काफ़ी अरसे से और काफ़ी मतलब जो है वो ज़बरदस्त वाकई स्कॉलर हैं, और ख़ासतौर पे मैं उन लोगों को जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई बुगज रख लेते हैं या ये अपने तौर पे एक इमेज बना कर बैठ जाते हैं, उनसे कहूँगी कि उनको ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपकी सोच की वो वाली गिरा खोलेंगे जहाँ पे हम लोग ना बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी शख्सियतों से हम मंसूब कर देते हैं कुछ ना कुछ ऐसा गलत जो कि शायद उनमें हो ही नहीं, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, हम में से कोई नहीं जानता। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो शो है वो बिल्कुल भी सीरियस अंदाज में मैं नहीं करना चाहती। ये डियर फैमिली नहीं है, ये डियर जिंदगी नहीं है, तो हम जरा थोड़ा सा चिल वाले माहौल में रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं सोचती हूँ कि डिस्कस कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। चले जी, अब आ जाते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन बात कर रहे हैं? नूर भाई। नूर भाई, चले गुड, जबरदस्त। और आपने गेम में
1: जी क्या समझ गया अपनी गेम का?
0: जी जी, आप
1: क्या मैं शायरी बहुत हो रहा है बात, तो मैं एक शायरी सुन सकता हूँ?
0: सॉरी,
1: आपकी इजाजत से मैं शायरी बोल सकता हूँ?
0: आप शायरी
1: बहुत हो रहा है
0: कहना चाह रहे हैं? मैं समझी नहीं, सुनाना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, सही
1: जी। जिस फानी है सजाने की जरूरत क्या है, इंसान हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, अमाल तुम ऐसे करो कि तुम्हारे रूह से खुशबू आ जाए, और ना तुम पर दुनिया को उंगली दिखाने की जरूरत क्या है। मतलब किसी के बारे में हम किसी को डिसाइड करने वाला है कौन, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते।
0: सही सही सही सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे?
1: जी जी जी जी, गेम तो आज का ही है।
0: अच्छा, चलें आप बिल्कुल कीजिए, और मैं सही अगर समझी हूँ मोहम्मद यूसुफ खान को, तो मैं उसके मुताबिक कोशिश करती हूँ कि हम गेम आपके साथ खेल सकें, ठीक है? उन्होंने क्या कहा था कि एक किसी एक्टर का नाम देना है और फिर आपने फौरन से मूवी गेस करनी होगी, ऐसे ही है ना?
1: जी जी, हाँ।
0: तो मैं आपको एक्टर का नाम देती हूँ, पहले आप बताएं फौरन से 30 सेकंड के अंदर ना, तो टाइमर लगाना पड़ेगा मुझे, रुकें ज़रा, टाइमर लगा लें पहले हम, फिर उसके बाद फिर मैं आपको मतलब जो है ये बताती हूँ। 30 सेकंड, जल्दी से रीसेट कर लूँ मैं। अरे यार, चलो खैर, मतलब मैं गिन लेती हूँ, सही है? तो हम

0: जो है आपको पहला नाम जो दे रहे हैं वो है गोविंदा।
1: गोविंदा का जैसे राजा बाबू।
0: हाँ, एक ही देना होता है
1: राजा बाबू।
0: ओके,
1: राजा बाबू हो गया, सेकंड नंबर वन हो गया, हाथ कड़ी हो गया।
0: हाँ,
1: और जैसे हो गया मतलब कि स्कूली नंबर वन हो गया, जैसे हो गया मतलब ऐसे शिकारी हो गया।
0: चार चार बताए है ना,
1: चार ही हुआ अभी तक।
0: चल ठीक है, हाँ चार बताए।
1: दूल्हे राजा।
0: हाँ हाँ सही हो गया,
1: मतलब आंखियों से गोली मारे।
0: सही हो गया, मेरा ख्याल 30 सेकंड पूरे हो गए होंगे, अगली दफा मैं टाइमर लगा कर ही बात करती हूँ। चलें ठीक है, आपने मुझे टोटल बताए हैं 6 आई थिंक, है ना, 6 बताए, 6 बताए ना।
1: हाँ, मुझे नहीं गिनती नहीं किया,
0: गिनती नहीं किया। चलें चलें सही है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, नाम बताएं एक दफा। नूर मोहम्मद बात करें। नूर मोहम्मद थे, ठीक है ठीक है। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। 6 या 7 है मेरा ख्याल है, अभी मैंने गिना नहीं था, लेकिन हम नेक्स्ट कॉलर पे एक तो टाइमर भी लगा लेंगे और फिर मैं गिनती भी रहूंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोले भाई बोले। हेलो जी
2: जी जी जी मैं बोला थोड़ा सा आपके उसमें गेम में मैं भी शामिल हो जाता हूँ।
0: कौन है?
2: रईस बात कर रहा हूँ। रईस?
0: अच्छा अच्छा, रईस बात कर रहे हैं।
2: हम नाराज मत होना बस।
0: अरे यार, तो आपका नाम थोड़ी लेना है, छोड़ दे छोड़ दे। अच्छा जी,
2: मैंने मजाक मैंने बाद में फिर मैंने उसको अपना सॉरी किया यार।
0: नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला
2: नहीं।
0: लेकिन मैं, अच्छा रईस भाई, आपने कहा ना मैं आपके कहने पे शान इलाही को सुनूंगी, ठीक है? आप मेरे कहने पे डॉक्टर सुफियान लिख के सर्च करें और उनको सुनिएगा, ठीक है?
2: इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बहुत एक नहीं है।
0: हाँ हाँ, नहीं बस इनको सुने। अब हम गेम पे आ जाते हैं। गेम गेम गेम
2: बेहतरीन माशाल्लाह, पाकिस्तान के बेहतरीन बेहतरीन है। अब नाम मैं खाली उनका मतलब लिया हूँ, लेकिन और बहुत से बेहतरीन बेहतरीन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और मैं सुनता हूँ और बहुत मुस्तफीद होता हूँ।
0: बिल्कुल, आप इनको भी सुन के देखिएगा, अच्छे लगेंगे। अच्छा चले, हम आपको
2: नाम फरमाए थोड़ा फिर से एक बार।
0: सुफियान, डॉक्टर सुफियान। अभी असमत आफरीदी ने भी 2-4 दफा जिक्र किया है, काफी अच्छे हैं, सुनिएगा
2: इंशाल्लाह। नहीं, असल बीच में मैं थोड़ा स्किप हो गया था, थोड़ा सा दूसरी तरफ बिजी हो गया था, तो मैंने
0: हाँ नहीं, अब आज ही लगा के उनको देखिएगा, ठीक है? अच्छा, तो हम गेम पे आ जाते हैं। मैं आपको जो नाम दे रही हूँ, मैं 30 सेकंड्स में आपने जितनी मूवीज के नाम लेने हैं, ठीक है?

0: कपूर का तो आप हीरोइन के उसमें चली आए हैं, उनके हीरो के उसमें होती तो मतलब उनका तो समझ लो कि इनके साथ में शाहरुख खान के साथ में मतलब एक मूवी है
1: नाम नाम नाम
0: दिल
1: नाम,
0: तो पागल है दिल okay, तो पागल है उसके okay. बाद में इनका मतलब गोविंदा के साथ में राजा बाबू
1: okay.
0: हो गया दो हो गया ना, अब देखो ऐसे लोगों का नाम बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता, उसके बाद में इनके साथ में बहुत सी मूवी है यार,
1: हो गए 30 सेकंड हो गए
0: माफ करना
1: दो
0: थैंक
1: यू
0: ना, हीरो के उसमें होते तो शायद ज्यादा कर लेते, हीरोइनों के उसमें मैं थोड़ा सा मतलब ये हूँ,
1: कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं। जल्दी से कॉल कर लीजिए, अच्छा मजे का गेम है वाकई, ये मुझे समझ में आया, मैंने हाँ एक आध दफा कभी सुना भी था जाते आते। अच्छा जी जल्दी से कॉल कर लें, कॉल करने के लिए टाइम हमारे पास बड़ा ही कम बचा है, फिर मैं 50-52 तक चली जाऊंगी। 443-443-77 पे आप जल्दी से कॉल कीजिए और शामिल हो जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बहन जी, राज जी
1: कैसे हैं? ठीक ठाक, नाम बताइएगा भाई।
2: राज
1: ओके, राज है हमारे साथ, राज तो फिर बता ही देंगे सारे। अच्छा ये बताएं हीरोइन का नाम बताऊं या हीरो का नाम बताऊं?
2: कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम,
1: कुछ भी चलेगा। चलें तो फिर आप बताएं मुझे काजोल की मूवीज।
2: काजोल डीडीएलजे दोपत्ती आना जी।
1: अच्छा ये भी मूवी है?
2: हाँ ये अपना अजय देवगन के साथ है।
1: सही सही, आगे बताएं, जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है।
2: वी आर फैमिली, माय नेम इज खान, यू मी एंड हम, फना, और क्या है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, दिल।
1: आठ हो गई। चलिए गुड, जबरदस्त, आपने मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया लेकिन फिर भी आपकी आठ हो गई राज, जबरदस्त। मुझे लग रहा है विनर तो आप ही होंगे लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। थैंक यू राज, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे टाइम ट्रैवल पे, कहना चाहेंगे
2: इस पे?
1: टाइम ट्रैवलिंग जो हमारा आज का टॉपिक था कि अगर किसी शख्सियत से मिलना हो तो आपकी कोई ऐसी है जिससे मिलना चाहते हैं पास्ट में जाके?
2: पास्ट में जाके,
1: हाँ हाँ
2: पास्ट में जाके, आई वांट टू मीट माय पेरेंट्स, बोथ माय पेरेंट्स आर
1: राज थे हमारे साथ और अगले कॉलर देखते हैं कि कौन है, जल्दी से ले लेते हैं कॉल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? आरिफ अंसारी, क्या हाल है भाई? अच्छे ही होंगे, पहले की तरह ही होंगे, है ना?
3: अच्छा
1: गुड, जबरदस्त गुड, जबरदस्त। अच्छा तो फिर मैं आपको नाम बताती हूँ, हीरो का नाम बता दूँ, राइट?
3: ओके,
1: हीरो चाहिए? सही है, सैफ अली खान।
3: सैफ अली खान का सैफ अली खान की हम साथ साथ हैं।
1: ओके
3: कुछ मूवी याद है? मेरे को तो याद नहीं आ रहा।
1: नहीं याद आ रहा, थोड़ा सा सोच लें।
3: एक मूवी तो याद आई मेरे को,
1: और टाइम ओवर, एक ही बताई आपने, है ना?
3: कोई मुश्किल नहीं,
1: चलें कोई मसला नहीं। चलें आरिफ, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। रोहित तो हमारे साथ आरिफ थे, और आखिरी कॉलर में ले लेती हूँ, जल्दी से आप कॉल कर लीजिए तो हम आपको ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: मोहसिन।
1: मोहसिन जी, मोहसिन क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक,
1: जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको भी हम देते हैं ऑप्शन, और आपको देती हूँ मैं नाना पाटेकर।
4: नाना पाटेकर हाउसफुल फोर, भूल गया यार, हाउसफुल फोर, उसके बाद

0: सॉरी भूल गया.
1: थोड़ा सा टाइम है अभी, कोशिश कर लें.
0: नहीं
1: नहीं आ रहा.
0: हीरो नहीं आ.
1: सही हो गया. चले भाई सही है. मतलब क्या रखें, एक रखें, हाउसफुल फोर है ना,
0: एक
1: रखें. सही हो गया. चले नी मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू जी.
0: थैंक यू.
1: अल्लाह हाफिज. बाय बाय. और इसके साथ ही भाई हम अनाउंस कर देते हैं, पहले तो भाई राज के लिए हो जाए तालियां. राज तकरीबन रोज आना ही आते हैं और विन करते हैं. जबरदस्त. नूर के 6, रईस के 2, राज के 8 और आरिफ अंसारी और मोहसिन 1-1. और इसके साथ ही भाई जाने से पहले आपके मैसेजेस मैं पढ़ देती हूँ. आपका माही जी, आपने मुझे हैव अ वंडरफुल डे कहा है. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ओए होए जबरदस्त लाइंस मैम. सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आपको अच्छी लगी शायरी. और मोहम्मद जुल्कनैन का मैसेज आया था, कहते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक बट आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल. अच्छा, ये सिलसिला है. नसीम कहते हैं अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो, बिल्कुल मतलब कोई मसला ना हो, रेगुलर आपकी अपॉइंटमेंट ही हो एक शेड्यूल की. अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नसीम ने कहा. नसीम आपको वालेकुम सलाम, हैप्पी वीकेंड. जसविंदर सिंह कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम जी, मैं पास्ट में डायनासोर देखना चाहता हूँ. मैंने शख्सियत पूछी थी, जसविंदर सबसे अलग बोलते हैं, डायनासोर से मिलना चाहते हैं ये. अमजद इकबाल कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैसेज कल आया था. अच्छा गुड, पाकिस्तान में हैं आप और सही मालूम कीजिएगा. चले मैं आपको मालूम करके बताती हूँ. और इसके साथ ही जी मोहम्मद यूसुफ़ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड आपको भी. मावज जी आज टॉपिक टाइम ट्रैवल बहुत अच्छा है और मैं पीछे वक्त में जाके मेरी अम्मी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहूँगा. सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत. और या अल्लाह सुन के रोंगटे खड़े हो गए. और सुभान अल्लाह, प्लीज़ शेयर विद मी, मैं आपके साथ कर देती हूँ. नहीं आप नहीं समझे गेम, आपको कंटिन्यू एक्टर्स के नाम लेते जाना है, मतलब मुझे लेते जाना है. अच्छा, मतलब मुझे लेना है और वो साथ साथ मूवीज़ बताएंगे, एक एक मूवी बताएंगे. अब मुझे बताइएगा, समझाइएगा. ओके, और लिसनर्स ने स्पीडी आंसर देना है. ठीक है, जो वेद खिलाते थे, बट ये भी अच्छा है, न्यू थीम है. चलिए यही चला लेते हैं ना, है ना, क्या कहते हैं आप? शहजादा सलीम ने कहा है क्या कि मुझे पुराने वाला प्रोग्राम बात का बतंगड़, वो जो है वो करना है, वो बहुत अच्छा. पार्टिसिपेट करेंगे लोग, वोट करेंगे. बात का बतंगड़ मैं खुद भूल गई हूँ शहजादा सलीम, आपने अभी कहा तो मुझे याद आया. क्या था वो, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मैं भूल चुकी हूँ. मुझे याद है मैं खिलवाती थी लेकिन मैं भूल चुकी हूँ. और कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे. मुमताज़ अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे. और अस्सलाम वालेकुम, मैं सुनता हूँ, 5 बजे ड्राइव करता हूँ, कुछ मतलब जो है ये है सिलसिला. चलें जी, गुड, थैंक यू, ये भी अच्छा है, आपके लिए इजी होगा. हाँ मुझे थोड़ा सा इजी लगा ये वाला. और इसके साथ चलें जी, ये वाले मैसेजेस थे तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद यूसुफ, मैं आपको भेज देती हूँ अभी थोड़ी देर में शायरी. और इसके अलावा ये कि हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ़ यू. उम्मीद है जैसे मैंने कहा कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, अच्छा सा कीजिएगा, अच्छे से अपना दिन गुजारिएगा और कुछ डिफरेंट कीजिएगा क्योंकि वीकेंड है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी संडे के रोज़. मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड वंस अगेन.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हेलो,
4: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
3: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक। News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے۔ آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شورا کونسل نے عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 42 اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے آج بحرین میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا

आनंद से मुलाकात की। यह मुलाकात खलीज टाउन काउंसिल और कनाडा के दरमियान मुश्तरक वजारती इजलास बराए स्ट्रेटेजिक मुकालमे के मौके पर हुई। वजारत बलदिया की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक क्लीनिंग ने आज मजदूरों और ड्राइवरों में पेशावराना हिफाजत के कल्चर को फ़रोग देने के लिए दो रोज़ा आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें मुख्तलिफ कामों के शुबों से 600 से जायद मजदूरों और ड्राइवरों ने शिरकत की। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया कि आज सुबह से मुल्क के फजाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। तमाम परवाज़ों को मुसाफिरों और फ़जाई नेविगेशन सलामती के पेश नज़र मुतबादल हवाई अड्डों की तरफ मुंतकिल किया गया है। काबिज़ इसराइली फोर्स ने कल शाम जनूबी अलखलील के अलफवार कैंप पर धावा बोलते हुए दो फ़लस्तीनियों को गोली मार कर ज़ख्मी कर दिया और तीन दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। यह था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया।

दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और

0: ताकि हमारी रात भी इबादत बन जाए और हमारी नींद भी अल्लाह ताला की रहमत के साए में गुजरे। आज हम एक ऐसी खूबसूरत सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो पूरी रात हमारे लिए रूहानी हिफाजत, पाकीजगी और बरकत का जरिया बनती है। वो सुन्नत है सोने से पहले वजू करना। वजू का नाम आते ही अक्सर हमारे जहन में नमाज आती है और यकीनन वजू नमाज की कुंजी है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू को सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर इख्तियार फरमाया। इनमें से एक अहम मौका रात को सोने से पहले का भी है। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो उसी तरह वजू करो जैसे नमाज के लिए वजू करते हो, फिर अपनी दाएं करवट पर लेट जाओ। सामिन इकराम, जरा गौर कीजिए, दिन भर की मसरूफियात के बाद जब इंसान अपने बिस्तर की तरफ जाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद दिलाते हैं कि नींद से पहले अपने जिस्म और रूह दोनों को पाकीज़ा कर लो। वजू एक रूहानी ताजगी है। जिस तरह पानी चेहरे, हाथों और पांव को धोता है, उसी तरह ये वजू इन आज़ा को धोने के साथ साथ इंसान के दिल और रूह पर भी मुस्बत असर डालता है। इसीलिए बहुत से अहले इल्म फरमाते हैं वजू उमूमिन की जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का जरिया है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 to 10:30 ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों 1992 गल्फ कप कतर के लिए यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ था और उसी टूर्नामेंट में गोलकीपर अहमद खलील ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर दिया। अरब खत्ते में यह टूर्नामेंट कतरी फुटबॉल की तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज भी लोग इसे फख्र के साथ याद करते हैं। अहमद खलील उस वक्त सिर्फ एक बेहतरीन गोलकीपर नहीं थे बल्कि यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल भी बन गए थे। या दोस्तों, उस दौर में फुटबॉलर्स के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज आज जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अहमद खलील ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से साबित किया कि टैलेंट और हौसला हर मुश्किल को पार कर सकता। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में पेनल्टी सेव्स और क्रूशियल स्टॉप्स करके कतर को मुश्किल लम्हों में सहारा दिया और इसी वजह से उन्हें गल्फ फुटबॉल का गोल्डन ग्लोव विनर भी कहा गया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी कतर की फुटबॉल टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुँच कर एशिया में अपनी पहचान मजबूत की। स्पेन के खिलाफ टीम ने हिम्मत और जज्बे के साथ खेला जिससे कतरी फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत और शोहरत हासिल हुई। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद जिंदगी में तकरीबन हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, और वो है ज़हनी दबाव या स्ट्रेस। थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव जिंदगी का हिस्सा है, बाज़ुकात हमें बेहतर कारकर्दगी के लिए मुतहरक भी करता है, लेकिन जब ये दबाव मुसलसल रहने लगे तो जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासिर होने लगती है। ज़हनी दबाव की कई वजूहात हो सकते हैं, काम या जो तालीम है उसका दबाव, माली मुश्किलात हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, बीमारी है या सेहत के मसाइल हैं, फ्यूचर के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, सोशल मीडिया और जो मालूमात हैं उनकी बहुत ज़्यादा भरमार। हर शख्स मुख्तलिफ हालात पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल देता है, इसलिए एक ही सूरत हाल के लिए मामूली और किसी दूसरे के लिए शदीद दबाव का बास भी बन सकती है। मुसलसल ज़हनी दबाव सिर्फ ज़हन ही नहीं बल्कि जिस्म को भी मुतासिर करता है। उसमें सर दर्द है, नींद की खराबी है, थकन और कमज़ोरी है, चिड़चिड़ापन है, ब्लड प्रेशर में इजाफा है, बेचैनी और डिप्रेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं। जब आप परेशान हों या दबाव का शिकार हों तो चंद लम्हों के लिए रुक कर आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लीजिए, और ये अमल जिस्म को सुकून का पैगाम देता है और दिल की धड़कन को मामूल पर लाने में मदद देता है। रोजाना की वॉक या हल्की एक्सरसाइज ज़हनी दबाव को कम करती है, और वर्जिश के दौरान ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और ज़हनी सुकून फराहम करते हैं। मराकबा या मेडिटेशन

0: तलहा जैसा ये नेचुरली थोड़ा बहुत बदलने लगता है, लेकिन आप सोचें, पूरा दिन आपने मेहनत की, बाहर जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं या फिर बाहर कहीं आपका कोई काम है, और वो सारा काम काज करके पूरे दिन की थकन लेके आप घर पे आते हैं और अगले जो आपके घर वाले हैं उनसे गुस्से में बात करते हैं, आके कोई चीज इधर फेंकते हैं, उधर से उठाते हैं, ये इधर क्यों पड़ा है, वो उधर क्यों है, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो क्या आपको रिलैक्स फील होता है उसके बाद? सोचिए, यकीनन आपका जवाब ये होगा कि नहीं। घर में मजीद तलखी बढ़ जाती है, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, बीवी बात करने से घबराती है कि पता नहीं भाई साहेब बहादुर घर पे आ गए अब क्या होगा। तो उससे होता क्या है कि आपकी थकन कम नहीं होती, आप मजीद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लोगों की नजर में विलन अलग बनते हैं। लेकिन अगर मतलब दफ्तर में बॉस की सख्त बात सुन ली इंसान, वो खामोश रहता है क्योंकि वहां कुछ बोल नहीं सकता, घर आके अगर आप अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं या किसी की बात सोशल मीडिया पे बुरी लग गई, उससे लड़ने झगड़ने लग गए, उसकी वजह से भी आजकल लोग पूरे पूरे दिन चिड़चिड़े रहते हैं और बसाओकात वो वाला गुस्सा भी अपने घर वालों पे निकालते हैं। सोचिए, अगर इसके बरक्स आपके साथ जो कुछ भी दिन भर में हुआ, लेकिन आपने अपना रवैया हर जगह नरम रखने की कोशिश की, आपका बर्ताव दूसरों के साथ नरम था, तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो काम करने वाले हैं आपके साथ, वो भी ये महसूस करें कि भाई देखो इस बंदे को हमने कैसे भी बात की, कैसे ट्रीट किया, लेकिन ये कमाल का बंदा है, इससे सख्त लहजे में बात करो, गुस्सा भी कर दो, लेकिन ये आगे से कंपोज रहता है। और इस क्वालिटी को आपका ना सिर्फ ये कि ऑफिस, आपकी जो हायर मैनेजमेंट है वो भी अंडरस्टैंड करती है, बल्कि यही वो क्वालिटी है जो अगर आप अपने घर पे आके अपने आप को कंपोज रखते हैं, घर वालों से मुस्कुरा कर अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ नरम रवैया रखते हैं, तो घर का माहौल भी जन्नत बन जाता है। इसलिए नरम गुफ्तगू सिर्फ इखलाकी तालीम नहीं है, ये जहनी सुकून की जरूरत बन चुकी है, बुनियाद बन गई है। कभी गौर करें आप, जब कोई इंसान आपसे नरमी से बात करता है तो आपका दिल भी खुद ब खुद नरम हो जाता है ना, गुस्सा कम हो जाता है, अगले बंदे की बात सुनने का दिल चाहता है। लेकिन जब कोई सख्ती से बात करता है तो इंसान फौरन डिफेंसिव हो जाता है, चाहे सामने वाला सही ही क्यों ना हो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिल जीत लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज लोगों को करीब ले आता था। एक और अहम बात, नरम गुफ्तगू का मतलब ये नहीं है कि इंसान कमजोर है या फिर हर गलत बात भी किसी की मान ले, नहीं। इस्लाम सच बोलने की तालीम देता है, लेकिन हिकमत के साथ, नरमी के साथ। आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन इज्जत के साथ। आप अपनी बात रख सकते हैं, उसके लिए चीखना जरूरी नहीं है। आप किसी को उसकी गलती बता सकते हैं लेकिन उसे जलील किए बगैर। यही असल किरदार है।
1: आप सुन रहे हैं हदीब टू हैबिट,
2: हदीब टू हैबिट
1: आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: आजकल का एक मसला ये भी है कि लोग फौरी तौर पे रद्द अमल देते हैं, यहाँ कोई बात बुरी लगी वहां फौरन जवाब, कोई इख्तलाफ हुआ फौरन बहस, कोई तनकीद हुई तो फौरन से गुस्सा। हालांकि बाज़ औक़ात खामोशी भी बेहतरीन जवाब होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होती, हर इख्तलाफ को जंग बनाना जरूरी नहीं होता। नरम गुफ्तगू इंसान को सिर्फ दूसरों के करीब नहीं लाती बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून देती है, क्योंकि सख्त लहजा सबसे पहले इंसान के अपने अंदर का सुकून खत्म करता है। आपने देखा होगा जो लोग हर वक्त गुस्से में बात करते हैं,

खुद भी अंदर से थके रहते हैं। उनका अमूमन आजकल तो देखें तो बीपी हाई रहता है, और जो लोग नरम अंदाज रखते हैं उनके आसपास एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। यही वजह है कि इस्लाम में जबान की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि जबान या तो दिल जोड़ती है या तोड़ देती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ एक नरम जुमला किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। तब सवाल यह है, अगर नरम गुफ्तगू इतनी अहम है तो हम इसे अपनी आदत कैसे बनाएं? रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी, गुस्से, दबाव और इख्तलाफात के बावजूद हम अपने लहजे को कैसे बेहतर करें? तो चलें बताती हूँ मैं आपको। जब हम नरम गुफ्तगू में बात करते हैं तो ये सिर्फ एक अच्छी आदत या समाजी अखलाक नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत भी होती है। इस्लाम में इंसान के अल्फाज को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि जबान सिर्फ अल्फाज से नहीं मतलब बनती है आपकी, बल्कि जबान दिल की हालत को जाहिर करती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार इंसान को गुफ्तगू के आदाब सिखाते। एक जगह फरमाया गया, और लोगों से अच्छी बात कहो। ये हुक्म बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन अगर इंसान वाकई इस पर अमल करना शुरू कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी, पूरी शख्सियत बदल सकती है। क्योंकि अच्छी बात सिर्फ अच्छे अल्फाज नहीं होते बल्कि अच्छा अंदाज, अच्छी नीयत, दूसरों के एहसास का ख्याल भी इसमें शामिल होता है। इस्लाम इंसान को सिर्फ इबादत गुजार नहीं बनाता बल्कि इंसानों के लिए आसानी बनना भी सिखाता है। और बाज़ औक़ात इंसान की नरमी उसकी नमाजों से ज्यादा लोगों के दिलों पर असर डालती है। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स है, बहुत इबादत करता है, लेकिन जब बात करता है सख्त लहजे में बात करता है। लोग उससे बात करने से घबराते हैं, घर वाले उसके करीब बैठने से डरते हैं भाई कि इनको कौन सी बात बुरी लग जाए। उसकी बातें दिल में सुकून पैदा करने के बजाय इर्द गिर्द दबाव बढ़ा देती हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो आम सा है लेकिन नरम गुफ्तगू करता है। लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं। वो इख्तलाफ में भी इज्जत देता है, गुस्से में भी हद पार नहीं करता। इस्लाम के नज़दीक खूबसूरत किरदार सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि इंसान के रवैये में नजर आना चाहिए। कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों से कहो ऐसी बात करें जो बेहतरीन हो, और करें सिर्फ अच्छी नहीं कहा बल्कि बेहतरीन बात। क्योंकि इंसान के अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, उनमें असर होता है। अल्फाज उम्मीद भी देते हैं और मायूसी भी। अल्फाज दिल जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। बाज लोग अपनी जिंदगी में सालों बाद भी किसी एक जुमले को याद रखते हैं। कभी किसी उस्ताद की हौसला अफजाई इंसान की जिंदगी बदल देती है। कभी माँ का एक नरम जुमला इंसान को मजबूत बना देता है। कभी किसी दोस्त की तसल्ली इंसान को मुश्किल वक्त से गुजार देती है। और कभी सिर्फ एक सख्त जुमला इंसान के दिल में इतनी गहरी चोट छोड़ जाता है कि वो बरसों नहीं भूलता। इसीलिए इस्लाम में जबान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहा गया है। आजकल लोग अक्सर ये कहते हैं, मेरा दिल साफ है, मैं बस सीधी बात करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर सच बोलने का अंदाज लोगों को जख्मी कर दे तो क्या वो हिकमत है? इस्लाम आपको सच बोलने से नहीं रोकता, मगर सच को रहमत के अंदाज में पेश करना सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो हैरत होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: सीखा जा सकता है। कोई इंसान एक दिन में अपना मिजाज नहीं बदलता। खास तौर पर अगर वो बरसों से जल्द गुस्सा करने, ऊंची आवाज में बात करने या फौरी रद्देअमल देने का आदी हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अगर शऊरी तौर पर कोशिश करे तो उसके अल्फाज, अंदाज और रिएक्शंस बदल सकते हैं। तो इस दफा का चैलेंज मैं आपको देके जाऊंगी और ये आपके लिए हैबिट प्लान भी है कि अपने लहजे को ऑब्जर्व करें आप और जवाब देने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना सीखें। सख्त अल्फाज को बदलना शुरू करें, आराम से नरम अल्फाज इख्तियार करें। घर वालों के साथ खास तौर पे नरमी का सलूक करें और गुस्से में खामोश हो जाया करें। दिन में रिफ्लेक्ट भी करें बैठकर कि मुझ में कुछ फर्क आया, और नरम लहजे को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ चैलेंज नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने का तरीका है। हम हमेशा कभी भी परफेक्ट नहीं रहेंगे। कभी गुस्सा आएगा, कभी लहजा खराब होगा, कभी थकन भी होगी, लेकिन असल बात यह है कि इंसान वापस पलट आए, अपनी गलती महसूस करे, माफी मांगने में शर्मिंदगी महसूस ना करे और दोबारा कोशिश करे। क्योंकि खूबसूरत किरदार वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे। लिसनर्स, ये था हमारा हदीस टू हैबिट प्रोग्राम और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी नरम लहजा अपनाएंगे और आपके इस लहजे की नरमी से इंशाल्लाह आपके बहुत से दोस्त बनेंगे और लोग आपके करीब आएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड। फिल्मी गाइड जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू।
2: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
4: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
3: गेम ऑन,
4: वॉल्यूम अप
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 से
4: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
3: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो की घड़ी में 11:02 और आ गया हूँ मैं।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: हला हला हला, हैप्पी वीकेंड लीजिए साहब। आ गया वो दिन जिसका हम सबको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई, अब वीकेंड एंजॉय करना है। और आ गया हूँ मैं लेकर आपका अपना प्रोग्राम, जहां पर बातचीत होगी आपके अपने मसलों की, आपके अपने दिन की। खूब सारा एंटरटेनमेंट, खूब सारी बातचीत, खूब सारी मालूमात, और मेरे साथ जुड़ेंगे आप। जहां दो घंटे भाई हम बनाने वाले हैं वीकेंड का सफर जो है वो तैयार करने वाले हैं। और क्या चाहिए बाकी, तो आपको पता ही है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। हाँ, क्या बात है यार, यहाँ पे तो आज मेरे साथ काफी लोग शुरू से ही जुड़ गए हैं। माशाल्लाह, आप लोग के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए, कॉल भी आना शुरू हो गई है। उन सभी लोगों के लिए बता दूं जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, खास में खास दिन अपना शेयर करना चाहते हैं, और अगर मेरी खैरियत भी मालूम करना चाहते हैं, वाई नॉट भाई, बिल्कुल आप मेरी खैरियत भी मालूम कर सकते हैं। नंबर है हमारा 4434377, और मैसेज भेजने के लिए नंबर है 666-22107। और चलिए भाई, तो अगर ऐसे ही है तो वीकेंड का बाकायदा आगाज आपकी आवाज के साथ सन एंड साउंड का मामला है। सन अपनी जगह, साउंड आपकी। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या भाई सरवर भाई,
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उवैस भाई है क्या हमारे साथ?
2: नहीं, आज हमने
1: कहा पहले मिलाएंगे,
2: कल हम मिलाते मिलाते थक गए, आपने फोन नहीं उठाया कल भी।
1: हाय, ये क्या हो गया मुझसे, माजरत चाहता हूँ उवैस भाई, बट देख लिया
2: अभी मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 11:01 हुआ या नहीं, बिल्कुल अभी आए हुए थे, मैंने कहा तुरंत मिला।
1: मोहब्बत है सर, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा शुरू हुआ आज का दिन और क्या क्या प्रोग्राम है उवैस भाई? जुमेरात आ गई, वीकेंड आ गया।
2: जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर गुजरा बस अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अभी तक का सफर बेहतर गुजरा, अब आगे का क्या है इंतजाम? थर्सडे है भाई, फ्राइडे

0: रहा है, सैटरडे आ रहा है, छुट्टी है, वीकेंड है, नहीं है आपका?
1: हाँ, दो दिन वीकेंड है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, दो दिन, बताइए कितना इंतजाम यार आपने कर रखा है दावतों का और दोस्तों से मिलने मिलाने का है।
1: तो आप कब आ रहे हैं, किस दिन आएंगे सर? फ्राइडे को या सैटरडे को?
0: अरे सर, मैं तो कहीं भी कभी भी आ जाऊंगा, मगर ये तैयारियां कर तो रखी है ना दोस्तों के हवाले से।
1: हाँ जी जी बिल्कुल, आप आइए और रेडी मिलेगा इंशाल्लाह।
0: चलिए,
1: कोरमा और बिरयानी।
0: ओए होए होए होए होए, क्या बात है, कोरमा बिरयानी के हिसाब से ही आज हम बातचीत करने वाले हैं। वीकेंड है, हल्की हल्की बातचीत भी रहेगी, और ये भी जानूंगा कि हमारे जितने भी बैचलर भाई हैं या भाई फैमिली वाले भी हैं जो अपनी कुकिंग पसंद करते हैं, अपना किचन का रास्ता देखना पसंद करते हैं वीकेंड के आते आते, इसी हवाले से आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारे टॉपिक पर भी। तो यूजुअली क्या माहौल रहता है, मतलब वीकेंड आने के बाद थोड़ा सुस्ती, थोड़ा ईजी कि भाई खाना बाहर से मंगा लेंगे, या फिर वो जोश आ जाता है कि नहीं यार बाहर से नहीं, वो बनाएंगे जो पूरे हफ्ते सोचा था कि इस बार वीकेंड आने दो, ये वाली रेसिपी जो है बना के रेडी कर देनी है। तो किस तरीके का हिसाब किताब रहता है, बाहर से खाना या घर से खाना, इसको ऐसे कर लेते हैं शॉर्ट?
1: मिर्जा साहब, वैसे तो फिलहाल बाहरी बहुत ही जुज्बी ही खाते हैं, ज्यादातर खुद ही बनाते हैं। जो भी बनाना है,
0: अच्छा जो भी बनाना है, जैसे मुझे बनाते हैं
1: आप, वेजिटेबल,
0: आपने सुनी नहीं बात, मैंने अर्ज किया कि जैसे आप मुझे बनाते हैं।
1: क्या
0: मैंने अर्ज किया, जैसे आप मुझे बनाते हैं इसी तरीके से सब चीजें आप अच्छा तो चलिए, तो क्या क्या बना लेते हैं ये बताइए, मतलब खाने में ही पूछ रहा हूँ, अपने क्या क्या बना लेते हैं
1: खाने में? सब चीज बना लेते हैं, बस एक चीज नहीं बना पाते जो आपकी फेवरेट है।
0: अच्छा,
1: तो कोशिश बहुत करते हैं मगर वो हमसे पता नहीं क्या है बन नहीं पाती। एक एक दिन का वाकया बताएं आपको। हाँ, हम बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, तो बिरयानी का सारा मसाला वसाला बना दोनों के सब तैयार कर लिया, उसमें गोश्त डाला, और गोश्त मुश्किल से मतलब दो मिनट हुए होंगे, हम भूल गए कि गोश्त गलाया भी जाता है, मैंने गोश्त डाला उसके बाद चावल डाल दिए, और जब खाने बैठे तो यार हम करें गोश्त नहीं गला, बिल्कुल भी नहीं गला इतना सा, अरे बाद में ध्यान आया यार मैंने गोश्त को तो पकाया ही नहीं था।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, ये भी देखिए कुकिंग का एक हिस्सा है, ये भी एक शानदार रेसिपी जो है ओवेस भाई ने तैयार करी हमारे हाथ से।
1: वो बता भी मिला था, क्या किया, वो गोश्त को निकाल के छाट के धो के फिर उसका स्टू बनाया।
0: आए हाय, ये नौबत आ गई बिरयानी की बेचारी। अच्छा मगर अब ये तारीफ की बात है कि इसके बावजूद भी आप बाहर का प्रेफर नहीं करते, जो मेहनत है खुद से ही लग रही है और खुद से ही करनी है, भले ही उसके बाद डिश को कहीं और मोड़ के कुछ और बना दिया जाए, कि साहब बिरयानी का बना दिया स्टू, क्या बात है भाई, थैंक यू। क्या ही कह रहे भाई, वाह वाह वाह वाह, खुश रहिए और इसी तरीके से हंसते हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ है वैसे भाई, तीन का दम भी है, अभी तो हम नहीं शुरू करेंगे, जाहिर बात है अगले हाफ में हम शुरू करते हैं, तो जरूर तशरीफ लाइएगा जब भी और हमारे साथ जुड़िएगा। और कुछ
1: फोन मेरा पिक कर लीजिए।
0: जरूर जरूर सर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं इंशाल्लाह ताला। ठीक है,
1: ठीक है सर,
0: ओके, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। तो भाई वीकेंड की वाइब्स होती हुई शानदार, और आपका और मेरा यहाँ पर साथ, कुछ मैसेजेस भी आपके आना शुरू हो गए, तो बिल्कुल हम ये मैसेजेस भी शेयर करेंगे। क्या कहते हैं, करना शुरू कर दूं, शेयर पर रह ही जाते हैं। ओके, शुरुआत कर देते हैं यूसुफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं, होप वेल, वेलकम सन एंड साउंड, दिल से देसी, क्या कहने, और खूब सारे यहाँ पर गुलदस्ते, गुलाब, दिल, क्या हा हा हा, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग कहते हैं सभी को, हैप्पी वीकेंड कहते हैं सभी को यूसुफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, उम्मीद करता हूं कि आपका भी अच्छा प्लान होगा वीकेंड के हवाले से, तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए, सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक अल बकरा से। तौफीक भाई कहाँ हैं, एक अरसा हुआ आपसे बात हुए, खैर आप कनेक्टेड रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बढ़ते हैं आगे, वेलकम भाई, 9 बजे से वेट कर रहा हूँ आपका। अरे मेरी जान, मेरा भाई कैसा, इसमें पैसा ही पैसा कौन है ये, हमजा खोखार। यार हमजा खोखार है, ये खोखार है, आपका ताल्लुक कहाँ से है? ये मुझे यार आज हमजा कॉल करिए, आपसे जानना ही पड़ेगा मुझे। अहलन वसहलन।

0: लेन यार, आपको इतना वेट करवा दिया मैंने। जासिम हमारे साथ जुड़ गए, जासिम रैन, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम है। सलाम सरवर भैया, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, आप आइए तो सही, बात होगी आपसे। हेलो, सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन खादिम भाई। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार। जुमेरात है, थर्सडे, खादिम भाई आवाज उस हिसाब से नहीं निकल रही, क्या हुआ? आज फजर के बाद से सोए नहीं लग रहा है।
1: नहीं नहीं, सोया था मैं तकरीबन रात को थोड़ा सा लेट सोया, फिर बाद में नाश्ता करके बाहर नमाज पढ़ के थोड़ा आधा घंटा फिर सोया था।
0: फिर सोया था, चलिए। तो वो हाँ, वो जो एक वक्फा है वो काफी होता है वैसे ऑफिस आने के लिए। चार्ज कर देता है।
1: और सब खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप बताइए कैसे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन ये है कि गर्मी है और गर्मी में बाहर जाना भी मुश्किल होता है। और मेरा एक दोस्त, हमारा भाई आ रहा है मुल्क से, तो कल उनकी आने की तैयारी है।
0: बस तो फिर तो वो शीरी, वो लज्जम, वो गट्टम गट्टा गट, क्या बात है, दस्तरखान यहाँ से वहां तक बिछा हुआ है, पूरी
1: तैयारी। बढ़ो, सिर्फ सिर्फ खाने की बात है नहीं है,
0: मोहब्बत की भी बात है यहाँ पे, मोहब्बत की भी बात है,
1: वही बात है।
0: अल्लाह ताला भाई उनको खैरियत से लाए और आप उनको खैरियत से यहाँ पर घुमाएं फिराएं खिलाएं। हमारा दोहा हर इस लायक है कि मेहमान आके यहाँ पर एकदम देखते ही रहें। कॉर्निश की तरफ, वेस्ट बे की तरफ जाते हैं तो आदमी पहले तो ऊपर देखता रहता है, आंखें ऊपर करके, मुंह खुला हुआ कि यार ये क्या खूबसूरत जगह है। और ये मैं उनके लिए, मैं वो आदमियों की बता रहा हूँ जो माशाल्लाह खलीज के दूसरे ममालिक से या दुनिया में कहीं से भी होके आए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो पूरी खरी उतरती है जो सोच के आते हैं। जो नाम सुना है कतर का, अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज जब यहाँ पे आके वो वाकई में उनको देखने के लिए मिलती है तो जो उनकी खुशी होती है वो दोबाला हो जाती है कि यार हम सही जगह आए घूमने के लिए, और यही वो जगह है जहाँ के हमें अब आराम भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो, आपके जो दोस्त आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं?
1: एक आ रहे हैं। लेकिन
0: छुट्टी गुजार के वापस आ रहे हैं। ओहो खादिम भाई, ये अब बताया आपने, तो फिर तो बैठक होनी है लंबी।
1: हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे आप कतर में और फिर कुरनेश की बात की और ये जो माशाल्लाह जो खूबसूरती है इसके बारे में, तो मैं तीन मुल्क मैंने देखे हुए, सऊदीया, यूएई और कतर।
0: ओके,
1: सही है। लेकिन माशाल्लाह जो खूबसूरती इधर कतर में है,
0: बेशक
1: माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत, सुकून है, सुकून,
0: बेशक बेशक बेशक।
1: कतर में कहीं भी जाइए, कहीं वो जो सी लाइन है
0: जी,
1: वो उधर तो और भी सुकून मिलता है फिर।
0: और खासतौर पे जब हमारा वीकेंड आ गया, हमारे पास टाइम हो अपनों के साथ वो लेजर टाइम गुजारने का विद प्लेजर, तो फिर मामला दूसरा ही हो जाता है। खादिम भाई,
1: बिल्कुल,
0: वैसे
1: बिल्कुल।
0: खुद अपने हाथों से तरतीब दी जाएगी उनकी मेहमान नवाजी के लिए, जो नौशो तनावुल फरमाया जाएगा मामला, वो आपके हाथों से ही बन के उतरेगा, चूल्हे से या बाहर से?
1: नहीं नहीं नहीं, बाहर से तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बाहर का खाना मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। अपने हाथ से बनाता हूँ माशाल्लाह, मैं हमेशा खुद बनाता हूँ। और रमजान के महीने में वो है, और एक दूसरा हमारे दूसरे एक भाई साहब है, वो माशाल्लाह खिदमत करते हैं और वो मुझे मौका नहीं देते, वो दोनों,
0: क्या बात है। वो हाँ, पूरा मिलके सेट कर देते हैं मामला, ऐसी
1: बस वो लोग करके देते हैं और बस मुझे बोलते हैं कि नहीं।
0: तो ऐसी वीकेंड में भी होता होगा फिर, जुमेरात जुमे में भी ऐसे ही होता होगा?
1: हाँ, जुमेरात जुमे को तो अक्सर मैं बाहर रहता हूँ, वो जो आपको बताया था, वो जो हमारे भाई साहब है और जो साद अहमद के जो वालिद मुख्तरम है, वो आते हैं तो उनके साथ मैं घूमता रहता हूँ फिर।
0: ओके, क्या बात है यार।
1: जी जी जी जी,
0: सीनियर होने का फायदा,
1: बुढ़ापे का फायदा। बुढ़ापे नहीं तो
0: नहीं भाई, अल्लाह ताला सबके रूममेट्स को खुशहाल रखे और सबके बीच मोहब्बतें दोस्ती कायम रहे, क्योंकि ये एक हिस्सा ऐसा होता है और ये शख्स ऐसा होता है ना जो हमारे साथ हमारा कमरा शेयर करता है भाई, वो हर रिश्ते हर ताल्लुक से ज्यादा होता है मामला, सबसे ज्यादा तो वो हमारे साथ जिंदगी गुजार रहे हैं सुबह दोपहर शाम, मैं तो ये कहता हूँ। तो अल्लाह ताला उन सारे लोगों के बीच में मोहब्बतें कायम रखे। इसके ऊपर भी अब कभी ना कभी हम बात करेंगे, अब मुझे मिल गया टॉपिक एक और।
1: हाँ
0: बिल्कुल, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए भाई खादिम भाई,
1: टॉपिक क्या, मैंने नहीं सुना
0: आज का, यही था खाने के ऊपर ही, तो जब ही तो मैं बात कर रहा हूँ कि बाहर का खाना या घर का खाना। हाँ

0: बेहतरीन है, शफाफ है, जायकेदार है, कोई ऐसी हेल्थ की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसमें कुछ कहना चाहते हैं?
1: नहीं, वो ये मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। मैं मुल्क में बीता बचपन
0: पसंद है, अपनी चॉइस है, कभी
1: बस अपनी चॉइस है। जो घर का खाना होता है, खुद बनाया खाना जो है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे शुरू से। और यहाँ पे एक और बात, जब आपने कतर की और फूड की और ये बातें की, तो यहाँ पे जो साफ सफाई है और जो ख्याल रखते हैं,
0: बेशक
1: वो किसी और जगह में नहीं है।
0: Exactly. मैं वहीं आ रहा था खादिम भाई, मेरा कहना ये था, लोग यूजुअली ऐसा होता है जो दूसरे ममालिक से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, तो जरा सा जहन में रहता है कि भाई किस तरीके का खाना होगा, कैसा खाना होगा, फ्रेश होगा नहीं होगा, खुदा ना खासा इधर उधर। हमारे कतर में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा निज़ाम अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बलदिया की तरफ से भी, और जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो अपना काम करते हैं, जो खाना खिलाते हैं, तो माशाल्लाह इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, खुदा ना खास्ता।
1: और ऐसा भी नहीं है सरवर भाई कि मैंने नहीं खाया, कहीं होटल में नहीं गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे होटल में गया, दोस्तों के साथ गया माशाल्लाह,
0: मगर बस चॉइस अपनी ये है कि घर पे ही बना के खा लूं।
1: लेकिन जब भी घर में खुद बनाए और वो कुछ भी हो माशाल्लाह, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: हाँ नहीं, मुझे याद भी है, मुझे कुछ तस्वीरें आपने भेजी भी थी पिछले दिनों, याद आ रहा है मुझे जी, याद आ रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका दस्तरखान और वसी करे, और इसी तरीके से आप हंसते बोलते खिलखिलाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई।
1: ये एक बात की, ये जो FM 107 है
0: जी,
1: इस पे हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं माशाल्लाह, हमारे दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है, हम तो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारी जो ये पूरी फैमिली है FM 107 ने जोड़ के रखी हुई है।
0: सर कोशिश है पूरी,
1: नहीं है
0: या आप लोगों की मोहब्बत,
1: एक वो जो गुलदान होता है उसमें ऐसे मुख्तलिफ फूल होते हैं, तो माशाल्लाह अगर एक भी उधर से निकलता है तो FM 107 उसको वापस इधर लेके आता है माशाल्लाह।
0: बात है भाई, सर बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ऐसे अल्फाज नहीं है मेरे पास FM 107 के लिए, माशाल्लाह बेहतरीन।
0: थैंक यू सो मच जर्रा नवाजी के लिए, और हम सभी के लिए इतनी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खादिम भाई, थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया। अल्लाह
0: हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, एंड हैप्पी वीकेंड खादिम भाई एंड सभी को। आज आ गया वो दिन भाई जिसमें हम जरा सा सुकून जो है मिल जाता है। हेलो, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
2: मैं सर शोएब बात कर रहा हूँ।
0: शोएब भाई वेलकम, कैसे हैं?
2: अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शोएब भाई, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप भी खैरियत से ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का दिन, कैसी हुई शुरुआत आज और अभी तक आते आते क्या है सूरत हाल?
2: मैं आपके साथ ही शिफ्ट स्टार्ट करता हूँ 11 AM।
0: हाँ
2: अल्हम्दुलिल्लाह सब
0: क्या
2: ठीक
0: बात
2: है
0: यार, मैं शिफ्ट तो आप मेरे साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी तो शिफ्ट सुबह शुरू हो रही है 6:30-7 बजे।
2: क्या बात है, 6:30-7 बजे कौन सा प्रोग्राम कर रहा है?
0: प्रोग्राम नहीं है, हम क्योंकि मैं न्यूज में भी होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे सुबह जल्दी आके और फिर वो भी तरतीब करनी पड़ती है FM 107 पे मॉर्निंग और इवनिंग बुलेटिन जो है नशर होता है, तो आप वो जरूर सुना करें जिसमें आपको कतर की सारी मालूमात पता चलती है। जी ओके ऑल राइट। तो भाई आज जो है बिल्कुल सादी और ताजगी वाली बातें हो रही है, और क्योंकि वीकेंड है तो उसी हवाले से, तो घर का खाना या बाहर का खाना, इन शॉर्ट अगर पूछूं तो क्या कहना चाहते हैं शोएब भाई?
2: आपको कई बार बताया था, खुद अपने आप का एक शेफ बन चुका हूँ, वो भी आला दर्जे का।
0: मैं अच्छा, आप खुद एक शेफ बन चुके हैं आला दर्जे के?
2: जी जना।
0: अच्छा,
2: मतलब अब देखो पहले क्या था, शादी से पहले
0: मैं समझ गया शोएब भाई, अब आपने अब सही तरीके से जिक्र करा ना, अब मैं समझ गया कि आप आला दर्जे के शेफ जो है वो कैसे बने हैं, अब समझ आ गई मेरी बात।
2: मैं खुद वैसे भी मुझे देखो अभी क्या है ना, अभी मुझे खाना ऐसा बनाना इतना अच्छा लगने लगा है, हर सुबह
0: इसको
2: रात ही मैंने चिकन कोरमा बनाया, उससे पहले मैंने उड़द गोश्त बनाया, उससे पहले लौकी गोश्त बनाया, उससे पहले कटहल गोश्त बनाया।
0: ओ माय गॉड, क्या बात है, मतलब एक तो सब्जियां नहीं छोड़ रहे, साथ साथ चल रही हैं। और मैं बताऊं शोएब भाई कि इसको कहते हैं मजबूरी, इसको शौक नहीं कहते, आप समझ रहे हैं?

0: ये बात अलग है। देखिए दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, आप अपने आप को जैसे भी मुतमईन कर ले वो ज्यादा बेहतर है।
1: बात ऐसी जो हमारी जो वाइफ है ना
0: जी,
1: उनका जो ताल्लुक है वो है महाराष्ट्र से।
0: हाँ ओके
1: ठीक है ओके। अब वो जो उनका जो मतलब जो उनका जो खाना है ना
0: वो तो यार बिल्कुल यूपी से मुख्तलिफ
1: है। वाइफ के ऊपर डिपेंड, वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आज किस तरह का हमें खाना खाना है। लाइक साउथ इंडियन महाराष्ट्र का खाना खाना है या फिर हमें नॉर्थ इंडियन मतलब मेरा दिल्ली वाला खाना खाना है।
0: बिल्कुल दिल्ली यूपी वाला,
1: उसी हिसाब से जो है ना फिर तैयारी करते
0: हैं।
1: वो मेरे को ज्यादा जमता नहीं है ना भाई।
0: अच्छा तो इसलिए खुद बनाना पड़ता है।
1: अब उसको मैं कैसे बोलूं कि भाई थोड़ा कोस्ट बता।
0: मैं पहले ही मैंने अर्ज कर दिया था, मैं समझ गया था कि इसको मजबूरी ज्यादा कहते हैं, शौक कम कहते हैं शेफ भाई। तो जो भी है, चलिए अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से अब आप बनाते बनाते इतने बेहतरीन शेफ बन गए हैं अपने आप में कि बेहतरीन खाना जो बन रहा है वो दूसरों को पसंद भी आ रहा है उम्मीद करता हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये तो जब मैं, आप समझ रहे ना।
1: तो भाई ऐसा है, मैंने मतलब काफी अपने दोस्तों को जो है जब उनको ओड़ा तो दोस्त मैंने ट्राई किया कराया।
0: क्या बात है भाई, बिजनौर वाले सुन ले, बिजनौर ये सारे के सारे उड़द गोश्त बना रहे हैं तो कुछ भाई घर पे पहुंच जाओ भैया।
1: देखो भाई उड़द गोश्त एक ऐसी चीज है जो मतलब छुट्टी नहीं है, उसका टेस्ट और बढ़ता जाता है।
0: क्या बात है, अभी मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं अभी यही अर्ज कर रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा।
1: पता ऐसे चलेगा भाई, देखो आपके पास मोबाइल नंबर पहुंच चुका है और जब आपका मन हो तो मेरे को एक मैसेज डाल देना, और वैसे भी आ रहा है तो आ जाइए।
0: मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और बड़ा अच्छा ये लगा कि चलिए साहब मेरे साथ साथ दूसरे मर्द हजरात भी हैं जो माशाल्लाह खाने पका रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है जब हम बैचलर लाइफ शुरू करते हैं किसी दूसरी जगह जाकर अपना घर छोड़कर, तो फिर मर्द हजरात जो हैं वो अच्छे से अच्छा खाना बनाना सीख ही लेते हैं।
1: अब तो मैं भाई यूट्यूब पे देख देख के भी और बहुत सी चीजें मतलब ऐसी है जो
0: इजाद हो रही है, इजाद किचन को आपने लेबोरेटरी बना दिया है, वहाँ पर चीजें जो है इजाद करी जा रही है।
1: हाँ तो वो बोलती है, मेरी बीवी बोलती है ना ये तुम खाना नहीं बना रहे हो, तुम एक्सपेरिमेंट।
0: मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, मैं आपको वो बातें याद दिला रहा हूँ जो आप रोज सुनते हैं किचन के और घर के अंदर।
1: भाई एक दिन मुझे याद आया कि मुझे कढ़ी बनानी है, कढ़ी चावल, कढ़ी पकौड़े वाले चावल।
0: होय होय होय होय।
1: तो मैंने जो है ना उसमें क्या किया, उसको जो है ना कढ़ी को थोड़ा सा लेना पड़ता, सॉरी बेसन को लेना होता, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना होता उसको। मैंने उसको आधा किलो लिया और उसको जो है ना उसमें मसाले और आपका दही वही मिक्स करके मैंने उसे आग पे रख दिया, और भाई वो एक्सपेरिमेंट इतना खराब हुआ हद से ज्यादा।
0: कुछ और बन गया, कुछ और बन गया।
1: हाँ वो कुछ और ही बन गया।
0: कड़ी की जगह घड़ी बन गई।
1: वो बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट रहा मेरा। फिर मैंने आराम से तसल्ली से अपनी मम्मा को फोन किया, मैंने कड़ी मैंने बनाई थी लेकिन ये सही तो जगह बन रहा है।
0: सही जगह कॉल किया, फिर वो कड़ी सही हो गई।
1: हाँ उन्होंने मेरे को बताया ना, अब जो वो बचा है वेस्ट जो है उसको निकालो, जो सही सही है उसको बचाओ, उसके अंदर मिक्स करो दोबारा।
0: मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप किस हालत में होंगे उस वक्त और क्या चल रहा होगा किचन के अंदर, मैं रिलेट कर सकता हूँ मेरे भाई। मगर अब यही है कि गलतियां होते होते आदमी जो है वो सुधर जाता है और एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो शिकायत का मौका दे। क्या बात है, अपनी तारीफ।
1: अब तो सरवर भाई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना बहुत अच्छा बनाने को।
0: क्या बात है,
1: अब अच्छा बना।
0: चलिए भाई अल्लाह ताला खुश रखे,
1: लेकिन अब अच्छा है।
0: अल्लाह ताला खुश रखे, और इसी तरीके से आप हंसते मुस्कुराते अपने घर फैमिली का भी ख्याल रखें और अच्छे अच्छे खाने पकाते भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम के अगले भाग में भी तशरीफ लाइएगा, आपके साथ गेम भी खेलेंगे फिर। ओके
1: ओके सर,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ये थे भाई हमारे शुएब भाई, और बताते हुए कि किस तरीके से एक मर्द होने के नाते कितनी परेशानियों से गुजर के वो एक शेफ बने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? फैजान है।
2: अभी आपने स्पेशली इनवाइट किया मुझे कॉल पर आने के लिए।
0: क्या कराने के लिए?
2: कॉल पर आने के
0: लिए। ओ हमजा हमजा हमजा हमजा हमजा हमजा राइट ओके।

0: हमजा भाई आज हाथ आई गए यार, आपका नाम पूरा क्या है पहले तो ये बताइए।
1: हमजा कोखर।
0: कोखर
1: जी,
0: मैं सही कह रहा हूँ?
1: को मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता हूँ भाई।
0: पाकिस्तान में कहाँ से?
1: कराची से।
0: मैं वही तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, कराची में कोखर नाम मैंने पहली बार सुना है।
1: देखो
0: यार मैंने सही बताया ना, अब आए ना। ओके तो चलिए, मगर मैं नाम आपका सही। हाँ ओके ओके, तो अभी कराची में कहाँ पे होते हैं?
1: कराची में।
0: हाँ
1: कराची में मलेर में भाई।
0: अच्छा मलेर में किधर? अच्छा वहाँ किधर
1: मॉडल?
0: अच्छा किधर मॉडल में किधर
1: भाई?
0: यार ऐसे मत डरो, घर नहीं पहुंच रहा, मैं तो बस मालूम कर रहा हूँ।
1: घर की टेंशन नहीं है भाई, घर की टेंशन नहीं। मॉडल मैं मलेर मॉडल कॉलोनी और अवानी स्टॉप पर रहता हूँ।
0: ओके यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई।
1: कैंट के बिल्कुल सामने।
0: क्या कहने क्या कहने, और बड़ी प्यारे हैं आप, बड़ी अच्छी आवाज भी है आपकी। और ये बताइए खाने वगैरह के हिसाब से क्या रहता, क्या क्या जान सकते हैं? क्या एज एज क्या है आपकी अगर आप बताना चाहें?
1: I am 27 bro।
0: अरे तो यार इसमें तो फिर काफी कुछ सीख चुके होंगे अभी तक।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं आपको बताया था खाने पीने में आपका भाई हूँ।
0: नहीं देखिए, खाने पीने में है, पकाने में है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। आज मुद्दा ये है
1: भाई, वो कहते ना मैं बिरयानी मॉन्स्टर हूँ, ठीक है? बिरयानी जहाँ मिले, और इनफैक्ट बस पागल हूँ बिरयानी के बीच में।
0: क्या कह रहे?
1: और जो है पकाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा,
1: और जब से इधर आया हूँ क्योंकि शुरू से खाने और पकाने का भी खुद ही ट्राई करता रहता हूँ। एक बार कहीं बाहर ट्राई कर ली थी तो फिर घर पे आके खुद वो ट्राई करनी। भाई ये फलां जगह से खाई थी, अब ये इसको बिल्कुल टेस्ट वैसा चाहिए।
0: दिस इज गुड।
1: बिरयानी मैंने फिर जब इधर कतर आया हूँ, कतर में आके बिरयानी एक दो जगह, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं। और आपको बताया पाकिस्तान कराची वाले तो बिरयानी के दीवाने। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक दो जगह से बिरयानी खाई। और मैं वैसे नहीं बोलता लेकिन आके नहीं कहता, मैं एक मलवारी होटल में बैठा भाई, और मैंने उनको जरा जस्ट फॉर्मली कहता भाई।
0: आपकी आवाज कट रही है हमजा।
1: वो लेकर आया और
0: हमजा की आवाज कट रही है, क्या आप हमारे साथ हैं अभी तक हमजा?
1: एक मिनट जरा भाई, अभी ठीक है?
0: ओह यस यस यस, अभी बेहतर है, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ अब बताइए, अब अर्ज कीजिए, अब फरमाइए।
1: मैं बता रहा था, मैं पाकिस्तान में जैसा नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि भाई बिरयानी एक दे दो जाके किसी भी शॉप पर, तो यहाँ पे मैं एक मलवारियों की शॉप पर गया।
0: अच्छा
1: ठीक है, तो मैंने जस्ट फॉर्मल कह दिया कि भाई एक बिरयानी दे दो। और मैं बैठ के, मैं अपने मुंह में बैठा था कि वो पाकिस्तान वाला टेस्ट और वो कलर और वो सब कुछ। अच्छा भाई,
0: तो वो चीज आपको मुख्तलिफ मिली उनके होटल में, फिर आपने सोचा कि भाई अपना टेस्ट करना है तो फिर खुद बनानी पड़ेगी।
1: ओहो भाई, मैं उस दिन तहैया कर लिया था कि आप बिरयानी सीखनी ही सीखनी,
0: अब सीखनी ही सीखनी। हाँ जाहिर बात है, सबके अपने मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, और वो चीज़ जब हम खाना चाहते हैं तो भाई वो तो खुद ही बना के और फिर हासिल होती है। तो ये तो अच्छी बात है, चलिए आप सीख गए अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ तक पहुँच गए कि अब खुद बना सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं और दोस्तों को भी खिला सकते हैं।
1: अब वो रूटीन है कि जिस वक्त मेरे हाथ की बिरयानी बनी हो तो मेरे रूममेट्स और बाकी
0: होए होए होए जमा चौकड़ी और बिरयानी। क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, हमारे साथ जुड़े आप, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जुड़ते रहिए और तशरीफ लाते रहिए। इसी तरीके से आप खुश भी रहिए, दोस्तों को भी खुश रखिए, घर वालों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, हैप्पी वीकेंड। ऑलराइट देन, ये आया देखिए आपके लिए वीकेंड का गाना। अम्र दियाब, कल आपको सुनाया था या परसों सुनाया था शायद अपना बॉलीवुड वर्जन, आज तमल्ली माक, सुनिए आप ओरिजिनल, एंजॉय कीजिए ट्रैक इस वक्त भाई सन एंड साउंड जो है जारी और सारी है, जहां पर हमारा आपका साथ रहने वाला है सही एक बजे तक। एफएम 107 पे गाना समाज फरमाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से

खुश आमदी स्वागत है एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड आप सभी को। बिल्कुल भाई, सन एंड साउंड इस वक्त जारी और सारी सन अपनी जगह पर और साउंड आप लोगों की यहां पर मेरे साथ जुड़ती हुई बढ़ती हुई और जहां हमने खूब सारी बातचीत करी। चलिए भाई, अब कुछ अपडेट भी जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे। तो जनाब, ये जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने मुल्क में चलने वाली लाइसेंस राइडिंग हेलिंग कंपनीज की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उबर है, बदरगो है, अबीर है,

वह है राइड है, इसगो है और वेयर टू गो शामिल है। मिनिस्ट्री के मुताबिक ये तमाम कंपनीज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अथॉरिटीज ने आवाम को तंबीह की है कि सिर्फ लाइसेंस्ड सर्विसेज ही यूज करें, क्योंकि गैर कानूनी कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है या की जाएगी। राइट, तो चलिए अब बढ़ते हैं आप लोगों के मैसेजेस की जानिब। क्या कहना चाहते हैं, अली एस खान है हमारे साथ। और अली भाई, आपका मैसेज मैं समझ नहीं पाया। मैं हिज नेम इज हसीब खोकर। हसीब खोकर के बारे में बताना चाहते हैं, हमजा भाई की बात सुन के, हमजा खोकर थे हमारे साथ। तो कौन हैं ये आपके हसीब जो हैं, या क्या बताना चाहते हैं, जरा क्लियर करेंगे तो मज़ा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, कैसे हैं आप? हैप्पी वीकेंड। और वीकेंड आपके बगैर नहीं हो सकता मेरा भाई फराज, क्या बात है। नहीं यार, हम मेरा वीकेंड वाकई आप लोगों के बगैर नहीं हो सकता, ये हकीकत है। तमाम लोगों से गुजारिश, और नंबर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आया है कि भाई नंबर क्या है, कौन है हमारे साथ। सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन भाई, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और नमाज के लिए अभी जा रहे हैं, अब पहुंच गए होंगे तो फिर नहीं सुन पा रहे होंगे, 666-22107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वहीं हमें कॉल करने के लिए 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं, 443-443-77। उमर अली हैं हमारे साथ, कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड, क्या हाल है? फुटबॉल के बारे में प्रोग्राम कब आएगा? प्रोग्राम क्या, हम आपके साथ हैं भाई, और आज रात मेरे ख्याल में 10 बजे से है मैच शुरू हो चुके हैं। आज तो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, बिल्कुल मेक्सिको का ही पहला मैच रखा गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है। हो सकता है कि मैं मेरी याद दहानी कोई करवा दे तो फिर मुझे सही याद आ जाए, वैसे जहां तक मुझे याद है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तौफीक भाई आ गए हैं, कहते हैं हाय हाय तौफीक भाई, हाय हाय, कैसे हैं आप? शहजादा सलीम साहब आ गए हमारे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड एफएम 107 पे सभी को, आपको भी वीकेंड मुबारक हो मेरे भाई। ओ हो, अस्सलाम वालेकुम, खूब सारे गुलदस्ते मुझे भेजे हैं, कौन है? मोहम्मद कलीम उल्ला वर्क है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने प्यारे गुलदस्ते और फूलों के लिए। यूसुफ भाई आ गए, कहते हैं आज की शायरी, आहा हा, आइए आइए आइए, इरशाद इरशाद। साए ढलने चिराग जलने लगे, लोग अपने घरों को चलने लगे, दूर होने लगी जर्स की सदा, कारवां रास्ते बदलने लगे। ओए होए होए, उसके लहजे में बर्फ थी मगर छू के देखा तो हाथ जलने लगे, फिर निगाहों में धूल उड़ती है अक्स, फिर आईने बदलने लगे। यूसुफ भाई, कल की भी शायरी बड़ी प्यारी थी और मुझे लगता है मैंने शेयर नहीं करी थी, क्या ऐसा ही है तो मुझे वो मिल नहीं रही, या मैंने पढ़ दिया था। एनी हाउ, आज की शायरी भी आपकी प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई जान, क्या हाल है? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो भाई, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका भी अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आपकी तो बातों में इतनी चाशनी के लोग शीर खुरमे को भूल ही जाते हैं। यार कितनी प्यारी बात कही है, मुझे खुद अपनी इस वक्त मीठे का एहसास होने लगा मेरे मुंह में। नदीम नजाकत है हमारे साथ, नदीम भाई बहुत ही प्यारे और बहुत ही शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। ओके, बढ़ते हैं आगे, खूब सारे मैसेजेस माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, घर का ओके, ये जवाब दे रहे हैं आज के टॉपिक के। हिशाम है हमारे साथ, हिशाम कहते हैं कि ये घर पे ही अपना जो खाना वगैरह है वो बना के और अपना वीकेंड गुजारना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहते हैं ऐसे ही लिखा है इन्होंने। कौन है हमारे साथ? रिफत है, रिफत भाई लॉन्ग टाइम। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सरोज भाई, लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं किया आपने, आए है क्या था भाई? हानिया जो आपसे बात की है उसकी क्लिप मिलेगी, प्लीज सेंड। अच्छा, ये हानिया के वालिद हैं अबरार भाई मुझे लगता है। यस यस यस, दिस इज
असल में इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर हमें कोई यहाँ से बाइट चाहिए होती है जो हम लोग बात कर रहे हैं तो लेट्स सी, वादा नहीं है, बट फिर भी अब्बा होने के नाते उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात आगे पहुँचाऊँ, इंशाल्लाह मुझे याद रहेगी तो ज़रूर। हमने भी चुना था कोई गुलाब छुपके से, मगर कांटों ने हमें राज खुलने ना दिया। ओए होए होए होए होए, मगर कांटों ने हमें राज खोलने ना दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हमारे साथ हैं सैयद खादिम साहब, बड़ी प्यारी शायरी करते हुए, और क्या क्या शायरी हो रही है भाई, क्या क्या इस वक्त बातें हो रही हैं, और इन्हीं बातों में बेहतरीन आप लोगों के लिए ये गाना, बहुत देर से इंतजार में थे। महमूद राघव और रुआ, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक माशूका। FM 107 पे इस वक्त सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्जा आपके साथ, दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: क्या कहने क्या कहने, राशा खुमारा एंजॉय कीजिए ये पश्तो सॉन्ग। भाई बहुत ही खास रिक्वेस्ट आई थी रूबी रजा की हमारे पास, आज जुमेरात है तो उन्होंने कहा सरवर भाई ये गाना भी जरा सा लगा दीजिए ताकि हमारी वीकेंड की वाइब्स जो हैं वो घूमने लग जाएं। तो भाई ये गाना है ही ऐसा कि हम सब सुन के घूमने और झूमने लग जाएं। ऑल द पश्तो भाई अराउंड, सुनिए ये गाना और अपने वीकेंड को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाइए। FM 107 पे सरवर मिर्जा आपके साथ दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सबके 12।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी
2: भाई, बिल्कुल वेट नहीं करवाऊंगा इससे ज्यादा। बहुत टाइम से हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है। हेलो, सलाम वालेकुम।
4: हाँ जी,
2: ओ शाह जी, अहलन व सहलन, वेलकम। गाबा भाई कैसे हैं?
4: बहुत बढ़िया सर भाई, यकीन मानिए ये जो आपका वीकेंड एडिशन होता है ना, जब ये स्टार्ट होता है ना, जब बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, बैंग बैंग मूवी का,
2: चलिए यार,
4: तो मेरा सरवर भाई दिमाग तो सीधा पहुंचता है, सीधा पहुंचता है मनाली और शिमले।
2: हाय हाय हाय हाय, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां ले गए तुम, कहां है मेरे साथिया?
4: उसका रीजन पता क्या है? ये मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा मनाली
2: वही शूट हुआ है। ओ यस यस यस यस यस यस यस, और बड़ी खूबसूरत जगह भी है यार, और मैं गया हूँ। आपका तो जाना हुआ ही हुआ होगा, खैर पूछना बेकार है, बट इतनी खूबसूरत और प्यारी जगह है कि वाकई जवाब नहीं। मैं जाहिर बात है क्योंकि एक ही बार जा पाया, मगर जब पहुंचा तो भाई सारी चीजें भूल गया। इतनी खूबसूरत जगह अपने आप में, दोनों ही जगह, शिमला भी, मनाली भी।
4: स्टडी के टाइम पे गए थे, जब स्टडी करने गए थे इंडिया?
2: जी, उसी दौरान जब मैं इंडिया रहा हूँ तो जितना भी घूम पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चंडीगढ़ भी गया था, और क्या प्लान्ड सिटी और क्या खूबसूरत जगह। और ये भी बात भाई 20 साल पहले की है, उम्र खुल जाएगी ज्यादा अगर बताऊंगा कितनी पहले की है, तो जबरदस्त यार, कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं। बहरहाल गाबा भाई, कैसा गुजरा अभी तक का दिन, कैसी हुई सुबह, और अब आगे के क्या प्रोग्राम?
4: जी बढ़िया सरवर भाई, अगर कभी मौका मिले ना, चलो मौका तो मिलेगा, नाजिया जी भी अपनी वेकेशन से थोड़ा फारग हो जाए,
2: वो भी अभी घूम रही है,
4: वो हिल स्टेशन पे तो जरूर जाएंगे मेरे को लगता है।
2: हाँ नहीं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि प्लान करते हैं हम लोग जब यहाँ से जाते हैं कि भाई फैमिली के साथ कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ जाके थोड़ा वक्त गुजरे, और जगह भी ऐसी हो कि जरा घूमना फिरना भी हो जाए, तो प्लान वैसे कभी कभार वहाँ जाने के बाद भी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है।
4: अगर पता क्या है सरवर भाई, जैसे हम लोगों को शिमला नजदीक है ना, बहुत
2: जी
4: ज्यादा दूर नहीं है, वैसे ही आप लोगों के लिए नैनीताल बहुत कम,
2: बहुत बहुत बहुत, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत नजदीक है, नैनीताल हो गया, इवन मसूरी भी अगर हम बात करें, रानीखेत है, रानीखेत है, ये कुछ जगहें ऐसी हैं कि करीब करीब हैं और हम पहुंच जाते हैं वहां पर जब भी प्लान बनता है। बहरहाल यार, बड़ी जगहें आपको भी याद है और आप घूमे फिरे बहुत हैं, ये एक बड़ी जबरदस्त बात है गाबा भाई की। गाबा भाई, आज का मुद्दा भी थोड़ा सा इस हवाले से था, कुकिंग के हवाले से, तो यूजुअली बाहर का खाना, घर का खाना, खुद पकाना या फिर दूसरों से पकवाना?
4: मैं उसी से कंटिन्यू करता हूँ, मैंने बोला ना नाजिया जी वेकेशन से फारग हो जाएं और आप भी थोड़ा फारग हो जाओ
2: जी।
4: आपको और नाजिया जी को ना जो लस्सी से कड़ी बनती है ना सर, फ्रेश पकौड़े डाल के, वो जरूर खिलाना।
2: कोई शुएब थे शायद, वो भी जिक्र कर रहे थे आज, कड़ी सबको याद आ रही है। ओके ओके, चलिए इंशाल्लाह ताला जरूर।
4: सर या पाकिस्तान वाला पंजाब है या हमारे वाला पंजाब है
2: जी,
4: तो वहाँ पे आपको पता है लस्सी तो इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो फ्रेश वाली होती है,
2: उसके बगैर तो बात ही नहीं होती।
4: यूपी में भी बहुत है, यूपी है,
2: बिल्कुल बात ही नहीं होती भाई,
4: तकरीबन हर जगह।
2: गर्मियों में तो डेली शाम में चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके लस्सी का तो
4: बिल्कुल बिल्कुल
2: चाहिए ही चाहिए, तो कभी आपके हाथों की भी
4: पियेंगे जी। जी बिल्कुल, उससे ऊपर वाली एक चीज है ना जिसको छाछ बोलते हैं हम लोग,
2: छाछ, बिल्कुल भाई, अरे
4: वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी राजस्थान में।
2: हाँ ओके ओके, हाँ क्योंकि जाहिर बात है गर्म जगहों पे ज्यादा यूज होता है भाई, छाछ हो गई, पन्ना समझते हैं पन्ना?
4: सर मैंने पिया जरूर होगा, मगर मेरे को अभी
2: आम का बनता है, आम का बनाते हैं,
4: आम का,
2: हाँ आम का बनाते हैं, छाछ हो गया, पन्ना हो गया, और भी आसपास की ही चीजें हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जो नाम अलग है मगर हैं करीब करीब की, और गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद है भाई, पेट वगैरह के लिए गर्मी के हिसाब से बड़ा फायदेमंद है ये सारी चीजें। तो अगर
4: भाई आपको दो चीजें जरूर खिलानी है, एक तो साग, जो फ्रेश वाला होता है खेतों का, और एक ये कड़ी, लस्सी वाली कड़ी।
2: इंशाल्लाह यार, जरूर आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे ही जब भी मौका लगेगा तो जरूर इंशाल्लाह ताला खाएंगे। आप अपने हाथों से बनाते हैं?
4: सर मैं नहीं, वाइफ। कंट्रीब्यूशन रहेगा।
2: जब भी तो पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल, बच रहे हो गाबा भाई? क्या मतलब कुछ भी नहीं बना पाते गाबा भाई? नथिंग?
4: नहीं नहीं सर, मैं बना लेता हूँ। एक्चुअली ना मेरे खाने में क्या बोला जाए, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, एक फीमेल के हाथ में बरकत होती है ना।
2: नहीं यार वो तो
4: जो टेस्ट होता है वो नहीं होता सर मेरे हाथ में, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया।
2: तो आप एक काम करा करें, जब आप पूरा खाना तैयार करते हैं ना, तो फिर भाभी से आखिर में उसमें भगार वगैरह लगवा लिया करें, तो खाना भी बन जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। चलिए साहब बहुत ही बढ़िया, और कुछ शेयर करना चाहते हैं गाबा भाई?
4: और बस वही आप पूछ रहे थे भी बाहर का खाना पसंद है या घर का पसंद है।
2: जी
4: सरवर भाई, अगर बात तो वेजिटेबल्स की हो, फ्रेश सब्जियों की, तो वो तो घर पे ही पसंद है जी।
2: ओके ओके,
4: अगर नॉन वेज खाना हो तो वो फिर बाहर से,
2: फिर रेस्टोरेंट से,
4: वो 100% बाहर से।
2: अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, चलिए ये भी अच्छी बात है। चलिए साहब गावा भाई, अब आज सही वक्त पे आई है तशरीफ, क्योंकि आज तक आपने हिस्सा नहीं लिया तीन का दम में, मुझे मालूम है, और अब आपके साथ तीन का दम निकाला जाएगा। ठीक है
4: सर्वर भाई, यार आप कुंडी से बताते हो यार, बंदा निकल ही नहीं जाता यार। कभी कभी मच्छी भी, अगर हम लोग मच्छी को भी कांटा डालते हैं ना, वो भी निकल जाती है उस कांटे से।
2: नहीं नहीं
4: यार, आपके पास कौन सा कांटा है सर्वर
2: भाई? भाई वेरी इजी फॉर यू, वेरी इजी, सभी के लिए इजी।
4: नहीं नहीं, वो मेरे को कोई वो डर नहीं है खेलने का सर, मेरे को अंदर से ही नहीं होता खेलने का, वो डर नहीं है कोई, अगर आप बोलो डर है।
2: नहीं, इट्स नॉट अबाउट डर, मगर हाँ, मगर आपसे शायद हमें उसका जवाब मिल जाए, बस ये है। ठीक है, बहुत आसान से तीन क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला आप आराम से जवाब दे देंगे। शुरू करते हैं।
4: ओके,
2: ठीक है, बहुत ही आसान। बर्फ गर्म होती है या ठंडी?
4: बर्फ की तस्वीर गर्म होती है, वैसे ठंडी होती है जी।
2: ओके, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
4: 7।
2: वेरी गुड, आपके पास अगर 5 आम हैं, 2 दे दिए आपने, तो आपके पास कितने आम बचे?
4: मेरे पास 5 आम हैं, 2 किसको देने हैं जी?
2: किसी को भी दे दिए।
4: मेरे पास 5 आम हैं, 2 दे दिए, तो कितने बचे हैं?
2: बिल्कुल
4: यार सर्वर भाई, फंसा लिया यार आपने।
2: क्या फंसा लिया? आप जवाब तो
4: इसका सिंपल तो जवाब सिंपल नहीं होगा, मेरे को पता है, ये जितना देखने में सिंपल लग रहा है क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं होगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा दूसरा दूसरा, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है जहां 11 में आप अगर 2 जोड़ते हैं या आपसे जुड़वाए जाते हैं तो 1 आता है?
4: 11 में अगर 2 जोड़ते हैं, यार सर्वर भाई फिर फंसा लिया यार आपने।
2: नहीं नहीं, सोचिए गाबा भाई, इसका जवाब आपको मिल जाएगा।
4: 11 में 2 जोड़ते हैं, 1+1
2: नहीं नहीं, ऐसे वाला नहीं, वाकई 11 में जब आप 2 जोड़ते हैं तो जवाब 1 आता है यार उसका। ये तो 11 आ रहा है ना, 1 आना चाहिए
4: यार सर्वर भाई, नहीं पता, मैं इतना बोझ नहीं डाल सकता।

0: वैसे भी कहना क्यों परेशान कर रहे हो सरवर भाई इस वक्त भरी दोपहरिया में।
1: पहचान वाली बात नहीं है, पहचान वाला तो कोई मसला नहीं, मगर इतना है आपने भाई फंसा लिया मेरे को।
0: नहीं इंशाल्लाह ताला अब इसका जवाब आप सोचिएगा, इंटरनेट पे कोई भी चेक नहीं करेगा, सभी से मेरी गुजारिश भी है और सबको कह भी रहा हूँ कोई भी भाई नेट पे नहीं चेक करना जितने भी सवाल होते हैं, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। बहरहाल हमारे साथ गावा भाई थे, प्यारे प्यारे गावा भाई, और जिनको मैंने बहुत सताया, बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई, आज आप तशरीफ लाए और प्यारी प्यारी बातें भी करी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फैमिली को हैप्पी वीकेंड, आपको हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।
1: जी सरवर भाई, आपकी भी पूरी फैमिली को, नाजिया जी को और सभी सुनने वालों को,
0: थैंक यू,
1: हैप्पी वीकेंड, टेक केयर सर।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके तो साहब तीन का दम अब शुरू हो चुका है, हल्की आंच पे हमने पतीला रख दिया है और दम जो है इस वक्त निकल रहा है, हल्के हल्के पका रहा है मुझे भी आपको भी। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या उवैस भाई आ गए वापस?
2: जी।
0: अरे यार देखिए, आप कहते कि हमारा फोन नहीं लगता, हम फोन नहीं उठाते, क्या क्या इल्जाम तोहमते हमारे ऊपर लगाई गई।
2: अरे गावा भाई जी आप बात कर रहे थे तभी मैंने सोचा ये रखने वाले हैं, तुरंत मिला दे।
0: मगर देखिए जितनी भी तोहमतें थी मेरे ऊपर और जितने भी इल्जामात थे आज वो अपने सारे जो हैं खत्म हो गए, क्योंकि आपसे आज दोबारा बात हो रही है।
2: दोबारा हम मिला रहे थे जब हमने काटा था उस टाइम, हम मिला रहे थे फिर बेटी से बात करने के लिए।
0: अल्लाह ताला खुश रखे, आपकी आंखों की ठंडक बनाए।
2: आपको मिला के कॉन्फ्रेंस कॉल इंडिया मिलाएंगे बेटी से बात करने।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, चलिए इंशाल्लाह ताला ऐसे
2: तो अभी भी हो सकती है,
0: ऐसे भी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। आप कभी उनको पहले मिला के कनेक्टेड रहिए और उसके बाद इंशाल्लाह हम भी ज्वाइन कर लेंगे।
2: पहले हमने मिलाया था, फिर हम आपको कॉफी
0: याद आ रही है, कॉफी कॉफी ला दो भैया, लंच नहीं हुआ अभी, कॉफी याद आ रही है,
2: अभी लंच नहीं हुआ,
0: अभी लंच नहीं हुआ। अरे माजरत माजरत, चलिए तो बाबा आ गए तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं, रेडी हैं?
2: जी जी बिल्कुल,
0: हमेशा की तरह
2: बिल्कुल इंशाल्लाह।
0: पंखा की तरह, पंखा हवा देता है या पानी?
2: हवा।
0: ओके पक्की बात है?
2: जी बिल्कुल।
0: चलिए ठीक है, कमीज पहनी जाती है खाई जाती है?
2: शर्ट,
0: हाँ हाँ शर्ट या कमीज, या सही फूक फूक के कदम रख रहे बताइए, कमीज पहनी जाती है या खाई जाती है?
2: पहनी जाती है।
0: चलिए वेरी गुड, ये नहीं आपने सही जवाब दिया यार, ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त जवाब दे दिया। ओके उवैस जो है मई में पैदा हुए, लेकिन उनकी बर्थडे जो है अगस्त में आ रही है।
2: कौन?
0: उवैस।
2: उवैस
0: उवैस जो है मई में पैदा हुए हैं, उनकी बर्थडे अगस्त में कैसे आ रही है? चार महीने बाद बताइए। पैदा ही चुके चार महीने बाद बर्थडे आ रही है, तो कैसे हो रहा भाई?
2: ये आप इतने डिफिकल्ट क्यों पूछ रहे
0: यकीन जानिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस मैंने घुमाया है थोड़ा सा आपको और
2: पैदाइश हुई।
0: अच्छा आपको ये बताइए, वो हरा वाला मिला अभी तक जवाब या नहीं?
2: नहीं मिला, नहीं मिला।
0: अभी दूसरा और तैयार कर दिया, बताइए ये क्या
2: वो, एक तो ढूंढ नहीं पाया, दूसरा वाकई।
0: मगर आपकी मोहब्बत और सादगी इतनी अच्छी है यार कि आप इंटरनेट पे वाकई नहीं ढूंढते और लगे रहते हैं जद्दोजहद में, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड, इसका भी जवाब सोचिए, जरूर मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र रहिए।
2: मई में या मई में
0: हाँ
2: पैदा हुए,
0: पैदा हुए बताइए। तो कैसे हो रहा है
2: ये, कैसे हो सकता है भाई?
0: चलिए उवैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, दिल नहीं चाहता कि फोन रखें, दिल चाहता बात करते रहें, और भी लोग वेटिंग में हैं। नहीं जवाब ऐसे नहीं बताऊंगा, या तो कोई और बताएगा या फिर मैं पूछता रहूं।

0: चलिए साहब, तो रेडी हैं तीन कदम खेलने के लिए?
1: खेलेंगे।
0: चलिए साहब खेल लेंगे, तो ठीक है शुरू करते हैं आपके साथ। आज जुमेरात है तो कल क्या हो सकता है?
1: आज जुमेरात है तो कल जुमा हो सकता है।
0: कैसे पता आपको? कल के बारे में पता है आपको?
1: वही तो, एक पर आज का सवाल के हिसाब से कल जुमा हो सकता है, पता तो किसी को भी नहीं है।
0: आज तो जवाब तो यही हुआ कि कल का तो किसी को पता नहीं है।
1: अच्छा, कल का किसी को पता नहीं है।
0: अरे भाई, पहले ही सवाल में आज आप पकड़े गए। अच्छा चलिए, नहीं थोड़ा सा
1: तो सीधा
0: ओके। मोबाइल से कॉल करते हैं या रोटी बनाते हैं?
1: मोबाइल से तो कॉल ही करते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है। ओके, समंदर का पानी मीठा होता है या खारा?
1: खारा होता है।
0: अगर एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं, उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है?
1: बिल्ली का नाम क्या है? बिल्ली का नाम बिल्ली है।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नाम है उसका, जैसे जनवरी फरवरी मार्च है, बिल्ली का नाम क्या है? तो जवाब दीजिए, बिल्ली का नाम क्या है?
1: बिल्ली के नाम मंथ है।
0: क्या है? मंथ
1: महीना।
0: कितनी प्यारी लगे के बुलाते हुए। हाँ भाई, महीना, इधर आओ इधर आओ, महीना इधर आओ, अपना खाना खा लो।
1: महीने के नाम उनके बच्चे के ऊपर है तो उसका नाम महीना होगा।
0: नहीं ऐसा नहीं है, मगर मैंने आपको जवाब बताया भी अभी, तो सवाल में ही जवाब छुपा है।
1: एक बिल्ली का नाम, तीन बच्चे हैं, एक का नाम जनवरी, दूसरे का नाम फरवरी, तीसरे का नाम मार्च।
0: बिल्कुल, बिल्ली का नाम क्या है?
1: बिल्ली का नाम फिर एक
0: क्या है?
1: वन।
0: यार आरिफ भाई बहुत मजे के हैं आप, माशाल्लाह मजे जितने ले रहे हैं आप, अपना जवाब देखे वो एक अच्छी प्यारी बात है। चलिए थोड़ा सा सोचिएगा आरिफ भाई, और याद आ जाए तो फिर इंशाल्लाह मुझे बताइएगा, या तो व्हाट्सएप पे या फिर दोबारा तशरीफ लाइएगा। ठीक है,
1: ओके,
0: हैप्पी वीकेंड आरिफ भाई।
1: आपको भी, हमारा तो काम है, आप दो दिन का वीकेंड मनाइए।
0: अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे, और जब भी आपकी छुट्टी होती है अल्लाह ताला उसमें आपको खूब सुकून और आराम दे, यही दुआ है मेरी। ओके भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये थे आरिफ भाई, और यहाँ सलाम रहमतुल्लाह, कौन है हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। नाम तो बताइए भाई।
2: आप बताइए सरोज जी, कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले जब तक नाम नहीं बताएंगे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, यादव साहब।
2: क्या बात कर रहे
0: हैं? ये शुरू शुरू में जो आते हैं ना, बिल्कुल अलग सी एक आवाज हर बार निकालते हैं, ये है बहुत ही प्यारी चीज आपकी। क्या मिमिक्री कर लेते हैं? आवाज तो मैंने वैसे ही बताया कि आपकी बड़ी खूबसूरत है, है ना मिश भाई? मिमिक्री भी कर लेते हैं, कुछ आवाज वगैरह निकाल लेते हैं, किसी की कॉपी कर लेते हैं?
2: नहीं, सर, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, बस ऐसे जैसे लगता है आपको, ऐसी कोई बात नहीं।
0: आवाज आपकी बड़ी ही प्यारी, माशाल्लाह। खैर चलिए, आ गए हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। कैसा गुजरा अभी तक का दिन, कैसा हुआ आज सवेरा?
2: ठीक है आज तो,
0: और अभी तक आते आते लंच हो गया?
2: बेटर सर जी, बस अभी गाड़ी तो इस्तेमारा में था, करवा के आया अभी।
0: मबरूक मबरूक, हो गई सब, खैर है इंशाल्लाह?
2: नहीं सर, थोड़ा सा,
0: अच्छा थोड़ा सा चीजें
2: हो गई,
0: तो अल्लाह ताला भाई आसानी करे, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हम सभी की एहतियात के लिए, रोड पे दूसरे यूज़र्स जो हैं, जो दूसरे सफ़र कर रहे हैं, सभी के लिए एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मुकम्मल कराएं, और दुआ यही है। तो चलिए साहब, आज हमारा सवाल भी था कुछ खाने पकाने के हवाले से, कुछ पका लेते हैं
2: जी? सर ए टू जेड जो दिल कहिए बताइए, बना के खिला दें आप।
0: क्या बात है, तो वीकेंड पे ऐसी होता है, खुद ही पकाना पसंद करते हैं या फिर बाहर का कुछ सोचते हैं?
2: नहीं सर, मैं बाहर का नहीं, मैं वीकेंड पे जो दिल करता है खाने का मैं अपना बना लेता हूँ।
0: अच्छा माशाल्लाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज तो सारे ही माशाल्लाह बड़े क्या होता है वो, एक लफ्ज है ना, सुगड़ लोग हमारे पास आए, जिन्होंने बहुत सीखा हुआ है हर तरीके से, क्या बात है यार। चलिए तो तीन के दम के लिए रेडी?
2: एकदम सर, बिल्कुल। चलिए,
0: क्या बात है यार, तैयार होके आए हैं आज तो, रात होके एकदम है,
2: नहीं,
0: मांग निकाल के उल्टे हाथ की।

0: चलिए साहब, बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
1: स्कूल।
0: पक्की बात है?
1: 100%।
0: आंखों का काम देखना है या चलना?
1: बिल्कुल सर, देखना
0: देखना है। देखिए फिर सोच लीजिए, ऐसा मत कहिए।
1: नहीं नहीं, देखना ही है ना, देख के तो चलेंगे ना।
0: अच्छा चलिए, देख के ही चलेंगे। वो ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? आपसे ये जवाब मिला नहीं है मुझे।
1: नहीं नहीं, ये आप एक बार और पूछे थे।
0: हाँ, अभी तक नहीं मिला।
1: पूछे थे आप, मैं ढूंढा ही नहीं ना मैं कभी। तो मैं तो जो आप पूछते हैं, अगर आ गया जहन में कोई चीज बैठा बढ़िया से तो।
0: अच्छा चलिए, उसको बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जमा होते हैं तो फिर 1 होता है?
1: 11 में 2 जमा होते हैं तो
0: 1 हो जाता है।
1: तो उसमें आई थिंक, मेरे ख्याल से 11 महीना प्लस 2 करेंगे तो 1 महीना आ जाएगा।
0: 11 तो खुद है ही ना, 11 में 2 जोड़ेंगे तो फिर तो आगे निकल जाएगा ना मामला। 11 में
1: 11
0: हाँ जी
1: 11 में 2 जोड़ेंगे तो
0: जब 1 आएगा। हाँ 1 आएगा,
1: में 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल पूछ रहे हैं बल्द। मेरे दिमाग में तो यही था कि मतलब 12 महीना होता है, तो 11 महीने में दूसरा महीना प्लस करेंगे तो 13
0: हो गया। ना तेरा है ना मेरा है, इसका जवाब कुछ और ही है यार।
1: ढूंढते हैं, आज ढूंढेंगे जरूर,
0: आज ढूंढेंगे कि कैसे आ रहा है ये 1 बच कैसे रहा है, मुझे ये बता दे कोई किसी तरीके से।
1: वही 11 में 2 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा।
0: थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा जोर डालिएगा और जवाब मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है?
1: बहुत बहुत शुक्रिया, व्हाट्सएप करता हूँ।
0: हैप्पी वीकेंड, खूब एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को और हमें भी याद रखिए दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई रमेश,
1: इंशाल्लाह आपको सलामत रखे जी।
0: आमीन, थैंक यू सो मच। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीनो हजरात, क्या कहते हैं यार, एक ब्रेक ले ली जाए और गाना तो सुनना बनता है। वापस आने, ओह यस, के अभी मिस हो जाता यहाँ पर। एक बर्थडे विश जो पेंडिंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बताऊँ। और कौन थे, मोहसिन साहब हैं हमारे साथ जो विश करते हैं अपनी भतीजी को, और नैना नाम

0: चलिए साहब, तो यहाँ से अब बढ़ेंगे आगे और सुनते हैं एक बड़ा खनकता हुआ गाना सुनंदा शर्मा की आवाज में। बड़ी प्यारी आवाज है इनके, बड़े अच्छे गाने भी गाती हैं।
1: ओ मेरा पहला प्यार तुझे, तुम्हें जानता
0: पते की बात बता रही है, सुनिएगा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
4: Gen Z ki dictionary mein ek word hota hai, FOMO. Feeling of missing out. Yani एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: जनाब इस गाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि आप शांत हो जाएं, बस थोड़ी सी वाइफ जो है वो अपनी जगह बनी रहे।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हां जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड। उम्मीद करता हूं कि सब अपने अपने वीकेंड की अच्छी सी प्लानिंग कर रहे होंगे और क्या क्या करना है, क्या क्या होना है, ये सारी चीजें भी अपने तैयारियों में शामिल कर रखी होंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरवर भाई, क्या हाल चाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
2: जी, अदील बात कर रहा हूँ।
0: अदील, ओके, अदील भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अदील भाई, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और यही उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी। कैसा गुजरा अभी तक का दिन, कैसा चल रहा है थर्सडे?
2: जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जोरों शोर से चल रहा है और गर्मी का टेम्परेचर भी 48 पे आ गया, गाड़ी बता रही है।
0: अल्लाह ताला सबको जमान में रखे भाई। अब इसी के साथ ये मैसेज भी कि सब अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहिए, जो भी ड्रिंक्स वगैरह हो, स्पेशली पानी ऑब्वियसली जब जहाँ पे भी है तो वो ज़रूर पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि गर्मी है तो खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी है, बहुत सारा काम भी। तो अदील भाई के थ्रू ये मैसेज सभी को जा रहा है, ख्याल भी रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, इंशाल्लाह खैर होगी। तो अदील भाई रेडी हैं तीन कदम खेलने के लिए? जी, कुछ कह रहे थे?
2: जी, इंशाल्लाह
0: बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए आपसे वही सवाल पूछ लेते हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं हमें। पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
2: पेन से लिखते हैं सर।
0: सूरज दिन में निकलता है या रात में?
2: सूरज तो दिन में निकलता है।
0: दिन में निकलता है
2: जी।
0: अगर तीन बिल्लियां तीन चूहों को 3 मिनट में पकड़ेंगी तो 100 बिल्लियां 100 चूहों को कितने मिनट में पकड़ेंगी?
2: अब वो पहले वाला सवाल पूछे ना मुझसे जो इससे पहले।
0: उसकी तैयारी करके आए थे।
2: नहीं, तैयारी नहीं, मैंने

0: अच्छा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा सवाल था, मुझे याद भी तो नहीं रहता, इतने सवाल चल रहे हैं।
1: इससे पहले वाला आपने पूछा था ना, 111 वाला, मतलब 11 करके।
0: और थोड़ा सा बताएं।
1: इससे पहले आपने पूछा था ना 11 कितने, मतलब
0: ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 11 में 2 जोड़ते हैं तो 1 आता है, ये वाला सवाल।
1: जी जी ये वाला।
0: अच्छा मालूम है इसका जवाब, तो चलो बता ही दो यार। हाँ पूछा ना, पूछ लिया यार। टेक्निकली पूछ लिया, अब बता दो इसका जवाब, अब तो बता दो।
1: जनवरी होगा,
0: 1 जनवरी। अरे नहीं यार, मैंने कहा शायद जवाब लेके आए होंगे अभी। नहीं नहीं वो तो कौन वैस भाई थे हमारे शायद, तो वो भी यही कह रहे थे। नहीं और सोचिए।
1: ये नहीं है,
0: ये नहीं है, मगर अच्छी बात ये है कि आप सोच के आए हैं, इसके आपको पूरे नंबर है मेरे भाई को, पूरे नंबर। और चलो और पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है?
1: पैदा होते ही उड़ने लगती है
0: जी।
1: वो मतलब कि कुछ परिंदों में आएगा
0: है?
1: वो कुछ परिंदों में आएगा।
0: यार मैं अब इतनी बात बता दूंगा तो फिर तो जवाब मिल ही जाएगा आराम से।
1: थोड़ा सा हिंट तो देना।
0: मतलब ये लगा लिए कि पैदाइश से ही उड़ने लगती है वो चीज, दिखती ही उड़ती है अगर पैदा हुई है तो, ऐसे समझिए।
1: अच्छा, पैदा होते ही उड़ने लगती है।
0: यार देखो अब तो यार तीन सवाल हो गए यार आदिल भाई, इनमें से एक का जवाब तो अब ढूंढ के लाना पड़ेगा, ये चैलेंज हो गया। ठीक है संडे में इसका जवाब देना एक ना एक का, मगर इंटरनेट पे नहीं ढूंढना, ओके? दोस्तों से पूछ सकते
1: हैं। नहीं इंटरनेट में नहीं, मैं दिमाग से सोच रहा हूँ अगर कुछ।
0: वेरी गुड, यही है वो एक्सरसाइज ज़हन की जो हमें करनी है। चलिए यार आदिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहब्बत नवाजिश, और पानी जरूर पीते रहिएगा यार, गर्मी बहुत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना भाई, है ना
1: जी? इंशाल्लाह
0: पानी वगैरह
1: अपना ख्याल रखिएगा, पानी वगैरह खाना वगैरह खाते रहिएगा।
0: जरूर मेरी जान, अब तो आपने कहा है तो डबल खाऊंगा आज, देखो छोड़ूंगा नहीं।
1: जी इंशाल्लाह।
0: ओके ओके बाय। ये थे हमारे प्यारे प्यारे आदिल भाई, और भाई वाकई गर्मी हो रही है बाहर, और सभी लोग अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। ओके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है भाई, और आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस गर्मी ज्यादा है।
0: हाय गर्मी। ओए होए गर्मी वाकई ज्यादा है, तो गर्मी को पिछाड़ने के लिए क्या कर रहे हैं?
2: अभी तो फिलहाल ऑफिस से ब्रेक हुआ है, बस जा रहे हैं घर।
0: अभी ब्रेक हो गया? अच्छा ब्रेक में घर जा रहे हैं अभी? खाना वगैरह खा के वापस आएंगे?
2: खा के फिर वापस आएंगे।
0: क्या बात है यार।
2: मेरा नाम अब्दुल कादिर है।
0: अब्दुल कादिर भाई, अहलन वसहलन, क्या पहली बार बात हो रही है आपसे?
2: जी फर्स्ट टाइम बात हो रही है। पहले वेद भाई के कुछ प्रोग्राम आते थे उस टाइम में करते थे, वो गाना उना टाइप था,
0: तो पहले तशरीफ लाए थे, अब दूसरी बार तशरीफ ला रहे हैं, तो सुनते हैं FM 107 को, प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं?
2: जी प्रोग्राम तो मेरा फेवरेट स्टेशन ही 107 है, मेरा ज्यादातर कार में वही बजते रहता है।
0: अच्छा,
2: तो जब भी मैं इस टाइम पे जाते रहता हूँ तो आपका प्रोग्राम आते रहता है।
0: अच्छा मुझे सुनते हैं, मेरा नाम जानते हैं?
2: हाँ जी, नाम मैं भूल गया।
0: पकड़ लिए अब्दुल कादिर भाई को।
2: नहीं प्रोग्राम तो मैं डेली सुनता हूँ, प्रोग्राम मैं डेली सुनता हूँ।
0: चलिए आप FM 107 के साथ कनेक्टेड हैं, यही मोहब्बत है।
2: हाँ।
0: और अब नाम जब अगली बार आपको पता चलेगा तो मुझे जरूर बताने आइएगा, ये आपका दूसरा टास्क है, ठीक है?
2: अभी तो आप लोग नंबर भी चेंज कर दिया, पहले कुछ दूसरा नंबर था आप लोग
0: का। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं यार ये तो काफी टाइम से यही नंबर है। वही है ना, वो 666-22-107 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है अब्दुल कादिर भाई, उस पर सिर्फ मैसेजेस लेते हैं हम लोग, उस पर आप कॉल करेंगे तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। कॉल कनेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए ऑन एयर लाइव तो नंबर यही है 443-443-77।
2: जी ये मुझे कल ही आपने बोला था, एक इनिंग मिलेगा।

0: ऑलमोस्ट 1245 हो चुका था उस टाइम में बोला था, तो मैंने फिर नोट किया, तो मैं कल भी ट्राई किया, कल तो ऑलरेडी टाइम हो चुका था।
1: चलिए यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े हुए हैं, बस हाँ
0: बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप नाम बता देंगे तो वो देता रहेगा।
1: अरे ये टास्क है आपको नाम ढूंढ के लाना है नाचीज का, ठीक है?
0: नहीं, अच्छे प्रोग्राम देखे।
1: कई दिनों से मैं भी अपने आप को ढूंढ रहा हूँ यार।
0: फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग का बहुत इजी रहता है, थर्ड में थोड़ा दिमाग घुमाता है, वो अच्छा है।
1: चलिए तो फिर रेडी हैं
0: जी। मैंने आपका प्रोग्राम लास्ट टाइम सुना था मालूम, वो मन में है, दिल में है, पर धड़कन में नहीं वाला। वो हम लोग बचपन में जब भी स्कूल में वो क्विज होती थी ना, तो हम लोग वही रखते थे कि भाई बोलो, मन में है, दिल में है, पर धड़कन में नहीं है।
1: उस वक्त आप
0: तो एकदम घुमाता था, तो उस दिन मैंने कॉल ट्राई किया, बट नंबर वही 107 वाला था मेरे पास।
1: अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो उसपे आप अपना वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए, रेडी है?
0: जी रेडी है।
1: केला पीला होता है या नीला?
0: पीला।
1: पीला। जूता पैर में पहनते हैं या सर पर?
0: जूता पैर में ही पहनते हैं, कभी कभी सर में मारते हैं।
1: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ढाई नंबर दे दिया मैंने आपको अभी तक, ढाई नंबर दे दिया।
0: हाँ। और ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी चेहरा पीला भी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: और नीला भी होता है।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: ब्लू बनाना भी होता है।
1: ब्लू बनाना भी होता है। मैंने कहा कि चलिए बताओ नहीं ज्यादा। चलिए भाई, अभी बताइए कि बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली भी करता हूँ। अब्दुल कादिर भाई, कुछ और सोच के आए थे?
0: एक बार फिर रिपीट करेंगे क्वेश्चन।
1: बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, घर की रखवाली भी करता हूँ।
0: घर खुद हो सकता है?
1: नहीं, ये तो घर के अंदर की तो बात हो रही है, मेहमान है ये, कोई घर की तो बात ही हो रही है।
0: मुझे तो वही घर ही लग रहा है, तो घर का छत रूफ हो सकता है।
1: कादिर भाई का सही जवाब आ गया है, सलूट कादिर भाई, वेरी गुड। नहीं, मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, तो मैं देखता रहता हूँ कि किन किन ने सही जवाब दे रहे हैं। लोग खूब सारे मैसेजेस हैं, मैं माजरत चाहता हूँ भाई कि शेयर नहीं कर पाऊंगा। मोहम्मद भाई का भी सही जवाब है, पहले के भी क्वेश्चंस का। खैर, एनी हाउ, अब्दुल कादिर साहब आप तशरीफ लाए। जर्रा नवाजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा नाम भी नहीं बताया, मायूस कर दिया आपने मुझे। जो है रात वाले अरे अरे अरे सर, तो बस ठीक है, अब नाम ढूंढ के लाइएगा। अब अगला काम ये है, जब दोस्ती पक्की होगी।
0: मेरा आंसर सही था थर्ड वाला,
1: वरना कच्ची कच्ची रहेगी। नहीं, ठीक नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा।
0: ओके,
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: चलिए, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके भाई, ओके ओके। तो ये थे अब्दुल कादिर साहब, और एकदम ताज़ी पहली निकाली मैंने इनके लिए भी। तो जनाब, यहाँ पर कुछ मैसेजेस, कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों के नाम तो मैं ले ही लूँ, क्योंकि वॉइस नोट्स वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं। ओहो ओके, रिफत हैं हमारे साथ, कहते हैं भाई राजा हिंदुस्तानी मूवी याद आ गई। और रिफत ने, यार रिफत भाई, भाई क्या ही तारीफ करी है मेरी, और मैं क्या कहूँ कि मैं कह भी नहीं सकता हूँ। आपने तो शर्मिंदा कर दिया मुझे यार रिफत भाई, गुड, अच्छा है। कुछ ऐसी तारीफ करी जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मगर तारीफ कर रहे हैं, चलिए ऐसे भी सही। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, मकसूद हैं हमारे साथ, so scared about your age. अच्छा, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, why you are so scared about your age? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नवेद, हाँ बिल्कुल, एक सवाल पूछा गया था तो नवेद ने उसका सही जवाब दिया। कहते हैं बाहर का खाना स्वर्ग का टिकट, घर का खाना अम्मा के इमोशनल धमाके। बाहर जाओ तो बिरयानी बोलती है, आजा बेटा, घर पे रोटी बोलती है, मैं भी हूँ यहाँ। हैदराबाद स्टाइल लाइफ, पेट भर गया, घर याद वॉलेट खाली घर याद. क्या बात है यार, ये मैसेज अहमद मुस्तफा खान ने बड़ा ही क्रिएटिव मैसेज भेजा है. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम सर भाई, हैप्पी वीकेंड कहते हैं. सुहेल हमारे साथ यहाँ पर कौन है, नाम भी मुझे पढ़ने में इस वक्त मौका नहीं मिल रहा है. दूसरा मैसेज एहतशाम है हमारे साथ. मैसेज किसी और का पड़ा, नाम किसी और का. एहतशाम का भी जवाब सही है. और कौन है, मैं अब जल्दी जल्दी नाम ले लेता हूँ. अब्दुल मतीन है हमारे साथ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है. यहाँ पर कोई चैंपियन भी हमारे साथ जुड़ेंगे. मोहम्मद जहीर, हाँ जहीर भाई ये वाला जवाब आपका सही था. ये लोग कॉल पर नहीं होते हैं तो फिर बच जाता है मेरा सवाल. सैयद अबरार अशरफी हैं जिन्होंने कोई वॉइस नोट भेजा है. बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई. यहाँ पर ओवैस भाई ने भी कुछ वॉइस नोट भेजा है, तो चलिए ये भी मैं सुनने की कोशिश करूँगा. ओ यस जासिम, सही जवाब है, सही जवाब है जासिम का. यहाँ पे भी कोई नए नए तशरीफ लाएँ. जाहिद भाई सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया. वॉइस नोट है, एक और सुन नहीं पाऊँगा, नाम आपका बता दे रहा हूँ. हारून अकबर अवान साहब हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई. पाकिस्तान से मैसेज आया भाई, लंबा मैसेज है. सलाम कहते हैं, सलाम के साथ नाम अदा. सलमान फारूकी हैं. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सलमान बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं. खादिम भाई का सही जवाब रमेश यादव. ओ यस रमेश भाई, कामयाबी, क्या बात है. ओके ये कौन है, अब्दुल कय्यूम फैजी. सही जवाब अब्दुल कय्यूम का. अस्सलाम वालेकुम सर, और ये है जवाब. हाँ यार सही है यार. फाहद सिकंदर हमारे साथ. चलिए भाई अब ये मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा. यहाँ पर एक चैंपियन. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो,
2: कैसे हैं सर भाई?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है. और कौन है हमारे साथ?
2: अभी सही आ रही है भाई.
1: ये जी जी अब बेहतर है, बेहतर है. क्या नाम बताया भाई ने?
2: नाम मुदस्सिर है मेरा.
1: ओ मुदस्सिर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. आपका शो जब आता है ना समझ लीजिए कि ईद और बकरीद की याद आ जाती है.
1: क्यों भाई, ऐसा क्या है? खाने पीने की बात हुई इसलिए.
2: ये तो ठीक है, बस अब आप जिस करिए कि क्यों ऐसा होता है.
1: ओहो यार ये तो आपने मुझसे सवाल इस वक्त खतरनाक कर लिया.
2: चले टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ. इसलिए याद आ जाती है क्योंकि दिन भर इतने सारे शो होते हैं, उनमें अगर कॉल लगाने की जरूरत हो तो बस एक बार डायल करो लग जाता है. यहाँ पे 15-20 कॉल करो फिर भी कनेक्ट नहीं.
1: अरे मेरे भाई बस वो थोड़ा सा सताता रहता हूँ ना, तो लोग मुझे भी सताने की कोशिश करते हैं. मोहब्बत है आप लोगों की,
2: आपका शो सब लोग बहुत पसंद करते हैं.
1: अरे सर ये तो आप लोगों की मोहब्बत है. जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप सभी को बहुत ज्यादा खुश रखे और इतनी हिम्मत ताकत दे के आप हमें बर्दाश्त करें और हमसे बात करते रहे. आप लोग वक्त निकालते हैं, हमें कॉल करते हैं. ये भाई इसमें अब मैं क्या ही कहूँगी, इस मोहब्बत का कोई बदल नहीं है एक्चुअली. बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया. तैयार हैं गेम खेलने के लिए भाई मुदस्सिर भाई? चलिए साहब. मच्छर छोटा होता है या ऊंट?
2: अगर ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए तो छोटा हो जाता है.
1: अच्छा है, अच्छा है. फूक फूक के कदम रख रहे हैं, अच्छा है. कंप्यूटर से टाइपिंग होती है या पानी भरते हैं?
2: कंप्यूटर से तो टाइपिंग ही होती है जहां तक मुझे.
1: सही है, नहीं बिल्कुल सही है. अगर कल के बाद परसों आता है तो आज से दो दिन बाद क्या होगा?
2: नरसों, नहीं सॉरी परसों.
1: वेरी गुड, वेरी गुड. एक दिन आगे निकल गए थे. मगर चलिए खींच के अपने आप को पीछे लाए. और भाई सही जवाब दिया आपने यार, क्या बात है भाई. थोड़ा सा मैंने कहा कि ऐसा पूछ लूं, सवाल पहले सुना था ये आपने?
2: नहीं सुना नहीं था, बट ये तो ठीक है, थोड़ा आसान ही था. असल में कल परसे मैंने और कॉल किया था तो उसमें मैं बता नहीं पाया था लास्ट, तो मुझे लग रहा है आपने मेरे ऊपर थोड़ा एहसान किया, आसान सवाल पूछ.
1: अरे नहीं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, पिटवाओगे दूसरे लोग बहुत मारेंगे मदद से भाई. बहरहाल भाई आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और इसी तरह आप हंसते खिलखिलाते रहे.
2: आप हमें ऐसे दे दें जिसके सवाल हम ढूंढते रहें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा.
1: ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? अगर पता है तो पता है इसका जवाब पता है?
2: हाँ चलें इसको ढूंढूंगा मैं,
1: इसको ढूंढेंगे। चलिए ठीक है, ओके ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह तशरीफ लाते रहिए, बात करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे मुदस्सिर भाई की प्यारी प्यारी बातें, और यहाँ पर सिलसिला जारी और सारी। और यहाँ पर फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम ले लूँ। रमेश भाई ने भी सही जवाब दिया है। ये कौन है हमारे साथ? हाँ नाम नहीं है यार। ओके जवाब देने की कोशिश करी है, बढ़ता हूँ आगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? नईम है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह नईम भाई, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ पे कोई और वॉइस नोट है हमारे साथ। मोहम्मद इकबाल है हमारे साथ आखिर में 876 नंबर में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सुन नहीं पाया मैं। सरवर जी कैन यू कॉल मी प्लीज़? यार मैंने कोशिश करी थी इस नंबर पे कॉल करने की बट कनेक्ट नहीं हो पाया। होपफुली कि शायद आप ही हों मेरे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कौन है हमारे साथ?
3: मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ।
1: मोहम्मद शफीक, अहलन वसहलन शफीक भाई, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बता दूँ आपके लिस्टों को, मैं अभी लेके निकला हूँ आपका वो से।
1: एक बार और आपकी वॉइस क्लियर नहीं, शायद हेडफोन से बात कर रहे हैं मोबाइल से।
3: मैं ड्राइव कर रहा था तो टायर पे लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ।
1: प्लीज प्लीज प्लीज।
3: अभी आवाज आई?
1: हाँ अभी आई, मगर कुछ क्रॉस कनेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, आप कुछ अर्ज कर रहे थे भाई, कुछ बता रहे थे?
3: मैं कह रहा था कि मैं अभी निकला हूँ वॉचर लेके, 500 रियाल का वॉचर लेके।
1: मबरूक मबरूक मबरूक, क्या बात है।
3: अल्लाह बारक।
1: चलिए भाई देखिए हमारे साथ, क्या नाम बताया भाई? माजरत,
3: मोहम्मद शफीक।
1: शफीक भाई देखिए, सब सभी उन लोगों के सामने एग्जांपल के शफीक भाई को उनका वाउचर जो है वो मिल गया है, और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपको भी मिल जाएगा। जिन जिन के पेंडिंग हैं, जिन लोगों ने पिछले दिनों याद किया, और शफीक भाई ने अभी अभी अपना वाउचर भी हासिल किया, इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप लोग FM 107 के साथ कनेक्टेड रहिए तो आपको इनामात भी मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह बातचीत भी होती रहेगी। तो शफीक भाई तीन कदम खेलने के लिए रेडी हैं क्या?
3: नो प्रॉब्लम एट ऑल।
1: क्या बात है यार, चलिए तो शुरू हो जाते हैं। आंखें देखती हैं या सुनती हैं? कोशिश करे तो सुन भी लेती हैं। हाँ क्या बात है शायराना। बर्फ गर्म होती है ठंडी?
3: बर्फ ठंडी होती है।
1: बर्फ ठंडी होती है
3: तो पानी बन जाता है।
1: कौन से दिन के 28 दिन होते हैं? कौन से महीने के 28 दिन होते हैं?
3: फरवरी।
1: क्या कहा?
3: फरवरी।
1: बिल्कुल गलत। देखिए भाई अभी अभी ताजा ताजा वाउचर मिला है तो अब हर बार थोड़ी जीत होगी। इसका जवाब आपको मिलेगा जरूर, तो इंटरनेट पे मत ढूंढिएगा, बस सोचने की कोशिश कीजिएगा। भारत बहुत बहुत शुक्रिया
3: कीजिएगा, मैं बड़ा सवाल कीजिएगा यही वाला।
1: अब एक बार ही करूंगा मैं दोबारा में, तो अगर आप बता देंगे तो
3: जल्दबाजी में जवाब दे दिया मैंने।
1: वही तो करना था मुझे। चलिए साहब शफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और अच्छी बात अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपने शेयर करी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको इनाम मिल गया है तो नाचीज को भी याद रखिएगा। समझ रहे ना बात को?
3: कैश मिल जाता तो अच्छा था।
1: चल यार ये इसी में यार हो जाएगा आगे पीछे कुछ ना कुछ तो। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड। तो भाई अब इसी के साथ टाइम हो गया कि मैं आपसे इजाजत ले लूं अब से थोड़ी सी देर में, क्योंकि आप हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन को भी सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम में। और फिलहाल अब मैं ले लूं आपसे आज के लिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मुझे कॉल आ रही है 7961 9719, आप लोगों के नंबर मैंने बता दिए हैं ताकि आप लोग को ही रहे कि जो शिरकत है वो पूरी हुई। जिन लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पाया मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूं, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वीकेंड को बहुत अच्छा बनाइए, फैमिली का ख्याल रखिए, दोस्तों से मिलिए, गलतियों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कीजिए ताकि आपको भी आराम मिले, सुकून मिले और माफ़ी मिले। फिलहाल इस गाने के साथ तो छोड़ा जा रहा हूँ आप लोगों को, बेनी दयाल, सुनिधि चौहान, वीकेंड को अच्छी तरह मनाइए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से पूरा देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम, इस्तकबाल है आप सभी लिसनर्स का। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स राउंड अप का शो है। 1:01 है हमारे स्टूडियो की घड़ी पर। और दोस्तों आज स्पेशल डे है, 11 जून 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल का आगाज़ होने जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम तो स्पोर्ट्स राउंड अप है, लेकिन स्पोर्ट्स राउंड अप के थोड़े से लीड स्टोरीज जो है मैं थोड़ा सा इस तरह क्यूरेट कर चुका हूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को ही नो हेड रख के, लीड रख के मैंने थोड़ा सा सजा दिया है, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर है, कतर के अलावा 7 अरब मुबालिक टीमें भी शामिल है। सो फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इस मरतबा सबको पता है आप लोगों को कि 48 टीमें सबसे मेजर टीमें जो हैं मैक्सिमाइज किया गया है, टीमों की जो संख्या है, टीमों की जो तादाद है, 48 टीमें पहली मरतबा, 32 से सीधा जंप मारकर 16 टीमों की एडिशन की गई है। लास्ट वर्ल्ड कप 2022 जब कतर में हुआ था उस वक्त 32 टीमों के साथ, और इस बार 48 टीमों के साथ वर्ल्ड कप होने जा रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव मैसिव वर्ल्ड कप, बिकॉज इस वर्ल्ड कप मतलब इतने बड़े पैमाने पर है। ऑब्वियसली 3 डिफरेंट कंट्रीज में है, अमेरिका कहाँ, मेक्सिको कहाँ, और आप मेक्सिको के साथ साथ कनाडा को जोड़ दीजिए, तो तीनों डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड आउट है मैचेस। और आज का मैच जो इनॉगरल मैच जो है वर्ल्ड कप का, फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो इनॉगरल मैच है वो मेज़बान टीम मेक्सिको का है, और मेक्सिको के सामने है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों तो इसी बहाने नहीं, इसी वे हम आज का प्रोग्राम जो है शुरू कर लेते हैं, स्पोर्ट्स राउंड अप शो। और ये हर खेल का हर पहलू सिर्फ आपको मिलता है इसी शो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 5 हाइलाइट्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बार रुक जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड कप से शुरू कर दिया था। तो वर्ल्ड कप से मुतालिक एक सवाल है, वर्ल्ड कप से मुतालिक एक क्विज है, एक क्वेश्चन है, वो सुन लीजिएगा और आप मुझे जवाब भेज सकते हैं 6662107 पर। वर्ल्ड कप 2026 में कतर टीम मौजूद है ना, टीम कतर इज देयर इन द 2026 वर्ल्ड कप जो आज से शुरू होने जा रहा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि टीम कतर का कोच का नाम क्या है, जो हेड कोच है उनका नाम आपको बताना है। इन्होंने बड़ा ही अहम रोल अदा किया है कतर को क्वालिफाई करवाने में। 2022 वर्ल्ड कप वाज अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, आई मीन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ होस्ट कतर ने वर्ल्ड कप खेल लिया था, लेकिन इस मरतबा कतर को क्वालिफाई करना पड़ा। एंड कतर को क्वालिफाई करवाने के पीछे इन साहब का बहुत बड़ा योगदान यानी अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। और आपको सिर्फ बताना है टीम कतर का हेड कोच का नाम मुझे भेजिए 6662107 पर, और मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, आज मेज़बान टीम मेक्सिको का सामना साउथ अफ्रीका से होगा, और ग्रुप ए के ही मैच हैं, और ग्रुप ए के जो दूसरे मैच हैं वो साउथ कोरिया और चेचिया का, वो कल होगा। तो आज दोहा टाइम, याद रखिएगा, कनाडा और कतर ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और बीच में अटलांटिक ओशन है जी साहब, बहुत दूर है कनाडा। तो 9 घंटे के फासले में आपको मैच देखना है, और जहां पर वहां आई मीन कनाडा में 1 बज रहा होगा, दोपहर के 1 बज रहे होंगे, यहां पर कतर में इट विल बी 10 PM यानी रात 10 बजे मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होगा, और साउथ कोरिया और चीचिया का मैच जो होगा कल है। लेकिन कल का मैच मतलब हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे की मैच है। थोड़ा आई वुड से कि इस बार के वर्ल्ड कप में टाइमिंग डिफरेंस इतना ह्यूज है कि थोड़ा सा टैब रखना, उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिनको फुटबॉल पसंद है, जो फुटबॉल फॉलो करते हैं, वो डेफिनेटली दे विल वेक अप, दे विल गेट अप टू वॉच देयर

respective team matches. Obviously, Argentina, Brazil ke matches jo hain wo shayad hi koi miss karna chahega. To dosto 2026 ka football world cup mein Qatar kis group mein hai bata dun. Group B mein hai Qatar. Group B mein Qatar hai aur Qatar ke sath Bosnia Herzegovina, Switzerland aur mezban team Canada shamil hain. Aur yahi baat ye hum karne ja rahe hain ki Qatar ka agla match yani first match kab hai. Qatar ka first match hai against Switzerland on Saturday yani hafte ke roz. Qatar is going to open the campaign in World Cup 2026 against Switzerland. Aur ye match San Francisco ke Santa Clara mein hoga. Aur Doha time Doha ke waqt agar aap follow kare to raat 10 baje ye match shuru hoga. To Qatar playing Switzerland on Saturday yani 13 June ko raat ke 10 baje ye match yahan pe hone ja raha hai. To basically timing ye hai ki ya to raat ke 10 baje hain ya to subah ke 5 baje hain. To ye aapko thoda sa adjust karna hai. हां वर्किंग डेज में थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये मैं मानता हूं और जो ऑफ डेज है जैसे वीकेंड्स है जैसे आज है आज तो परफेक्ट डे है थर्सडे नाइट फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट में थोड़ा अगर मैं देखूं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो लोग जिन साहब जो काम में जाते हैं जो जॉब में जाते हैं और साथ-साथ जिनको बच्चों को छोड़ना होता है स्कूलों में और उन बच्चों के लिए भी पेरेंट जो है जो यू नो वो भी रात को जल्दी सो ही जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है लेकिन हां एक अच्छी बात यह है कि समर वेकेशन बहुत जल्द एकदम दरवाजे के पास है एंड खटखटा रहा है कि कब हम समर वेकेशन का आगाज करें तो ऑब्वियस है तब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं द वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून यानी आज से 19 जुलाई तक होगा और 19 जुलाई को मेगा फाइनल यानी द ग्रैंड फिनाले विल बी हेल्ड और अमेरिका कनाडा और मेक्सिको मैंने आपको बताया पहली मर्तबा दो से ज्यादा कंट्रीज जो है इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है अच्छा यहां पे एक मजेदार बात आप लोगों को बता दूं कि 1962 1962 में जब ये वर्ल्ड कप हुआ था एंड दैट वाज अ टाइम जब ब्राजील ने इस चैंपियनशिप या टूर्नामेंट को जीता था सो उस टाइम से लेके आज ठीक है ना उस टाइम से लेके आज कितने साल हो गए तो ऑलमोस्ट 64 साल आप मान के चलिए 64 इयर्स ना उस 64 इयर्स में ना जाने कितने चेंजेस आए हैं ना जाने क्या-क्या हुआ है और फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखिए उस टाइम सिर्फ 15 टीमें थीं 15 टीमें 15 टीम्स इन 1962 वर्ल्ड कप दैट वाज हेल्ड इन चिले इन सांतियागो और वहां से लेके आज 2026 में हम लोग तो 64 साल के बाद कितने टीमों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है बढ़ के एकदम 48 वहां पे कहां पे कितने 1962 वर्ल्ड कप में देयर वाज जस्ट 15 टीमें थी और आज है 48 टीमें अच्छा उस टाइम इतना कुछ था नहीं आई मीन फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज जस्ट अ शौकिया खेला जाता था हर 4 साल में और ना तो टीवी राइट्स ना तो एडवर्टाइजमेंट्स ना तो जितने भी वो चिक चिक चिक चिक है आज के जमाने में आपको दिखने को मिलता है कि मुझे फलाने सब्सक्रिप्शन लेनी है मुझे ये लेनी है वो लेनी है पहले ये सब कुछ में ही नहीं था और इनफैक्ट 1982 से वर्ल्ड कप फुटबॉल में प्राइस मनी जो है यानी जो टॉप टीम्स यानी विनर्स को या रनर्स अप या ब्रॉन्ज जो मेडलिस्ट हैं आई मीन जो थर्ड प्लेस में मैच फिनिश करते हैं उनको पैसे दिए जाने शुरू हुए आई मीन दैट वाज अ सिलसिला जो शुरू हुआ 1982 यानी 1982 के वर्ल्ड कप में जब इटली चैंपियन टीम बनी थी तब से लेके आज तक द प्राइस मनी हैज गॉन अप 2022 का वर्ल्ड कप जो भी यहां पे हुआ था अर्जेंटीना को कितना मिला था आपको मैं बता देता हूं इट वाज $42 million ठीक है ना और आज इस वर्ल्ड कप में देखिए सीधे 4 साल में इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करवा के उन्होंने इतना मतलब दे बिकम सो रिच आप देखते रह गए और हम लोग भी सोचते रहेंगे कि क्या बात है यार ये इन लोगों ने इतना पैसा बना लिया तो $50 million द विनर पर्स यानी द विनर टीम विनिंग टीम को इस साल मिलेगा $50 million सीधा जंप है $8 million और इसके साथ साथ 48 टीमों को भी मिलेंगे और वो पार्टिसिपेशन फ़ी कहलाता है और पार्टिसिपेशन फ़ी भी बहुत बहुत अमाउंट है वो भी डॉलर में है सो ओवरऑल पैसा काफ़ी है इस वर्ल्ड कप में जब 1962 की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था तो इसका सिलसिला जो शुरू हुआ था 1982 से तो दोस्तों आज मैच है मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का इसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज फर्स्ट मैच है एक मैं ये कहूँगा कि एक ट्रेडिशन है कि वर्ल्ड कप को पहला मैच जो है हमेशा देखना चाहिए मैं मिस नहीं करता हूँ तो स्टे इन ट्यून और लेकिन एक सवाल जो पूछा था कि कतर
का हेड कोच कौन है, ये मेरा सवाल है। 666-2107 पर मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इन बिटवीन आई एम टेक अ ब्रेक एंड कीप लिसनिंग टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स राउंड शो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और ये शो जो है स्पेशली डेडिकेटेड टू द स्पोर्ट्स फॉलोअर्स एंड स्पोर्ट्स लवर्स बेस्ड इन कतर एंड अब्रॉड। और मैं जिस शो का मतलब जिस शो में मैं प्रेजेंट अभी कर रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादातर आज फुटबॉल के हवाले से बात करूँगा और ऑलरेडी फुटबॉल वर्ल्ड कप आज से शुरू होने जा रहा था इसलिए फुटबॉल वर्ल्ड कप से मैंने अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया था। दोस्तों जाने से पहले ब्रेक से जाने से पहले माफ़ कीजिएगा ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था और ये सवाल था कि कतर इस वक्त जो है अमेरिका में मौजूद है और सांता क्लारा में मौजूद है और उनका मैच होने जा रहा है 13 जून को अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड इन ग्रुप बी। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कतर का हेड कोच कौन है, जिन साहब ने कतर को क्वालिफाई करवाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है और ये बहुत बड़ी बात है टीम कतर के लिए क्योंकि पहली मर्तबा कतर क्वालिफाई करके यू नो दे आर इनटू द 2026 मेन राउंड्स ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल। और आगे बढ़ते हैं और आप बता दूं कि इस दफा एशिया से काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें हैं और उसमें कतर भी मौजूद हैं और आपको टोटल एक क्वालिफिकेशन के बारे में जो बता रहा था मैं उसमें टोटल कितने टीमें क्वालिफाई करी हैं फ्रॉम एशिया आपको बता दूं टोटल 9 टीमें हैं

इन्होंने 86 के बाद लगभग 40 साल के बाद दे आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। जॉर्डन भी कमाल कर दिया इस बार, जॉर्डन ने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है, साथ साथ उज़्बेकिस्तान भी पहली मर्तबा दे आर प्लेइंग इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से एक जनरल नॉलेज है, एक जीके जो मैंने शेयर किया है। ईरान के बारे में क्या कहना है, ईरान हैज़ ऑलवेज बीन अ लीडिंग फ्रंट रनर फ्रॉम द एशिया, जो कि क्वालिफाई करते आ रहा। जापान अलॉन्ग विद जापान, सऊदी अरब को भूलिएगा मत, सऊदी अरब पिछले वर्ल्ड कप में कमाल ही कर दिया था, अर्जेंटीना को हरा कर 2-1 से उस मैच की जीत हुई थी और एवरीबॉडी थॉट कि अर्जेंटीना जीतेगी। अर्जेंटीना के ऊपर सबसे ज़्यादा फेवरेट और फैंस थे, लेकिन वो मायूस होकर निकले एंड सऊदी अरब डिड क्रिएट वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स इन वर्ल्ड कप फुटबॉल। अब एशिया की तो बात हो गई, अब अरब ममालिक की बात करें तो जहां मैंने अभी कहा कि सऊदी अरब है, कतर है, जॉर्डन है, इराक है, इसके साथ साथ और चार टीमें जोड़ दे दीजिए तो 8 टीमें हैं। वो 4 टीमें कहां से हैं, अफ्रीका से हैं, और अफ्रीका से मुराद नॉर्थ अफ्रीका से हैं, और इजिप्ट, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। सो टोटल 4 अफ्रीकन टीम्स यानी 4 अरब स्पीकिंग अफ्रीकन टीम्स और 4 एशिया में अरब टीम्स। सो टोटल 8 टीमें इसमें शामिल हैं और एशिया से 9 टीमें शामिल हैं। दिस इज़ दी बिगेस्ट, मैं कहूँगा कि अरब टीमों की जो आई वुड से कि जो भीड़ है, पहली मर्तबा में इतने सारे अरब टीमें हमें नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छी बात है ये। और यूरोप की बात करूँ तो टोटल 16 है, 16 टीमें हैं, क्योंकि यूएफा रीजन जो यूरोपियन रीजन है वो काफ़ी ह्यूज है, तो उसमें 16 टीमें हैं। और 16 टीमों में से कौन कौन डायरेक्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है मैं आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड। और प्लेऑफ से जो जीत के गए हैं वो है बोस्निया हर्जेगोविना ने कमाल कर दिया, इटली को हरा दिया इन द क्वालिफायर्स, और चेचिया और स्वीडन और तुर्की एक इम्पॉर्टेंट टीम है। और अगर उनकी जो लास्ट पार्टिसिपेशन है वो मैं बता दूं 2002 में हुआ था, तो 2002 के बाद आफ्टर 24 इयर्स तुर्की इज बैक टू द वर्ल्ड कप फाइनल। और तुर्की की टीम काफ़ी अच्छी है और उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके प्लेयर्स मुख्तलिफ इंग्लिश क्लब्स में यानी यूरोपियन क्लब्स में लोग खेलते भी हैं। एंड आई कैन फील दैट तुर्की कैन डू रियली वेल दिस टाइम। तुर्की का एक प्लेयर था 2002 में, आई स्टिल रिमेंबर देना, उनका नाम आज भी मुझे याद है, हकान सुकूर का नाम इसलिए आज भी वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में दर्ज है, दैट बिकॉज कि हकान सुकूर सबसे फास्टेस्ट गोल करने वाला खिलाड़ी हैं इन वर्ल्ड कप की तारीख में। तो हकान सुकूर आज भी इस पीपल आई मीन लॉट ऑफ फैंस तुर्की में आज भी उनको याद करते हैं कि हकान सुकूर इज द फास्टेस्ट गोल स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अब अफ्रीका की बात कर लेते हैं कि टोटल अफ्रीकन टीम्स कितने हैं इस वर्ल्ड कप में। टोटल अफ्रीकन टीम्स है 10। मैंने आपसे पहले बताया था कि 48 टीमों को इस बार खेलने का मौका दिया गया है पिछले वर्ल्ड कप के मुताबिक, पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में इस साल ज़्यादा वर्ल्ड कप की टीमें हैं, इसलिए कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, उनका ये मानना है इन फुटबॉल को और थोड़ा सा फ़रोग देनी चाहिए, फुटबॉल शुड बी स्प्रेड आउट और हर जगह पे फुटबॉल को थोड़ा सा और ज़्यादा टीमें लाए। पहले अफ्रीका में 5 टीमें होती थी, अब उनमें बढ़ाकर 10 टीमें कर दी गई हैं, और इसमें अल्जीरिया, कैपे वर्दे, डीआर कॉन्गो, कोटे डिआइवोरे, इजिप्ट, गाना, मोरक्को, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और तुनिशिया। दोस्तों तुनिशिया का नाम हमेशा याद रखिएगा, तुनिशिया पहले अफ्रीकन माफ़ कीजिएगा पहले जो अगर मैं अरबी टीम की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट अरबिक टीम, पहले अरबी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक मैच जीतने का जो जो फ़ख्र है वो तुनिशियन टीम के साथ है। तुनिशिया वन द फर्स्ट मैच एज एन अरब नेशन एट द 1978 वर्ल्ड कप इन अर्जेंटीना। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पास काफ़ी कुछ लेगेसी है, कुछ हिस्ट्री है, और हो सकता है कि इस बार हमें मोरक्को के जैसा कोई ऐसे परफॉर्मेंस, हो सकता है कि मोरक्को ही कर दें दोबारा, ये किसी को नहीं पता। मोरक्को ने कमाल कर दिया था 2022 वर्ल्ड कप में, सो इस बार हो सकता है कि तुनिशिया भी कुछ करके दिखाए, सेनेगल और साथ साथ इजिप्ट है, इजिप्ट के ऊपर काफ़ी भरोसा है, लेकिन इजिप्ट ना हमेशा एक्चुअली मुझे ये लगता है कि वन मैन टीम है, मोहम्मद सलाह
के ऊपर ही ज्यादा प्रेशर है, मोहम्मद सलाह के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मोहम्मद सलाह के ऊपर इस बार भी बहुत ज्यादा हेवी एक्सपेक्टेशंस है। और इसी चलते मुझे लगता है कि पिछले कई वर्ल्ड कप्स में इजिप्ट टीम कुडंट डू

रियली वेल, और अल्जीरियन टीम भी काफ़ी काफ़ी पोटेंशियल है. अर्जेंटियन अल्जीरियन के जितने भी प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, वो सब यूरोप में खेलते हैं और अल्जीरियन टीम भी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. लेकिन कुछ एक मसला है जहां अफ्रीकन टीम्स दे रियली कैन नॉट जॉइन एंड दे परफॉर्म एज अ टीम व्हेन इट कम्स टू द क्रंच सिचुएशन. वर्ल्ड कप के मुकाबले में आपको एज अ टीम खेलने की ज़रूरत होती है, ना कि स्टार, ना कि दो स्टार, ना कि तीन स्टार. तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि इस बार अफ्रीका से कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, अफ्रीकन कंट्री से, अफ्रीकन टीम से. तो जैसे कि पिछले 2022 वर्ल्ड कप में मोरक्को ने करके दिखाया था, तो वहीं इस बार हो सकता है कि कोई और आ जाए, एंड दैट विल बी रियली नाइस. अच्छा, बढ़ते हैं फुटबॉल से, अब बढ़ते हैं क्रिकेट में. जो दोस्तों, क्रिकेट में क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे इंटरनेशनल में 86 रन से शिकस्त दे दिए, और इस सीरीज में 1-0 से बांग्लादेश हैज टेकन अ लीड. और बांग्लादेश ने काफ़ी कुछ कर रहा है, दिखा रहा है. बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान को हराया पहले, अब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और इसी से दे आर लीडिंग इन दिस सीरीज 1-0. अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ. बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के आज जो सेकंड मैच जारी है, उसमें बारिश की वजह से मैच को थोड़ा रोक दिया गया है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ख़राब रहा है, एंड 187 for 8 in the 42 overs. और दिस इज़ ऑट बांग्लादेश बॉलर्स ने कमाल करके दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बुरी तरह बहुत बुरी तरह उनको चैलेंज कर रहे हैं, और बुरी तरह से उनको एकदम पिछाड़ दे रहे हैं. स्पेशली तस्कीन अहमद मैं बहुत इंप्रेस किया है मुझे तस्कीन अहमद ने, बाएं हाथ के बॉलर है. मैंने परसों एक शो में, हमें समर स्पोर्ट्स जो शो है उसमें भी बताया कि जिस तरह से वो बॉल करते हैं, जिस तरह से वो डिलीवरी डालते हैं, तो उससे मुझे मुश्ताक अहमद की याद आता है. जैसे मैंने कहा कि मुश्ताक अहमद अभी फ़िलहाल बांग्लादेश क्रिकेट कोच, स्पिन बॉलिंग कोच हैं, और बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे चुके होंगे तस्कीन, क्योंकि उनके जो बॉलिंग एक्शन है, बाएँ हाथ से वो ड्रॉप करते हैं, बाएँ हाथ से वो डिलीवरी करते हैं, सिमिलर टू वट मुश्ताक अहमद यूज़ टू डू. मुश्ताक अहमद जबकि लेग स्पिनर हैं, और बाएँ हाथ के बॉलर लेग स्पिनर हो नहीं सकते हैं, दे कैन बी अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. लेकिन तस्कीन को खेलना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है इस पूरे सीरीज में. जब पाकिस्तान की सीरीज मैंने फॉलो किया था वहां पर, आज भी देखिए तस्कीन ने कितने विकेट्स लिए, आपको मैं बता देता हूं. टोटल 3 विकेट लेकर ही इज द मोस्ट, अगर देखूं तो मुस्तफिजूर के साथ मिलकर 3-3 विकेट लेकर ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर. एंड स्पिन बॉलर हैं तस्कीन अहमद और नाहिद राणा, आज कुछ कर नहीं पाए. नाहिद राणा इज द पेस बॉलर, फास्ट बॉलर, आज 9 ओवर कट के 45 रन देके बिना किसी विकेट लिए, कोई बात नहीं. लेकिन व्हाट इंप्रेस मी इज द बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको देखकर मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम आगे वाले टाइम में बहुत जबरदस्त कुछ करेगी. अरे दोस्तों, इंडिया ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एक वन ऑफ टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को 300 रन से शिकस्त देकर अपनी टेस्ट तारीख की सबसे बड़ी फतेह हासिल की. एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द टीम इंडिया. एंड ठीक है, अफगानिस्तान को हरा दिया अपने, अच्छी बात है. लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया या बड़े किसी टीम के साथ करें तो मैं समझ सकता हूँ. मानव सुतार ने अपने डेब्यू मैच में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 विकेट्स हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजे गए. 3 मैचों की ओडीआई क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में इंडिया और अफगानिस्तान की टीमें हफ्ते के रोज, परसों जो है वो आमने सामने होंगे. और इधर अगर 3 मैचेस पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो 3 मैचेस पर मुश्तमिल ओडीआई सीरीज के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया

फुटबॉल अपडेट दैट आई शेयर विथ यू, और आप लोग जो है इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में आप लोग जुड़े रहते हैं। नाउ गेट बैक टू द क्विज, जो आज का सवाल था कि टीम कतर का कोच कौन है, भाई साहब कौन है कोच, आप लोगों ने भेजा है एंड आप लोगों ने बड़ा ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। उमर अब्दुल्ला, उमर उबैदुल्ला, अब्दुल्ला मैं हमेशा कह देता हूँ, उमर उबैदुल्ला हुलैन लोपतगी, हेड कोच ऑफ कतर नेशनल टीम। जी जी जी बिल्कुल सही, हुलैन लोपतगी आपने मैसेज किया है एक उर्दू में और हिंदी में, खान लिखते हैं लेकिन आपका नाम पूरा नहीं है, माय नेम इज़ खान, बस यही है। मुमताज़ हमेशा की तरह बहुत ही परफेक्ट जवाब देते हैं, कतर का हेड कोच हुलैन लोपतगी। मुमताज़ अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, मुमताज़ आप काफ़ी स्पोर्ट्स के साथ आपका ये जो यू नो लगाव है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। एंड एंड और कौन है, ए फॉर अमीन भाई ये हमेशा लिखते हैं, ये साहब अपना नाम ज़रा दीजिएगा, मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही जवाब दिया है, करंट कोच नेम इज़ हुलैन लोपतगी। अच्छा मैं बता दूँ ये स्पैनिश है तो JULEN जो है हम हुलैन पढ़ते हैं, नॉट जे जुलेन नहीं पढ़ेंगे, हुलैन लोपतगी। सो हुलैन लोपतगी इज़ द करेंट नेशनल कोच ऑफ कतर। इससे पहले 2018 में ये स्पेन के कोच रह चुके हैं और रियल मद्रिद के भी कोच रह चुके हैं। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट थिंग। तौफिक साहब फ्रॉम अल वकरा लिखते हैं हुलैन लोपतगी स्पेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सही जवाब दिया है एंड उम्मीद करता हूँ कि हुलैन लोपतगी कुछ कमाल करके दिखाएगा विद द टीम कतर व्हेन कतर ओपन्स द कैंपेन अगेंस्ट स्विट्जरलैंड ऑन सैटरडे यानी 13 जून को। रेडी रहिएगा, कतर को सपोर्ट करिएगा एंड सुनते रहिएगा FM 107, क्योंकि ये प्रोग्राम आज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगले जुमेरात को दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी ऑन द स्पोर्ट्स राउंड ऑफ, सो कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। क्या बात है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमीता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी
1: यस जनाब, तो देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है। हाँ, 3-2-1 करके हम आ तो गए हैं, लेकिन एस्केप रूम से आज बाहर निकल पाएंगे कि नहीं। फिलहाल के लिए हैप्पी वीकेंड आप सभी को, एंड आई एम श्योर कि अभी तो अपनी आवाज़ में भी खनक होगी, चेहरे की मुस्कुराहट भी बढ़ रही होगी, क्योंकि जो दो दिन मिलते हैं, कुछ लोगों को तो एक दिन मिलता है, लेकिन फिर भी वो जो ख्याल होता है ना कि अब छुट्टी आ गई है, ओहो, वो ख्याल बेहद खूबसूरत होता है। आई कैन फील यू गाइज। लेकिन इस ख्याल को एंजॉय करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज एस्केप रूम में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद यहाँ से बच के निकल जाए। तो देखते हैं कि आप आज कितने अच्छे से यहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ना तो कहीं समुंदर की गहराइयों में लेके जाने वाली हूँ, ना ही रेगिस्तान की तपिश महसूस कराने वाली हूँ, ना ही स्पेस में छोड़ के आने वाली हूँ। आज मैं जिन लोगों को साइंस पसंद है, केमिस्ट्री वगैरह पसंद है, तो आज मैं सीधा आपको एक क्रेजी से साइंटिस्ट के लैब में लेके जाने वाली हूँ। यस, अब यहाँ पर सिर्फ केमिकल्स की महक आने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, क्योंकि अलग अलग कोर्स को आपको क्लियर करना है, और हो सकता है जो स्कूल के दिनों में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी वो आज काम आ जाए। ठीक है, सो आर यू रेडी टू एंजॉय और एस्केप रूम में आज एक साइंस लैब में कैद होने को? अगर हाँ तो डेफिनेटली शो योर एक्साइटमेंट। 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर, उस पर मैसेज करें, हाय हेलो मैसेजेस करें, बताएं मुझको कि व्हाट आर योर प्लान्स वीकेंड के, ठीक है, अपने नाम के साथ। और अभी हम एक बेहतरीन सा ब्रेक लेने वाले हैं और फिर वापस आके एक साइंस लैब में फंसने वाले, सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम हमारा खासम खास शो, इसका आज का एपिसोड बड़ा ही कमाल का है। हाँ जी, आपको एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आएगी, जैसे कि आप स्कूल में साइंस लैब में जाते थे अपने थोड़े बहुत काम करने के लिए, यू नो, जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो सीखने के लिए, समटाइम्स एग्जाम देने के लिए। सो यस, साइंस लैब से हर किसी का वो कहते हैं ना ताल्लुक रहा है। पर आज जिस हम साइंस लैब में बंद होने वाले हैं, कैद होने वाले हैं, ये एक क्रेजी साइंटिस्ट का लैब है। तो अब वहाँ पहुँचे, सोचा आपने कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सीखेंगे, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तो वहाँ पर एक ग्लिच हुआ और सारे जो दरवाजे वो लॉक हो गए। अब जो दरवाजे वो मैग्नेटिकली लॉक्ड हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज़ योर माइंड, आपका दिमाग, बस वही ब्रेन वही काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जिट कोड अगर चाहिए तो साइंस का जो नॉलेज हमने स्कूल में थोड़ा बहुत लिया है उस पर हमें गौर फरमाना होगा। चलिए, अब लैब में आ चुके हैं तो कहीं कोई केमिकल, यू नो, उसकी महक आ रही है, कहीं स्टोव चल रहा है, ठीक है, वो तो होता ही है, और कहीं पर यू नो किसी फनल में कोई पानी डाल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपको थोड़ा सा घोंसली लग रहा है, बट देन यू नो कि आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है। ऑलराइट, तो आज आप सब साइंटिस्ट बन चुके हैं और आपके सामने एक जायंट टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल, जो कि हमने स्कूल में सीखा होगा। और अगर जिनको नहीं भी पता है तो प्लीज जस्ट रिलैक्स, बस सुनते जाएं, ठीक है। और एग्जिट कोड का पहला हिस्सा एक ऐसे लिक्विड में छुपा है जो हर लैब की जान होता है। सोचिए, हर लैब की जान, वो कौन सा लिक्विड है जो होता है? बस ये साउंड सुनाया मैंने आपको ताकि क्लू आपको मिल सके। चलिए, अब आगे बढ़े और एक टेबल पर आपका पहला क्लू लिखा है, ध्यान से सुनिए। मेरा कोई रंग, या यूं कहें कलर नहीं है, मेरा कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई स्मेल नहीं है। साइंटिस्ट्स मुझे H2O कहते हैं, बताओ मैं क्या हूं? कम ऑन, मुझे लगता है कि ये सबसे इजी क्लू है और पहला एग्जिट कोड आप बड़े प्यार से सुलझा सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर मुझे टेक्स्ट कीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर, अपने नाम के साथ। ओके, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, कई बार आपकी प्रोफाइल्स में भी नाम नहीं होते हैं। सो मेक श्योर कि आपका नाम ज़रूर हो जवाब के साथ, ठीक है। तो क्या कहते हो, क्या हो सकता है H2O? मेरा कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं और कोई स्मेल नहीं, साइंटिस्ट मुझे H2O कहते हैं, बताओ मैं क्या हूँ? Come on guys, ये पहले क्लू को हमें सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी ये पहला जो एग्जिट कोड है उसे सुलझाना है, आगे निकलना है कि नहीं? तो मैसेज करें 666-22107 पर, 666-22107, और अभी के लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो बनती है। हाँ, तो रिफ्रेशमेंट क्या होगा? Refreshing songs, escape room ke. Enjoy the song. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, तो कैसे लगा आपको ये म्यूजिकल ब्रेक? आई एम श्योर कि इस म्यूजिकल ब्रेक में आपने थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश किया होगा। वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। एंड डेफिनेटली एस्केप रूम में आज हम एक साइंटिस्ट के, क्रेजी साइंटिस्ट के लैब में कैद हो गए हैं। आसपास हमने देखा कि अपने आप चीज़ें उबल रही हैं, केमिकल्स उबल रहे हैं, स्टोव चल रहा है, पानी एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में डल रहा है, मतलब इट्स काइंड ऑफ घोस्टली। थोड़ा सा हमें डर लग रहा है, बट स्टिल हम आज एक साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट्स हैं आई एम वेरी सर्टन कि आप सब ने क्लू नंबर 1 सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि पहला जो एग्जिट कोड है उसे अनलॉक करने के लिए हमें पहले क्लू को सॉल्व करना है, एंड दैट इज मेरा कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई स्मेल नहीं है, साइंटिस्ट्स मुझे H2O कहते हैं, बताओ मैं क्या हूँ। वैसे लैब की ये जान है और काफ़ी ज़्यादा हमें जवाब आए हैं। तो किसी ने हमें लिखा है नाइट्रोजन, ओके किसी ने लिखा है वाटर एंड कार। वाटर एंड कार, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है गाइस, कम ऑन, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या? यहाँ पर किसी ने लिखा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर, कुछ ने लिखा है पानी। क्या लगता है आपको, क्या है सही जवाब? ये आवाज किसकी है? हाँ, ये तो कुछ पानी जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली जिन्होंने वाटर पानी कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आइए जरा जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम देख लेते हैं। तो मोहम्मद यूसुफ खान, हमजा, सलमान, मोहम्मद आरिफ भाई, कुछ लोगों के नाम हमारे पास अभी तक है नहीं, हमें नाम देखने पड़ेंगे उनकी प्रोफाइल में जाकर। मिस्टर खान, ओके मिस्टर खान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सैमुअल, इनका भी सही जवाब है। रिफत का भी सही जवाब है। होमनाथ फ्रॉम नेपाल, ओ हो, उनका भी सही जवाब है। आप लोग नाम क्यों नहीं लिखते पहले तो बता दें मुझे। इमरान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। और कौन है, और कौन है हमारे साथ? अरबाज खान, ओ हो क्या बात है, इन्होंने वाटर एंड कार का कॉम्बिनेशन बोला। मैं देखो वाटर मैं ले लेती हूँ, कार का आप देख लो। अच्छा, मुझे अभी भी कुछ मैसेजेस आते जा रहे हैं। एक और मैसेज हम इंक्लूड करेंगे एंड दैट इज सरताज का। ऑल राइट, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है। चलें, पहला क्लू आपने सॉल्व किया विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। और जब आपने इसका जवाब दिया, तो जैसे ही आपने आंसर दिया तो आपके सामने एक फ्लास्क के अंदर एक सिल्वर की वो सामने आई, एंड देन आपने उस सिल्वर की को अपने हाथ में लिया। अब क्या करना है, लेवल 1 क्लियर हो चुका है। अब ये सिल्वर की का क्या करेंगे हम? हमने देखा सामने एक वर्क बेंच है, उसके ऊपर एक छोटा सा लॉकर है, वो लॉक है जाहिर सी बात है। तो आपने सोचा चलो अब ये की तो मिली गई है, लेट्स यूज इट। और आपने उस सिल्वर की से उस लॉकर को खोला। जैसे ही आपने खोला, वहाँ एक कागज पर आपका क्लू नंबर 2 लिखा है। ओके, अब फिर से ध्यान से सुनिए। क्लू नंबर 2 इज, मैं छोटी से छोटी चीजों को बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं छोटी से छोटी चीजों को बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ। मेरे पास लेंस भी है और लाइट भी। अगर आपको एक टाइनी सेल देखना है तो आपको मुझसे ही गुजरना होगा, बताओ मैं क्या हूँ। कम ऑन गाइस, हम अक्सर साइंस लैब में जब जाते थे, स्पेशली स्कूल के दिनों में, सो ये चीज़ हम सबकी बड़ी फेवरेट होती थी कि वो टाइनी सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते थे वो इसके ज़रिए हम देख पाते थे। क्या है ये, मैं छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ, मेरे पास लेंस भी है और लाइट भी, और अगर आपको एक टाइनी सेल देखना है तो आपको मुझसे ही गुजरना होगा। क्या हूँ मैं, कम ऑन, क्लू नंबर 2 इज वेरी वेरी सिंपल। जल्दी से जवाब दीजिए 6622107 पर। 6622107 इज आवर नंबर अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी कि कितने लोग क्लू 1 के बाद क्लू 2 को सॉल्व कर पाते हैं, उसका जवाब दे पाते हैं। यहाँ पर हमें नॉन स्टॉप मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं. वाह क्या बात है, क्या बात है. आज सारे साइंटिस्ट काम पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझको. हाँ कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट. एक बार फिर से मैं क्लू नंबर 2 आपके लिए दोहराऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे सॉल्व करके दूसरा लेवल भी पार करेंगे. मैं छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ. मेरे पास लेंस भी है और लाइट भी. अगर आपको एक टाइनी सेल देखना है तो आपको मुझसे ही गुजरना होगा. बताओ मैं क्या हूँ. हाँ म्यूजिक लाउड हो गया क्या. एंजॉयमेंट में ऐसे ही होता है बॉस. Sony Lagdi is the song. Enjoy. Stay tuned to FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जनाब, एस्केप रूम का हमारा सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 2:02। कम ऑन गाइस, मेक अ विश कि आज आप इस क्रेजी साइंटिस्ट के लैब से बाहर निकल पाए। एस्केप रूम शो सुन रहे हैं आप एंड आई एम वेरी सर्टन हमारे लिसनर्स आज बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हर किसी ने ये सोच लिया है कि आज वो साइंटिस्ट बने हुए हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए हर क्लू सॉल्व होगा और इस क्रेजी साइंटिस्ट लैब से

बाहर निकलेंगे, बिकॉज यू नो यहाँ पर थोड़े से घोसली फीलिंग है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा है. ओह हो क्या बात है. वेल मैंने आपसे कहा था कहाँ कैद हैं वो तो आपको पता ही है. पहला क्लू दिया कि भाई चलो पहला लेवल क्लियर करो, बाहर निकलने के लिए हमें 3 लेवल क्लियर करने हैं. और क्लू आपने सॉल्व किया, उसका जवाब था पानी, वाटर. दूसरा क्लू मैंने आपको दिया, बताएं कि मैं छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा दिखा सकता हूँ, मेरे पास लेंस भी है और लाइट भी. अगर आपको एक टाइनी सेल देखना है तो आपको मुझसे ही गुजरना होगा. मैं क्या हूँ? हमें तरह तरह के जवाब मिले हैं. कुछ लोगों ने सिर्फ लेंस लिखा है, कुछ ने कहा है कैमरा, कैमरे का लेंस, किसी ने लिखा है मैग्नीफाइंग ग्लास. वैसे आप सब उस फैमिली की ही बात कर रहे हैं जिसका हम जिससे रिलेटेड हमने सवाल पूछा है. जिन्होंने सही जवाब दिया ये उनके नाम ज़रा दोहराते हैं, फिर नाम फिर जवाब बताएंगे. सो आफरीन मोहम्मद, आफ्ताब मोहम्मद यूसुफ, हुसैन, मिस्टर खान, और ये कौन शख्सियत है, हमज़ा है, और हमारे साथ मोजेस फ्रॉम कीनिया. ओके मोजेस, थैंक यू सो मच. यहाँ पर रिहान अंसारी है, रिहान ने भी हमें सही जवाब दिया है. इनका नाम क्या है, आइए ज़रा इनका नाम भी देखें. ये है मोहम्मद तहसीर. ओके मोहम्मद तहसीर ने भी हमें सही जवाब दिया है. आदित्य भी हमारे साथ रहे, क्या बात है आदित्य. आरिफ अंसारी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. आनम एंड रूहान, ओके इन्होंने हमें ये पहले क्लू का भी सही जवाब दिया था, दूसरे का भी सही जवाब दिया. सो नाइस टू सी यू आनम एंड रूहान. और कौन है, और कौन है, आइए ज़रा देखें. यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स अब सीधा कैमरा लिखते जा रहे हैं. रमेश जुड़े हमारे साथ, रमेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. और ये कौन है जिन्होंने 5 साल माइक्रोस्कोप यूज़ किया है, ये अरबाज खान है और 5 साल इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया है. और जवाब क्या है, जवाब भी माइक्रोस्कोप है भाई, तालियां तो बनती है. वंडरफुल, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या बात है. हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने माइक्रोस्कोप कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है. कुछ लोगों ने हमें लेंस, कैमरा, टेलीस्कोप, यहाँ तक चीज़ें लिख दी, बट ठीक है, चलिए आपकी इमेजिनेशन थी. लेकिन टाइनी सेल्स आप किससे देख सकते हैं, किसके ज़रिए देख सकते हैं, दैट्स ओनली माइक्रोस्कोप. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये दूसरा लेवल भी क्लियर कर लिया. भाई देखो अब लास्ट जो एग्जिट कोड है वो तभी अपने आप चलेगा जब आप इस तीसरे क्लू को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो पहले का जवाब पानी था, वाटर, दूसरे का माइक्रोस्कोप. अब तीसरा क्लू क्या होगा, देखिए अब आप तीसरे दरवाजे के एकदम पास आ चुके हैं, बट एग्जिट लीवर जो है ना वो नहीं दब रहा है, वो नहीं दबेगा, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, हम तीसरा क्लू सॉल्व करेंगे और तीसरा जो क्लू है वो आपके एग्जिट डोर पर लिखा हुआ है. चलें अब ध्यान से सुने. मेरा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल. मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ लेकिन दूसरी चीज़ों को पुश भी कर सकता हूँ. मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई? सोचे सोचे सोचे ये तीसरा क्लू किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. कम ऑन, मेरा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल. मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ लेकिन दूसरी चीज़ों को पुश भी कर सकता हूँ. व्हाट एम आई? Come on, you can give me the answer. जल्दी से मुझे जवाब दीजिए 666-22107 पर, 666-22107. I'm waiting for your answers. अपने नाम के साथ जवाब दीजिए and let's see कि आज कौन होगा आप में से जो इस crazy scientist के lab से escape कर पाएगा. एक बार फिर से सुनिए, आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, कि मेरा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल. मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ लेकिन दूसरी चीज़ों को पुश भी कर सकता हूँ. व्हाट एम आई? हाँ तो जवाब दीजिए 666-22107 पर और थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी माय देसी ऑडियंस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम वेरी सर्टेन भाई, देखो टेम्परेचर्स बढ़ चुके हैं और इस टाइम पर अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एस्केप रूम में आप एक साइंस लैब में फंस गए हैं। एक क्रेजी या यू कहें मैड साइंटिस्ट का ये लैब है एंड इट्स अ काइंड ऑफ घोस्टली, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अपने आप हो रही है और चारों तरफ केमिकल्स की खुशबू है। देखिए तीन एग्जिट्स हैं, तीन लेवल्स हैं और लास्ट का एग्जिट डोर अनलॉक करने के लिए आपको तीसरे क्लू को भी सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना इन केमिकल्स की जो महक है ना, ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। देखिए पहला लेवल आपने क्लियर किया, जवाब था वाटर। दूसरा लेवल आपने क्लियर किया, क्लू को सुलझाया और जवाब था माइक्रोस्कोप। और अभी तीसरा क्लू, आई कैन सी नॉन स्टॉप हमारे लिसनर्स मैसेजेस कर रहे हैं और बहुत तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब हर कोई अपनी इमेजिनेशंस को दौड़ा रहा है कि अमिता ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखो अभी कुछ लोग हमें फिर से हमें सुनना शुरू किया है, लोगों ने अभी हमसे जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी एस्केप रूम में आज आप एक क्रेजी साइंटिस्ट के लैब में फंस गए एंड इट्स घोस्टली, ठीक है? ये तीसरे लेवल के बाहर हमें निकलना है, तीसरे लेवल को पार करना है और तीसरे लेवल के लिए क्लू आपका ये था कि मेरा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, ठीक है? मैं फिर से दोहराती हूँ, मेरा एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल, मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ लेकिन दूसरी चीज़ों को पुश भी कर सकता हूँ। सो व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? कम ऑन, ये बहुत इजी है एंड आई कैन सी ऑन माय स्क्रीन के जो जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे जवाब सही हैं और कुछ इधर उधर हमारे लिसनर्स मैं आपको कहूँगी दिस इज़ द थिंग जिसके साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हम अपने आपस में दोस्तों के साथ भी बहुत खेले हैं, मतलब ऐसे यूँ चुटकियों में आप इस लेवल को क्लियर कर सकते हैं। कम ऑन, क्लू नंबर 3, मेरा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूँ।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी, दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: हाँ जी जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। एस्केप रूम का आखिरी पड़ाव चल रहा है, मैं हूँ आपकी एफ और अमिता, एंड जाहिर सी बात है हम एक क्रेजी साइंटिस्ट के लैब में फंस चुके हैं। हर तरफ केमिकल की स्मेल है, यूँ कहें तो बदबू है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये जो केमिकल की जो स्मेल होती थी ना, वो महक भी लगती थी। हमारे कुछ लिसनर्स से कह रहे हैं, अमिता कम ऑन, केमिकल्स की महक कैसे हो सकती है, स्मेल होगी ना। ऑल राइट, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझना इम्पॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट टू से कि आप एक क्रेजी साइंटिस्ट के लैब में फंसे हैं। 3 लेवल्स आपको क्रॉस करने थे, 3 क्लूज को सॉल्व करके फाइनल एग्जिट से एस्केप करना है। पहला क्लू आपने सॉल्व किया जिसका नाम वाटर, दूसरा माइक्रोस्कोप, एंड तीसरा क्या है जवाब? मेरा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, मैं आयरन को अपनी तरफ खींच सकता हूं लेकिन दूसरी चीजों को पुश भी कर सकता हूं, व्हाट एम आई? ओके, आइए देखते हैं सबसे पहले किन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं। तो अभी कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होते जा रहा है, लिस्ट में लोग भागते जा रहे हैं, आफ्ताब, मोहम्मद, आफरीन, मोहम्मद यूसुफ खान, हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मारिया, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है, और इनका नाम है मोहम्मद आरिफ, अनम एंड रूहान, रमेश, मिस्टर खान, आयशा। अच्छा, एक नंबर से मुझे 3 अलग लोग मैसेज कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि भाई ये एक ही नंबर आप तीनों यूज़ कर रहे हैं। चले, मिस्टर स्टीव फ्रॉम कीनिया, इन्होंने नाम लिख के दिया है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। रिहान अंसारी ने भी सही जवाब दिया है, अर्श ने भी सही जवाब दिया है, और मोहम्मद इमरान ने भी सही जवाब दिया है, और कौन कौन है, हमजा हमारे साथ हैं, ही इज ऑल्सो राइट। आइए ज़रा और भी नाम देखें, अरबाज खान तो लगता है बिल्कुल साइंटिस्ट ही हैं, नॉन स्टॉप सही जवाब देते जा रहे हैं, सुमी ने भी सही जवाब दिया है, और हमारे साथ कौन है भाई, हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद फैजान भी जुड़े हुए हैं। चले, ये भी इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, एंड सरताज। ऑलराइट, तो सही जवाब आखिर है क्या? इट इज मैग्नेट। गुड जॉब। आप सभी ने सही जवाब देकर प्रूव कर दिया कि आप हेड साइंटिस्ट हैं, कंग्रेचुलेशंस भाई। आपका जो तेज दिमाग है ना, उसने इस क्रेजी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया है, वरना हम यहीं पे फंस के रह जाते। सो फाइनली आप सब ने एग्जिट कर लिया है उस क्रेजी साइंटिस्ट के क्रेजी साइंस लैब को।

anyways, how are you feeling now? Kaisi feeling hai? Kaisa lag, kaisa raha hai? Taazi hawa. And you know, peeche mud ke dekh rahe ho science lab. Uff, ab hamare kisi kaam ka nahi, hum bahar aa gaye. How are you feeling? share karo bhai, apna feel bhi share karna banta hai. 666-22-107 par zarur share karo. Aur aaj ka lucky winner kaun hoga? आइए जरा लकी विनर की तरफ भी चलते हैं. आज के लकी विनर है मिस्टर खान. भाई मुबारका, कंग्रेचुलेशंस. बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए नॉन स्टॉप सही जवाब देते हुए. हा हा हा. सो मिस्टर खान आज के हमारे लकी विनर हैं. और हमारे सारे जो लिसनर्स हैं, जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ते हैं, एक फैमिली की तरह अपने दिल की बातें कहते जाते हैं हमसे, सच में बड़ा अच्छा लगता है. और यही रिलेशन तो है हमारा, हर एक शो और भी ज़्यादा बेहतर होते जाता है. ऑन दिस नोट मैं कहूँगी कि आपकी एफ और अमिता को अब जाना होगा. और आप मुझसे मिल सकते हैं कहाँ? FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, या फिर आरजे अमिता को सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिए. फिलहाल वीकेंड है भाई, जो भी करो अपना ख्याल ज़रूर रखना, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखना. और अभी के लिए जाते जाते मैं कहूँगी, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे ना चलते चलते. और जाते जाते दिलजीत दोसांझ भाई क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देश से.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी चॉइसेस की जो हमारी डेली शॉपिंग हैबिट्स को सिर्फ कन्वीनियंट नहीं बनाती बल्कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को बेनिफिट करती हैं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं कि भाई आप सुपरमार्केट में गए, शेल्व्स फुल हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स, पैकेज्ड गुड्स और डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट से। आप एक एप्पल उठाते हैं, दूसरा तीसरा ब्रांड देखते हैं और लेबल पर लिखा होता है इम्पोर्टेड फ्रॉम फलाना फलाना कंट्री, किसी दूर के मुल्क से। अब आप ये सोचते हैं कि भाई ये चीज यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं तो सोचती हूँ कितना ट्रेवल किया होगा इसने, कितना फ्यूल यूज हुआ होगा और कहाँ कहाँ से होती भी आ रही होगी। और फिर सेम टाइम पर शेल्फ के दूसरे साइड पर लोकल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी वाले होते हैं लेकिन ज्यादा क्लोजर सोर्स से आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के पीछे एक लॉन्ग सप्लाई चेन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस में फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन इमिशंस जनरेट होती हैं और कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। लोकल प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम ही होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें इको स्विच क्या है। भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, जब पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को

0: प्रेफर करें, मतलब अपनी कंट्री या नियर बाय रीजन के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं भाई कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो यही है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है, कम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कम फ्यूल यूज और कम कार्बन इमिशंस। दूसरा फायदा होता है फ्रेश और टाइमिंगली अवेलेबिलिटी, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्रेश होते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग स्टोरेज और लॉन्ग ट्रेवल टाइम से गुजरना नहीं पड़ता। तीसरा फायदा होता है लोकल इकोनॉमी सपोर्ट, जब आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करते हैं। चौथा फायदा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो भाई, इंपोर्टेड गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट कॉस्ट्स ऐड होती हैं, जबकि लोकल प्रोडक्ट्स अक्सर ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। सोचिए, आपने एक टोमेटो खरीदा, एक ऑप्शन है कि आप इंपोर्टेड टोमेटो लें जो कई दिन ट्रेवल करके आया है, और दूसरा ऑप्शन है कि भाई लोकल फार्म वाला फ्रेश टोमेटो उठाओ और ये जा वो जा। दोनों लुक में सिमिलर ही हैं, दोनों के दोनों, अगर आप पास रख कर देखें दोनों को, लोकल वाला और इंपोर्टेड वाला, दोनों लुक्स में एक जैसे हैं, लेकिन लोकल टोमेटो ज्यादा फ्रेश होगा, ज्यादा टेस्टी हो सकता है और एनवायरमेंट को भी कम इम्पैक्ट करेगा। साथियों, दोहा जैसे सिटी में आप नोटिस करें तो यहाँ सुपरमार्केट्स में इंपोर्टेड और रीजनल दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली लोकल और रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तो भाई, इसी के साथ अब थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लेबल चेक करें, शॉपिंग करते वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखें, फार्मर्स मार्केट या लोकल सेक्शंस एक्सप्लोर करें। अक्सर सुपरमार्केट्स में डेडिकेटेड लोकल प्रोडक्ट सेक्शंस होते हैं, वहां जाएं ना। अच्छा, और एक और चीज, सीजनल बाइंग करें, यानी कि जो चीज सीजन में लोकली अवेलेबल हो उसे प्रेफर करें। अच्छा, एक और चीज, ग्रेजुअल शिफ्ट करें, सब कुछ एकदम चेंज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉपिंग हैबिट्स को लोकल फ्रेंडली बनाएं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोकल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ खाने तक, फूड तक लिमिटेड नहीं है, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और डेली यूज आइटम भी लोकल इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। जब आप लोकल हैंडीक्राफ्ट या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, तो आप कल्चरल हेरिटेज को भी सपोर्ट करते हैं। और एक और रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई इंपोर्टेड चीजें ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई लोकल प्रोडक्ट्स फ्रेश, नेचुरल और इक्वली हाई क्वालिटी वाले होते हैं, बस उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, जो कि हम नहीं कर रहे होते। अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की बात करें, तो जब आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो आप अपनी शॉपिंग को सिर्फ कंजम्पशन नहीं बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं। आप सिर्फ कस्टमर नहीं रहते बल्कि एक सपोर्टर बन जाते हैं अपनी इकोनॉमी के। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, जहां पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। और आज का चैलेंज ये है कि आज या इसी वीक अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कम से कम दो लोकल प्रोडक्ट्स इंटेंशनली चूज करें और ऑब्जर्व करें कि क्वालिटी, फ्रेशनेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑलरेडी लोकल प्रोडक्ट्स मेरी तरह यूज करते हैं, तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें, यकीन जाने फायदा ही होगा। अच्छा भाई साथियों, ये याद रखें कि हर परचेज सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है जो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कम्युनिटी सबको अफेक्ट करता है। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, तो हम अपनी जमीन को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और अपने फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की अहमियत पर। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शुक्रगुजारी छुपी होती है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत का इकरार कर रहे होते हैं। अक्सर हम सिर्फ बड़ी खुशियों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन असल मोमिन वो है जो हर हाल में शुक्र अदा करता है, चाहे खुशी हो या मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दिल को सुकून मिलता है और नेगेटिव सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये लफ्ज हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन हर छोटी बड़ी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाना मिले, काम हो जाए या बस सुकून का एक लम्हा मिल जाए, ये आदत आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और बरकत लेकर आएगी। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरकत FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: देखिए, आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तालीम जो जिम्मेदार शहरी बनाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सिर्फ पॉलिसीज का होना काफी नहीं है, बल्कि लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है। एजुकेशन से बचपन से ही सस्टेनेबिलिटी वैल्यूज सिखाए जाते हैं, अमल में लाए जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर बच्चे नेचर की कद्र करना सीख लें तो फ्यूचर में बेहतर फैसला करेंगे। एजुकेशन अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पैदा करती है। आज के वक्त में इस रेलेवेंस इसकी और बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। अगर सही तालीम ना हो तो शायद नुकसान ज्यादा बड़ा होगा। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारे रोल्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चों को रिसोर्सेज की वैल्यू समझाना और एग्जाम्पल सेट करना सबसे बेहतर तरीका है। सस्टेनेबल फ्यूचर तालीम से शुरू होता है। जो हम आज सिखाएंगे वही तो बच्चे कल फैसला करेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को इस तरह से तालीम दी जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यकीनी बनाया जा सके। इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करती या तब तक एक सक्सेसफुल इकोनॉमी नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वहाँ के लोग शहरी खुश ना हो, और शायद इसी को कहा जाता है लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलबींग। देखिए, सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ा लेना असल तरक्की तो है नहीं। कतर नेशनल

0: विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है। दोस्तों, जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

कागज पर हम वो मोहर लगाते हैं तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। याद रखिए, तकदीर भी इंसान के माथे पर मोहर की तरह है और इस मोहर को सीधा सिर्फ हमारे सजदे ही कर सकते हैं। और यूं भी तकदीर में जो लिखा है लिखने वाले के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए, उसको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी और अपने खानदान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदारीज होकर दुआ कीजिए। सजदे की हालत में मांगी गई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों 1992 गल्फ कप कतर के लिए यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ था और उसी टूर्नामेंट में गोलकीपर अहमद खलील ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर दिया। अरब खत्ते में यह टूर्नामेंट कतरी फुटबॉल की तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज भी लोग इसे फख्र के साथ याद करते हैं। अहमद खलील उस वक्त सिर्फ एक बेहतरीन गोलकीपर नहीं थे बल्कि यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल भी बन गए थे। या दोस्तों उस दौर में फुटबॉलर्स के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज आज जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अहमद खलील ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से साबित किया कि टैलेंट और हौसला हर मुश्किल को पार कर सकता। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में पेनल्टी सेव्स और क्रूशियल स्टॉप्स करके कतर को मुश्किल लम्हों में सहारा दिया और इसी वजह से उन्हें गल्फ फुटबॉल का गोल्डन ग्लोव विनर भी कहा गया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी कतर की फुटबॉल टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुँच कर एशिया में अपनी पहचान मजबूत की। स्पेन के खिलाफ टीम ने हिम्मत और जज्बे के साथ खेला जिससे कतरी फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत और शोहरत हासिल हुई। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद जिंदगी में तकरीबन हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, और वो है जहनी दबाव या स्ट्रेस। थोड़ा बहुत जहनी दबाव जिंदगी का हिस्सा है, बाज़ुकात हमें बेहतर कारकर्दगी के लिए मुतहरक भी करता है, लेकिन जब ये दबाव मुसलसल रहने लगे तो जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासिर होने लगती है। जहनी दबाव की कई वजूहात हो सकते हैं, काम या जो तालीम है उसका दबाव, माली मुश्किलात हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, बीमारी है या सेहत के मसाइल हैं, फ्यूचर के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, सोशल मीडिया और जो मालूमात हैं उनकी बहुत ज़्यादा भरमार। हर शख्स मुख्तलिफ हालात पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल देता है, इसलिए एक ही सूरत हाल के लिए मामूली और किसी दूसरे के लिए शदीद दबाव का बास भी बन सकती है। मुसलसल जहनी दबाव सिर्फ जहन ही नहीं बल्कि जिस्म को भी मुतासिर करता है। उसमें सर दर्द है, नींद की खराबी है, थकन और कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, ब्लड प्रेशर में इजाफा है, बेचैनी और डिप्रेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम जहनी दबाव को कम कर सकते हैं। जब आप परेशान हों या दबाव का शिकार हों तो चंद लम्हों के लिए रुक कर आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लीजिए, और ये अमल जिस्म को सुकून का पैगाम देता है और दिल की धड़कन को मामूल पर लाने में मदद देता है। रोजाना की वॉक या हल्की एक्सरसाइज जहनी दबाव को कम करती है, और वर्जिश के दौरान ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और जहनी सुकून फराहम करते हैं। मराकबा या मेडिटेशन इंसान को मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देता है। रोजाना चंद मिनट खामोश बैठकर सांसों पर तवज्जो देना जहनी सुकून में इजाफा कर सकता है। जिक्र, दुआ, तिलावत कुरान और नमाज ना सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करते हैं बल्कि जहनी दबाव कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। रोजाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जहनी सेहत के लिए जरूरी है। मुनासिब आराम जिस्म और दिमाग दोनों को तवानाई फराहम करता है, और अगर स्ट्रेस या जहनी दबाव हद से बढ़ जाए और रोज़मर्रा की जिंदगी, काम या ताल्लुकात को मुतासिर करने लगे तो किसी माहिर नफ्सियात या मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए। जहनी दबाव जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने देना ज़रूरी नहीं है। सेहतमंद आदत, पॉजिटिव थिंकिंग, मुनासिब आराम, एक्सरसाइज और रूहानी वाबस्तगी के जरिए हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अपने जिस्म के साथ साथ अपने जहन का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी जहनी सेहत ही एक मतवाजन और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन इकराम, हम में से हर शख्स रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करता है। हम जिस्मानी आराम और बेहतर नींद के लिए बहुत सी चीजों का एहतमाम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस तरह जिस्म को आराम की जरूरत होती है, उसी तरह रूह को भी सुकून और हिफाजत की जरूरत होती है। इस्लाम ने हमें सोने का एक मुकम्मल मसनून तरीका बताया है ताकि हमारी रात भी इबादत बन जाए और हमारी नींद भी अल्लाह ताला की रहमत के साए में गुजरे। आज हम एक ऐसी खूबसूरत सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो पूरी रात हमारे लिए रूहानी हिफाजत, पाकीजगी और बरकत का जरिया बनती है। वो सुन्नत है सोने से पहले वजू करना। वजू का नाम आते ही अक्सर हमारे जहन में नमाज आती है और यकीनन वजू नमाज की कुंजी है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू को सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर इख्तियार फरमाया। इनमें से एक अहम मौका रात को सोने से पहले का भी है। सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो उसी तरह वजू करो जैसे नमाज के लिए वजू करते हो, फिर अपनी दाएं करवट पर लेट जाओ। सामिन इकराम, जरा गौर कीजिए, दिन भर की मसरूफियात के बाद जब इंसान अपने बिस्तर की तरफ जाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद दिलाते हैं कि नींद से पहले अपने जिस्म और रूह दोनों को पाकीज़ा कर लो। वजू एक रूहानी ताजगी है। जिस तरह पानी चेहरे, हाथों और पांव को धोता है, उसी तरह ये वजू इन आज़ा को धोने के साथ साथ इंसान के दिल और रूह पर भी मुस्बत असर डालता है। इसीलिए बहुत से अहले इल्म फरमाते हैं वजू मोमिन की जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी का जरिया है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
2: एतराज है, अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मैतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107, Time Check.
1: आ गए क्या आप?
2: अरे लोग आ गए, कह रहे टाइम बता दो।
1: टाइम 4:01,
2: जल्दी आओ यार, ये कह रहे हैं कोई आया नहीं अभी तक, जल्दी आओ, भाग के आओ, ये लो माइक।

गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया, याद वाद किया नहीं किया? हिचकी आनी चाहिए भाई, अभी तो दो दिन का गैप आएगा, ये दो दिन के बीच में देखो मोहब्बत जो है बढ़ जानी चाहिए। मोहब्बत में दूरियां हैं जरूरी, बाकी आपके मैसेज और भी ज्यादा जरूरी है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपको पता ही है। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। फज्जू भाई की गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये तो उर्दू ना गाड़ी बोलने में मजा आता है, थोड़ी सी गाड़ी जबरदस्ती आयन लगा के फज्जू की बारी में मैं आ गया हूँ प्रॉक्सी लगाने। आज क्योंकि वीकेंड है और ये शो रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आपको बताइए कल तो आपने मतलब क्या किया था आपको पता ही होगा, याद दिलाऊं मैं? आपने इतने मीठे मीठे गाने चलवाए थे मेरे से, याद दिलाऊं मैं? मतलब मेरा बीपी इतना हाई हो गया था। खैर, मैंने 5 बजे के बाद जो बदला ले लिया वो तो ले लिया। आज जो है, आज भी हमारे पास एक थीम है भाई साहब, आज भी बहुत बढ़िया थीम है। आज की थीम है क्योंकि वीकेंड है, तो जितने भी रीमिक्सेस रहे हैं, बहुत कमाल के रीमिक्सेस रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के चलाया जाएगा। सो अगर आपके जहन में भी कोई रीमिक्स है जो आपने सुना है और आपको बहुत बढ़िया लगा है, तो आपने तुरंत भेजना है, आपने अपने लिखना है अपना नाम, स्पेस देखे गाने का नाम और भेज देना है। भाई कल मैंने एक बोल देना था, बोल देता हूँ यार, मैं कितना रोकूं अपने आपको। कल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मैंने सुना भाई, उस महान महान आदमी ने पता क्या बोला, कहने लग रहा भाई कतर में डॉक्टर की डिग्री से ज्यादा जरूरी ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं बता नहीं सकता मैंने कितना खुद को काबू किया है, वरना पहली मरतबा मैं कमेंट करने जा रहा था। मुझे लगता है मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, और शायद मैं इसलिए दूर भी हूं बिकॉज भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ वाला कबीर एफ 107 पे वंस अगेन, जिन्होंने अभी ट्यून किया, कुछ मैसेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सुरजीत भाई, हैप्पी वीकेंड। खादिम भाई वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड। सईद भाई कैसे मेरा भाई, मिल जाए कहानी का मैसेज है। हुसैन भाई का लिखते हैं भाई, कैसे मेरा भाई हुसैन भाई, बिल्कुल ये भी गाना चलेगा। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, जब भी आप आते हैं ऐसा लगता है कि रेडियो की अपनी एक हार्ट बीट बढ़ गई हो। हाँ जी, बीपी बढ़ा देंगे यूपी का, क्या सॉरी रेडियो का, यूपी का क्यों बढ़ाऊंगा मैं। 666-22-107 पे जरूर भेजिएगा। जो तीन गाने मुझे मिले हैं उनमें से रिमिक्सेस के भी नंबर आएंगे, बहुत सारे रिमिक्सेस हैं मुझे प्ले करने। एक जो आया है खादिम साहब, आज ये नहीं चल पाएगा क्योंकि आज हम जो है ये गाने नहीं चलाने वाले, आज रीमिक्सेस का दिन है मेरे भाई, तो रीमिक्सेस चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई द ग्रेट, भाई क्या हाल है भाई के, ये कौन द ग्रेट है मेरे साथ? ये हैं सैयद अरसलान बुखारी साहब, अरसलान भाई द ग्रेट। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, रीमिक्स गाना कौन सा बताया इन्होंने, क्या है? ठीक है, मैं एक सेकेंड को ये भी देख ही लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी हम जस्ट अभी बात कर रहे थे बाहर को। ये कौन सा गाना है? नहीं भाई, ये वाला गाना तो नहीं है यार। हुसैन भाई कुछ और गाना बता दे तो मैं लगा भी देता। तो रीमिक्स बताने हैं आपने 666-22-107 पे भर भर के भाई साहब, एक से बढ़ के एक गाना बजेगा। एक मैसेज है भाई, मुझे अभी पता चला कि आप 4 बजे स्टार्ट करते हो। सरप्राइज रोमी भाई, सरप्राइज रोमी सॉफ्टी भाई। रोमी भाई सॉफ्टी, कैसे मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम। एक और भाई साहब है, इन्होंने मैसेज किया है। अब ये पेटेंट करा लेना चाहिए रोमी भाई, इसे जो है आप पेटेंट करा लेंगे, जो सॉफ्टी है। कह रहे मुझे लगा था 5 बजे सॉफ्टी भाई, नहीं सॉफ्टी भाई अपन अभी 4 बजे आ रहे ले गया। एक मैसेज, हाय कबीर भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, क्या हाल है? अच्छा, तो एक बहुत ही शानदार रिमिक्स स्टार्ट करते हैं, जब तक आपके रिमिक्स में सुनी रहा हूँ। 666-22-107 पर सेंड इन योर रिमिक्सेस, डू लेट मी नो कि कौन सा रिमिक्स आपके जहन में आ रहा है जो आपने सुना हो। बहुत सारे डीजेस रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, एंड देयर आर टन्स ऑफ रिमिक्सेस दैट वर मेड, कुछ बहुत ही बढ़िया भाई, कुछ तो इतने बढ़िया है कि ओरिजिनल गाने की वो बैंड बजा देते हैं। एक मैसेज और है, क्या लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी मालूम हुआ कि आपका शो 4 बजे आता है, क्या बताएं अब, क्या बताएं रमेश बाबू। तो भाई लाडलो, मेरा शो अभी 4 बजे से शुरू होता है क्योंकि मैं फज्जू भाई की गैर हाजिर में हूँ, प्रॉक्सी लगा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई। तो सबसे पहले रिमिक्स मेरी चॉइस के चला देते हैं, उसके बाद आपकी चॉइसेस चलती रहें क्योंकि आप मैसेज कर ही रहे हैं। तो 666-22-107 पर, एंड सबसे पहला रिमिक्स टू स्टार्ट ऑफ द शो। रेडी हैं आप? रेडी है कि नहीं है? एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लूँ मैसेज क्या है। ओके, तो 3, 2 एंड ये है रिमिक्स बाय डीजे सुकेतु, इफ यू रिमेंबर। बहुत बढ़िया डीजे रहा है भाई आदमी अपना, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं वो, लेकिन ही स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट डीजेस इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। एंड ये जब आया था भाई साहब, जिनको नहीं याद है, इमरान हाशमी ने इसमें बहुत ही स्पेशल एक दाढ़ी का कट रखा था, मैंने तो ट्राई किया, आई डोंट नो किसी ने ट्राई करी, मेरे अच्छा भी लगता है।
अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए. सेल्फ बूस्ट, सेल्फ लव. चार बज के छह मिनट. कदी जहर गाना मूवी जहर से

0: हाँ भाई आए, अस्सलाम वालेकुम, मधुहा वाला कबीर एफएम 107 पे,
1: क्या हाल है?
0: 4:11 हो चुके हैं। एक भाई ने जो मुझे भेजा है, अभी मैसेज किया है, मैं पता करता हूँ उसका जो रिमिक्स गाना है क्या हमारे पास है कि नहीं, तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त ना आपको चाहिए। लेट मी सी के वेयर इट इज़। बाकी ये क्योंकि रेडियो जो है हमारी एक और पोर्शन में चल रहा है जहाँ पे मेरे ही घर वाले एफएम 107 वाले सुन रहे हैं, तो साथियों जिस कमरे में आप सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है रेलवे अनाउंसमेंट है, गाड़ी संख्या 107 आशी जी बताइए ये गाना कौन सी जगह पर है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त रीमिक्स, या फिर रूबी बता दें, दोनों की दोनों बड़ी होनहार क्या कहते हैं हमारी ये डिपार्टमेंट संभालती है म्यूजिक का सारा लेखा जोखा, उनसे बहस नहीं कर सकते हम, तो वो बता देंगे मैं चला दूंगा। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, टाइटल ट्रैक ऑफ आशिक बनाया आपने, ऑफकोर्स मेरे भाई, ये देखिए क्या देखूँ भाई मैं, वो अजनबी कौन सा वाला है, वो अजनबी कौन सी शमशाद आलम भाई। एक मैसेज है, साड़ी के फॉल सा, वो रीमिक्स थोड़ी है उसका। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड, मूवी राष्ट्र का माही माई, अरे क्या बताया है, अब कोई पूछे कि 4 बजे क्यों आते हो तो है, 4 बजे क्यों आते हो तो मेरी मर्जी, मेरा बस चले मैं सवेरे 10 बजे से लग जाऊं। एक मैसेज है कि आप इस टाइम कहां से, रोजी और रोटी दोनों ने मुझे मिलकर कहा कि आना पड़ेगा, तो मोहम्मद भाई मैंने बहस नहीं करी और मैं आ गया तो ये हुआ है मेरे साथ, एंड क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा ये बता तो दिया है मुझे, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर इट, ये कौन सा है भाई, ये भी पढ़ो ना, क्या लिखा आपने, कहो कि कुछ दुख ऐसे हैं ज़िंदगी में कि हम अपने हाल दिल नहीं सुना सकते। नहीं, हाले दिल बहुत बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ उसे 6-7 घंटे शो कराओ, कोई गल नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए कब आ रहा है बस लड़का, ये है। करीम शाह साहब, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, एक वॉइस नोट आया मेरे पास, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई कह रहे हैं कि क्या आप फुटबॉल का वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, भाई टिकट के प्राइस देखे हैं आपने इस बार के वर्ल्ड कप के, पिछले साल मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल 2022 तक चले जाते हैं, जब कतर में हुआ ना वर्ल्ड कप, दुनिया को तब समझ में आया कि इससे बढ़िया करा नहीं सकता कोई, और सबूत इस साल मिल रहा है लोगों को। एक मैसेज है कि अब आपके लिए रेस्ट नहीं लिया, आज मज़ा आएगा आपको सुन के, थैंक यू सो मच मेरे भाई मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो यस, तो मैं ये एक दो रिमिक्स और ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं चला दूंगा। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या बताया इन्होंने, एक सेकेंड मैं सोच रहा, सलमान खान का दिन भाई हम संडे को रखेंगे, संडे को इट इज़ ओनली सलमान खान, ओके। टाइटल ट्रैक के बुमरो बुमरो का रिमिक्स, ओके, और कौन सा बताया है इन्होंने, वो अजनबी, ये वो अजनबी कौन सा वाला, द ट्रेन वाला कह रहे हैं, एक सेकंड रुको मैं ज़रा टाइपिंग कर लूँ, ये वाला तो नहीं लग रहा है, एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब।
0: अरे भैया क्या हाल है,
2: कहाँ है यार, आप गरीबों को आप भूल
0: गए। मैं कहाँ पर हूँ, मैं भाई साहब 4-7 लगा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, हद हो गई करीम भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका है पर आपकी दाढ़ी तो है नहीं कुछ जहाँ तक याद है।
2: और मेरे भाई कैसे हाँ। हो सर?
0: बस अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया, आप सुनाए।
2: आप यकीन करो आते हो खुशी हो जाती है यार।
0: जजाकल्ला बहुत बहुत।
2: और आपके प्रोग्राम का मजा तब है जब लंबे रूट पे बंदा निकलता है ना इस हाँ। तरह सलवा में या शमाल रोड पे, मजा आ रहा है भाई।
0: थैंक यू सो मच भाई, निकल जाइए लंबा सफर काट लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सऊदी अरब के बॉर्डर से घूम फिर के आ जाइए।
2: मैं इसी तरह में निकला हूँ, देखा गर्मी भी सुबह 50 थी यार, अभी तो 47 हो गई, लेकिन यही 47 तकरीबन 48 तो चल रही है 2 दिनों से यार, अल्लाह खैर करे।
0: अरे अरे अरे अरे अरे, तो कोई बात नहीं, गर्मी आएगी जाएगी उसमें क्या टेंशन है
2: सर, माशाल्लाह सहूलतें भी तो है ना भाई,
0: और क्या एसी में बैठे हुए क्या कंप्लेन करना है ना करीम भाई, अब एसी में बैठ के आदमी क्या गर्मी गर्मी लग रही है, कुछ नहीं लग रही है
2: बिल्कुल। रात मेरे साथ बंदा बैठा हुआ तो बता यार इसको थोड़ा कम तो करो, मैंने कहा भाई हमारे साथ रहोगे साढ़े नाल रहोगे तो इश्क करोगे
0: ऐश करोगे, ये हुई बात, क्या बात है हमने
2: तो हम कबीर भाई के साथ रह रहे हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अच्छा कहानियां भी सुन रहे हैं, ऊपर से आप भेज भी रहे हैं हमें, तो हम यकीनन हम इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे सर।
0: थैंक यू सो मच करीम भाई। और क्या प्लान है भाई आज की, आज तो वीकेंड है
2: यार, देखते हैं अगर हो सकता है फिर रात को कंबल शंबल उठा के ना बिरयानी के साथ किसी कॉर्निश पे रात गुजारने का तो प्लान बना रहे हैं, देखते हैं लड़का लोग क्या बोल रहे हैं,
0: आवारा
2: इरादा तो है
0: बैकग्राउंड में यही बज रहा है सही है भाई, सही है, सही है, लगे रहो, लगे रहो मेरा भाई।
2: ओके सर, अल्लाह आपको खुश रखे, हम सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज़। और अनवर भाई के बाद, इनके बाद सॉरी, करीम भाई का मैसेज, अनवर भाई का, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? बढ़िया भाई। एक मैसेज, ओ उप्स, केड़ा उप्स? हाँ जी, $3,500 से शुरू है मामला टिकट का। आदमी इतने में डाउन पेमेंट करके भाई साहब कहीं प्लॉट विलॉट ले ले इंडिया में। एक मैसेज आया है वो अजनबी, अच्छा एक सेकेंड मुझे देखने दो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि जो गाने मिल रहे हैं वो हमारे लाइब्रेरी में आए कि नहीं, हमारी लाइब्रेरी में। तो मैं देख रहा हूँ इसका ओरिजिनल ट्रैक तो है, अरे मिल गया, अरे मिल गया, ठीक है। तो ये जो गाना था ये हमारी लिस्ट में मौजूद है शमशाद भाई की रिक्वेस्ट पे, चलेगा भाई बढ़िया। मिथुन का म्यूजिक, वो वाले मिथुन ने गाना रिमिक्स है हर किसी को, हैप्पी वीकेंड क्या।

बीच में मुझे वो चलाना चाहिए डीजे कभी डीजे कभी महंगा जी लो जी चल गया एफएम 107 पर 4:21 सॉरी मैं 5 बोलने वाला था वो अगर जबान स्लिप होकर निकल जाए तो फिर माफी चाहता हूँ पहले ही वो आदत नहीं है ना अभी है हो जाएगी शायद हाँ जी तो क्या लिया मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे बहुत सारे रिमिक्स के आइडियाज मुझे मिल चुके हैं और जितने रिमिक्स मुझे मिल रहे हैं मैं लगातार चलाता चला जा रहा हूँ मैसेज है क्या कार में बैठा दिल गार्डन गार्डन हो गया बहुत बढ़िया फरत भाई गाड़ी में इस टाइम बैठा करो भाई दिल्ली एक भाई ने मैसेज किया है कल की स्टोरी को लेके लेकिन मैं वो बयान पढ़ नहीं सकता उनका बहुत ज्यादा ही कॉमिकल हो गए हैं इरबाज भाई और एक मैसेज है मुखड़ा देखा देखा जरा तेरे कौन सा वाला गाना है ये कभी कभी रिमिक्स वाली सागो नहीं है मेरे भाई आई ट्राइड सर्चिंग और जो है मैं ढूंढ ढूंढ के चला रहा हूँ टेंशन फ्री रहो कोई टेंशन नहीं है एक भाई को कांटा लगा सुनना है मत करो भाई मत करो प्लीज इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है एक मैसेज है 4 का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई लंबी बिल्कुल प्ले होगा ये मगर उससे पहले एक जो रिक्वेस्ट आई एंड दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो लोगों को रट गया है ये हमेशा एग्जिट करते हुए चलाया है हमने शो में ना जाने कितनी मरतबा ये ओरिजिनल गाना आप सुनेंगे ना तो हो सकता है कि ओरिजिनल से ज़्यादा आपको रिमिक्स अच्छा लगे मैं सही बता रहा हूँ सुन के देखो आप मैं गलत हूँ तो फिर आप देख लो पैसे वापस ये लो सुनो दिस इज वन ट्रैक विच इज बेटर देन द ओरिजिनल खुला कह रहा हूँ भाई चैलेंज डीजे एनवाईके ने ऐसा कर दिया ना इसे जिसकी हद नहीं ओरिजिनल गाना थोड़ा स्लो पेस में स्टार्ट होता है वो भी ठीक है एक फील के लिए मगर दिस इज बियॉन्ड क्रेजी क्या रिमिक्स है भाई इमरान हाशमी के हम दोनों के फेवरेट एक्टर है बिल्कुल बहुत सारे हो गए भाई बहुत सारे हो गए ये वाला सुनो इट इज बेटर देन द ओजी ट्रैक

देखा मैंने कहा था ना, दिस इज बेटर देन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग. ऐसा बहुत गानों के लिए कहा नहीं जा सकता, पर ये उनमें से एक जरूर है. एंड क्या है कि एक दो मेरे पास मैसेजेस आए हैं, लोगों ने ओरिजिनल ट्रैक बता दिए हैं मुझे. एक भाई ने बहुत बढ़िया गाना बताया, भाई क्या नाम है इनका, हमजा भट्ट साहब क्या है जो आपने मुझे भेजा है, जो ये पूरी की पूरी जो कवाली है नुसरत फतेह अली खान साहब की, ये ओरिजिनल ट्रैक है मेरे पास, रीमिक्स नहीं है. बट ये रीमिक्स डालने का आइडिया आपने अच्छा दे दिया है. इंशाल्लाह जब ये हम अपलोड कर देंगे तो जरूर चला देंगे आपके लिए. मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग कबीर भाई, आज जरा लेट हो गया, बिजी हूँ जरा, कोई बात नहीं, मेहनत करना अच्छी बात है. वाली वगैरह साहब, एक और मैसेज है जावेद साहब, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड. एंड देन एक वॉइस नोट है, उसके बाद एक मैसेज है,

अच्छा जय अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप आज रिमिक्स का दिन मना रहे हैं और सलमान खान का दिन कब होगा? सलमान खान का दिन मनाएंगे भाई संडे को बढ़िया करके, ठीक है? सल्लू भाई गाने चलेंगे, एक से बढ़कर एक चलेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है? और एक भाई कह रहे क्या कबीर भाई, भाई मस्ती तो करूंगा ना भाई, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई? अजहर हुसैनी भाई मैं ऐसे छोड़ता नहीं क्या वंटा। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कबीर भाई? ये बताइए कि आप किसकी बात कर रहे थे, किसने कह दिया डॉक्टर की डिग्री वाली बात? अरे हमारे यहाँ बहुत सारे बहुत ही चरम सीमा पे पहुंचे हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनमें से एक भाई साहब की मैंने बात सुनी, कहने लगा रहा भाई कि डॉक्टर की डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी कतर में ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके दिमाग में ये बात बहुत कूल लगी होगी और उसने कह दी। अरे ऊपर वाले प्लीज। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? भाई मेरा भी एक गाना है, बताइए कौन सा गाना है? देखो रिमिक्सेस का मकसद क्या है, क्योंकि आज वीकेंड है तो वाइब थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल हाई ऑक्टेन जो गाने हैं वो सारे के सारे चलेंगे। एक भाई ने बताया कि भाई अगर ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा कि सारे के सारे फिर से इमरान हाशमी, मैं कुछ नहीं कर सकता, रिमिक्स बढ़िया बन रहे थे भाई, मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी, मैं विशेष फिल्म नाम थोड़ी है मेरा। अब इतनी सारी पिक्चरें जो भी आई हैं, एंड आई डोंट नो, पिक्चर कहने मजा आता है, फिल्म कहने मजा नहीं आता। दो लोगों ने मुझे एक और रिक्वेस्ट करी है, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, तो आई एम गोना प्ले दैट। रमेश यादव भाई कहते हैं गुड इवनिंग कबीर भाई, और फिर राशिद भाई कहते हैं सलाम कबीर भाई, वालेकुम सलाम भाई। नईम भाई वालेकुम सलाम, एंड ये जो भाई साहब हैं अजहर भाई, मजाक चल रहा है अजहर भाई, चिल एकदम अजहर भाई, ऐसे उससे नहीं, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। अब जरा जो है मेरा फ़ोन क्यों सुन रहा है मेरी बातों को? अरे रुक जा भाई, बताइए, अपने आप मेरी बातें सुनने लगा है। तो ये जो अगला ट्रैक है, ये पहला और मेरे ख्याल में एक लौता गाना है जो रिसेंट ईयर्स में, जिसको रिमिक्स का टाइटल भी मिला, साथ में लिखा रॉक विद मी, रॉक वर्जन को रॉक विद मी, बहुत बहुत बढ़िया अल्टीमेट रिमिक्स किया गया था। और जिन भाई ने मुझे बोला उनका नाम मैं ले देता हूँ, किधर गया भाई का नंबर, ओके रहे, तो ये मोहम्मद सला महफूज आलम साहब हैं। महफूज आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये रिक्वेस्ट करने के लिए, तो भाई की रिक्वेस्ट पर चल लगा ये वाला रिमिक्स बढ़िया वाला, ये है तोशी की आवाज, तोशी सबरी एंड द सबरी ब्रदर्स ऑफ कोर्स रीमिक्स, इनफैक्ट रॉक विद मी वर्जन ऑफ माही। रास टू द मिस्ट्री कंटिन्यूज, स्पीकर हालेंगे भाई, हाय हाय।

आज द मिस्ट्री कंटिन्यूज. याद है इस मूवी का फेवरेट डायलॉग क्या था? तुम अशुद्ध अंदर से सड़ चुके हो. एक भाई आए हैं, प्रधान आ गए, प्रधान कह रहा कोई भी सॉन्ग अच्छा नहीं था. मैं गा दूं? इनको चाहिए मेरी मर्जी का चलना, सिर्फ मुझे जो पसंद है वही दुनिया को पसंद आना चाहिए. कैसे नहीं आ रहा? मैं गा के सुनाऊंगा. क्या नाम है इनका? ये गा के सुनाएंगे. आ जाओ भाई लाइन पे, आ जाओ, आप गा के सुना दो. क्या नाम है इनका? नाम इन्होंने लिखा ही नहीं है. अब्बास खान साहब. अब्बास खान साहब आ जाओ, माइक देता हूँ. कमाल हो गया. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इन्होंने भी गाना बताया, हीरो भाई. वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह. एंड हैप्पी वीकेंड सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, भी ट्यून किया है सबने. एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई आज की कहानी क्या होगी? आज की कहानी बताता हूँ, 5:30 बजे आएगी. वीकेंड स्पेशल है भाई, अब इतना समझ जाओ. मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि उस कहानी के आखिर तक जब आप पहुँचेंगे तब आपको होगी हैरानी. और उतना ही मज़ा भी आएगा. सो यू हैव टू स्टिक विद मी फॉर दैट. उसमें टाइम है, अभी 1 घंटा बाकी है. टेंशन नहीं, वो भी आ जाएगी अपने आप चलते फिरते. एक भाई ने मैसेज किया, मैं 27 मिनट लेट हो गया. कोई बात नहीं, मैंने कौन सा पंचिन पंच आउट कराना है अजमल भाई. कोई बात नहीं, इतना लेट चलता है. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, तेरा ही करम. मैं ये भी गाना ढूंढ रहा था मेरे भाई, एक सेकंड रुको, मैं आपके कहने पर ढूंढ ही लेता हूँ. तेरा ही करम, पर ये है कौन सा गाना? मुझे भाई ये मिल तो नहीं रहा है, इसका रीमिक्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास. 4 दिनों के बाद. हॉरर स्टोरी नहीं है भाई, हॉरर स्टोरी नहीं, बिकॉज मुझे जो हॉरर स्टोरी मिला ना, मुझे जो किक नहीं आई. कहाँ से नाम निकल दिया? कहाँ से नाम निकाल दिया मतलब? अभी आपने तो बोला सॉन्ग के बारे में, तो मैंने आपका नाम निकाल दिया. मैंने कहा आपको खुद शायद गाना हो. डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द स्टोरी. अरे बिल्कुल नहीं भूलेंगे. जिशान शरीफ भाई, 4 दिनों का प्यार. और भाई ये भी एक बढ़िया रिमिक्स है. पहले मैं एक रिमिक्स चलाता हूँ जो हमारी ही टीम की आयशा ने मुझे बताया, बढ़िया गाना है यार. ये भी बहुत बढ़िया रिमिक्स है. आई एम गोना प्ले दिस फर्स्ट. सो आशीष जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपके लिए ये रहा. बढ़िया सजेस्ट किया भाई, हमारी म्यूजिक टीम के लिए शार्ट आउट. 4:37 रूबी और आशी हमारी टीम के लिए शार्ट आउट. शार्ट आउट टू यू गाइस एंड हैप्पी वीकेंड पूरी जनता को. ये रहा

फील आ रही है पूरी डीजे वाली, सही बता रहा हूँ। हैप्पी वीकेंड पब्लिक के मैसेजेस, थैंक यू सो मच इतना इतना प्यार देने के लिए। चार बजे से फरद भाई कह रहे हैं डीजे वाले वो मेरा गाना चला दो। कौन सा वाला गाना है आपका? एक सेकंड को देखने दो, कौन सा वाला प्लीज स्पेसिफाई। ये तो आपने डीजे का नाम लिख दिया है, मैं जरा देख भी लेता हूँ। नो जी, इस सांप वाले डीजे का अभी हमारे पास कोई गाना नहीं है। और मुदस्सर भाई लिखते हैं, कबीर भाई जब आप आते हैं तो अच्छा लगता है, प्लीज़ आप जो हैं 3 बजे से शो शुरू करें। 4 बजे से मतलब 1 घंटा और पीछे से आ जाऊँ है, मतलब आदमी सोए नहीं है ना। भाई आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच। हिशाम साहब लिखते हैं, फजील भाई किधर है? फजील भाई छुट्टी पर हैं, फजील भाई ऐश कर रहे हैं, फजील भाई आराम से आएंगे, तो उनको आराम ही करने दिया जाए कुछ वक्त के लिए। वो हमें ये अपनी बागडोर संभाल के गए हैं, हम दूसरे पायलट हैं तो उनकी जगह आगे बैठ गए हैं, एंड इन्होंने बता ही दिया है तो इनका रिमिक्स भी चला देते हैं। अगला रिमिक्स है फरद भाई की तरफ से, मीर फरद साहब सुनना चाह रहे हैं गाना, ना जाने किसको डेडिकेट करेंगे। फरद भाई you take care of this, I don't know who are you dedicating it to, but zati mamla hai, main kuch nahi bolunga. Remix, वैसे इसको नाम दिया गया था, remix नहीं दिया गया था, इसको किलोग्राम मिक्स दिया गया था नाम, in case you don't know, जुदाई जन्नत का ये गाना, and the remix is definitely worth it. इसका वीडियो भी आया था भाई, remix का वीडियो, ये ट्रेंड वो स्टार्टेड बाय विशेष फिल्म्स, वरना कहाँ आता है, वो मोन्टाज बना देते हैं वीडियो को चला देते हैं, पर इसका अलग से सेपरेट वीडियो अवेलेबल था, समझ रहे हैं आप?

चाली ऑन द क्लॉक में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे गुड इवनिंग एंड हां हैप्पी वीकेंड सबसे पहले कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं, बहुत ही कमाल के मैसेजेस हैं। एक तो फरद भाई ने लिख दिया, वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन मैं वेट करूंगा कि गाना चलेगा साजन साजन धीरी दुल्हन तुझको बुगारे आ जा। ये इसका मैं किस दिन बता, मेरी अगर जे मेरी अड़गी गरारी उस दिन मैंने ये चला देना है गाना, बता रहा हूँ मैं। जिस दिन मतलब मैं कहूँगा मैं क्या कहते हैं जब वो लास्ट साइन ऑफ करते हैं ना, साइन ऑफ के टाइम पे लगा के चला जाऊँगा मैं, फिर देख लूंगा कितने लोग सुनते हैं इसको। एक दिन मैं ये करूंगा प्रैंक बढ़िया वाला, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी 666-22107 पर आप भी अपना गाना भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने भेजा है, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के गाने ऐसे कि मिल नहीं रहे हैं। तो आप अपना नाम लिखिए, स्पेस जी के गाने का नाम लिखिए और भेजिएगा अपना रीमिक्स। आज जो है रीमिक्स वाला दिन है, आज रीमिक्स बजाए जाएंगे बढ़िया करके 666-22107 पर। एक भाई ने मुझे बोला कि धूम मचाले का रीमिक्स, रुको मैं जरा देखना, तो मुझे है इसका अरेबिक वर्जन भी है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। एक और देखो, इसका रीमिक्स वर्जन तो नहीं आया, बट आई थिंक धूम 3 का जो गाना था जो अदिति सिंह शर्मा ने गाया था, वो रीमिक्स से कम नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम स्पीकरों पे एक्सप्लोड होने वाला गाना है, बढ़िया गाना है। तो

हो सकता है कि वो चला दूं मैं, इफ यू वांट वो वाला चला दूं क्या? इफ यू रिमेम्बर जो धूम 3 आई थी उसका जो टाइटल ट्रैक था वो रिमिक्स से कम नहीं है भाई, जिसे नहीं सुना है. सो इफ यू वांट क्या नाम है इनका, नीज भाई, हाँ ओके ठीक है ठीक है, तो मैं ये लाइनअप कर देता हूँ. और ये हीरू भाई कह रहे हैं मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी कौन सा वाला, वो तो रिमिक्स, तो रैप है, फिर वो रैप वाला गाना कह रहे हो क्या? दैट इज रीमेक. इनफैक्ट एक वर्ड और है रिडक्स, वही वाला कह रहे हो क्या? ओके लेट मी सी किधर गया. मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी, किधर गया ये रहा. रोको जी, तो ये बैक टू बैक गाने चला देता हूँ भाई मैं, ये दो गाने दो रिमिक्स तो मिल चुके हैं. मीनवाइल एक और किसी ने बोला था आशिक बनाया आपने का रिमिक्स, रुको ये भी ले लो भाई, टाइम ही निकल जाना है आज तो मुझे लग रहा है, ऐसे ही कट लेगा. एक कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा. ओके ये दो गाने बैक टू बैक, फिर मिलते हैं ज़रा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है. यहाँ भाई कह रहे हैं हैप्पी वीकेंड सबको, अब लगा दो आदत फ्रॉम हनी सिंह और रीमिक्स. रीमिक्स मैंने चला दिया था, आदत हनी सिंह का रीमिक्स नहीं है तो मैं चला नहीं पाऊंगा यहाँ भाई, लेकिन तीन गाने बैक टू बैक चलने वाले हैं, दो गाने बैक टू बैक चलेंगे फिलहाल. तो इसके बाद रिमिक्स आएगा, धूम मचा लेगा, नॉट एग्जैक्टली अ रिमिक्स मगर द वर्जन विच अदिति सिंह शर्मा सैंग. ये हीरो भाई की रिक्वेस्ट पे, भाई हीरो ये लो मेरा भाई.

Juta Japani. अच्छा इस गाने के बारे में एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ. एक फन फैक्ट इस गाने के बारे में ये है कि ये जो गाना है ये ऑफकोर्स कृष्णा का गाना है. एक इंडियन ने लिखा है गाया है इसको. इसको जो इसकी ऑडियो मास्टरिंग और पूरी मिक्सिंग हुई है वो एक हमारे पाकिस्तानी भाई ने करी है. और एक गाना शूट हुआ है जापान में. इनफैक्ट आई हर्ड समवेयर की मास्टरिंग मेरे ख्याल में इसकी रशिया में भी हुई है. तो बहुत सारी मुल्कों का हाथ है इस गाने को बनाने में. तो दिस वॉज दिस ट्रैक. टाइम थोड़ा कम है सो बैक टू बैक नेक्स्ट ट्रैक. ये जो मुझे भाई ने बोला था एक सेकेंड इनका नाम कहाँ गया भाई. भाई इनका नाम है फैसल. नाम है फैसल भाई. आपके लिए गाना फैसल भाई ने रिक्वेस्ट करती है इस गाने की रीमिक्स ट्रैक ऑफ दिस वर्जन. ऑफकोर्स इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई. तोड़ ही नहीं है. हैप्पी वीकेंड पब्लिक. मैं आज आपका 4 to 5 का डीजे दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ. दिहाड़ी पे 666-2107-452 on the clock. मैं दोहा वाला कबीर स्टे.

अच्छा एक आइडिया है मेरे दिमाग में, क्योंकि हम सलमान खान वाला तो सेलिब्रेट करेंगे संडे को. अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, भाई ने लिखा है कि बैली साग. देखो बैली सागो वाले जो गाने हैं ना, वो सारे के सारे मैं सोचता हूँ एक पूरा दिन रख देता हूँ उनको, क्योंकि इनके गाने बड़े कमाल के हैं. लेट्स कीप इट दैट वे, है ना. क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसा रीमिक्स नहीं मिला. एक मैसेज आया, कबीर जानी क्या याद दिला दिया आशिक बनाया आपने. वालेकुम अस्सलाम, इसीलिए तो बैठे भाई हम एहतशाम भाई. एक और मैसेज किया भाई ने, दिल मतलब खोल के रख दिया भाई ने. कहते हैं दिल से देसी सुनकर बहुत सीखने को, क्या बहुत सीखने और समझने को मिलता है. कतर में नया आया हूँ. अच्छा अपना कोई भी नहीं है, दिल से देसी जब सुनता हूँ तो अकेलापन दूर हो जाता है मेरा. क्या हाउस ड्राइविंग का काम है. अच्छा मुंबई दिल्ली ऐसा फील होता है. थैंक यू सो मच भाई, अपना ख्याल रखिए. और अभी अकेले हैं आप, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही लगता है शुरुआत में. आप भी सोच के आए होंगे दो साल रहूँगा फिर यहीं होके रह जाएंगे. प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरा भाई. तो बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम दिस शो, जो अगले शो में एंट्री लेनी है, तो एक भाई ने मुझे बोला था धूम मचाले का रीमिक्स. आई डोंट हैव इट, मगर धूम थ्री का टाइटल ट्रैक जरूर है, विच इज़ क्लोज टू अ रीमिक्स, वैसे ही बनाया गया. तो आई एम गोना प्ले दैट एज एन एग्जिट ट्रैक. एलो जी, आज तो फुल डीजे वाली फीलिंग आ रही है. एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा मैं.

0: आज एक्स्ट्रा लूंगा भाई साहब। नहीं नहीं नहीं नहीं, 10 रियाल से एक कम नहीं।
1: You know that thing must be 100 years old.
0: देखो रिमिक्स वाली फील नहीं है इसमें। और ये तला भाई कह रहे थे ताल के रिमिक्स, भाई था नहीं मेरे पास, नहीं तो ताल से ताल मिला लेता मैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चलो जी कश्ती खींचो, आज दूसरे शो की तरफ चलना। चला दे रहा हूँ, ये पीछे कौन चप्पू चला रहा, रोक दिया, चला दे रहा हूँ। आ गया बस, किनारा आ गया। आप है ना हमारे साथ? बहुत गर्मी हो रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, इतनी मेहनत कर रही हैं आपके लिए, सब ठीक तो है? हैं,

0: अब सरदार अपने कबीले में आ गया है. अस्सलाम वालेकुम. 974 हैप्पी वीकेंड. पांच बज के चार मिनट हो गए, उल्टा पढ़ने वाला था मैं. 17:04 और फरत भाई लिखते हैं लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को. और एक भाई हैं, इन्होंने क्या लिखा है भाई, अब 7272 नहीं बोल सकते. वही तो क्या करें भाई, अब वो 7272 नहीं बोल सकते. सवेरे सवेरे बोल लिया करते थे, पर वो है कि वो ऐसी छाप छोड़ दी है ना, कोई भूल नहीं पाएगा मेरे भाई. अजहर हुसैनी भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आप बैठी में बात करना चाहता हूँ आपसे. नसीम भाई लिखते हैं क्या बात है, बड़ा रोमांटिक हो रहा है. कबीर भाई नहीं भाई, 4-5 मेरी मजबूरियाँ होती हैं. और मोहम्मद आजाद भाई लिखते हैं फुल एनर्जी सॉन्ग, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम. और ये भाई कहना है तुसी ना जाओ, मैं किधर जा रहा हूँ. फवाद भाई रुक जाओ, मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता भाई, वो अभी अधिकार चलने वाले ना, आपको कॉल बैक करता हूँ मैं. इमरान भाई थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए. एंड भाई रैप सब में अलग है, डांस करने पर मजबूर कर देता, थैंक यू भाई. ये फरहत भाई कहाँ गए, फरहत भाई को हम ज़रा 4 दिल भेजें, 1, 2, 3, 4 भाई लिफाफे में भेज रहा हूँ, गिरने नहीं चाहिए ठीक है, संभाल के रखना इनको. एक दबंग एंट्री कबीर भाई, थैंक यू सो मच भाई. तौफीक साहब अलवखरा से. ओके, तो इस शो का निज़ाम तो आप जानते ही हैं. अभी जो है 11 मिनट और 2 सेकंड शाम के अधिकार, ऑफ कोर्स दुआओं से शुरुआत, एंड उसके बाद आपसे मुलाकात होगी. तो आप जो है एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते रहिएगा, अपने लिए तो मांगिए, जी भर के मांगिए, पर वीकेंड का दिन है, दुआएं मांगिएगा सबके लिए. और ये भी दुआ मांगिएगा कि कोई भी ऐसी खबर ना आए कि एक्सीडेंट हो रहा है. सब ड्राइव सेफली प्लीज़, मूड जो है ना वो ख़राब रहता है जब सड़क पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो प्लीज़ ड्राइव सेफली. वीकेंड है, जोश ज़्यादा है मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है भाजी, ठंड डट के रहना है. मिलते हैं 11 मिनट के बाद, ठीक है, स्टे ट्यून्ड.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताजा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाप्त कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर.

करते हैं बोले तो उस्मान भट्टी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया भाई। फला साहब कह रहे हैं अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, बिल्कुल भाई, आमीन आमीन आमीन। नावेद साहब का मैसेज, नावेद भाई लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, सलाम ब्रो, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दबंग

0: स्टिल स्टिल ये कहानी वीकेंड वर्दी है, वीकेंड स्पेशल स्टोरी है, ये आपने लाइव सुनने ही सुनने, वेरी वेरी स्पेशल स्टोरी। तो ये स्टोरी अगर आप मिस कर देंगे तो भाई हो गया काम पे, ये वीकेंड की स्टोरी मिस मत कीजिएगा। मेरे पास जो एक्चुअली में हॉरर स्टोरी है वो मैंने बचा के रखी क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च, जब तक मैं कन्विंस नहीं जाऊंगा तब तक नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे भी मजा आना चाहिए ना। एक वैसे भाई कल एक्सीडेंट हो गया मेरी कार को, अक्सर क्या है आकर मार दिया पूरा अंदर हो गया। अरे मेरा भाई ख्याल रखिए मेरा भाई, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। एक मैसेज है, इस्लाम भाई वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड सलमान भाई, हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, एंड एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये सवाल जो है मैं इनफैक्ट अभी ऑफिस में पूछूंगा जाके, सारे चौकन्ने हो गए होंगे, कान खड़े होंगे, क्या पूछने वाला है। तो मैं पूछने वाला ये हूँ कि जब आपका आपको किसी के बारे में कुछ पता लगता है, कि मान लीजिए आपके बारे में कोई बात हो रही है, तो आप क्या जाके कन्फ्रंट करते हैं, मतलब सामना कर लेते हैं उस चीज़ का कि भाई कैसे बोल दिया यार मेरे बारे में, ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर आप जो है एक्टिंग करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दोनों टाइप के लोग मैंने देखे हैं और इनफैक्ट यहां पर रहते रहते मुझे लगता है कि लोग जो है कन्फ्रंटेशन कम कर देते हैं, रादर देन दैट लोग एक्टिंग करने लग जाते हैं कि अरे हमें मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, पता ही नहीं मेरे पीठ पीछे किसने क्या बोल दिया। तो आप क्या करते हैं जब आपको पता लगता है कि आपके बारे में कुछ बात हुई है, तो आप क्या कन्फ्रंट करना पसंद करते हैं या फिर आप एक्ट आउट कर जाते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, होने तो जो हो रहा है। किस कैटेगरी में आप आते हैं? मैं खुद से शुरू कर लेता हूँ। आई एम समवन हु विल कन्फ्रंट, भाई मेरे से नहीं होता, मेरे ना फिर खाना हजम नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं बताइए। एक कॉल आ रही है, फिलहाल कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अरे क्या बात है तौफीक साहब, क्या चल रहा है पार्टी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब है
0: बढ़िया बढ़िया, चलता रहना चाहिए, बस यही चाहिए।
1: अभी तक की दावतें खत्म नहीं हो रही।
0: अरे कर लो खत्म भाई, अब तो बकरा भी नहीं पट गया होगा। अब तो कौन सी दावत कर रहे हो भाई, अब क्या सलाद खिला रहे हो, क्या हो गया?
1: नहीं तो यार भूल गया, तुम आए नहीं ना इसलिए भूल गया, हुआ शादी नहीं हुआ था बेटे का। वही मैं पूरा अभी तो दावतें देता है ना सब।
0: चलो दो दो दावत दो मेरे भाई, दावत एंजॉय करो, बढ़िया है मेरे भाई, अच्छे से एंजॉय करें। और बताइए तौफीक भाई।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बस तुम्हारा क्वेश्चन का उसके लिए फोन किया।
0: बताओ बताओ बताओ, हाँ आप किन में से बताइए।
1: जब मतलब बात करते कोई, जब मैं आला तो घुसता हूँ, बस मैं बस कुछ नहीं बोलता हूँ, बोले एक दूसरे के, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बस सुन लिया थोड़ा, मतलब मुनीसा वो लोग कुछ बोल रहे या अच्छा बात या बुरा बात, तो बाद में चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, वो लोग भी चुप हो जाते हैं, फिर दूसरा गपशप मारते हैं।
0: अच्छा ठीक है,
1: तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ,
0: कुछ नहीं, आपके बारे में भी बात हो तो कुछ नहीं बोलते।
1: अच्छी बात है बुरी बात हो तो आप, मतलब मैं पूरा नहीं जान, मतलब मेरा नाम भी हो तो ऐसा था करके ना, थोड़ा मामूली सा शक हो जाता बस, फिर मैं इसलिए गुनाह नहीं करता हूँ, मैं बोल छोड़ो जो बोल दिया बोल दे, ऐसी जो अगर अच्छा बात नहीं है तो बुरा बात करता है तो ऊपर वाले देखता है ना, इसलिए बस मैं बात खाली हो जाए अल्लाह करे।
0: अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया तौफीक साहब, बढ़िया दावत एंजॉय कीजिए, बढ़िया करके मटन चिकन खाइए, ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और तौफीक भाई के साथ प्रिंस भाई ने मैसेज किया, हम उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर ये गेम खत्म होता है और हमारा गेम स्टार्ट होता है। अरे मेरा भाई ये तो मेरे प्रोमो की तरह हो गया, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक मैसेज और आया है, लिखा है कि अगर एक्टिंग, अगर एक सेकेंड, अगर एक्टिंग ना करेंगे तो फाइट हो जाएगी, इसलिए अनजान बन जाओ। अच्छा अनजान बन जाते हैं, ठीक है नवीद साहब, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मैटर ही दूसरा हो गया, फिर बेसिकली मेरा मैटर थोड़ा सा लगे अब्दुल नवीद भाई। एक और मैसेज आया, इन्होंने कहा है कॉल मी, साजिद भाई मैं अभी कॉल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड रुको, ये मैंने लगा दी कॉल, लग गई कॉल। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी प्लीज अभी आएगी, सबर सबर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया मेरे भाई, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक
0: जी। जनाब बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या आप सामना करते हैं, मतलब आपके बारे में कोई पीठ पीछे बात हो रही है, कन्फ्रंटेशन वाले आदमी या फिर आप कहते हैं जान दो यार देखी जाएगी?
2: हमारे पीछे तो पूरी दुनिया बातें कर रही
0: है। अरे मेरा भाई स्टार है।
2: नहीं हम मोगैम्बो है।
0: हाँ मोगैम्बो है। तो मोगैम्बो सामना नहीं करता, मोगैम्बो क्यों नहीं करता सामना, क्या दिक्कत क्या है?
2: नहीं करता
0: क्यों? अच्छा मतलब क्या बचपन से ऐसे हो या बड़े होते होते ये किरदार में एक चीज आ गई है, क्या चीज, दिक्कत क्या है?
2: नहीं बस मोगैम्बो का नाम बहुत अच्छा लगता है कबीर भाई।
0: अपने आप से खुश है भाई, बोलते रहो, मेरे

0: दूसरे से सुनो।
1: अच्छा तो कभी कभी वैसे किया है कन्फ्रंटेशन के, पता लग गया किसी ने आपके बारे में बोला तो आपको लगा कि चलो इससे जाके जरा बात तो करूं मैं कि क्या बात हो गई भाई, कैसे बात कर दी मेरे बारे में, ऐसा कभी नहीं हुआ?
0: वो आ जाता है फिर उसको सामने आ जाता है, उसको कहता है कि भाई आपने जो भी बोला है अच्छा किया है।
1: अच्छा किया है
0: हाँ डरते है ना, वो मारते फिर मारते पीटते फिर क्या करते है।
1: अरे भाई अलग किस्म की सीन चल रहा है ये तो साजिद भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही है। वैसे भी
0: कबीर भाई,
1: हाँ बोलो ना।
0: माजरा अच्छा तो आपका बात काट दिया।
1: नहीं नहीं बोलो बोलो प्लीज।
0: हम तीन दोस्त आज ऑफ डे है।
1: अच्छा
0: ठीक है।
1: अच्छा
0: तो कौन सी बीच पे जाए,
1: कौन सी बीच पे जाओ? अच्छा 4x4 गाड़ी में जा रहे हो, सेडान में जा रहे हो, कौन सी गाड़ी में जा रहे हो?
0: नहीं हमारे पास गाड़ी है 6 Pro Cherry।
1: अच्छा तो देखो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने अजरबैजानी बीच या मरूना बीच नहीं देखा है तो देख के आओ भाई, बहुत बढ़िया है, शानदार है, थोड़ा अलग फील आएगी क्योंकि बाकी बीचेस तो चलो ठीक है, सीलाइन विलाइन तो दुनिया जाती रहती है। अजरबैजानी जाइए, मरूना बीच जाइए, और कहाँ जा सकते हैं आप? मैं इनलैंड बोलता लेकिन इनलैंड सी के लिए 4x4 लगती है, मैं भी इस वजह से नहीं जा पाता, बहुत टाइम पहले गया था मैं, बट वो बहुत खूबसूरत
0: है। अजरबैजान बीच तो हमने नहीं देखा लेकिन नाम बहुत सुने इस बात से, मुगैम बहुत खुश हुआ।
1: हाँ क्या बात है, मुगैम बहुत खुश हो गया, ठीक है भाई जाओ, बढ़िया है, बढ़िया है, सही सिस्टम है वहाँ पे, अजरबैजानी बीच है। बिल्कुल बेशक मेरे भाई, आप भी याद रखिएगा, जजाकअल्लाह, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई जा रहे हैं अज़रबैजानी बीच, और एक मैसेज आया है, अमन भाई कैसे मेरा भाई, गुड इवनिंग, लगता है क्यों मुगैम्बो चोर है, मुगैम्बो चोर है। एक और कॉल आ रही है, और कैसे हैं आप जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई कबीर, मेरे भाई
1: क्या हाल है, प्रिंस भाई क्या चल रहा है,
2: क्या चल रहा है, क्या चल रहा है,
1: क्या बताएं, क्या
2: बताएंगे तो आप देख नहीं पाओगे, सुनाएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, ये अच्छा लगा मुझे, वाह वाह वाह वाह वाह, जग्गा जासूस। पर प्रिंस भाई आप क्या कन्फ्रंट नहीं, कन्फ्रंट तो कर लेते होंगे, मुझे जहां तक लगता है आपकी थोड़ी है कन्फ्रंटेशन का मामला, मुझे ऐसा लगता है।
2: ये कन्फ्रंट होता क्या है पहले तो मुझे यही बता।
1: देखो ऐसा होता है कि किसी ने भाई बीट पीछे बात कर ली, मुझे पता लग गया इसने बात करी है, तो मैं तो जाके भाई बोल देता हूँ हाँ भाई क्या बात हो गई, तो ये है।
2: आप मेरी बात का अगर यकीन करोगे तो मैं बताता हूँ।
1: बताओ बताओ, मैं यकीन करने बैठा हूँ भाई, इसी बात के तो पैसे हैं, बताओ।
2: बढ़िया भाई, मैं अगर मेरे पीछे कोई पीठ पीछे ऐसी कोई बात करे जरूर वाली बकवास वाली, आई फील वेरी गुड।
1: यू फील वेरी गुड?
2: हाँ
1: क्यों भाई,
2: इनफैक्ट वेरी एक्सीलेंट,
1: वेरी एक्सीलेंट, उसकी वजह क्या है?
2: हम भी काबिल है कि कोई हमारी बुराई करे।
1: अरे अरे अरे अरे अरे भाई साहब,
2: होती है जिसका बड़ा नाम होता है।
1: अरे भाई साहब वाह वाह वाह वाह वाह, प्रिंस भाई आई कैन टोटली बिलीव दिस, आई कैन टोटली बिलीव दिस। ये चिढ़ाने का अलग तरीका है कि सामने वाला पैराग्राफ लिखे और हम लिखते हैं और सुनाओ।
2: मुझे इसी में मजा आता है।
1: ये भी सही है वैसे, ये भी सही है। इसके लिए लेकिन पता एक अलग अलग किस्म का थोड़ा सा वो चाहिए, बेचैनी नहीं होती ना आपको, बेचैनी किसी किसी को बहुत ज्यादा होती है, जैसे मेरे मैं छटपटाने लगता हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो बात करनी पड़ेगी।
2: अरे नहीं भाई, हाँ। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ ना, जो कोई आपको आपको आगे कोई ना कोई तो कंसर्न करेगा कि फलां बंदे ने आपके पीठ पीछे ये बात की है।
1: बिल्कुल।
2: और जो भी आगे आपको बताएगा वो आपका दोस्त ही होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो आप उससे सिंपल सा सवाल पूछ सकते हो, जब उसने मेरी बुराई की तो फिर तू मेरा काहे का दोस्त है,
1: तूने
2: क्या कर रहा था, बुराई सुन के आ गया?
1: ये मैं करता हूँ भाई, ये मैं पूछ लेता हूँ कि तुमने क्या किया भाई वहाँ पे खड़े खड़े, ये तो मैं पूछ लेता हूँ भाई, ये तो इतना तो करता है भाई आपका, ये चीज तो है। पर वो जो है ना कि बिल्कुल इग्नोर कर देना, बहुत सबर चाहिए इसके लिए, एक अलग किस्म के अंदर से ताकत चाहिए।
2: मजे आते हैं, देखो इग्नोर नहीं, इसको कहते हैं कोई चीज जलते हुए तवे पे रख देना
1: और छोड़ देना धीमी आंच पे।
2: आप समझ सकते हो किस चीज को रखना था।
1: बिल्कुल, वो भी धीमी आंच पे,
2: धीमी आंच पे भाई,
1: उल्टे तवे पे, सीधे तवे पे नहीं, उल्टे तवे पे,
2: और तवा एकदम बिल्कुल रेड हॉट हो।
1: हाँ हाँ।
2: और उसमें नीचे आंच जलती रहे, आप उसपे सामने वाले को बैठा दो।
1: हाँ हाँ, मजा मजा आ गया
2: मुझे, काबिल समझा,
1: ये इमेजिन करके मजा आ गया मुझे, पता है इतने सारों को मैंने तवे पे सोच लिया,
2: और ज्यादा मजा आता है, बढ़िया लगता है।
1: मैंने बहुत सारों को इस तवे पे सोच लिया प्रिंस भाई आपके चक्कर में, तो मैं बड़ा खुश हूँ।
2: एग्जांपल दूं?
1: हाँ बताइए, एग्जांपल दीजिए प्लीज।
2: दीदी वाला।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश,
2: वाह दीदी
1: क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, आपने तो मुशायरा कर दिया हमें, वाह वाह वाह, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं प्रिंस भाई। خوب جمے گی, خوب جمے گی اپنے, خوب جمے گی. ٹھیک ہے,
2: انشاءاللہ انشاءاللہ.
1: ٹھیک ہے پرنس بھائی, کہانی سنیے گا آج کی بڑی خاص ہے, یو ول لو اٹ.

0: ये भाई कहानी का टाइम हो रहा है, ये बंदा फोन ही नहीं रख रहा है।
1: नहीं बट यू विल लव इट, आज की कहानी आपको बहुत मजा आएगा, सुनिएगा जरूर।
0: ऑब्वियसली उम्मीद करता हूँ कि आप वीकेंड आज बस धूम मचा देंगे
1: इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह
1: एकदम धनिया बोलेंगे भाई, इंशाल्लाह। टेंशन नहीं भाई,
0: गर्दा उड़ा देना भाई,
1: गर्दा उड़ा देंगे भाई, एकदम लटका देंगे भाई।
0: ओके
1: भाई, ठीक है, टेक केयर मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। और भाई लिखते हैं, आई डोंट गेट एनीथिंग, आई डोंट लेट एनीथिंग गो इफ इट्स अबाउट मी, वेदर इट्स गुड और बैड। इफ इट इज बैड आई डू नॉट इवन वेट, आई डायरेक्टली विजिट देम एंड आस्क। ओके ऐसे बढ़िया गल्ला। एक और मैसेज आया है, नदीम भाई कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: नदीम भाई, क्या अज़रबैजानी बीच से क्या परेशानी है भैया आपको?
2: सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे को परेशानी कोई नहीं।
1: अच्छा सिस्टम बहुत अच्छा है। ये जो इंटरनल जोक आप मार रहे हैं मेरे साथ, मैं समझ रहा हूँ नदीम भाई।
2: इंटरनली था, आप पब्लिकली कर रहे हो।
1: मैं नहीं बताऊंगा। और क्या चला नदीम भाई, क्या प्लान है आज के?
2: बस बढ़िया, अभी बेटे को लिया स्कूल से, जा रहे घर।
1: अच्छा,
2: फिर वहाँ से जाएंगे एक जगह काम है।
1: अच्छा, और फिर चिल।
2: आपकी भी छुट्टी हो जाएगी तो बताओ, चिल करना है तो
1: बिल्कुल चिल करना है, बताते हैं आपको। और आपका क्या करते हैं, कन्फ्रंटेशन तो आप नहीं करते नदीम भाई? डोंट थिंक सो, करते हैं क्या आप?
2: यार नहीं, अपने फर्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
1: ये यार ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, ये चीज होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज है
2: एकदम। अगर कोई करीबी होगा ना तो ठीक है, अपन उसको कन्फ्रंट कर लेंगे कि भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। बाकी तो दुनिया जो भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: दुनिया से तो फर्क नहीं पड़ता।
2: अपने को एफएम पे कितने लोग बोल के चले आते हैं।
1: अरे भाई मैं तो खुद बता रहा हूँ ना आपको,
2: दिन में लोग गाली दे रहे गेम मत खेलो, शाम में हम कंप्यूटर पे बैठे।
1: फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये जो चिकना घड़ा बनने की जो ये कहावत है ना, ये एक्चुअली फिट बैठती है मुझ पे भी है, ऐसी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर कभी कभार जब पड़ जाता है तो बहुत गहरा फर्क पड़ता है, फिर मैं भाई साहब पीछा नहीं छोड़ता, तो वो वाला सीन है। पर नदीम भाई मैं आपको बताता हूँ फिर इंशाल्लाह, और आपका पीसी भी देखना है मुझे, तो इस हफ्ते इन्हीं दिनों में करते हैं मुकाबला।
2: स्टोरी का प्लान अभी अपन अज़रबैजान बीच पे ही करेंगे।
1: हाँ ठीक है, डन हो गया। सबसे बेस्ट बेस्ट है भाई, नदीम भाई ने कहा था, नदीम भाई इधर ही होगा भाई, आपने कह दिया इधर ही होगा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, ठीक है।
2: और क्या, ठंडी भी ज्यादा, गर्मी भी नहीं होती, थोड़ा ठंडा रहता है।
1: हाँ खुला आसमान, क्यों नहीं।
2: हाँ एकदम ओपन बीच
1: डन हो गया, लहरों के किनारे। ठीक है। ठीक है नदीम भाई, ख्याल रखिए मेरा भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और नदीम भाई का तो वेस भाई लिखते हैं, पहले बिल्कुल कन्फर्ट नहीं करता था, रिसेंटली करना शुरू किया है, और सरप्राइज एंड एंजॉयमेंट की फीलिंग होती है ना, एक अलग से किक मिलती है इस बात से। भाई मैं फ़ोन पे लाइव कैसे सुनूं? भाई फ़ोन पे लाइव urdu radio.qa ये वेबसाइट है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे है?
1: मैं बढ़िया भाई, आप सुन रहे हैं, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मुदस्सिर कबीर।
1: मुदस्सिर भाई क्या चल रहा है मुदस्सिर भाई? ठीक है, आप आपको जो पता लगता है कि आपके पीठ पीछे गुफ्तगू हो रही है, तो क्या आप उसमें मतलब कन्फ्रंटेशन पे उतर आते हैं कि जरा मैं सामना तो करूं उस चीज का, या फिर आप कहते हैं चलो यार जान दो?
3: क्या इसमें कबीर भाई, इसमें दो बातें हैं, अगर गैबत है तो कोई बात नहीं, गैबत कोई भी कर सकता है ना आजकल, आपको पता है गैबत नॉर्मल चीज है। एक होते इल्जाम, अगर मुझे मेरे ऊपर अगर कोई बंदा इल्जाम लगाता है पीछे, तो वो इल्जाम की मैं क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ।
1: अच्छा,
3: अगर गैबत करता है गैबत तो मैं इग्नोर करता हूँ, कोई बात नहीं, गैबत तो कोई भी करता है, उनका उनके खाते में गुनाह हो जाएगा और मेरे खाते में सवाब लिख जाएगा।
1: यार ये तो बात बड़ी तगड़ी गई, आपने बड़ा इम्प्रेस हुआ, अच्छे से आपने डिफाइन किया कि इल्जाम लगेगा तो भाई हम खड़े रहेंगे और बाकी तुमने जो बोलना है बोलते रहो।
3: बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया, इसमें दो चीजें, एक होते हैं इल्जाम, एक होते हैं गैबत। अगर कोई मेरे पीछे बात करता है, मेरे पीछे बात करता है कि ये अच्छा नहीं है बुरा नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं है बुरा है वगैरह वगैरह, तो वो आप मतलब खुद की कोई भी सफाई नहीं देते ना। अगर मैं आपके खुद की तारीफ करता हूँ कबीर भाई कि मैं अच्छा हुआ, तो इसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं कि मैं खुद की सफाई कर देता, तो वो आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता, मेरे अल्लाह भी मुझे जानते हैं। और दूसरा, अगर कोई बंदा अच्छा है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, उसकी बातों से भी पता चलता है, उसके बैठने से भी पता चलता है, उसको जो जिस बंदे से वो रहता है, जिस बंदे से उठना बैठता है, उसको उठने बैठने और बात करने से भी उसके बंदे का पता चलता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। और दूसरी बात है इल्जाम, अगर कोई मेरे पीछे इल्जाम लगा देते हैं मतलब पीठ पर पीछे से, तो वो कह मतलब

0: है कि इल्जाम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कोई मेरे पीछे इल्जाम लगा दे कि इस बंदी ने ये काम किया है और वो काम मैंने ना किया हो, तो वो बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होते, उसको तो मैं क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ कि भाई ये काम मैंने नहीं किया है बिल्कुल, जिसने भी बोला है या आप बोला है कि ये गलत है, अगर कोई खबर कर रहे तो गैबत को मैं एक चीज है वो इग्नोर कर देता हूँ।
1: पर वो क्या है, जैसे उदाहरण की कई मरतबा कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार मेरे पे इल्जाम लगाया, लगाने तो इनको क्या फर्क पड़ता है, मुझे इनके बोलने से क्या हो जाएगा, ये भी तो एक नेचर होता है ना, मतलब कई मरतबा इंसान सोचता है भाई इनके कहने से क्या हो जाएगा।
0: इल्जाम की मैंने इसलिए बात की क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते तो तीसरे बंदा मेरे ऊपर फिर शायद यकीन नहीं करता कि वाकई ये बंदा ऐसा होगा, लेकिन अगर कोई इल्जाम लगा देता है तो उसके बंदा सफाई देता है, क्लेरिफिकेशन कर देता है, तो ये अच्छी बात है, बाकी लोगों के लिए जो पूछता है तो वो खत्म हो
1: जाएगी,
0: ये दो बातें है बस, बहुत सिंपल कर दिया मैंने।
1: अच्छा अच्छा जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया मुझे सर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा हो जा बाकी कबीर भाई, मैं अच्छा हो या बुरा वो ऊपर वाला देखता है बस।
1: बेशक मेरे भाई, बेशक एकदम बिंदास रहो मेरे भाई, एकदम चिल और हैप्पी वीकेंड मुदस्सर भाई, एंजॉय कीजिए।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस तो बात करने से तो हो गई बस, क्लेरिफिकेशन दे कर दे कि मैं अच्छा हो या बुरा, बाकी हैप्पी वीकेंड।
1: हैप्पी वीकेंड मेरा भाई, खुश रहो, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। प्रिंस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ मैं भी वही ढूंढ रहा था। एक और मैसेज आ रहा है भाई, फलक भाई कह रहे हैं गाड़ी दौड़ रही है, एक मैसेज आया है कबीर भाई, गुड शो इज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। एंड एक मैसेज किया है मुझे, क्या नाम है इनका, एक सेकंड पढ़ दूं मैं, अरबाज भाई ने लिखा है, अरबाज लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है मेरे साथ बहुत हुआ है, मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्त मुझसे बहुत बातें करते थे और जब मुझे पता चला कि सर तुम क्या चल जाता था तो रात हो जाता था, इतना मारता था, बहुत बुरा मारा है, इसकी वजह से लोगों को जलते थे, तो मेरे पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं तो मैंने हर एक को मारा है भाई, ये तो बहुत वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आइए लिखते हैं, सर मैंने बॉडी शॉटी बनाई थी ना तो लोग बहुत बातें करते थे, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसको दो तीन दफ़ा तो भाई ये तो कह रहा मैं तो भाई पीट देता हूँ सीधा मेरी अदालत में सुनवाई को नहीं भाई। और हुसैन भाई क्या कह रहे हैं, मैं भाई मैं बिहारी हूँ वैसे तो, क्या सुन लिया कि कोई कुछ बोला हो कन्फर्म हो गया, तो भाई मैं भी बेसबॉल वाली बैट में मस्टर्ड ऑयल लगा के रखता हूँ। अरे भाई कह रहा बिहार से हूँ, ठीक है, एक नहीं सुनूंगा, साफ सीधी बात। हीरो भाई क्या हाल है भाई के, हैप्पी वीकेंड। फैजान भाई क्या कह रहे हैं, फैजान भाई कह रहे हैं एफ एम 107 के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच भाई। अरे हमारे म्यूजिक टीम को क्रेडिट जाता है, आज उनको भर भर के क्रेडिट मिला है। एक और मैसेज, कबीर भाई कल इवनिंग शो आपका शो है, कल कोई शो ही नहीं है, कल तो फ्राइडे है, जुमे के दिन ड्यूटी करवाओगे। एक मैसेज कबीर भाई, रिप्लाई अच्छे आ रहे हैं ना, थैंक यू सो मच कुरेश भाई, थैंक यू सो मच। मेरा भी ऐसा सीन है भाई, मैं पता नहीं वो दिल्ली की गलती है कि मेरी खुद की गलती है, हाँ वैसे ना होता भाई, जिसने कह दिया उसने तो सुननी पड़ेगी। एक मैसेज है इमोल रॉय का, थैंक यू सो मच भाई, गुड इवनिंग एंड सेम, क्या सामने बोल नहीं सकते यही काफ़ी है, सामने बोल नहीं सकते यही काफ़ी। अरे भाई भाई ओह क्या गर्म डायलॉग मारा भाई ने, खालिद भाई ले गए भाई, प्राइस दो इनको। एक मैसेज है कबीर भाई, फलक भाई क्या कह रहे हैं, कबीर भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये आपने उस तरह बोला भाई मैं तो ना सहता। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई कैसे हैं, मैं बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या हाल है आपके। अच्छा मैं आप कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, बिकॉज वी ऑलरेडी रनिंग अ बिट लेट। ये सैयद अबरार साहब का मैसेज था, एक मैसेज है कबीर भाई मेरे माइंड में ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस्लाम साहब बहुत बढ़िया सोच है, काश हमारी भी ऐसी होती तो बहुत रिश्ते हमारे बने रहते। एनीवे अमन भाई क्या कह रहे हैं, मैं तो गुद्दी पे टैटू बना देता भाई। यही तो है, तैड़ पैड़ तैड़ पैड़। लेकिन ये क्या भाई हाथी चलेंगे तो ऑब्वियसली भौकेंगे, ये तो मैं समझ सकता हूँ। ये रिफत साहब का मैसेज है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। आप लोग थोड़ा वायलेंस हो रहे हैं तो मैं कहानी की तरफ बढ़ जाता हूँ। इससे पहले और भी मैसेज आने लग जाएं, लोग डिग्गी खोल खोल के बैट की तस्वीरें भेजने लग जाएं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब जो मैं आपको आज किस्सा सुनाने वाला हूँ, आई नो कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ हॉरर स्टोरी, पर आई वॉन्ट टू रिसर्च मोर अबाउट इट। तो मैं जब तक शोर नहीं जाऊँगा तब तक मैं सुनाऊँगा नहीं, तो वो इंशाल्लाह संडे को मैं आपको सुना दूंगा। पर आज जो मेरे पास कहानी है वो भाई साहब बिल्कुल वीकेंड स्पेशल है, एकदम वीकेंड स्पेशल कहानी। अगर आपने मिस कर दी, यू गोना मिस अ लॉट, मैं बता रहा हूँ। ये

0: लाइव सुनने का मजा है, तो अगर आप इसे लाइव सुनने वाले हैं तो मुझे अभी बता दीजिए, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मुझे रहेगा कि हाँ मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, तो थोड़ा दिल से और अच्छे से निकलती है कहानी. तो लेट मी नो इफ यू लिसनिंग टू मी लाइव राइट नाउ 666-22107 पर. एंड एक प्रोमो के बाद मिलते हैं, ये प्रोमो है ए फॉर अमिता का, इसके बाद हम सीधा आपसे बात करते हैं, ठीक है? डरा नहीं आपने.
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
0: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. तो ये अगर शो आपने नहीं सुना है ज़रूर सुनिए, अमिता बहुत बढ़िया शो करती हैं. और मैंने अमिता को खुद बोला, मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इससे चीज़ सबर कहाँ से किसको फंसाना है, बहुत मुश्किल काम है. बट एनी वे, अब हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं. जैसे मैंने कहा इट्स अ वीकेंड स्पेशल शो, बहुत बहुत खास है. आर यू रेडी फॉर दिस वन? वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सबसे पहले तो मैं भी ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ. ओके, तो सर डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूं ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, हर किस्से की तरह जो मैं आपको सुनाता हूं. एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल वन, क्योंकि ये वीकेंड स्पेशल कहानी है भाई, बचा के रखी थी आपके लिए. शुरू कर रहा हूं मैं. रेडी. सो मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए उस दौर में चलते हैं जब फोन्स के मायने नहीं थे. आज तो दुनिया बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, स्क्रीन से हट नहीं सकती. मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है हमें, वरना बहुत सारी चीज़ों से हम बिल्कुल पीछे होते. दैट्स अनदर टॉपिक फॉर द डे. लेकिन आज के किस्से को सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ साल 1942 में, 1942. सो वे बैक. तो ये किस्सा है जो शुरू हो रहा है, वो शुरू होता है 12 जुलाई से. संडे का दिन था और शाम के 6 बज रहे थे. इस वक्त एक आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट, वो एक लाउंज में एंट्री ले रहा था. ये जो लाउंज था ये हार्लम न्यूयॉर्क में था, और रॉबर्ट जो था वो पहले से ही थोड़ा बेहोशी की हालत में था, थोड़ा नशे में हो रहा था, वो बिल्कुल झूलता हुआ. और क्योंकि वो आफ्टरनून से ही इसी हालत में था, दरअसल वो एक डाइस गेम में लॉटरी जीता था, तो उसके जेब में नोटों की गड्डी थी, और वो दोपहर से अभी तक शाम तक जश्न मना रहा था लगातार. वो इस लाउंज में आया कि अपनी पार्टी को जारी रख सके, और अकेला था, कोई उसके साथ नहीं, बस उसे थोड़ा सा और नशे में चूर हो जाना था, तो वो यहां पर इस लाउंज में पार्टी के लिए आया था. अब आपको मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले 1942 का हार्लम न्यूयॉर्क समझा देता हूं. ये इलाका कैसा था ये समझने की जरूरत है. तो हार्लम न्यूयॉर्क का ये जो एरिया है जहां पे ये लाउंज था, स्पेशली पूरा ये शहर, ये बहुत ही वायलेंट क्रिमिनल से भरा हुआ था, टोटल केओस, नो कंट्रोल. और वहीं पर ये लाउंज भी था, और क्योंकि जगह ही ऐसी है, यहाँ पे क्राउड भी लाउंज में वैसा ही आता था, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी उसका भेजा फिर सकता है, ये वैसा क्राउड था. अब जाहिर है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, कभी भी रफ सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए रॉबर्ट जब इस लाउंज में एंट्री ले रहा था, भले ही वो पूरी तरह से होश में नहीं था, उसके नोटों में गड्डी थी और काफी उसने फैंसी कपड़े पहने हुए थे, उसने अपनी जेब में नोटों की गड्डी के साथ गन भी रखी हुई थी कि अगर हालात नाजुक हो गए तो जरूरत पड़ सकती है. रॉबर्ट जो था उसने लाउंज में एंट्री ली, और इस लाउंज में जब उसने एंट्री ली, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के इतने कम लोग होंगे, बमुश्किल 20 से 25 लोग होंगे इस वक्त लाउंज में. शाम के 6 बज रहे थे, तो इससे थोड़े ज्यादा की उम्मीद थी, बिकॉज रात तक तो भीड़ बढ़ ही जानी है. बट एनीवे, वो उसने जब एंट्री ली तो वो थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगा, ये इतने कम लोग क्यों हैं यहां पे, अमूमन क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा आता है. बट एनीवे, रॉबर्ट वाज हैप्पी, अच्छी बात है, क्राउड ज्यादा नहीं है तो मामला आसान रहेगा, वो और अच्छे से जश्न मना सकता है, और जो गन वो लेके आया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वो लड़खड़ाता हुआ, आंखों को खोलने की कोशिश करता हुआ काउंटर पे पहुंचा, और वो जिस काउंटर पे पहुंचा वहां पे काउंटर पे इस लाउंज का मालिक था, उसका नाम था मैक्स गेलर। रॉबर्ट काउंटर पे जैसी आया तो उसने इधर उधर देखा, क्योंकि इस लाउंज में आने वाले रेगुलर्स बहुत थे, जो हर रोज के आने वाले लोग होते हैं वैसे। तो उसने इधर उधर देखा और कुछ लोगों को पहचाना, स्माइल करने लगा। इतने में उसकी नजर एक और पे पड़ी, छोटी हाइट का था वो, और वो जानता था ये छोटी हाइट वाला बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत झगड़ालू है और चैन से बैठने नहीं देगा। तो रॉबर्ट ने डिसाइड किया, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू इग्नोर हिम, इट्स ओके, दूरी बनाकर रखूंगा। खैर, सामने उसके मैक्स गेलर था जो कि ओनर था और वही सबके लिए तैयार कर रहा था सारी चीजें। उसने ओनर की तरफ देखा और हाथ हवा में हिलाने लगा, क्योंकि एक तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने हाथ वेव किया उसके अटेंशन के लिए। मैक्स जो था, जो ओनर था, वो थोड़ा सा काम वाम कर रहा था, और काम करने के बाद उसने अपने एक बंदे को भेजा सर्व करने के लिए। और फिर मैक्स की नज़र रॉबर्ट पे पड़ी, उसने रॉबर्ट को देखा स्कैन करने के लिए, समझने के लिए कि इसकी हालत कैसी हो रही है। अच्छे से समझने के बाद उसे समझ में आया कि ये तो होश में ही नहीं है पूरी तरह से, आधा तो लड़खड़ा रहा है ये। और फिर उसने रॉबर्ट की तरफ देख के मैक्स ने बोला, हाँ रॉबर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू, क्या चाहिए रॉबर्ट? एंड काफी स्केप्टिकल अंदाज में, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। और रॉबर्ट अपनी एक आंख खोलने की, एक हाथ तो बंद थी उसकी, दूसरी आंख खोल के बात करने की कोशिश कर रहा था, पूरा झूल रहा था। और उसने बोला, मैक्स मुझे एक बना के दे, एक ग्लास एक और चाहिए मुझे। और मैक्स ने जब उसे ये बोलते हुए सुना तो मैक्स बहुत गुस्से में आ गया। उसने हार्शली, बहुत हार्श वे में रिप्लाई किया कि नो नो नो रॉबर्ट, नहीं मैं नहीं दे सकता कुछ बेबी, ऑलरेडी तो होश में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब रॉबर्ट जो आड़ा टेढ़ा हो रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, उसने बोला, ओ कम ऑन यार, क्या है यार मैक्स, ऐसी हालत में तो पहली मर्तबा देख रहा है क्या? ये सारे के सारे बैठे हुए, इन सबको तो दिया ना, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्यों रोक टोक है, सर्व करना यार, मैं डेली का कस्टमर हूं। लेकिन मैक्स जो था वो अपनी बात पे अड़ा रहा। मैक्स ने बोला, नो रॉबर्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता ये, हालत देख यार अपनी। ये सुनते के साथ ही रॉबर्ट का पारा एकदम बढ़ रहा था, अंदर से उबाल आ रहा था, गुस्सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पार्टी में खलल डालने वाला ये सामने वाला ही बंदा है। और फिर वो थोड़ा सा और अग्रेसिव हो गया, ऊपर से होश में तो वैसे भी नहीं था वो। तो ए, मैक्स ज्यादा भाव मत का, हाँ डेली का कस्टमर हूं मैं, बोला ना मैंने चाहिए मतलब चाहिए, दे रहा हूं ना मैं डॉलर्स तुझे। और जब उसने इस तरीके से बात करी तो उसकी इस हालत को, इस रवैये को भांपते हुए मैक्स ने, जो ओनर था लाउंज का, उसने वैसे ही रिप्लाई किया। उसने बोला, रॉबर्ट यू नो व्हाट, पहली बात तो मैं कुछ भी सर्व नहीं करूंगा तुझे, और दूसरी बात, अभी के अभी मेरे लाउंज से बाहर निकल जा, अभी के अभी, प्लीज गो। ये सुनकर रॉबर्ट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो गई सबके सामने, क्योंकि बाकी भी रेगुलर्स थे, बाकी भी रॉबर्ट को आसपास के लोग जानते थे जो बैठे हुए थे वहां पर। एंड रॉबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो खुद को जैसे रोक ही नहीं पाया, उसका दिमाग ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, गन निकाली एंड विद इन सेकेंड्स पॉइंट करी मैक्स की तरफ और गोली चला दी। अब जैसी गोली की आवाज गूंजी इस लाउंज में, जहां पे हल्का फुल्का शोर था, अफरा तफरी का माहौल मच गया। 90% से ज्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि कहां से किधर कौन से शख्स ने गोली चलाई, क्या हुआ, लेकिन भगदड़ मच गई। और रॉबर्ट जो थोड़ा सा होश में आया गन चलाने के बाद, उसे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, वो धीरे उसने गन जो है चुपके से अपने जेब में छुपाई और पीछे पीछे हटने लगा जैसे वो क्राउड में जो भीड़ भड़का हो चुका है, भाग रहे हैं लोग, उनमें शामिल होने की कोशिश करने लगा कि क्राउड का हिस्सा बन जाए और किसी को कुछ पता ना चले। और वो वहां से निकल गया, लेकिन गोली तो चल चुकी थी। आधे घंटे के बाद, तकरीबन 6:30 बजे के करीब, एक इन्वेस्टिगेटर जो कि न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के अटर्नी ऑफिस से थे, वो वहां पर आए। इनका नाम था लुइस। लुइस वहां पर पहुंचे इस लाउंज में। जब ये वहां पर पहुंचे तो तब तक कुछ पुलिस वाले ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे, उन्होंने सब कुछ बताया लुइस को, क्योंकि लुइस बीइंग अ डिटेक्टिव वो पहले जानना चाहते थे कि क्या क्या हुआ। उन्हें बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पे शूटिंग हुई सर, और जिस बंदे की गोली लगाई उसके फेस पे लगी है, अभी वो जिंदा है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और बाहर लुइस ने एक और चीज़ नोटिस करी कि पुलिस जो है इस लाउंज के बाहर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रही है जो शायद इस लाउंज में होंगे, बहुत लोग थे। लुइस को ये तो उम्मीद थी कि यार कोई ना कोई तो होगा, किसी ने तो देखा होगा अंदर, इतने सारे लोगों में हो ही नहीं सकता किसी ने ना देखा हो। तो लुइस ने सोचा यू नो व्हाट, पुलिस को अपना काम करने देता हूं और मैं लाउंज की और तहकीकात करता हूं। वो अंदर आया और जगह का पूरा जायजा लेने लगा। इतने में पुलिस वाला जो था वो फिर से आया और ब्रीफ करने लगा, और लुइस ने पूछा हाँ बताओ और क्या क्या डिटेल्स मिली है। तो बोला सर इसका जो जिसको गोली लगी सर उसका नाम मैक्स गैलर है, एंड सर वो अनकॉन्शियस है। तो लुइस ने बोला हाँ और क्या डिटेल्स मिली है, और बोला सर सर बयान सब दे रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है सर अब क्या करना चाहिए। एंड लुइस बड़े परेशान थे, इतने लोगों में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। लुइस ने खुद दो तीन लोगों से पूछा, कोई कहता है मुझे पता नहीं, कोई कहता है मैंने देखा ही नहीं, कोई कहता है मैं तो भाग रहा था, कोई कह रहा है मैं तो अभी आया ही था। एंड एक और था वही छोटी हाइट का इरिटेटिंग, तो वो बहुत ही लाउड था और वो विटनेस भी था। उसके पास गया लुइस एज ए डिटेक्टिव, एंड नजर आ रहा था कि काफी एजिटेटेड है, बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत अग्रेसिव है, और इसने इसी ने देखा है पक्का तो किसने गोली चलाई है। और वो लगातार ऐसा लग रहा था किसी ट्रॉमा में है, और वो लगातार बोल रहा था इट वाज रॉबरी, इट वाज रॉबरी, इट वाज रॉबरी। एंड पुलिस वालों के हिसाब से सबको ही लग रहा था कि ये यार ये ट्रॉमाटाइज्ड हो गया है, इसको समझ नहीं आ रहा है, और ये इट वाज अ रॉबरी, इट वाज अ रॉबरी बोले चले जा रहा है। उसने कहा छोड़ो यार, पता नहीं, हो सकता सच में रॉबरी हो। एंड ऑफिसर्स ने वो इसको कहा कि सर ये तो बोल रहा है रॉबरी, क्या करें। उसने बोला अरे इसे कुछ नहीं बताया, पर एक तरफ एक फ्रस्ट्रेशन थी और सरप्राइज था कि क्या करें यहां पे, सब चीज तो अपनी जगह पर है, हुआ क्या है, कौन सी रॉबरी, क्या हुआ ये। इस टाइम हार्लम में बहुत सारे लोग ऐसे थे, इनफैक्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो पुलिस पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती थी, और लोग कुछ भी नहीं बताना चाहते थे कि भैया कौन चक्कर काटेगा कोर्ट कचहरी के। तो इस वजह से किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा कि अगर देखा भी होगा तो। मगर लुइस ने सोचा कि नहीं, मैं काम करता हूं, मैं खुद ही एक मर्तबा ट्राई करूंगा। उन्होंने अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। कोई भी नाम नहीं मिल रहा था और लग रहा था कि ये अब केस दफन होने वाला है। दूसरी तरफ से खबर आई, जो ओनर था मैक्स गैलर जिसे गोली लगी थी वो होश में आया, लेकिन होश में आने का फायदा नहीं हुआ, वो चल बसा। सब जगह की तहकीकात की, एक एक चीज, लेकिन कोई भी कुछ भूलने को राजी नहीं था। ये केस डिसॉल्व होता चला जा रहा था। लुइस अपने डेस्क पर बैठे हुए थे और बार बार फाइल को देख रहे थे, सोचते थे यार किससे मदद लूं, कौन आएगा। फिर उनके दिमाग में एक नाम आया, उनका बहुत अच्छा साथी और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बंदा। इसका नाम था जॉन मोर्सी। ये भी डिटेक्टिव थे लेकिन ये थोड़े सीनियर थे, और सीनियर होने के साथ साथ ही वॉज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिव, जो सीधा सीधा नहीं सोचता, मतलब हमेशा सोचता है तो आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचता है। तो जॉन को भेजा कि शायद जॉन को कुछ मिल जाए। एंड इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आगे बढ़ी, लेकिन लुइस स्टेशन में मौजूद थे और वो वापस केसेस को देख रहे थे, वापस इंटरव्यू लाइन कर रहे थे कि शायद कुछ मिस ना हो गया हो। और उन्होंने सबको बिठाया लाइन से, लाइन में बैठ जाओ, सारे के सारे पुलिस के हॉल में लाइन में बैठे हुए थे, बहुत लंबी भीड़ थी, और सबसे बोला कि जब तक कहा ना जाए तब तक कोई यहां से हिलेगा नहीं, समझ गए। और सब इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे, अंदर आ रहे थे, और लुइस इंटरव्यू ले रहे थे और वो चिढ़ रहे थे क्योंकि हर कोई सेम ही जवाब दे रहा था, हमें नहीं पता, आपने देखा नहीं, ये वो। और लुइस भी बड़े चिढ़ गए, सबसे ये बोल रहे थे हाँ ठीक है जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करे जा रहे थे, ऐसे कोई ऑडिशन चल रहा हो, एंड कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। अब जब वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे बाहर आए तो उनकी नजर तीन लड़कियों पे पड़ी जो इसी भीड़ में इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर था, वो भी वहीं थी। एंड ये तीनों आपस में घुसर पुसर पुसर पुसर बात कर रही थी, पर इनका घुसर पुसर करना भी बहुत लाउड था, इतना कि समझ में आ जाए। उनका कॉन्फिडेंस शायद इसलिए भी हाई था क्योंकि तीनों की तीनों इंग्लिश में नहीं फ्रेंच बोल रही थी। उनको ये लग रहा था कि हम तीनों जो बातें कर रही हैं किसके समझ में आ रही होंगी, कोई नहीं समझ पा रहा होगा। मगर वो भूल रही थी कि हॉल में एक बंदा उस वक्त जो खड़ा था उसे फ्रेंच आती थी, और वो खुद लुइस थे। लुइस को सब समझ में आ रहा था कि ये क्या बातें कर रही हैं, और बातें वो जो कर रही थी लड़कियां वो ये कह रही थी कि भैया कुछ भी बताना नहीं है, ये लोग फिर बहुत लंबा सीन कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं पुलिस कुछ भी पूछे ना, कह देना हमने तो देखा ही नहीं। और ये तीनों आपस में यही बातें कर रही थी। इनफैक्ट ये तीनों इस बात के लिए भी बातें कर रही थी कि तीनों के हस्बैंड्स को नहीं पता था कि ये पार्टी करने के लिए उस लाउंज में गई थी जहां पे ये शूटिंग हुई, तो ये इस बात को और दबाना चाह रही थी। पर लुइस ने इस बात को पकड़ लिया, और लुइस ने पूरी भीड़ में सबको स्किप करके सबको छोड़ के इन लड़कियों के पास आया और बोला, सुनिए ऑल ऑफ यू राइट नाउ चलिए लेट्स गो। तीनों बड़ी हैरान थी कि हमसे पहले जो आए थे उनका तो इंटरव्यू हुआ नहीं, हम क्यों, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी तो उन्हें जाना पड़ा। और वो उस वक्त एक्टिंग करना चाह रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सामने बंदा जो है इसे फ्रेंच तो आती नहीं, क्या ही समझेगा ये, लेकिन वो भूल गई थी। उन्हें इनफैक्ट पता भी नहीं था कि लुइस ही वाज परफेक्ट इन फ्रेंच। और जब उनसे सवाल फ्रेंच में किया लुइस ने, तो बहुत डर गई। लुइस ने उनसे फ्रेंच में बोला कि अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मुझे सब सच पता लग चुका है, और फिर मैं बता रहा हूं क्या होगा, और जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही लुइस ने ये उन्हें फ्रेंच में बोला तो तीनों इतनी ज्यादा डर गईं कि फुल ब्रेकडाउन एंड रोने लगी, और बिना कुछ आगे सवाल जवाब किए सब कुछ खुद ही कहने लगी। बोले कि हाँ सर हमने देखा वो जो शख्स इसने गोली चलाई थी, सर वो एक बंदा था, उसने चेकर्ड शर्ट पहनी हुई थी, पता नहीं इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ, बहस कर रहे थे और उसने सर मैक्स को गोली चलाई, उसके बाद वो वहाँ से चला गया सर। अब वो रेगुलर ही है सर, वो बार बार वहाँ दिखता है, आता रहता है वो। लुइस बहुत खुश था जब इन्होंने ये बता दिया कि वो रेगुलर है, वो चेकर्ड शर्ट पहनता है, मतलब फैंसी कपड़े भी पहनता है, वो यहाँ का रेगुलर भी है। ही वॉज रियली रियली हैप्पी कि चलो फाइनली एक लीड तो मिली। एंड लुइस जो था वो सीधा भागा, उसने जॉन को कॉल करी, जॉन यू नो मुझे पता लग गया, जॉन हमें मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जॉन ऑलरेडी फोन पर ही सुनने के बाद बोला, अरे मुझे भी बात करनी है, मुझे भी कुछ पता चला है। और दोनों के दोनों मिले एक जगह पे और फिर बात करने लगे। दोनों के दोनों बड़े एक्साइटेड थे, दोनों को कुछ ना कुछ इस केस के लिए मिला था। एंड पर जब आमने सामने आए तो इस केस को एक एक करके खोलने लगे और उतने ही हैरान होते गए। जॉन सामने खड़े थे, अब यूं समझ लीजिए दो दोस्त, दोनों एक खुशखबरी देना चाहते हैं लेकिन कौन पहले बोलेगा, वैसा चल रहा था। जॉन ने बोला, यार मुझे कुछ बताना है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन लुइस ने बोला, अरे मेरे पास खबर है ना, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, आई नो, पता है वो फ्रेंच में बोल रही थी, मैंने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने बताया एक बंदा है, वो चैकेट कपड़े पहने हुआ था, शर्ट थी उसकी, बड़ा फैंसी सा था, बड़ी लाउड एनर्जी थी, वही है, मुझे नाम नहीं पता लेकिन वो रेगुलर है, हम पकड़ लेंगे। और जॉन ने कहा, तुझे इससे भी बढ़िया बताऊं? तो लुइस ने बोला, इससे बढ़िया मतलब? जॉन ने बोला, अरे मुझे पता लग गया वो बंदा कौन है, तू तो सिर्फ बता रहा है दिखता कैसा है, मुझे पता लग गया है। तो दरअसल हुआ क्या था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जॉन मोस्टली जो खुद डिटेक्टिव थे वो लुइस के बाद गए थे, याद है वो शॉर्ट हाइटेड जो बहुत इरिटेटिंग था, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, वो पुलिस वालों को लग रहा था कि ट्रॉमा में है, बार बार कहे जा रहा है इट्स अ रॉबरी। उसके पास जॉन मोस्टली वापस गए, और जॉन मोस्टली उसके पास गए तो जॉन मोस्टली को पता लगा कि अरे बाप रे, ये रॉबरी नहीं बोल रहा है, इट्स अ रॉबर्ट बोल रहा है। और ये जो छोटी हाइट का था, पता है कौन था? ये एक तोता था, तोता उसी के नाम पे लाउंज का नाम था द ग्रीन पैरट लाउंज।

ये मैक्स का, मैक्स गेलर जो कि ओनर था, ये उसका तोता था। तोते ने मालिक को गोली लगते हुए देखा और यही छोटी सी हाइट का प्यारा सा पैरट तोता, हरा तोता, ये लगातार लुईस के सामने बोल रहा था इट्स अ रॉबर्ट, इट्स अ रॉबर्ट, इट्स अ रॉबर्ट, लेकिन उसे सुनाई दिया कि ये रॉबरी रॉबरी रॉबरी क्यों बोल रहा है। एंड ही कंप्लीटली डिसमिस्ड हिम कि तो तोता है, इसकी कौन सुने। मगर जॉन जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं यार एक बार क्या बोला इसने, तो बोले सर ये रॉबरी, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तोते को हाथ पे बिठाया और फिर उसको प्यार करने लगा। और फिर वो तोता, एक उसकी सुई अटकी हुई थी और वो यही बोल दिया इट्स अ रॉबर्ट, इट्स अ रॉबर्ट, इट्स अ रॉबर्ट, और उसके बार बार रिपीट करने से उसने फिर बाकियों से पूछा यहां पे कोई रॉबर्ट आता था क्या जो रेगुलर कस्टमर है। लोगों ने बोला हाँ सर सर रॉबर्ट आता था, रॉबर्ट आया था उस दिन, हाँ रॉबर्ट आया था उस दिन। एंड ये दोनों अब लग गए उसे पकड़ने में। एंड ज्यादा टाइम नहीं मिला, वो बाल्टीमोर से भाग रहा था, उसे बीच रस्ते में पुलिस ने धर दबोचा, वो पकड़ा गया एक तोते की वजह से। जब वो पकड़ा गया तो पुलिस वाले लिटरली हंस रहे थे उस पर। एंड पुलिस वाले ने बोला रॉबर्ट तू जानता तो क्यों पकड़ा गया है, कभी नहीं पकड़ा जाता, तुझे पकड़वाने वाला तोता था, एक हरे तोते ने तुझे पकड़वाया है। एंड रॉबर्ट ने बोला वही वही हरा तोता ना जो बैठा हुआ था, तो बोला हाँ वही हरा तोता, मुझे तो पहले से ही पसंद नहीं था वो, और उसके बाद ही पकड़ा गया एक तोते की वजह से। वो जो पूरा लाउंज था वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन तोते को बाकायदा इनाम मिला और तोते को कुछ वक्त के बाद आजाद कर दिया गया। वो तोता उसके बाद क्या बोलता होगा जगह जगह जाके, अभी भी इट्स रॉबर्ट करता होगा या कुछ और सीख गया होगा, वी डोंट नो, बट दिस इज द केस विच वॉज सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ अ पैरट, एक तोते की वजह से। ये था किस्सा जो मैं आपको सुनाना चाहता था। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, ये आपके हवाले है। दिस वॉज अ वीकेंड स्पेशल स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड बताइएगा कि बिल्डअप कैसा लगा आपको सस्पेंस का। 666-22-107, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: देखिए मैंने गारंटी दी थी आपको वीकेंड स्पेशल कहानी होगी, आई होप आपको बहुत बहुत अच्छी लगी हो बिकॉज दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज फॉर अ वीकेंड एंड लोग मुझे तोते की फोटो भेज रहे हैं फरद भाई ने भी भेजी है, अरे बाप रे। तो ये किस्सा मुझे सुनाने में भी बड़ा मज़ा आया और यकीन जानिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये छुपाना कि ये तोता था, तो आई हैड टू राइट छोटे हाइट का बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। आपके मैसेज बहुत सारे आए हैं, मैं पढ़ूंगा अभी कुछ देर में गाने के बाद। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। प्लीज़ बताइएगा आज का किस्सा स्पेशली आपको कैसा लगा, बिकॉज आप ही हैं, आपके बिना मज़ा नहीं आएगा, बताएंगे नहीं तो, है ना। एक गाने के बाद मिलते हैं एंड देन कॉल्स एंड आपके मैसेजेस लगातार लिए जाएंगे। 6:03

बंदूक मेरी लैला फर्ज भाई कह रहे तोता शरीफ तो अच्छा हुआ वरना तो मेरी आंखों में एक्सप्लोड कर दी। मैं कह जी गुड इवनिंग।

0: शाबाशी। तो भाई साहब तोते को देनी पड़ेगी, बहुत सारी कमाल के मैसेज आए। आजम भाई आजम भाई कह रहे हो, कहते ना कि कायनात, ये आबो हवा सब गवाही देंगे, तो खुदा चाहे तो कहाँ से गवाही निकल सकती है, कोई ना बच पाएगा भाई। खादिर भाई ने मैसेज किया है, पैरेट शुड बी डिटेक्टिव। एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक नंबर भाई, आप सुनाइए। हैप्पी वीकेंड मेरा भाई, बताइए।
1: हाँ तो यार, जब वाकई हटके थी स्टोरी कबीर भाई।
0: कैसे लगे
1: तोते भाई की वजह से? ये तो एक मतलब अलग ही स्टोरी बनी। नहीं
0: हाँ भाई, तो मुझे बहुत मजा आया था, मैंने कहा वाह बताइए, तोता काम कर दिया। होता
1: आपने बोला भी ना आप वीकेंड पे आज बराबर सुनने का, तो मैंने आज बराबर पूरी सुनी, लाइव सुनी
0: थी। थैंक यू सो मच भाई, भाई
1: बोल भी रहे हैं।
0: तो पसंद आई आपको कहानी? बस ये
1: बहुत बढ़िया थी।
0: थैंक यू भाई। लोग सुनाएंगे ये तोते की वजह से, लोग एक दो लोगों को और सुनाएंगे, अपने मुंह से भी सुनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है।
1: नहीं सही बात है, बिल्कुल हट क्या हो गई ना थोड़ी, याद रहेगी।
0: जो जिन लोगों ने तोते पाले हुए अपने तोते को जाएंगे भाई कुछ बोल, आप तोते को लोग सिखाएंगे भाई, तुम देखना जिनके घर तोते हैं।
1: कम से कम नहीं तो रोबोट रोबोट ही बोल दे।
0: आज आज हाँ वीकेंड पे तोते जरूर सीखने वाले हैं कुछ ना कुछ बोलना, ये बात तो है, बट देखते हैं शरीफ तोते कितने मार्केट में।
1: अच्छे बिकेंगे आज
0: सुबह के तोते ज्यादा बिकेंगे। सही बात है भाई, एकदम बढ़िया। हैप्पी वीकेंड मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी, बहुत बहुत बहुत जबरदस्त कहानी कबीर भाई, तोता इज द बेस्ट, ये बात तो है भाई। एक मैसेज नजर साहब का, वो कहते हैं कि व्हाट अ प्रेजेंटेशन, यू नॉट आरजे, यू आर क्रिस्टोफर कबीर, ऑल यू नीड इज एन IMX स्कैम। What a presentation bro, thank you so much, out of the box, jazakallah mere bhai, you liked it, mujhe acha laga. Naseem bhai likhte hain, thank you so much Naseem bhai, very nice story, nice qissa. Yabu saad sahab ne message kiya hai, uske baad Faraz bhai ne to mazay le liye. Faraz bhai keh rahe tote ne to bhai seat baja di, tote tote ho gaya aur gujji pe tattoo bana diya. Aman bhai keh rahe hain tote ne. Ek call aa rahi hai, assalam alaikum. Hello
2: hello,
0: ha mere bhai radio ki volume thodi kam kar lijiye please.
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या नाम है आपका?
2: जी मैं कम।
0: अरे कम भाई, बहुत टाइम बाद मेरा भाई। जी कम भाई बताइए।
2: जी सब ठीक है, आप तोते के बारे में बात कर रहे थे तो तोते तोते गाना बजा दीजिए।
0: अरे तोते का कौन सा गाना बजा दूं भाई?
2: तोते तोते हो गया।
0: अरे वो तो टोटे टोटे है, तोते तोते नहीं है वो। अच्छा ठीक है, बजा देंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब खैरियत, अल्लाह का करम भाई, जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तोते वाला गाना है ना, बहुत से गाने हैं ना,
0: चलाते हैं भाई, तोते वाले, तोते से गवा देता हूँ मैं। ठीक है
2: तोते वाला गाना बजाइए।
0: ठीक है भाई,
2: हमारे दोस्त लोग भी साथ में रेडियो सुन रहे हैं।
0: तोते तो नहीं है आपके दोस्त?
2: नहीं तोते नहीं है, तोते नहीं है।
0: अच्छा फिर ठीक है, चलाता हूँ मैं कुछ देर में, जजाकअल्लाह भाई। एक मैसेज है, वेरी नाइस, ये क्या है, आई क्या है, माशाल्लाह हाइट, शॉर्ट हाइट स्टोरी, द विनर स्टोरी है। सोने मैसेज किया है, तोते वाला गाना कैसे चलता है भाई? और अरबाज भाई लिखते हैं, भाई इंतजार में बैठा हूँ, खाना भी नहीं खाया जा रहा भाई, खा लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैसेज किया, मज़ा आया भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, उसने मैंने लिखा है, लेकिन भाई जॉन को ही मानना पड़ेगा, इतना शार्प माइंड एकदम। हाँ भाई पकड़ लिया, देखो तोते पे भरोसा करके पकड़ लिया, लेकिन काफ़ी मज़ेदार था, मज़ा आ गया, जज़ाकअल्लाह हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई कह रहे हैं तेरी मेहरबानियाँ पार्ट टू। अमन भाई थैंक यू सो मच, और भाई कह रहे हैं भाई इट्स रोबोट वेरी फनी, थैंक यू सो मच उमर शहजाद भाई, जजाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कोई नहीं बोल रहा कि आपने कहानी में मार दिया है, तोते की वजह से सब भूल गए। तोता आ गया बीच में तो बिल्कुल। और थैंक यू सो मच समी भाई ने क्या पोस्टर बनाया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सॉलिड लग रहा है। स्टोरी भाई आज भी चोट हो गई, अरे रे रे रे। फरत भाई कह रहे हैं भाई अब दो दिन तक ये टाइम पर आपकी याद आएगी, भाई आपकी मोहब्बत है भाई ये, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और तोते वाली कहानी मुझे पता है कि लोग जा के लोगों को सुना रहे होंगे। ये कहानी वीकेंड पे छाई रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिलों में ये किस्सा जिंदा रहे, क्योंकि ये है कि आप हर किसी को जा के सुनाएं। सो 666-22-107 नंबर है, एंड इस पर मैसेज करके बता सकते हैं आज का किस्सा आपको कैसा लगा। अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो भाई आज मुझे भी ये किस्सा बहुत अच्छा लगा, आई पर्सनली एंजॉयड टेलिंग यू। वैसे हाफ सुनी ब्रो, ऑर्डर डिनाई चला गया था। अरे रे रे रे नहीं भाई, ऑर्डर पर ध्यान दो भाई, काम पहले भाई भेज तो दूंगा मैं। भाई कह रहे हैं कॉल करने का, तो कॉल करने का रुको, मिला रहा हूँ मैं एक सेकंड, कॉल लग जाएगी। मुझे ऐसा सॉन्ग मत सुनाओ, घर भी जाना है। नसीम भाई कर, अरे मत सुनाओ तोते वाले गाने, नहीं चला रहा भाई, डरो नहीं। और अमन भाई को कॉल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी अमन भाई, क्या हाल है?
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
3: हाँ जी ठीक हूँ जी।
0: जी मेरा भाई क्या कहना चाहेंगे?
3: ये जो तोते ने गुदी पे टैटू बनवा दिया
0: है, देख रहे हो तोते का खेल, मजा आ गया भाई।
3: तोते का खेल है, मैं बहुत, मुझे इतनी हंसी आई, मैं ऑफिस में बैठा था।
0: हाँ।
3: तो मैं उसकी स्टोरी सुना था कि एंड में इट्स अ रॉबर्ट। मैंने कहा वाह क्या बात है। जैसे तोते की कई बातें मुझे याद आई है, जोक्स है बहुत अच्छे अच्छे।
0: हाँ मुझे पता है वो अच्छे अच्छे जोक्स कितने सुनाने वाले हो, कितने नहीं है।
3: यहाँ भी तोते नहीं मरवा दिया उसको।
0: जो जोक आपके दिमाग में आया है ना वो मुझ तक पहुंच गया है। मैं जानता हूँ
3: आप तोता बोलते हैं, बहुत तेजी से तोता बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं तोता।
0: तोता
3: पंजाबी में बोलते हैं तोता।
0: हाँ हाँ हाँ
3: एक भाई के पास तोता था।
0: वो दुकान वाला जोक ना, दुकानदार के पास तोता था, वही वाला जोक ना।
3: जी जी ये मतलब पब्लिक जोक है, ये अपना फैमिली जोक है।
0: अच्छा मैंने फैमिली जोक वाला वर्जन नहीं सुना, फिर मैंने गलत सुन लिया।
3: फैमिली जोक वर्जन बना दिया गया है इसको अभी।
0: अच्छा ये नहीं पता था मुझे भाई।
3: एक भाई के पास तोता था बोलने वाला, सब दुनिया को पता था कि हाँ भी बोलने वाला तोता है। एक टांग खींचोगे तो बोलता है हेलो।
0: अच्छा।
3: दूसरी टांग खींचोगे बोलता है नमस्कार। तीसरे मतलब फिर बोलेगा अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।
0: अच्छा ठीक है।
3: तो एक आदमी जाता है हमारे जैसे कोई जाता है, कहता अच्छा ये बोलता है इसकी टांग खींच के देखो। तो वो बोलता है हेलो नमस्कार। तो दूसरी टांग खींचता है, कहता अस्सलाम वालेकुम। फिर सोचता है यार ये एक टांग खींच के ऐसा बोलता है, दूसरी टांग खींच के ऐसा, दोनों खींचेंगे तो क्या होगा। वो दोनों खींच देता है, तोता बोलता है अबे साले मेरी टांगे तोड़ेगा क्या।
0: बहुत शरीफ वजन है, बहुत शरीफ वजन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
3: तोता बहुत अच्छी स्टोरी थी कबीर भाई, मजा आ गया कसम से।
0: थैंक यू, बन गया। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह।
3: थैंक यू सो मच। और वो दूसरा क्वेश्चन था आपका स्टोरी स्टार्ट होने से पहले।
0: हाँ जी भाई, वो कन्फ्रंटेशन के ऊपर था। यस
3: कन्फ्रंटेशन करते हैं, मैंने तो बोला ही था आपको कि मैं तो पकड़ के फिर तोता ही हूँ मैं भी।
0: बढ़िया तोता पाल लो भाई, आपको जरूरत है।
3: मम्मी डैडी भाई बहन को माफी है, बाकी के लिए मैं काफी हूँ।
0: वेरी गुड, क्या डायलॉग है। तोता पालने की जरूरत है अमन भाई, तोता लेने चलते हैं। चलो सुबह के।
3: थैंक यू कबीर भाई, थैंक यू भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
3: तोता खतरनाक है कबीर भाई, तोता नहीं रखने का, तोता बहुत खतरनाक है।
0: अरे भाई आपने जो क्या दिला दिया, सुना भी नहीं सकता मैं। ठीक है ख्याल रखो भाई।
3: ओके
0: भाई, तो ये जो जोक सुनाए गए हैं मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। नदीम भाई कह रहे हैं मैं तो कपिल शर्मा का एपिसोड याद आ गया। हाँ वो भी नहीं बोल सकता मैं। एक मैसेज है, हु वुड बिलीव दैट अ शॉर्ट हाइट पर्सन वाज अ पैरट, लेटर ऑन दिस तोता सोल्ड आउट टू द रेड एरिया दैट फेमस जोक्स। हाँ करेक्ट, एकदम करेक्ट नजर साहब, एकदम सही पकड़ा आपने। कितना शरीफ जोक सुना के चले गया, समझ में आ रहा है कि वो तो कहते हैं ना बैड कंपनी से दूर रहो, अब समझ में आ रहा है। मैसेज है भाई सब पाल लो लेकिन तोता मत पालो। मैं तो भाई पालूंगा ये तोता, अब मैंने डिसाइड कर लिया। इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरा मन कर गया एक तोता होना चाहिए। वैसे सर आपकी स्टोरी क्या, हाँ स्टोरी अच्छी लेकिन तोते वाली तो बहुत अच्छी है। हम तोता पाल भी नहीं सकते ना, सारी पोल खोल देगा। मिट्टू बेटा, एक वैसे गुड इवनिंग चॉकलेट भाई। अरे क्या भाई, कोई मुझे सॉफ्टी भाई कह रहा है, चॉकलेट भाई कह रहा है, ये क्या चल रहा है। इकरम भाई, इकरम भाई कह रहा है गुड इवनिंग चॉकलेट भाई, होप यू आर डूइंग वेल। यस आई एम डूइंग वेल। या आई एम से ओके यू राइट। एक भाई कह रहे हैं कि भाई आप तोता पाल लीजिए और उसको टाइम टू टाइम मिर्ची खिलाएंगे तो वो सही रहेगा। आपको लगता है मेरा तोता, अगर मैं कोई पाल लूँगा तोता तो इतना शरीफ होगा कि मिर्ची खा के चुप हो जाएगा? भाई जब हम पालेंगे तोता तो तोता भी तो हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा गेन करेगा। आपको लगता है सीधा तोता, वो तोता भी दिल्ली का होगा। आपको क्या लगता है तोता शरीफ होगा? ना जी ना, हाँ एकदम हरियाणवी बोलेगा तोता। फरहत भाई एकदम सही कह रहे हैं आप। अरे बाप रे, 666-22107, ये किस्सा सुना के मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया काम किया मैंने। आप एक बढ़िया सा गाना चला लेता हूँ मैं, कहेंगे दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट ट्रैक्स बाय न्यूक्लिया, जो डीजे भाई, बहुत बढ़िया डीजे अपना भाई, और साथ में अवनीत खुरमी की जो आवाज़ है, ओ भाई साहब आग ला देंगे। और जिसने डिसाइड कर लिया इस कहानी के बाद कि तोता पालना है भाई, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए मेरे घर पर भेज देना, मंसूरा में भेज देना, ट्रेन करके भेजूंगा, ऐसा मजे आ जाएंगे आपके। भाई कहते हैं FBI की फुल फॉर्म फेदर्ड बर्ड इन्वेस्टिगेटर। अरे यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बिलाल भाई वेरी नाइस, अच्छा नाम दिया आपने। तो जितने लोग तोता पालने की सोच रहे हैं ट्रेनिंग के लिए

जी छह बज के 22 मिनट आजम साहब ने एक मैसेज किया और बहुत जरूरी सवाल पूछा है, अभी पूछता हूं। आजम भाई कह रहे हैं एक बात बताओ, ये सबसे सवाल है, सर मेरे से सवाल नहीं, आप सबसे जो भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कहानी में बंदा खर्च हो गया उसकी टेंशन नहीं है, तोते को हीरो बना दे। तोता इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई नहीं बोल रहा मुझसे कि देखो आदमी खर्च हो गया बेचारा। ना तोता, तोता इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। वैसे आई लाइक टू दिस स्टोरी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। थैंक यू सो मच। फैन नहीं जी, आप भाई बने रहो। थैंक यू सो मच। माई गॉड, कोता टोटा, ओहो तोता इज समथिंग। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई, कृष्ण भाई थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है, सर मेरे पापा एक तोता, मैं कह रहे चाचा है ना तकरीबन 35 साल का है, ये तोते की बात कर रहे हैं, इतना पुराना तोता क्या बात कर रहे हो भाई, वो तोता नहीं है कुछ और पाल लिया होगा आपने, इतना इतना एक सेकेंड मैं अरबाज भाई क्लियर करो, ये क्या मतलब 35 साल का है तोता, क्या बात कर रहे हो, कुछ और बात होगी भाई, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। चश्मा साफ कर लूँगा 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये थोड़ा कि भाई रॉबर्ट का तो तोता टोटे टोटे हो गए। किसी को पड़ी ही नहीं है, बताइए आदमी वहाँ पे खर्च हो गया उस लाउंज का मालिक, लेकिन सबको तोते की पड़ी। चलो कोई बात नहीं, ये भी तोता स्टार बन गया, इस चक्कर में मैं बच गया, उन लोग मुझे भी कह रहे होते कि अरे तुमने तो आदमी खर्च करा दिया। अच्छा अभी कुछ देर में छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलेंगे। मैसेज है, ये क्या तोता तोता हो रहा है, क्या मिस कर दिया मैंने आज, इंपॉर्टेंट था क्या आज जो आपने मिस किया है, आपको अंदाजा भी नहीं है आज की कहानी जिन्होंने लाइव मिस करी है भाई साहब, ऐसी कहानी थी ना, ऐसी कर्री कहानी, कुरकुरी एकदम, दाल चावल के ऊपर पापड़ जो है क्रश करके खाने में जो मज़ा आता है ना, वैसी कहानी थी, क्या बताएं अब आपको, मिस कर दी है आपने तो। कुरैशी साहब कुछ देर भेजेंगे, पर अभी जो है सोशल मीडिया एंड FM 107 Qatar, FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद हैं और

उनसे भी जरा जुड़ जाइए, मैं भी वहीं पर नहीं हूँ भाई, ढूंढ लो थोड़ा सा। कुछ लोग तो इसलिए भी ढूंढ, पता है मुझे लोग सोशल मीडिया पे क्यों ढूंढते हैं, एक ही वजह है उन्हें आवाज़ और शक्ल को मैच करना है। ये अलग ही खेल बना लिया है लोगों ने, अलग ही खेल है। हर दूसरा मैसेज यही है, आपकी शक्ल आपकी आवाज़ से मैच नहीं करती, ये अलग डिटेक्टिव बने हुए हैं। एक मैसेज आया कबीर भाई जिसने लिखा है, वही तोता है 35 साल। मुझे कंफ्यूज मत करो अरबाज भाई, ये जो आपने सस्पेंस छोड़ दिया है वो सस्पेंस को जरा मिटा के जाओ, मैं टेंशन में आ गया हूँ। ये 35 साल का जो आपने वक्फा बताया वो तोते का बताया, इतना बड़ा तोता मतलब इतने साल का। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये एक तोते की कहानी थी क्या? आज जो कहानी थी वो हो गई, ये आपने मिस कर दी, इससे ताज़ा ताज़ा सुनने का जो मज़ा था वो चला गया। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कह रहे हैं कि मैंने भी एक तोता पाला है, घर जाके टेस्ट करूंगा। अरे भाई क्यों? देसी तोतों को मत टेस्ट करो, वो अंग्रेजी तोता था तो कुछ ठीक ठाक बोल गया, देसी तोता अब सिखाएंगे कुछ बोलेगा कुछ, समझ रहे हैं आप? बस मैं ऐसी वार्निंग दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आपका तोता है, आप जाने। तो अभी कुछ देर में ब्रेक के बाद मिलते हैं। सब में एक जिज्ञासा ही जाग चुकी है, सब सुख आके जाके तोता ना खरीद ले। एक मैसेज है, कबीर भाई कहानी भेजो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद। अच्छा भेजता हूँ, डोंट वरी, यू विल गेट द स्टोरी। मीनवेल कुछ देर में मिलते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अजान के बाद इंशाल्लाह। ओके, तो जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड।

0: وعدت.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: बुरा वक्त एक शफाफ आईने की मानिंद है, जिसकी वजह से बहुत से चेहरे वाजे नजर आने लगते हैं. जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बुरा वक्त वो है जब आपकी नाराजगी और गुस्से के डर से आपके वालिदैन अपनी ख्वाहिश और जरूरत का इजहार और नसीहत करना छोड़ दें. मुश्किल वक्त में दुनियावी तदाबीर जरूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से इल्तजा और दुआ भी कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता. मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई अजनबी क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल की घड़ी में किनारा करने वाला अगरचे अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है. याद रखिए कि जिंदगी में अगर हम मुश्किल हालात से दो चार ना होते तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने हमें कैसे नजर आते.
1: पैगाम ऑन FM 107.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: देसी।
1: इस गाने को उस पार मिलते हैं 6:31 में दोहा वाला कभी रखे होने सन पे। तमाम सुनने वाले को वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत बहुत सारी दुआएं, आपका वीकेंड एकदम बढ़िया जाना चाहिए, काम हम सब साइड में आए एकदम मौज। क्या आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आजिरा भाई साहब, नो ड्रामा।

0: सरदार तो बहुत खुश है भाई साहब, सरदार वीकेंड बनाएगा, सरदार आराम से घर पे जाके फर्नीचर बन जाएगा भाई, कहीं हिलना डुलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अरबाज भाई ने मुझे मैसेज करके बताया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो लोग आज जिनके घर में तोते हैं उन्हें पाल रखा है और उन्हें आज कुछ सिखाने वाले हैं, तो कह रहे हैं मत सिखाओ आप निकल लोगे और तोता बयान भी नहीं देगा। और आगे उन्होंने बताया कि उनके, अच्छा ये बड़ी हैरानी वाली कहानी, उन्होंने बताया कि उनके एक छोटे चाचा हैं, छोटे चाचा ये वर्ड मैंने पहली मरतबा सुना है अरबाज, यूनिक था ये। और बोले उनके चाचा जो है वो 35 साल के, तोता उनसे 2-3 साल छोटा ही था, वो 33-34 साल की उम्र में वो चल बसा, इतना लंबा जिया है तोता चाचा के साथ। क्या बहुत कुछ सीख गया होगा तोता भाई, बहुत कुछ सीख गया होगा आई एम प्रिटी श्योर। बट एनीवे, जिन्होंने कहानी मिस कर दी है, तगड़ी कहानी मिस करी आज आपने, भेजूंगा खैर में। एनीवे, तो आज कुछ दिन मार्क्ड किए जाते हैं इंटरनेशनली, कुछ बड़े अजीब होते हैं, कुछ बड़े काम के होते हैं, कुछ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं सारे बता देता हूँ। आज है इंटरनेशनल मेकिंग लाइफ अ ब्यूटिफुल डे, वीकेंड भी है तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है, एवरी डे शुड बी ब्यूटिफुल। बस इसे नहीं कहूँगा भाई, ड्राइव सेफली प्लीज, काबू में चलाओ काबू में। एंड इसके बाद है से हाई डे, किसी को भी हाई बोल दीजिए, वाला हाई नहीं जो हाई लग जाती है, हाई हाई डीएम में जाके, नाइस डीपी फ्रेंड, नाइस पिक डेयर। एंड इसके बाद आज है इंटरनेशनल लिनक्स डे, एंड उसके बाद है जर्मन चॉकलेट केक डे। ये भाई पता को नहीं भाई, जर्मन चॉकलेट केक डे क्या होता है, लिखा हुआ था मैंने बोल दिया भाई, मैंने पता को नहीं जर्मन की, अभी रिसेंटली तो पता लगा ये टीरामिसू ईसू ये सब को केक होता है, तो जर्मन कौन सा होता है हमको नहीं पता। एक मैसेज है नदीम भाई, कह रहे हैं एक कबीर भाई थैंक्स फॉर मेकिंग लिसनर्स लाइफ ब्यूटीफुल, मैंने दोनों एक ही सेंटेंस में मना लिया। अरे भाई भाई कह रहे हाय कबीर भी हो गया और लाइफ ब्यूटीफुल के बारे में बोल दिया एक ही सेंटेंस में, भाई ने आज का दिन सेलिब्रेट कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। लिखा हाय सर बिग फैन, अरवाइज भाई ने भी सेलिब्रेट कर लिया। एक भाई ने मुझे मैसेज किया, कह रहे हैं हाय सर आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग अभी से। अरबाज भाई लोग मान के नहीं दे रहे कि आपके घर में जो तोता है वो 33 साल जी है। अब भाई इस बात का कोई सबूत नहीं है, प्लीज़ ऐसे सबूत ना मांगा करें, ये हम नहीं इकट्ठा कर सकते प्लीज़, ये कोई बात हुई। और आपने क्यों जानना है तोता 35 साल जिया नहीं जिया, हद हो गई। एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी जरूर भेजेगा, जरूर जरूर भेजेंगे भाई, डोंट वरी। एक क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सुन सकते हैं FM 107 को लाइव, फ़ोन में नहीं चलता। ओके, तो आप एक काम करें, urduradio.qa इस पर जाइए, एंड देन यू कैन लिसन टू अस लाइव, उसमें जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप क्लिक कीजिएगा एंड एवरीथिंग विल बी देयर, आप आराम से सुन पाएंगे। इंटरनेट का लगेगा पर इंटरनेट ठीक है, वाईफाई आराम से। एक मैसेज है कबीर भाई बिग फैन, भाई बिग फैन भाई, क्या बिग फैन क्या सलमान भाई। मैसेज है कबीर भाई सूक वाकिफ में तोता का डिमांड बढ़ेगा, डबल प्राइस होंगे बिकॉज ऑफ मिस्टर कबीर। मेरी गलती नहीं है, पता चला हर तोते ने मेरे बारे में बोलना सीख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मकसूद भाई मेरा तो नाम भी राइम नहीं करता रॉबर्ट की तरह और रॉबरी की तरह। एक मैसेज है मैं अपने नानी का नंबर अब दूंगा, उनसे बात करनी पड़ेगी इन इन लोगों को। नहीं देखिए, इतना साबित करने की ज़रूरत नहीं है, एक इन्हें दिल लगा के भेजा है हाय, तो मैं भी हाय लगा के भेजता हूँ, कृष्ण भाई एनमोल रॉय के नाम से हैं ये भाई, हाय आपको भी, और ये लो जी मैंने भी आपको भेज दिया दिल बना के। एक मैसेज कबीर भाई तुसी ग्रेट हो, नाम तो याद होगा, नाम तो मुझे याद है लेकिन आपका पता कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं राज मेरे भाई, आपका अता पता नहीं रहता है, कहीं आपको रेखा जी ने चुरा तो लिया है। एक मैसेज है हाय भाई बिग फैन। एक मैसेज है आरजे कबीर तोते को आरजे बना दो, फिर उसका नाम आरजे तोता। भाई कुछ अच्छा नाम देंगे, आरजे पंखुड़ी वंखुड़ी ऐसे कुछ नाम देंगे, क्यों देंगे आरजे तोता, उसका भी नाम बदलेंगे। मोहम्मद भाई लिखते हैं हाय बिग भाई, थैंक यू सो मच भाई। एक मैसेज हाय सर हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं मेरे पास सर ओके गाड़ी का नाम नहीं ले सकता, कोई ऐसे बीच बताओ जहाँ पर क्या है अच्छा भी हो, लोग भी ज़्यादा हों, और देखो ये छोटी हो बड़ी गाड़ी हो ये आराम से पहुंच जाती हैं मरूना बीच पे, अजरबैजानी बीच पे वेरी इजीली। इनफैक्ट आप सीलन बीच भी जा सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे बाकी सारे इंतजाम हैं, वॉशरूम्स वगैरह। अजरबैजानी बीच के साथ क्या थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए, सो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं आई वुड सजेस्ट सीलन बीच, बहुत बढ़िया है समय इसमें, इन तमाम जगहों पर आप जा सकते हैं, गाड़ी आराम से बाहर पार्क भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रोड भी नहीं है कि आपको भारी भरकम गाड़ी ही चाहिए। तो जो आपने गाड़ी बताई वो आराम से वहाँ पे पहुँच जाएगी, कोई मसला नहीं है। अरबाज भाई यू कैन ईजिली रीच, बहुत बढ़िया जगह भाई, मरूना बीच, अजरबैजानी बीच या सीलैंड बीच, तीनों में से कोई भी चुन लो, आराम से पहुँच जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर बिल्कुल ही करीब जाना है तो फिर वकरा है भाई, कोई टेंशन नहीं है। एक मैसेज है, क्या है, जहाँ डेजर्ट भी हो, अब सब कुछ चाहिए तो फिर देखिए डेजर्ट भी हो तो फिर सीलैंड है ना, सीलैंड चले जाओ, सामने डेजर्ट है भाई, क्या टेंशन है, बहुत रेत के टीले हैं, चढ़ जाओ कूदो उस पर से, कोई टेंशन नहीं। एक मैसेज है, हाय हाय जी, हाय कैसे हैं आप, बढ़िया। ये रुबेल हुसैन साहब ने मैसेज किया, रुबेल भाई बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक मैसेज है, गाड़ी जाएगी ना सर, ये हमारी वाली बिल्कुल जाएगी आपकी वाली गाड़ी भाई, बिल्कुल जाएगी आपकी गाड़ी, सीलैंड भी जाएगी आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी अजरबैजानी बीच भी चली जाएगी और आपकी गाड़ी मरूना बीच भी चली जाएगी। इन तीनों बीचेस में ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बड़ी ही गाड़ी चाहिए, सो यू कैन पार्क आउटसाइड, बाहर पार्क कर देना, सीलैंड के साथ तो और भी आसान है, चले जाइएगा। और जो अजरबैजानी वाला रास्ता है वो थोड़ा सा आपको कटना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, मगर फाइन, वहाँ फिर भी चली जाती है। मैं खुद भाई अपनी सीडान ले जा चुका हूँ, मैं तो ऐसी ऐसी जगह कूदा चुका हूँ, आप बोल भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। वैसे कबीर भाई, मेरी बेटी हानिया को सलाम करिए। हानिया को वालेकुम अस्सलाम, हानिया को बहुत सारा प्यार। एंड हानिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन स्वीट हार्ट। एक मैसेज है और एक सवाल था, आपके पास कौन सी गाड़ी, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ये लो लिख के दे दिया मैंने, ये है भाई मेरे पास गाड़ी। एक मैसेज है, चाय पी लीजिए, थैंक यू सो मच अहमद भाई, चाय पी लीजिए। आप क्यों नहीं आते हैं हमारे शो में, अच्छी बात थोड़ी है। एक मैसेज भाई, ये जगह से प्यार हो गया है अब, ये जगह कौन सी है जिससे प्यार हो गया आपको, ये है जगह कौन सी, वैसे ये जगह जो आपने भेजी है प्यार होने लायक तो है, पर ये जगह जाने बचाने क्यों लग रही है। एक मैसेज क्या है, थैंक यू सर गाइड करने के लिए, इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, आपको पिक्चर भेजूँगा। बिल्कुल भाई, इन्जॉय कीजिए, आपका वीकेंड है, भर भर के इन्जॉय कीजिए मेरा भाई, अरबाज भाई। एक और मैसेज है, मरूना बीच मेरा फेवरेट है, मुझे इनलैंड बहुत पसंद है, इनलैंड सी, लेकिन वहाँ के लिए भाई 4x4 लगती है। वैसे मेरे क्या, ओहो कोई खास रहता है फरद भाई, कॉल उठा लो मैं, देखो तो सही, शर्मा आ गया लड़का। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई।
0: मैं बढ़िया कमाल भाई, आप सुनाइए, कमाल कर दीजिए, कैसे हैं आप।
1: बस ठीक है भाई, अल्लाह का करम, बस ना आपकी कहानी भी नहीं सुना, बस खाली इतना सुना तोते तोते हो रहे थे, मैं भी
0: तोते तोते हो गया,
1: मिस कॉल किया ना।
0: अरे आप सुनिए, आपको तभी मैंने थोड़ा सा सुना है, आपको मजे आ जाएंगे कमाल भाई, आप
1: तो इसीलिए मैं बोला भाई देखा जाए। हाँ मौला, आखिरी दिन चल रहा है मौला, लास्ट दो दिन के बाद ही मिलोगे।
0: हाँ वो तो है, वो तो है,
1: दो दिन के बाद मिलेंगे ना भाई,
0: दो दिन के बाद भाई, पर आपको कहानी मिलती रहेगी ना कमाल भाई, क्या टेंशन है मेरा भाई, आपको तो कहानी मिलेगी।
1: नहीं कहानी तो मिलती रहेगी, बात सही है, लेकिन लाइव सुनने में और आपकी आपकी बातें सुनने में जो मजा है भाई, वो और कहीं नहीं है ना।
0: कमाल भाई है, कमाल भाई क्या करें, कमाल भाई क्या चाय पियेंगे, चाय बना दो आपके लिए, क्या पियेंगे बताइए आप, हुकुम कीजिए।
1: नहीं चाय पी लिया भाई,
0: चाय पी लिया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: चाय पी लिया बस, आप ऐसी बातें करते रहिए बस, यही बहुत है।
0: अरे मेरा भाई, आपकी मोहब्बत भाई, बड़ी मेहरबानी भाई, इस इज्जत के लिए थैंक यू।
1: थोड़ा जल्दी कर दिया करिए, जब आते हैं उसी टाइम में मिस कॉल कर दिया करिए।
0: अच्छा ऐसा क्या,
1: टाइम निकाल के मैं दूसरा काम छोड़ दूंगा भाई।
0: अरे भाई भाई भाई भाई,
1: पहले एयरफोन लगा के बैठ जाऊंगा।
0: अरे भाई आपका आपका आपको बहुत सारा प्यार मेरे भाई, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बहुत सारा प्यार है, मैं स्पीचलेस हूँ भाई, एक आरजे को चुप करा दिया आपने, इतना बोला
1: भाई। दो हफ्ता हो गया रेडियो मेरे को जब से आप गए हैं
0: जी,
1: एक दिन में मैंने खाली बस मैसेज कर देता हूँ सुबह का सलाम वालेकुम, बस उसके बाद कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, बस सुनते रहता हूँ।
0: अच्छा चलिए,
1: आपके कॉल में आपके उसमें सुनने का और बात करने का दिल कर रहा है ना, इसीलिए।
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ये मोहब्बत है मेरे भाई आपकी, थैंक यू सो मच, ये कनेक्शन बनाने के लिए आदमी काम करता है।
1: ठीक है, अभी आना, अब संडे के दिन आना ना,
0: डन डन,
1: तो आप एक मैसेज डाल देना मेरे को,
0: डन मेरा भाई, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओके
0: ठीक है मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए मेरी जान,
1: चलिए ओके, अल्लाह
0: हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। ये जो आला आप लोग मोहब्बत देते हो ना, फिर कोई अवार्ड अवार्ड फिर मज़ा नहीं आता, आप कोई ट्रॉफी भी दे देगा तो इससे छोटी ही लगेगी। फरद भाई क्या कह रहे हैं, वीकेंड कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चल रहा, सब पता है मुझे, ठीक है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्डिंगों को देख रहा है आदमी, बताओ ऊपर से खींच खींच के वीकेंड कैसे निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, राज,
0: राज भाई कैसे हैं, राज भाई आप कहाँ थे मेरे भाई,
2: आप इतने फेमस हैं आपको मालूम नहीं।
0: अरे भाई
2: नॉर्मली मैं सवेरे का 8 से 9 बजे का सेशन सुनता हूँ।
0: अच्छा,
2: वहाँ पे इतनी कंप्लेंट है कि गुड मॉर्निंग कबीर भाई, स्टोरी ग्रेट था यार, 10 मिनट स्टोरी, यू आर सो फेमस, फॉरगेट अबाउट द इवनिंग शो, मॉर्निंग में भी मैसेज आप वहाँ पे नाजिया और वो मैडम दूसरी मैडम
0: मैं विशा
2: जा रहा है। गुड मॉर्निंग कबीर भाई।
0: भाई मुझे पता नहीं अभी भी आ रहे कि नहीं आ रहे, पर अब तो मतलब लोगों को थोड़ा जाग जाना चाहिए बेचारे, ऐसे नहीं करना चाहिए।
2: नाजिया मैडम छुट्टी गई है
0: जी जी,
2: तो शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन पहला तो टिल लास्ट वीक इट वॉज देयर।
0: अच्छा ओके, ये तो
2: मेरे को इवनिंग में टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज बाय द टाइम आई लीव ऑफिस इट इज 6:37, तो चांस नहीं मिलता। लेकिन सवेरे यस आई लिसन, बिकॉज व्हेन आई गो मैं जब ऑफिस जाता हूं इट्स बिटवीन 8:15 एंड 9, तो
0: राज भाई की मोहब्बत की बात, राज भाई को भी पलट के मोहब्बत ट्रक भर भर के, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो मॉर्निंग में क्या हो रहा है। अरे सुबह सुबह लोग लिख देते कहानी बहुत बढ़िया है। जैसे भाई सुबह के शो में सब आकर, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, ये सुबह सुबह जो लोग मैसेज कर रहे हैं, एक मैसेज है ये ऑडियो क्लिप एफएम पे सुनाइए, मैं ऑडियो क्लिप डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम मेरे भाई, तो कुछ प्रोटोकॉल्स मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन नॉट डू दैट, बट मैं अभी सुन लेता हूँ जो आपने मुझे भेजा है एक गाना, क्योंकि ऑफकोर्स वीकेंड की वाइब बनी रहनी चाहिए। आपके गाड़ी के स्पीकर्स को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं फुल बेस पे, तो ये गाना है जो आपकी गाड़ी के स्पीकर्स को पक्का टेस्ट कर देगा। ना ना ना ना, ये नहीं, ये मैं चला चुका हूं, मैं ये चलाऊंगा, वो चल चुका है आज ही बनाया, सुन चुके हैं आप, ये सुनिए, बिकॉज आपकी गाड़ी के स्पीकर बाजंगा भाई, यूं बूफर ऐसे भम भम करके मौज आ जाएगी जब इसका बीट ड्रॉप आएगी। बीट ड्रॉप के लिए वेट करना बस, अभी कुछ दिन आएगी बीट ड्रॉप। न्यूक्लिया मिर्जा गाने का नाम, और भाई रफ्तार पाजी ने कह रहा है क्या इसमें कती गणा कसूता रहा है भाई, मौज आ जाएगी। आए हाय, अभी बीट ड्रॉप नहीं आई है, जब बीट ड्रॉप आएगी तब देखिएगा आप। इन सम टाइम

0: घड़ी के कांटे भाग लिए भाई। हाँ जी, अहमद भाई ने मैसेज किया है, जाने से पहले उनको मैसेज में पढ़ देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कभी आप सुबह गेस्ट में आइए तो बताइएगा महवेश बहन के साथ। क्या है कि भाई उसके लिए दो प्रोसेस हैं, पहला प्रोसेस है कोई चाहे, है ना, दूसरा प्रोसेस है मैं चाहूँ, तीसरा प्रोसेस भी है मैं उठूँ, समझ रहे हैं। ये तीनों प्रोसेस बड़े मुश्किल से हैं मगर आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है बाकी
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से।
0: तो लाइन वहीं से शुरू हो चुकी है और अभी लाइन के बिल्कुल मैं लास्ट में पहुंच चुका, मेरे आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। एंड ये मोहब्बत जो आपने बरसाई है, थैंक यू सो मच। ये हानिया का जो मैसेज था मैंने सुना, अभी मैं अलग से रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच हानिया फॉर सच अ क्यूट मैसेज। एंड एक दो और मैसेजेस हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा शाम को, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस हौसले अफजाई के लिए। बच्चे जब मोटिवेट करते हैं तो फिर तो अलग बात हो जाती है, फिर लगता है कि हाँ हर एज ग्रुप टारगेट हो रहा है। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। और अगर आपको भी ये खेल खेल रहा है कि जहाँ पे आवाज़ और शक्ल को मिलाना है तो आपकी मर्जी भाई, आ जाना सोशल मीडिया पे, दोहा वाला कबीर के नाम से मिल जाऊंगा आपको। एंड कहानी आपको कुछ देर मिल जाएगी, चाय पीते पीते आपको सब कहानियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। लॉट्स ऑफ लव फरहत भाई आपको भी एंड हैप्पी वीकेंड। एक मैसेज है कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, केडी माइकल कैसे हो भाई? माइकल भाई एकदम बढ़िया भाई, जाने का वक्त हो गया, क्या हुआ है? अभी क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ दोनों हो गया आपसे तो आपसे ज़्यादा चाहूँगा 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन एंड दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: करना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी चॉइसेस की जो हमारी डेली शॉपिंग हैबिट्स को सिर्फ कन्वीनियंट नहीं बनाती बल्कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को बेनिफिट करती हैं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं कि भाई आप सुपरमार्केट में गए, शेल्व्स फुल हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स, पैकेज्ड गुड्स और डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट से। आप एक एप्पल उठाते हैं, दूसरा तीसरा ब्रांड देखते हैं और लेबल पर लिखा होता है इंपोर्टेड फ्रॉम फलाना फलाना कंट्री, किसी दूर के मुल्क से। अब आप ये सोचते हैं कि भाई ये चीज यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं तो सोचती हूँ कितना ट्रेवल किया होगा इसने, कितना फ्यूल यूज हुआ होगा और कहां कहां से होती भी आ रही होगी। और फिर सेम टाइम पर शेल्फ के दूसरे साइड पर लोकल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी वाले होते हैं लेकिन ज्यादा क्लोजर सोर्स से आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के पीछे एक लॉन्ग सप्लाई चेन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस में फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन इमिशंस जनरेट होती हैं और कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। लोकल प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम ही होता है। अच्छा अब आप कहेंगे कि भाई इसमें इको स्विच क्या है। भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, जब पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, मतलब अपनी कंट्री या नियर बाय रीजन के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं भाई कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है, कम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कम फ्यूल यूज और कम कार्बन इमिशंस। दूसरा फायदा होता है फ्रेश और टाइमिंगली अवेलेबिलिटी, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्रेश होते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग स्टोरेज और लॉन्ग ट्रेवल टाइम से गुजरना नहीं पड़ता। तीसरा फायदा होता है लोकल इकोनॉमी सपोर्ट, जब आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करते हैं। चौथा फायदा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो भाई इंपोर्टेड गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट कॉस्ट्स ऐड होती हैं जबकि लोकल प्रोडक्ट्स अक्सर ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। सोचिए आपने एक टोमेटो खरीदा, एक ऑप्शन है कि आप इंपोर्टेड टोमेटो लें जो कई दिन ट्रेवल करके आया है और दूसरा ऑप्शन है कि भाई लोकल फार्म वाला फ्रेश टोमेटो उठाओ और ये जा वो जा। दोनों लुक में सिमिलर ही हैं, दोनों के दोनों अगर आप पास रख कर देखें दोनों को, लोकल वाला और इंपोर्टेड वाला, दोनों लुक्स में एक जैसे हैं लेकिन लोकल टोमेटो ज्यादा फ्रेश होगा, ज्यादा टेस्टी हो सकता है और एनवायरमेंट को भी कम इम्पैक्ट करेगा। साथियों दोहा जैसे सिटी में आप नोटिस करें तो यहाँ सुपरमार्केट्स में इंपोर्टेड और रीजनल दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली लोकल और रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तो भाई इसी के साथ अब थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लेबल चेक करें, शॉपिंग करते वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखें, फार्मर्स मार्केट या लोकल सेक्शंस एक्सप्लोर करें। अक्सर सुपरमार्केट्स में डेडिकेटेड लोकल प्रोडक्ट सेक्शंस होते हैं, वहां जाए ना। अच्छा और एक और चीज, सीजनल बाइंग करें, यानी कि जो चीज सीजन में लोकली अवेलेबल हो उसे प्रेफर करें। अच्छा एक और चीज,

ग्रेजुअल शिफ्ट करें, सब कुछ एकदम चेंज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉपिंग हैबिट्स को लोकल फ्रेंडली बनाएं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोकल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ खाने तक, फूड तक लिमिटेड नहीं है, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और डेली यूज आइटम भी लोकल इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। जब आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना, तो आप कल्चरल हेरिटेज को भी सपोर्ट करते हैं। और एक और रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई इम्पोर्टेड चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई लोकल प्रोडक्ट्स फ्रेश, नेचुरल और इक्वली हाई क्वालिटी वाले होते हैं, बस उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, जो कि हम नहीं कर रहे होते। अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की बात करें, तो जब आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो आप अपनी शॉपिंग को सिर्फ कंजम्पशन नहीं बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं। आप सिर्फ कस्टमर नहीं रहते बल्कि एक सपोर्टर बन जाते हैं अपनी इकोनॉमी के। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहां पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। और आज का चैलेंज ये है कि आज या इसी वीक अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कम से कम 2 लोकल प्रोडक्ट्स इंटेंशनली चूज करें और ऑब्जर्व करें कि क्वालिटी, फ्रेशनेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑलरेडी लोकल प्रोडक्ट्स मेरी तरह यूज करते हैं, तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें, यकीन जाने फायदा ही होगा। अच्छा भाई साथियों, ये याद रखें कि हर परचेज सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है जो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कम्युनिटी सबको अफेक्ट करता है। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, तो हम अपनी जमीन को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और अपने फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: देखिए आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तालीम जो जिम्मेदार शहरी बनाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सिर्फ पॉलिसीज का होना काफी नहीं है बल्कि लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है. एजुकेशन से बचपन से ही सस्टेनेबिलिटी वैल्यूज सिखाए जाते हैं, अमल में लाए जाते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर बच्चे नेचर की कद्र करना सीख लें तो फ्यूचर में बेहतर फैसला करेंगे. एजुकेशन अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पैदा करती है. आज के वक्त में इस रेलिवेंस इसकी और बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है. अगर सही तालीम ना हो तो शायद नुकसान ज्यादा बड़ा होगा. एज अ पेरेंट एज अ टीचर हमारे रोल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. बच्चों को रिसोर्सेज की वैल्यू समझाना और एग्जाम्पल सेट करना सबसे बेहतर तरीका है. सस्टेनेबल फ्यूचर तालीम से शुरू होता है.

जो हम आज सिखाएंगे वही तो बच्चे कल फैसला करेंगे. इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को इस तरह से तालीम दी जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यकीनी बनाया जा सके. इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करती या तब तक एक सक्सेसफुल इकोनॉमी नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वहाँ के लोग शहरी खुश ना हो. और शायद इसी को कहा जाता है लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलबींग. देखिए, सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ा लेना असल तरक्की तो है नहीं. कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश, सेहतमंद और सिक्योर ना हो, डेवलपमेंट अधूरा है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबींग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है. एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है. फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है. दोस्तों, जब लोग हेल्दी, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए अपना 107 दिल से देसी.

0: लेकिन हमें वो करने ही पड़ते हैं। ऐसे हालात में खुद को एक दफा तोड़कर फिर से जोड़ लीजिए तो फिर हर पल मरना नहीं पड़ेगा। आप खुद में सुकून महसूस करेंगे और जिंदगी फिर से मामूल पर आ जाएगी।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की अहमियत पर। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शुक्रगुजारी छुपी होती है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत का इकरार कर रहे होते हैं। अक्सर हम सिर्फ बड़ी खुशियों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन असल मोमिन वो है जो हर हाल में शुक्र अदा करता है, चाहे खुशी हो या मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दिल को सुकून मिलता है और नेगेटिव सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये लफ्ज हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है। आज का अमल ये है कि पूरे दिन हर छोटी बड़ी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। खाना मिले, काम हो जाए या बस सुकून का एक लम्हा मिल जाए, यह आदत आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और बरकत लेकर आएगी। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरकत एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों 1992 गल्फ कप कतर के लिए यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ था और उसी टूर्नामेंट में गोलकीपर अहमद खलील ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर दिया। अरब खत्ते में यह टूर्नामेंट कतरी फुटबॉल की तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज भी लोग इसे फख्र के साथ याद करते हैं। अहमद खलील उस वक्त सिर्फ एक बेहतरीन गोलकीपर नहीं थे बल्कि यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल भी बन गए थे। या दोस्तों, उस दौर में फुटबॉलर्स के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज आज इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अहमद खलील ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से साबित किया कि टैलेंट और हौसला हर मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में पेनल्टी सेव्स और क्रूशियल स्टॉप्स करके कतर को मुश्किल लम्हों में सहारा दिया और इसी वजह से उन्हें गल्फ फुटबॉल का गोल्डन ग्लव विनर भी कहा गया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी कतर की फुटबॉल टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर एशिया में अपनी पहचान मजबूत की। स्पेन के खिलाफ टीम ने हिम्मत और जज्बे के साथ खेला जिससे कतरी फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत और शोहरत हासिल हुई। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। दिल से देसी।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत तदब्बुर।

0: और फहम कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के हलके में एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। इब्तदाई में तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामिन इकराम, ये सवाल सिर्फ तलबा, असातिज़ा, अहले इल्म, ये सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि हर एक इंसान का सवाल है। वो सवाल ये है कि कुरान मजीद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए पढ़ी जाने वाली किताब है? क्या ये सिर्फ अखलाकियात की किताब है? क्या ये सिर्फ इबादात और चंद मजहबी अहकाम तक महदूद है? या फिर कुरान इससे कहीं बढ़कर एक ऐसी किताब है जो इंसान की सोच, फिक्र, इल्म, शऊर और पूरी ज़िंदगी की रहनुमाई करती है। सामने किराम, आज हमारी एक बड़ी मुश्किल ये है कि हम में से बहुत से लोग कुरान से ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन इस ताल्लुक़ की नौईयत महदूद हो चुकी है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, यकीनन एक अजीम अमल है। कुरान के हिफ्ज़ करते हैं, ये भी बड़ी सआदत है। कुरान को बरकत की किताब समझते हैं और ये भी दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान सिर्फ बरकत के लिए नाजिल हुआ था या फिर इसका एक बड़ा मकसद इंसान की फिक्र और ज़िंदगी की रहनुमाई भी है? कुरान खुद इस सवाल का जवाब देता है। इरशाद खुदावंदी है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته। ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयात में गौर फिक्र करें। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ तिलावत का जिक्र नहीं किया बल्कि तदब्बुर का जिक्र किया है। यानी कुरान का मकसद सिर्फ पढ़ा जाना नहीं बल्कि समझा जाना भी है। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोगों के जहन में तसव्वुर बैठ चुका है कि कुरान ज़िंदगी के फ़ैसलों में आखिरी नंबर पर आता है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो पहले मगरबी नज़रियात देखते हैं, माशियात की बात करते हैं तो पहले दुनिया के माहिरीन को देखते हैं, सियासत की बात करते हैं तो पहले इंसानी फ़लसफ़ों को देखते हैं और कुरान को अक्सर आखिर में रखा जाता है। हालांकि एक मुसलमान के लिए असल मेयार कुरान होना चाहिए। कुरान कोई ऐसी किताब नहीं जो ज़िंदगी के किनारे पर रखी जाए बल्कि कुरान वो किताब है जिसके ज़रिए ज़िंदगी को समझा जाए। सामिन किराम, कुरान के बारे में या कुरान को समझने के हवाले से लोगों की बहुत सी आ रहा है। कोई कहता है कुरान अमन की किताब है, कोई कहता है कुरान सिर्फ अखलाकियात की किताब है, कोई कहता है कुरान सिर्फ रूहानियत की किताब है, कोई इसे साइंसी किताब करार देता है। लेकिन एक मुसलमान का मेयार लोगों की राय नहीं होना चाहिए। असल सवाल तो ये है कि कुरान खुद अपने बारे में क्या कहता है। कुरान फरमाता है, हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ये हिदायत किस चीज़ की? सिर्फ नमाज और रोज़े की नहीं बल्कि पूरी इंसानी ज़िंदगी की। हिदायत का मकसद क्या है? अल्लाह ताला एक और मकाम पर फरमाता है, लियकूम अन्नास बिलक़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, इंसाफ कायम करे। ये आयत हमें कुरान के एक अजीम मकसद से रोशनास कराती है कि कुरान इंसानों को इंसाफ कायम करना सिखाता है। घर में इंसाफ, माशरे में इंसाफ, मईशत में इंसाफ, अदालत में इंसाफ, तालीम में इंसाफ और इंसाफ के क़ियाम के लिए जिस इल्म और रहनुमाई की ज़रूरत है कुरान उसकी बुनियादें फराहम करता है। सामिन किराम, जब इल्म का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो अक्सर जहन में तबियात, कीमिया, तिब या इंजीनियरिंग आती है। ये सब अहम उलूम हैं लेकिन कुरान का बुनियादी मैदान इंसान

गलती थी तो आजिजी के साथ अपनी राय वापस ले लेनी चाहिए, यही इल्मी दियानत है। सामिन किराम, बाज लोग कहते हैं अगर हम कुरान में गौर करेंगे तो कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या गलती का इम्कान इल्म हासिल करने से रोक सकता है। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी बाज़ औक़ात फ़हम में गलती हुई थी। आदि इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोज़े से मुतालिक एक आयत को इब्तिदा में गलत समझ लिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि आइंदा कुरान में गौर ही मत करना, बल्कि इस्लाह के साथ तदब्बुर का रास्ता खुला रखा। सामने किराम, आज बाज़ लोग कहते हैं कि अगर नौजवान कुरान में ज़्यादा गौर करेंगे तो कहीं इंतहा पसंद ना बन जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंतहा पसंदी कुरान के मैदान में नहीं होती, इंसान की अपनी ख़ास तरबियत की बात होती है, वही ज़्यादा मुअसर होती है इस सिलसिले में कि वो इंतहा पसंद हो या ना हो। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान कानून पढ़ कर भी इंतहा पसंद हो जाता है, सियासत में भी, मईशत भी, फ़लसफ़े में भी। गलत फहमियाँ हर मैदान में पैदा हो सकती हैं, इसका इलाज इल्म से दूरी नहीं बल्कि सही इल्म है, कुरान से दूरी नहीं बल्कि कुरान के साथ सही ताल्लुक में है। जब मुसलमान कुरान से दूर हो जाता है तो वो दूसरों के फिक्री असरात का आसान शिकार बन जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके पास हक और बातिल को परखने का कुरानी मेयार बाकी नहीं रहता। फिर कोई भी शख्स आयात को सियाक व सिबाक से काट कर पेश करे तो वो मुतासर हो जाता है। कोई भी फितना परवर शख्स मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर सकता है। इसीलिए कुरान से ताल्लुक कमज़ोर करना मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक बड़ा मसला है। सामने कराम, आज उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि कुरान दोबारा हमारी फ़िक्र का मरकज़ बन जाए। हम तालीम में कुरान को देखें, अखलाक में कुरान को देखें, ख़ानदान में कुरान को देखें, मुआशरे में कुरान को देखें और अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में कुरान को रहनुमा बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी तमाम इंसानी उलूम की नफ़ी कर दी जाए, बल्कि मतलब ये है कि कुरान हमारा बुनियादी मेयार बन जाए और बाकी उलूम उसकी रोशनी में समझे जाए। तो सामिन किराम, ये कुरान आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए नाजिल हुआ है। इसे सिर्फ तिलावत की किताब न बनाइए, इसे अपनी फिक्र, अपनी शख्सियत और अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाइए। कुरान में तदब्बुर कीजिए, सवाल कीजिए, सोचिए, समझिए और जहाँ ज़रूरत हो अहले इल्म से रहनुमाई लीजिए। लेकिन ये न कहिए कि मैं कैसे कुरान में तदब्बुर करूँ, मैं तो कुरान समझने के अहल नहीं। तो जैसा कि हमने बताया, कुरान की तफसीर एक बात होती है और कुरान में तदब्बुर, गौर व फिक्र ये दूसरी बात है, क्योंकि जिस किताब को अल्लाह ने हुदल लिन्नास फरमाया है इसमें हर इंसान के लिए हिदायत का हिस्सा मौजूद है। अल्लाह सुबहाना व तआला हमें कुरान से मजबूत ताल्लुक नसीब फरमाए, उसके नूर से हमारे दिलों को रोशन करें और हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम के इख्तिताम मरहले में सामने किराम, ज़रा हम कुरानी तालीम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद जब इंसान की तरबियत की बात करता है तो उसका हदफ सिर्फ़ एक

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों 1992 गल्फ कप कतर के लिए यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ था और उसी टूर्नामेंट में गोलकीपर अहमद खलील ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर कर दिया। अरब खत्ते में ये टूर्नामेंट कतरी फुटबॉल की तारीख में एक अहम मकाम रखता है और आज भी लोग इसे फख्र के साथ याद करते हैं। अहमद खलील उस वक्त सिर्फ एक बेहतरीन गोलकीपर नहीं थे बल्कि यंग जनरेशन के लिए एक मिसाल भी बन गए थे। या दोस्तों, उस दौर में फुटबॉलर्स के लिए रिसोर्सेज और ट्रेनिंग फैसिलिटीज आज जितनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अहमद खलील ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से साबित किया कि टैलेंट और हौसला हर मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैचेस में पेनल्टी सेव्स और क्रूशियल स्टॉप्स करके कतर को मुश्किल लम्हों में सहारा दिया और इसी वजह से उन्हें गल्फ फुटबॉल का गोल्डन ग्लव विनर भी कहा गया। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी कतर की फुटबॉल टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर एशिया में अपनी पहचान मजबूत की। स्पेन के खिलाफ टीम ने हिम्मत और जज्बे के साथ खेला जिससे कतरी फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पर इज्जत और शोहरत हासिल हुई। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जदीद जिंदगी में तकरीबन हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, और वो है जहनी दबाव या स्ट्रेस। थोड़ा बहुत जहनी दबाव जिंदगी का हिस्सा है, बाज़ुकात हमें बेहतर कारकर्दगी के लिए मुतहरक भी करता है, लेकिन जब ये दबाव मुसलसल रहने लगे तो जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासिर होने लगती है। जहनी दबाव की कई वजूहात हो सकते हैं, काम या जो तालीम है उसका दबाव, माली मुश्किलात हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, बीमारी है या सेहत के मसाइल हैं, फ्यूचर के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, सोशल मीडिया और जो मालूमात हैं उनकी बहुत ज़्यादा भरमार। हर शख्स मुख्तलिफ हालात पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल देता है, इसलिए एक ही सूरत हाल के लिए मामूली और किसी दूसरे के लिए शदीद दबाव का बास भी बन सकती है। मुसलसल जहनी दबाव सिर्फ जहन ही नहीं बल्कि जिस्म को भी मुतासिर करता है। उसमें सर दर्द है, नींद की खराबी है, थकन और कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, ब्लड प्रेशर में इजाफा है, बेचैनी और डिप्रेशन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम जहनी दबाव को कम कर सकते हैं। जब आप परेशान हों या दबाव का शिकार हों तो चंद लम्हों के लिए रुक कर आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लीजिए, और ये अमल जिस्म को सुकून का पैगाम देता है और दिल की धड़कन को मामूल पर लाने में मदद देता है। रोजाना की वॉक या हल्की एक्सरसाइज जहनी दबाव को कम करती है, और वर्जिश के दौरान ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और जहनी सुकून फराहम करते हैं। मराकबा या मेडिटेशन इंसान को मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करने में मदद देता है। रोजाना चंद मिनट खामोश बैठकर सांसों पर तवज्जो देना जहनी सुकून में इजाफा कर सकता है। जिक्र, दुआ, तिलावत कुरान और नमाज ना सिर्फ रूहानी सुकून फराहम करते हैं बल्कि जहनी दबाव कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। रोजाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जहनी सेहत के लिए जरूरी है। मुनासिब आराम जिस्म और दिमाग दोनों को तवानाई फराहम करता है, और अगर स्ट्रेस या जहनी दबाव हद से बढ़ जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम या ताल्लुकात को मुतासिर करने लगे तो किसी माहिर नफ्सियात या मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए। जहनी दबाव जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी पर हावी होने देना ज़रूरी नहीं है। सेहतमंद आदत, पॉजिटिव थिंकिंग, मुनासिब आराम, एक्सरसाइज और रूहानी वाबस्तगी के ज़रिए हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अपने जिस्म के साथ साथ अपने जहन का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी जहनी सेहत ही एक मतवाजन और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी चॉइसेस की जो हमारी डेली शॉपिंग हैबिट्स को सिर्फ कन्वीनियंट नहीं बनाती बल्कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को बेनिफिट करती हैं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में। चलिए एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं कि भाई आप सुपरमार्केट में गए, शेल्व्स फुल हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स, पैकेज्ड गुड्स और डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट से। आप एक एप्पल उठाते हैं, दूसरा तीसरा ब्रांड देखते हैं और लेबल पर लिखा होता है इम्पोर्टेड फ्रॉम फलाना फलाना कंट्री, किसी दूर के मुल्क से। अब आप ये सोचते हैं कि भाई ये चीज यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं तो सोचती हूँ कितना ट्रेवल किया होगा इसने, कितना फ्यूल यूज हुआ होगा और कहां कहां से होती भी आ रही होगी। और फिर सेम टाइम पर शेल्फ के दूसरे साइड पर लोकल प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी वाले होते हैं लेकिन ज्यादा क्लोजर सोर्स से आ रहे होते हैं। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। देखिए हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के पीछे एक लॉन्ग सप्लाई चेन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस में फ्यूल कंजम्पशन होता है, कार्बन इमिशंस जनरेट होती हैं और कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। लोकल प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसीलिए उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम ही होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें इको स्विच क्या है। भाई आइडिया बड़ा सिंपल सा है, जब पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, मतलब अपनी कंट्री या नियर बाय रीजन के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं भाई कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है, कम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कम फ्यूल यूज और कम कार्बन इमिशंस। दूसरा फायदा होता है फ्रेश और टाइमिंगली अवेलेबिलिटी, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्रेश होते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग स्टोरेज और लॉन्ग ट्रेवल टाइम से गुजरना नहीं पड़ता। तीसरा फायदा होता है लोकल इकोनॉमी सपोर्ट, जब आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करते हैं। चौथा फायदा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो भाई इंपोर्टेड गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट कॉस्ट्स ऐड होती हैं, जबकि लोकल प्रोडक्ट्स अक्सर ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। सोचिए आपने एक टोमेटो खरीदा, एक ऑप्शन है कि आप इंपोर्टेड टोमेटो लें जो कई दिन ट्रेवल करके आया है, और दूसरा ऑप्शन है कि भाई लोकल फार्म वाला फ्रेश टोमेटो उठाओ और ये जा वो जा। दोनों लुक में सिमिलर ही हैं, दोनों के दोनों अगर आप पास रख कर देखें दोनों को, लोकल वाला और इंपोर्टेड वाला, दोनों लुक्स में एक जैसे हैं, लेकिन लोकल टोमेटो ज्यादा फ्रेश होगा, ज्यादा टेस्टी हो सकता है और एनवायरमेंट को भी कम इम्पैक्ट करेगा। साथियों दोहा जैसे सिटी में आप नोटिस करें तो यहाँ सुपरमार्केट्स में इंपोर्टेड और रीजनल दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है कि कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली लोकल और रीजनल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तो भाई इसी के साथ अब थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लेबल चेक करें, शॉपिंग करते वक्त कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर देखें, फार्मर्स मार्केट या लोकल सेक्शंस एक्सप्लोर करें। अक्सर सुपरमार्केट्स में डेडिकेटेड लोकल प्रोडक्ट सेक्शंस होते हैं, वहां जाएं ना। अच्छा और एक और चीज, सीजनल बाइंग करें, यानी कि जो चीज सीजन में लोकली अवेलेबल हो उसे प्रेफर करें। अच्छा एक और चीज, ग्रेजुअल शिफ्ट करें, सब कुछ एकदम चेंज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी शॉपिंग हैबिट्स को लोकल फ्रेंडली बनाएं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोकल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ खाने तक, फूड तक लिमिटेड नहीं है, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और डेली यूज आइटम भी लोकल इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। जब आप लोकल हैंडीक्राफ्ट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ना तो आप कल्चरल हेरिटेज को भी सपोर्ट करते हैं। और एक और रिलेटेबल बात ये कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई इंपोर्टेड चीजें ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी होती है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई लोकल प्रोडक्ट्स फ्रेश, नेचुरल और इक्वली हाई क्वालिटी वाले होते हैं, बस उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है जो कि हम नहीं कर रहे होते। अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज की बात करें तो जब आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना तो आप अपनी शॉपिंग को सिर्फ कंजम्पशन नहीं बल्कि कॉन्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं। आप सिर्फ कस्टमर नहीं रहते बल्कि एक सपोर्टर बन जाते हैं अपनी इकोनॉमी के। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहां पॉसिबल हो लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। और आज का चैलेंज ये है कि आज या इसी वीक अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कम से कम दो लोकल प्रोडक्ट्स इंटेंशनली चूज करें और ऑब्जर्व करें कि क्वालिटी, फ्रेशनेस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आप ऑलरेडी लोकल प्रोडक्ट्स मेरी तरह यूज करते हैं तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें, यकीन जाने फायदा ही होगा। अच्छा भाई साथियों,

याद रखें कि हर परचेज सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है जो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और कम्युनिटी सबको अफेक्ट करता है। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स चूज करते हैं तो हम अपनी जमीन को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और अपने फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट, एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की अहमियत पर. अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शुक्रगुजारी छुपी होती है. जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत का इकरार कर रहे होते हैं. अक्सर हम सिर्फ बड़ी खुशियों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन असल मोमिन वो है जो हर हाल में शुक्र अदा करता है, चाहे खुशी हो या मुश्किल. अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दिल को सुकून मिलता है और नेगेटिव सोच धीरे धीरे खत्म हो जाती है. ये लफ्ज हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे साथ है. आज का अमल ये है कि पूरे दिन हर छोटी बड़ी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें. खाना मिले, काम हो जाए या बस सुकून का एक लम्हा मिल जाए, यह आदत आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और बरकत लेकर आएगी. ये था आज का मैसेज. आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरकत FM 107 पर. मैं हूँ आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.

0: 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया.
0: One Step to 2030.
1: देखिए आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तालीम जो जिम्मेदार शहरी बनाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सिर्फ पॉलिसीज का होना काफी नहीं है बल्कि लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है. एजुकेशन से बचपन से ही सस्टेनेबिलिटी वैल्यूज सिखाए जाते हैं, अमल में लाए जाते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर बच्चे नेचर की कद्र करना सीख लें तो फ्यूचर में बेहतर फैसला करेंगे. एजुकेशन अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पैदा करती है. आज के वक्त में इस रेलेवेंस इसकी और बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी और कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है. अगर सही तालीम ना हो तो शायद नुकसान ज्यादा बड़ा होगा. एज अ पेरेंट एज अ टीचर हमारे रोल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. बच्चों को रिसोर्सेस की वैल्यू समझाना और एग्जाम्पल सेट करना सबसे बेहतर तरीका है. सस्टेनेबल फ्यूचर तालीम से शुरू होता है. जो हम आज सिखाएंगे वही तो बच्चे कल फैसला करेंगे. इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को इस तरह से तालीम दी जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यकीनी बनाया जा सके. इकॉनमी तब तक ग्रो नहीं करती या तब तक एक सक्सेसफुल इकॉनमी नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वहाँ के लोग शहरी खुश ना हों. और शायद इसी को कहा जाता है लिंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलबीइंग. देखिए सिर्फ इकोनॉमिक नंबर्स बढ़ा लेना असल तरक्की तो है नहीं. कतर नेशनल विजन 2030 इस बात पर यकीन रखता है कि जब तक सोसाइटी खुश सेहतमंद और सिक्योर ना हो डेवलपमेंट अधूरा है. जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल वेलबीइंग से जोड़ना विजन का एक अहम हिस्सा है. एग्जाम्पल के तौर पर जॉब्स क्रिएट करने के साथ हेल्थ केयर सिस्टम्स वर्कर्स सेफ्टी लॉज और एजुकेशन एक्सेस

किया जा रहा है फ्री एजुकेशन और एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज इसी सोच का नतीजा है दोस्तों जब लोग हेल्दी एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट होते हैं तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2020.

वो जमाना पुराना हुआ कि जब स्कैमर्स आपको फोन कॉल्स, ईमेल्स या टेक्स्ट के जरिए ठगा करते थे, स्कैम किया करते थे। अब नए-नए तरीके आ गए हैं, अब स्कैमर्स आपके सामने आने लगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे आप हैं फजील के साथ और हम बात कर रहे हैं स्कैम्स के बारे में। स्कैम अलर्ट। दुनिया में नए नए स्कैम्स आ रहे हैं, इनमें से एक स्कैम है रियल स्टेट का। ये जबरदस्त स्कैम जहां पर आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देनी होती है या सेल करनी होती है, यहां पर स्कैमर्स आपको करते हैं टारगेट। कैसे? सोचिए, आपने किसी सोशल मीडिया पे रेंट या सेल के लिए अपनी प्रॉपर्टी डाली है, किसी स्कैमर ने इसको देखा और फिर उसने आपको किया कॉन्टेक्ट और आपसे कहता है मुलाकात करने को। आपने उससे करी मुलाकात, जब वो आपके सामने आता है तो वो आपसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं इजीली रेंट पर दिलवा सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये परफेक्ट बंदा है, टाइम ये लगाएगा, पैसा ये लगाएगा, मेहनत ये करेगा क्लाइंट को लाने में, सारा काम इसका, मेरा सिर्फ बैठे बैठे पैसा गिनने का। लेकिन ये एक खतरनाक डील हो सकती है आपके लिए। आगे वो ये करता है कि वो आपसे सारी डिटेल्स लेता है और लास्ट में कहता है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बिकवाऊंगा तो उसका 1-2% मैं खुद रखूंगा और ये एडवांस होगा। ये एक ट्रिक है स्कैमर्स की, जो कि आपसे एडवांस लेता है और फिर वो गायब हो जाता है। उसके बाद आप उसे कितना भी कॉल करें, वो आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही सुनाई पड़ेगा। और कभी कभी ये आपके साथ स्कैमर्स ट्रिक भी करते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन का गैप लें उस डिपॉजिट का या फिर उस एडवांस पेमेंट का जो आप उसे करने वाले हैं, इसके लिए वो आपको वक्त देता है। जो फोन नंबर आपको देता है, इसके लिए आप डायरेक्ट उसे कॉल करते हैं, फोन कॉल उठती भी है, आपको थोड़ा भरोसा होने लगता है। ये आपको भरोसे में लाने की पूरी कोशिश करते हैं और जैसे ही आप इन पर यकीन करते हैं, आप कुछ पेमेंट करते हैं, जहां ये आपको इजिली फंसा ले जाते हैं और वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपने सोचा था कि ये एजेंट इजिली वो बेच सकता है, सेल कर सकता है, रेंट पर दे सकता है, बैठे बैठे आपको सिर्फ पैसे गिनने की जरूरत है, आपके पास पैसे आ जाएंगे, यहां पर वो आपको इजिली फ्रॉड करता है, स्कैम कर रहा होता है। इसलिए कभी भी किसी फेक एजेंट के थ्रू आप काम ना करवाएं, और अगर करवा रहे हैं तो वो क्या लाइसेंस्ड है, क्या उसका एक्चुअल में ऑफिस है, कितने साल से ऑफिस है, कब से है, ये सारी जानकारी लेना बेहद जरूरी है आपके लिए। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि किसी को भी एडवांस में पेमेंट ना किया जाए, किसी थर्ड पार्टी को पैसा ना दिया जाए एडवांस में, या फिर अननोन पर्सन को कैश भी ना दिया जाए जब तक आपके अकाउंट में

ऐसा दिखने ना लगे। आपने अगर किसी को कहा है, किसी एजेंट को कहा है सेल के लिए, रेंट के लिए, और जब तक एग्रीमेंट बनके तैयार ना हो जाए, आपके अकाउंट में पैसे ना आ जाए, आप एडवांस बिल्कुल ना दें। इवन अगर आपके अकाउंट में पैसे आ भी जाएं, ऐसा आपको कभी कभार लग सकता है, क्योंकि इस तरह से स्कैम करने लगे हैं कि आपके अकाउंट में शायद हो सकता है पैसे दिखने भी लगे। वो आपको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे, बट उस स्क्रीन शॉट पे भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। पासबुक लेकर जाइए, बैंक में जाइए और पूछिए बैंक टेलर से कि कितना आपके अकाउंट में पैसे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। दूसरा तरीका है कि आप ये देखें कि आपसे जितनी बात हुई थी, क्या उतने पैसे आए हैं कि उसके आधे आए हैं। ये भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो तीसरा पर्सन है, जिसने आपका घर खरीदा है, जिसने रेंट पर लिया है, उसने आधे पैसे क्या दिए हैं, या हो सकता है स्कैमर्स तीसरे पर्सन का इस्तेमाल कर रहा हो आधे पेमेंट करने के लिए, और जैसे ही आपने एडवांस दिया और तीसरा शख्स पलट गया और वो ये कहता है कि मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये जगह नहीं चाहिए, मुझे मेरा हाफ पेमेंट वापस चाहिए, ये रेंट पर या ये प्रॉपर्टी पर जो आप सेल कर रहे थे या रेंट पर दे रहे थे, आपका ये पूरा पैसा वापस जाएगा, और आपने जो पैसा एडवांस के तौर पे या फिर परसेंटेज के तौर पे उस एजेंट को दिया था, वो आपका गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसे में बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, ऐसे स्कैमर से बचने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी जल्द ही एक नए और खतरनाक स्कैम के साथ, जिसमें हम आपको करेंगे अपडेट। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे मैशाल बाशिम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैशाल बाशिम नाम से आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुताज बाशिम का छोटा भाई, और मुताज बाशिम जैसे नो हाई जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड टाइटल ओलंपिक टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं, वहीं मैशाल बाशिम भी कतरी फुटबॉल के साथ कई ऐसे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और गोलकीपिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स कतर हैज एवर प्रोड्यूस इन द लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, और बेहतरीन गोलकीपिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ तो मैशाल ईसा बाशिम है, और वो कतर नेशनल फुटबॉल टीम के एक अहम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है इसी महीने, और इसी महीने में कतर का अगर मैं नंबर वन गोलकीपर के तौर पे देखूं तो मैशाल का ही नाम आता है। मैशाल ने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत और लगन से प्रोफेशनल फुटबॉल तक का सफ़र तय किया था। मैशाल ने कतर स्टार्स लीग में असद क्लब की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। गोलकीपिंग के तौर पर उनकी रिफ्लेक्सेस, कॉन्फिडेंस और प्रेशर में बेहतरीन सेव्स करने की सलाहियत उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है, यानी दूसरे गोलकीपर से अलग बनाती है। दूसरे गोलकीपर्स की बात करो यहाँ पे, उनसे कई मुख्तलिफ इनके परफॉर्मेंसेस हैं, और लोग, एक्सपर्ट्स, फैंस और उनके चाहने वाले भी कहते हैं कि डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कतरी फुटबॉल। उन्होंने AFC एशियन कप और कई इंटरनेशनल मैचेस में कतर की नुमाइंदगी की और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ये 2024 में जो एशिया कप हुआ था कतर में, उसमें मैशाल ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया है।

0: मिशाल को डिसिप्लिन और डेडिकेशन की मिसाल माना जाता है। फुटबॉल फील्ड में उनका काम एटीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटीज टीम को मजबूत बनाती है। वो नौजवान फुटबॉलर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कतर में फुटबॉल को करियर बनाना चाहते हैं। आज मिशाल बाशन कतर फुटबॉल का एक रोशन नाम है और उनकी परफॉर्मेंसेस मुल्क के फुटबॉल फ्यूचर के लिए उम्मीद की नई किरण समझी जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि जिस्मानी सेहत जितना ही अहम है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये है ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ सिर्फ ज़हनी बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जज्बाती, नफ्सियाती और समाजी फलाह व बहबूद का एक अहम हिस्सा है। अच्छी ज़हनी सेहत हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने, बेहतर फैसले करने और दूसरों के साथ मुस्बत ताल्लुकात कायम रखने में मदद देती है। जिंदगी में किसी हद तक परेशानी या फिक्र महसूस करना मामूल की बात है, लेकिन जब फिक्र, खौफ या घबराहट मुसलसल रहने लगे और रोज़मर्रा की जिंदगी को मुतासिर करने लगे तो उसे एंजाइटी या बेचैनी की कैफियत कहा जाता है। इसकी अलामत में दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बेसुकूनी महसूस करना, नींद में खलल और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, या कंसंट्रेट करने में दुश्वारी महसूस हो, और हर वक्त फिक्रमंद रहना शामिल है। डिप्रेशन महज उदासी का नाम नहीं है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान मुसलसल उदास, मायूस या फिर बेदिल महसूस करता है, और इसकी अलामत ये है कि दिलचस्पी का कम हो जाना, थकन महसूस करना, नींद या भूख में तब्दीली, खुद एतमादी में कमी और रोज़मर्रा के कामों में दिल का ना लगना शामिल हैं। अगर ये अलामत दो हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहें तो फिर आप डॉक्टर की मदद ज़रूर लीजिए। जिस तरह हम जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, इसी तरह जज्बाती मसाइल को भी संजीदगी से लेना चाहिए। अपने जज्बात को पहचानना, उसका इजहार करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद तलब करना ज़हनी मजबूती की अलामत है। ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ को बेहतर हम बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं कि रोज़ाना मुनासिब नींद लीजिए, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, बाकायदगी से वर्जिश या वॉक कीजिए, ख़ानदान और दूसरों के साथ वक्त गुजारिए, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एतदाल रखिए, दुआ, जिक्र और रूहानी सरगर्मियों के लिए वक्त

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंफॉर्मेटिव और फन सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल भी बनाती हैं और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शावर टाइम कम करना। देखिए, सुबह का टाइम है, जरा सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, आप शावर में एंटर करते हैं, ठंडे या गर्म पानी का मजा आप ले रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि बस पांच मिनट और क्या मस्त मजा आ रहा है नहाने में। फिर कभी कभी आप ये होता है कि भाई आप गाने गाना शुरू कर देते हैं, कभी पता नहीं कौन कौन सी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, बाकायदा बाथरूम में खड़े होकर नहाते हुए आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं पता नहीं किस किस चीज की। और शावर टाइम 5 मिनट से कभी 15 तो कभी 20 मिनट तक पहुंच जाता है। और फिर भाई बाहर से कोई आवाज देता है, अगर आपके घर में कोई हो, खासतौर पर अम्मा हो, तो वो तो ये बोलती है बेटा खैर है, पानी खत्म करके बाहर आना है, खुदा का खौफ करो, जल्दी बाहर निकलो। ये सिचुएशंस बहुत कॉमन है, स्पेशली बिजी मॉर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा, या अक्सर ऐसा होता है ना, वो जुमे की नमाज पढ़ने जाना होता है, घर में चाहे कितने भी बाथरूम हो कम पड़ जाते हैं और सबको ये होती है कि बस जल्दी निकलो। अब थोड़ा रियलिटी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर ना एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम अक्सर सोचते हैं कि पानी बहुत है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन असल में फ्रेश वाटर जो हम डेली यूज करते हैं ना, वो लिमिटेड सप्लाई में होता है। जब हम शावर लेते हैं ना, तो सिर्फ पानी वेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि उस पानी को हीट करने के लिए भी एनर्जी जा रही होती है। यानी एक सिंपल शावर का इम्पैक्ट डबल होता है, यानी वाटर भी और इलेक्ट्रिसिटी या गैस भी। अच्छा, अगर इको स्विच के बारे में बात की जाए सिचुएशन में, तो सिंपल सा आइडिया है भाई। देखिए, शावर टाइम को कॉन्शियस और शॉर्ट रखना, मतलब क्लीन रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही घूमते फिरे बगैर नहाए धोए, ना ना ना ना ना, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट और ओवर यूज तो अवॉइड करें ना। आइडियल शावर टाइम आपको पता है क्या होता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 से 7 मिनट काफी होते हैं। 5 से 7 मिनट के आसपास आइडियल होता है, जो हाइजीन के लिए सफिशिएंट होता है और रिसोर्स सेविंग के लिए भी बेस्ट होता है। अच्छा, अब बात अगर करें तो अब बात करते हैं कि शावर टाइम कम करने से क्या फायदा होता है। देखिए, शावर टाइम कम करने से होता है, सबसे पहला तो फायदा होता है वाटर कंजर्वेशन। हर मिनट जो आप शावर में गुजार रहे होते हैं ना मजे से गाने गाते हुए, उससे तकरीबन लीटर्स ऑफ वाटर सेव हो जाता है। दूसरा फायदा है एनर्जी सेव होती है। गर्म पानी यूज करने के लिए हीटर या बॉयलर जो यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस कंज्यूम होती है, वो कम होती है। तीसरा फायदा है बिल रिडक्शन। भाई बिल रिडक्शन, पैसा आपकी जेब से कम जाएगा, वाटर एनर्जी दोनों कम यूज होते हैं ना, तो इससे मंथली बिल्स भी आपके नोटिसेबली डिफरेंस आता है, कम हो जाते हैं। चौथा फायदा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कम एनर्जी यूज का मतलब है कम इमिशंस और कम एनवायरमेंटल लोड। अच्छा, जरा सोचिए, आप सुबह लेट हो रहे हैं, ठीक है, शावर में एंटर करते हैं आप सोचते हैं कि भाई बस जल्दी से शावर ले लेता हूं, लेकिन फिर आपका फोन बज पड़ता है या आपके दिमाग में कुछ अलग काम चल रहे होते हैं या आपकी सोचें होती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आपका टाइम डबल हो जाता है। और फिर रिजल्ट ये होता है कि आप लेट भी हो जाते हैं और पानी भी ज्यादा यूज हो जाता है। अगर वही शावर प्लान्ड हो कि भाई नहीं, मैं 5 मिनट का टाइमर मोबाइल में है ना, मैं बस टाइमर मोबाइल में टाइमर सेट करो भाई, 5 से 7 मिनट का टाइमर सेट करो, और आप एफिशिएंटली रेडी भी हो जाते हैं और वेस्ट भी नहीं होता आपका पानी, एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं होता। देखिए, दोहा जैसे शहर में जहाँ क्लाइमेट होता ही वार्म है और कभी कभी वेरी हॉट भी हो जाता है, शावर रूटीन डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ वाटर यूजेज और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। अगर हर हाउस होल्ड थोड़ा सा भी शावर टाइम रिड्यूस करे ना, तो सिटी लेवल पर सिग्निफिकेंटली वाटर सेविंग हो सकती है। अच्छा, अगर टिप्स के बारे में बात करें तो भाई टाइमर यूज करें शावर स्टार्ट करते वक्त, 5 से 7 मिनट का टाइमर लगा लें, मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरी बात, सब पहले रेडी रखें, सब कुछ, शैम्पू, सोप, टॉवल वगैरह अरेंजमेंट जो होता है। तीसरी बात, वाटर ऑफ टेक्निक यूज करें, मतलब ये कि सोप लगाते वक्त पानी बंद कर देना, शैम्पू यूज करें तो पानी बंद करें, ये क्या कि पानी चल रहा है, शैम्पू लगा रहे हैं सर के ऊपर और पानी चलता चला जा रहा है। चौथी ट्रिक है माइंडफुल शावर हैबिट। शावर को रिलैक्सेशन जोन बनाएं, लेकिन एक्सटेंडेड थिंकिंग जोन मत बनाएं, वो जो आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ना शावर में खड़े होकर, वो ना करें। देखिए, अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ना आपको, एवरेज शावर में जो वाटर यूज होता है ना, वो डिपेंड करता है टाइम और फ्लो पे, लेकिन लॉन्ग शावर्स में अननेसेसरी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ईयरली वेस्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउस होल्ड। ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर छोटी लगती हैं बातें, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो भाई आज का चैलेंज ये साथियों कि आज से अगले 3 दिन के लिए आप अपना शावर टाइम नोटिस करें और कोशिश करें कि उसे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर रखें। अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट शावर्स लेते हैं ना, तो किसी और को आप इनकरेज कर सकते हैं कि भाई फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो, उसको कह सकते हैं कि भाई ये वाला काम करके देखो, बिल भी कम आएगा। तो देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं, आपकी एफर्ट्स कहां तक पहुंचते हैं। तो साथियों, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपना शावर टाइम कंट्रोल करते हैं तो हम सिर्फ अपनी आदत नहीं बदलते बल्कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ स्टेप लेते हैं। तो भाई मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है वालिदैन का एहतराम। वालिदैन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। उनकी मोहब्बत बगैर किसी शर्त के होती है और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। इस्लाम में वालिदैन की इज्जत और खिदमत को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। यहाँ तक के कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। अक्सर हम बिजी रूटीन में उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके साथ नरम लहजे में बात करना, उनकी खुशी का ख्याल करना और उनकी मदद करना, यही असल नेक अमल है। आज का अमल यह है कि अपने वालिदैन को कॉल करें, उनसे प्यार से बात करें, या अगर उनके पास हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें। उनका दिल खुश करना जन्नत का रास्ता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Hello and welcome to the segment called One Step to 2030.
3: One Step to 2030.
2: आज दोस्तों हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट फ्रेज को लेकर जिसको आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, शायद रेडियोस पे भी सुना है, टेलीविजन पे भी। वो फ्रेज या वो लाइन है कि व्हाई सस्टेनेबिलिटी इज नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने को ये सवाल बड़ा पावरफुल है और हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये एक भरपूर जिम्मेदारी है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, उससे कल कोई नुकसान ना हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। कतर का नेशनल विजन 2030 जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जोर देता है। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी और बिजली को बचाना, वेस्ट कम करना, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना, कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जी हाँ, सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है। अगर आज रिसोर्सेज जाया किए जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मुश्किलात पैदा होगी। विजन इसीलिए बैलेंस ग्रोथ पर जोर देता है और वन स्टेप टू 2030 हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी एक कलेक्टिव कमिटमेंट है जो कतर के फ्यूचर को महफूज बनाती है। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030 वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है। सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन

0: में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

فخلقت وإلى السماء كيف رفعت

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا